जिस औरत के घर में वो था वो उस पर डोरे डालने लगी और एक रोज दरवाजे बंद करके बोली, आ जा। यूसुफ ने कहा, खुदा की पनाह, मेरे रब ने तो मुझे अच्छी मंजिलत बख्शी और मैं ये काम करूं? ऐसे जालिम कभी फलाह नहीं पाया करते। वो उसकी तरफ बढ़ी और यूसुफ भी उसकी तरफ बढ़ता अगर अपने रब की बुरहान न देख लेता। ऐसा हुआ ताकि हम उससे बदी और बेहयाई को दूर कर दें। दर हकीकत वो हमारे चुने हुए बंदों में से था। आखिरकार यूसुफ और वो आगे पीछे दरवाजे की तरफ भागे और उसने पीछे से यूसुफ का कमीज खींच कर फाड़ दिया। दरवाजे पर दोनों ने उसके शौहर को मौजूद पाया। उसे देखते ही औरत कहने लगी, क्या सजा है उस शख्स की जो तेरी घरवाली पर नीयत खराब करे? इसके सिवा और क्या सजा हो सकती है कि वो कैद किया जाए या उसे सख्त अजाब दिया जाए? यूसुफ ने कहा, यही मुझे फांसने की कोशिश कर रही थी। उस औरत के अपने कुंबे वालों में से एक शख्स ने करीने की शहादत पेश की कि अगर यूसुफ का कमीज आगे से फटा हो तो औरत सच्ची है और ये झूठा, और अगर उसका कमीज पीछे से फटा हो तो औरत झूठी है और ये सच्चा। जब शौहर ने देखा कि यूसुफ का कमीज पीछे से फटा है तो उसने कहा, ये तुम औरतों की चालाकियां हैं, वाकई बड़े गजब की होती हैं तुम्हारी चालें। यूसुफ, इस मामले से दरगुजर कर, और ऐ औरत, तू अपने कसूर की माफी मांग, तू ही असल में खताकार थी।

बादशाह ने कहा उसे मेरे पास लाओ, मगर जब शाही फरिश्तादा यूसुफ के पास पहुंचा तो उसने कहा अपने रब के पास वापस जा और उससे पूछ कि उन औरतों का क्या मामला है जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे, मेरा रब तो उनकी मक्कारी से वाकिफ ही है। इस पर बादशाह ने उन औरतों से दरियाफ्त किया, तुम्हारा क्या तजुर्बा है उस वक्त का जब तुमने यूसुफ को रिझाने की कोशिश की थी? सब ने यक जुबान होकर कहा हाशा लिल्लाह, हमने तो इसमें बदी का शाइबा तक न पाया। अजीज की बीवी बोल उठी, अब हक खुल चुका है, वो मैं ही थी जिसने उसे फुसलाने की कोशिश की थी, बेशक वो बिल्कुल सच्चा है। यूसुफ ने कहा इससे मेरी गरज ये थी कि अजीज ये जान ले कि मैंने दर पर्दा उसकी खयानत नहीं की थी, और ये कि जो खयानत करते हैं उनकी चालों को अल्लाह कामयाबी की राह पर नहीं लगाता। मैं कुछ अपने नफ्स की बरात नहीं कर रहा हूं, नफ्स तो बदी पर उकसाता ही है, इल्ला ये कि किसी पर मेरे रब की रहमत हो, बेशक मेरा रब बड़ा गफूर और रहीम है। बादशाह ने कहा उन्हें मेरे पास लाओ ताकि मैं उनको अपने लिए मखसूस कर लूं। जब यूसुफ ने उससे गुफ्तगू की तो उसने कहा अब आप हमारे यहां कद्र व मंजिलत रखते हैं और आपकी अमानत पर पूरा भरोसा है। यूसुफ ने कहा मुल्क के खजाने मेरे सपुर्द कीजिए, मैं हिफाजत करने वाला भी हूं और इल्म भी रखता हूं। इस तरह हमने उस सरजमीन में यूसुफ के लिए इक्तदार की राह हमवार की। वो मुख्तार था कि उसमें जहां चाहे अपनी जगह बनाए, हम अपनी रहमत से जिसको चाहते हैं नवाजते हैं। नेक लोगों का अजर हमारे यहां मारा नहीं जाता, और आखिरत का अजर उन लोगों के लिए ज्यादा बेहतर है जो ईमान ले आए और खुदा तरसी के साथ काम करते रहे।

0: FM 107
1: पर रेडियो कतर की उर्दू सर्विस आपसे मुखातिब है। समीन, अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए फरमाया कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदे अगर तुमसे मेरे मुतालिक पूछें तो मैं तो उनसे करीब ही हूँ। पुकारने वाला जब मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार सुनता हूँ और जवाब देता हूँ। इसलिए उन्हें चाहिए कि मेरी दावत पर लब्बैक कहें और मुझ पर ईमान लाएं। ये बात तुम उन्हें सुना दो, शायद कि वो राह रास्त पा लें। सामीन, मौलाना इदरीस अबकर साहब दुआगो हैं अल्लाह ताला के हुजूर। आइए हम भी इन दुआओं में शरीक हो जाएं। ऐ अल्लाह, तू हमारी सब दुआएं कबूल फरमा ले।

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهد

0: دن میں 100 مرتبہ یہ استغفار پڑھا جائے، روایت ہے بخاری کی۔
1: اللہم صل و

0: जी हाँ, हेल्थ केयर जैसे सेक्टर में तो इसका असर और भी ज्यादा गहरा होता है, क्योंकि यहाँ हर सप्लाई, हर सर्विस या हर डिसीजन किसी ना किसी जिंदगी के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ा ही है। इसीलिए सक्सेसफुल B2B कंपनीज वो होती हैं जो सिर्फ बिजनेस नहीं करती, बल्कि मेरे हिसाब से प्रोग्रेस, इनोवेशन और बेहतर मुस्तकबिल का रास्ता बनाती है। जी दोस्तों, हमने और आपने जाना कि जब एक कंपनी डॉक्टर्स और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को बेहतर टूल देती है तो इसका सीधा असर पेशेंट की जिंदगी पर पड़ता ही पड़ता है। बेहतर फैसिलिटीज मिलती हैं, बेहतर डायग्नोसिस होते हैं, फास्ट ट्रीटमेंट होते हैं और इम्प्रूव्ड केयर आउटकम्स के जरिए हम इन चीज़ों को महसूस भी करते हैं। ऐसे बिजनेसेस ज़्यादातर जो हैं वो ट्रस्ट, क्वालिटी और कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पर ही चलती हैं। जैसे हमारे गेस्ट ने भी बताया, हॉस्पिटल सिर्फ एक दफ़ा परचेज नहीं करते, कई बार मशीन सिर्फ मशीन ही नहीं है, उसके बाद उसे कैसे चलाना है, उसकी ट्रेनिंग देना, किस तरह से उसके मेंटेनेंस, रिपेयर का ख्याल करना है और फर्दर गाइडेंस, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती ही होती है। और इसी को कहते हैं प्रोजेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। तो जैसे हमारे गेस्ट ने हमें बताया कि कंपनी जो है वो पूरे तरीके का हर तरीके से प्रोजेक्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। इसीलिए एक स्ट्रॉन्ग B2B कंपनी वो है जो क्लाइंट के साथ कंटिन्यूसली इंगेज रहे, उनकी नीड्स को समझे, उनके साथ ग्रो करे। ये पार्टनरशिप मॉडल ही उन्हें मार्केट में सबसे ज्यादा यूनिक और अलग बनाता है। कतर, आप जानते ही हैं, कतर जैसी डेवलपिंग और रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमी में हेल्थ केयर सेक्टर का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये कंपनी इस सिस्टम को मॉडर्न और एफिशिएंट बनाने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इंटरनेशनल टेक्नोलॉजीज को लोकल लेवल पर लेकर आना, कंप्लायंस मेंटेन करना और साथ ही साथ इनोवेशन को प्रमोट करना, ये सब इन कंपनीज की जिम्मेदारी होती है। दोस्तों, आज के इस डिजिटल और फास्ट चेंजिंग दौर में कॉम्पिटिशन तो बढ़ ही रहा है, लेकिन रियल वैल्यू वही कंपनीज क्रिएट करती हैं जो सिर्फ सेल नहीं करती बल्कि सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती हैं। फ्यूचर उन्हीं बिजनेसेस का होगा जो टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट और सर्विस एक्सेलेंस को कंबाइन करेंगी। आखिर में मुझे लगता है कहना गलत नहीं होगा, ये कहना बल्कि दुरुस्त होगा कि ऐसे B2B बिजनेसेस सिर्फ अपनी ग्रोथ नहीं बल्कि पूरे हेल्थ केयर इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और इसी से एक बेटर और एक हेल्थियर सोसाइटी की फाउंडेशन रखी जाती है। तो बस हमारी कोशिश है कि आपको समझाएं कि किस तरह से कंपनीज जो है वो काम करती हैं, क्या वैल्यू वो क्रिएट कर रही हैं, किस तरह का बिजनेस मॉडल जो है वो अप्लाई कर रही हैं, उनकी खुद की सक्सेस स्टोरी क्या है। और अगर आप में से भी कोई ऐसा सोच रहा है कि मैं भी खुद का अपना बिजनेस स्टार्ट करूं, तो क्यों नहीं शुरू कर सकते। देखिए, छोटी सी सोच से शुरुआत होती है, फिर वो कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस पर, अपने कॉन्फिडेंस में उसे ट्रांसलेट करना होता है, उस सोच को जिसकी हम बात कर रहे हैं। पहले एक छोटी सी सोच, एक छोटा सा आइडिया, फिर उसे ट्रांसलेट किया, अच्छे से समझा, उसके ऊपर पूरा अच्छे से कायदे से होमवर्क किया एंड देन अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड किया कि यस, मैं डेफिनेटली ये कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ। फिर उसके ऊपर ठीक ठाक तरीके की रिसर्च भी आपको करनी है और इस तरह के जो हमारे सेगमेंट्स हैं या हमारे जो शोज हैं वो आपके लिए बड़े यूजफुल होंगे, क्योंकि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उन सारे बिजनेसेस के बारे में हम डेफिनेटली बात करें जो कहीं ना कहीं आपको इम्प्रेस तो करते हैं, कहीं ना कहीं आपको सोचने पर मजबूर तो करते हैं, लेकिन आप खुद जो है वो कदम नहीं ले पाते या स्टेप नहीं उठा पाते कि मैं भी ऐसा बिजनेस करूं या करना स्टार्ट करूं या सोचूं। तो बस सोचिए, अगर आपको लगता है कि यस, आपने वो बिजनेस एक्यूमन है, तो बस गो अहेड, रिसर्च कीजिए, थोड़ा होमवर्क कीजिए, थोड़ा खुद में कॉन्फिडेंस लाइए और अच्छी सी टीम अपनी जो है वो बनाइए एंड देन द स्पेस इज ऑल योर्स। बस इसी पावरफुल और ब्यूटीफुल नोट पर मैं आपसे इजाजत लूंगी। नेक्स्ट एपिसोड में एक और नए बिजनेस मॉडल को हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए और खुश रहिए एंड सुनते रहिए FM 107। नाजिया और शहबाज, हम दोनों को दुआ में भी याद रखिए और सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
2: हर प्रोफेशनल शख्स इतना मसरूफ है जिंदगी में कि अगर उसे वक्त मिले और कोई उससे पूछे कि बैठिए जरा बताइए क्या चल रहा है, कहानी सुनने को मिलेगी जो सी

0: सीधा आपके दिल पे जा लगेगी। इसलिए हम आपको इनवाइट करते हैं हमारे कैफे में, जहां आप में से ही एक शख्स हमारे साथ होगा कैफे 107 पर।
1: हर फ्राइडे शाम 7:15 बजे से 7:15 बजे से FM 107 पर दोहा वाले कबीर के साथ।

0: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है। इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफर्रका ना डालो। यह रस्सी यह हबले मतीन है, कुरान करीम। आइए तलहा अशरफुल जमान के साथ सुनिए एक खास प्रोग्राम पर्ल्स ऑफ द कुरान, जहां हम तलाश करेंगे कुरान के वो मोती जो हमारी जिंदगी को सवार दें।
1: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामने ग्राम प्रोग्राम में कुरान के मोती के आज के हलके में आप सबका खैर मकदम है। तलहा अशरफुज़्ज़मान की जानिब से कबूल कीजिए सलाम व तहियात। आज गुफ्तगू होगी नुसरत, मदद और हिमायत के हवाले से। वाकया ये है कि नुसरत दीन का शरफ अल्लाह ताला अपने हर बंदे को नसीब नहीं फरमाता। हाँ, जो इस शर्फ को कबूल करे वो खुद बुलंद हो गया और जिसने हाथ खींच लिया काफिला उसके बगैर भी आगे बढ़ता है। दीन इलाही किसी एक इंसान, किसी एक जमात या किसी एक नस्ल पर मौकूफ नहीं। अगर इंसान अपनी जिम्मेदारी छोड़ दे तो नुकसान दीन का नहीं इंसान का होता है। कुरानी रूह से हक इसलिए हक नहीं कि लोग उसके साथ खड़े हैं, हक इसलिए हक है कि वो अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह ताला सूरह तौबा में फरमाता है, इल्ला तंसुरूहु फकद नसरहुल्लाह। अगर तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद न करो तो अल्लाह ने उनकी मदद कर दी है। ये सिर्फ माजी के किसी एक दौर से खिताब नहीं, ये हर जमाने के लिए पैगाम है, हर उम्मत के लिए, हर दाई के लिए और हर उस दिल के लिए जो कभी ये सोच कर परेशान हो जाता है कि अगर हक के साथ ही कम हो गए तो क्या होगा, अगर आवाजें खामोश हो गईं तो क्या होगा। सुन्नी किराम, ये आयत हमें हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस इंतहाई नाजुक मंजर की तरफ ले जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से निकले, दुश्मन ताकुब में हैं, इनामात का ऐलान हो चुका है, रास्ते खतरनाक हैं, गार महदूद और तंग हैं। जाहिरी हिसाब से देखिए तो सूरत हाल मुहासरे की है, लेकिन आसमान के हिसाब से यही सफर एक अजीम फतह की इब्तिदा है। न कोई बड़ी फौज, न रियासती ताकत, न जाहिरी वसाइल की कसरत, फिर भी अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने अपने नबी की नुसरत की। समय कराम, अब नुसरत के कई मानी हो सकते हैं। नुसरत हमेशा बड़े लश्कर की सूरत में नहीं आती, कभी नुसरत ये होती है कि दुश्मन करीब हो मगर पहुँच न

सके। कभी नुसरत ये होती है कि रास्ते बंद दिखाई दें मगर अल्लाह एक नया रास्ता खोल दे। हिजरत का मंजर जमीन की निगाह से खतरा था मगर आसमान की निगाह से वो थी फतह की तमहीद। सबने किराम, हम आमतौर पर समझते हैं कि नुसरत वो लम्हा है जब दुश्मन शिकस्त खाए, शहर फतह हो, परचम बुलंद हो, लेकिन कुरान हमें नुसरत का एक और जाविया दिखाता है। वो नुसरत उस वक्त शुरू हुई थी जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल साबित रहा। नुसरत उस वक्त शुरू हुई जब ताकुब करने वालों की आवाज़ें करीब थीं मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में अल्लाह पर एतमाद उन आवाज़ों से ज़्यादा बुलंद था। और उसी लम्हे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथी से फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, गम न करो बेशक अल्लाह हमारे साथ है। कितनी कौमें मैदान में उतरने से पहले अपने दिलों में शिकस्त खा जाती हैं और कितने ही छोटे ग्रुप ज़ाहिरी किल्लत के बावजूद इसलिए खड़े रहते हैं कि उनका रिश्ता अल्लाह के साथ मजबूत होता है। अब सवाल ये है कि हम आज के इस दौर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत कैसे करें? क्या नुसरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक नारा है, सिर्फ किसी ख़ास मौसम में बुलंद होने वाली आवाज़ है? नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत सबसे पहले आपकी इत्तबा में है। जब हम सच बोलते हैं तो आपकी नुसरत करते हैं, जब अमानत अदा करते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम की सच्चाई दुनिया के सामने रखते हैं, जब हम अपने घरों में नबवी अखलाक लाते हैं, बाजारों में दियानत, ताल्लुकात में रहमत, मामलात में अदल, तो ये भी नुसरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नुसरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और पहलू ये भी है कि अदल की नुसरत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी शरीयत लेकर आए जो जुल्म के मुकाबिल अदल, खियानत के मुकाबिल अमानत, नफरत के मुकाबिल रहमत और फसाद के मुकाबिल इस्लाह का पैगाम देती है। लिहाजा जो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करे मगर जुल्म का रवैया इख्तियार करे, फसाद को बढ़ाए, लोगों के हुकूक पामाल करे, वो अपनी ही बात की रूह से दूर हो जाता है। गोया मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जज्बात के साथ साथ एक अखलाकी जिम्मेदारी भी है। वैसे अल्लाह की नुसरत का वादा एक रब्बानी सुन्नत है, जैसा कि इस आयत के आखिर में भी है। ये दरअसल बहुत एक उम्मीद अफजा पहलू है। अगर चायत का असल सियाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है, लेकिन उसमें हमें एक अमूमी हकीकत भी दिखाई देती है, जो अल्लाह के साथ सच्चा हो अल्लाह उसे बेसहारा नहीं छोड़ता। जो फितनों के दौर में साबित कदम रहे उसके लिए अल्लाह की हिफाजत के दरवाजे खुल जाते हैं। हाँ, कभी नुसरत से पहले आजमाइश आती है, कभी रात तवील होती है, कभी रास्ता समझ में नहीं आता, कभी जाहिरी नताइज देर से जाहिर होते हैं, लेकिन मोमिन जानता है ताखीर तर्क नहीं होती और तारीकी इस बात की दलील नहीं कि सुबह नहीं आएगी। जिस रब ने गार में अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की उसके लिए किसी हालत को बदलना मुश्किल नहीं। तो आज इस आयत से अपने दिल के लिए यही मोती ले जाइए, इल्ला तंसुरुहु फकद नसरहुल्लाह, कि नुसरत का वादा अल्लाह का है और नुसरत का शरफ हमारे लिए है। हमें यह फैसला करना है कि हम इस काफिले में शामिल होते हैं या खुद को इस सआदत से महरूम कर देते हैं। सामने किराम, प्रोग्राम के इस मरहले में अब हम इस आयत से मुंतकिल होंगे एक दूसरी सूरत की तरफ। ये सूरत सिर्फ 3 आयात पर मुश्तमिल है। इरशाद खुदाबंदी है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا। तो सबने कराम, इस सूरत में फतह की बात भी आ गई, दावत का कमाल भी, रिसालत के अख्तिताम की तरफ एक लतीफ इशारा भी है और कामयाबी के बाद मोमिन का रवैया भी। इस सूरत के कई नाम मिलते हैं, इसे सूरह नसर कहा जाता है। बाज़ रिवायत और कुतुब में उसे इदा जा नसरुल्लाह वल फतह के इब्तदाई अल्फाज से भी याद किया गया और बाज़ अहले इल्म ने उसे सूरह तौदीअ यानी अलविदा की सूरत भी कहा है।

इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के इख्तितामी मरहले की तरफ एक निहायत लतीफ इशारा पाया जाता है। ये मदनी सूरत है और अहले इल्म के हाँ से कुरान करीम की आखिरी नाजिल होने वाली मुकम्मल सूरतों में शुमार किया जाता है। बाज़ आसार में इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से ये भी मनकूल है कि ये आखिरी मुकम्मल सूरत थी जो नाजिल हुई। उसके नुज़ूल के वक्त के बारे में अहले इल्म की आरा में कुछ तफसील है, बाज़ उसे फतह मक्का के बाद और बाज़ उसके करीब के ज़माने से जोड़ते हैं, लेकिन ये मजमू तौर पर नबवी ज़िंदगी के आखिरी मरहले की सूरत है। और यही बात हमें उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा के एक मारूफ़ वाक़े में बहुत खूबसूरती से समझ आती है कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने मशवरे की मजलिस में जलीलुल क़दर मुहाजरीन व अंसार के साथ नौजवान इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा को भी बिठाते थे। बाज़ बुज़ुर्ग साहबा के दिल में सवाल पैदा हुआ कि हमारे भी इस उम्र के बच्चे हैं, फिर इब्न अब्बास को इस मजलिस में खुसूसी जगह क्यों दी जाती है। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक दिन सबसे सूरह नसर के बारे में पूछा, इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह, तुम इस सूरत से क्या समझते हो। कुछ सहाबा ने फरमाया कि अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दे रहे हैं कि जब अल्लाह की मदद और फतह आ जाए और लोग फौज दर फौज इस्लाम में दाखिल हों तो अपने रब की हमद के साथ तस्बीह करो और उससे मगफिरत मांगो। ये माना बिल्कुल दुरुस्त था, लेकिन फिर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने नौजवान इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से पूछा, आप क्या समझते हैं। उन्होंने अर्ज किया, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजल की अलामत है जिससे अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह फरमाया। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मैं भी उससे वही समझता हूँ जो तुम समझते हो। यहाँ इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की कुरानी बसीरत सामने आती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ फरमाई थी, अल्लाहुम्मा फक्किहु फिद्दीन वअल्लिमहु तावील, ऐ अल्लाह उसे दीन की समझ और तावील का इल्म अता फरमा। समझ कर हम यहाँ इब्न अब्बास इन आयात के जाहिर से आगे बढ़कर उनकी गहराई में उतर गए थे, उसी वजह से उन्होंने आयत की तफसीर की। सूरत में ये नहीं कहा गया कि आपकी वफात करीब है, अजल का लफ्ज़ नहीं आया, लेकिन पैगाम ये था के मिशन मुकम्मल होने के करीब है। वो वादा जिसके लिए बरसों मेहनत हुई अब पूरा हो चुका है, फतह आ चुकी, मक्का फतह हो गया, अरब के कबाइल जोक दर जोक इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। गोया जो काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द था उसका बड़ा मकसद पूरा हो चुका है। और जब एक अजीम जिम्मेदारी अपने कमाल को पहुंच जाए तो जिंदगी का अगला मरहला भी करीब होता है। इसीलिए किसी शायर ने कहा, जिसका मफहूम यह है, जब कोई चीज़ अपने कमाल को पहुंचती है तो उसके जवाल का मरहला शुरू हो जाता है, ये दुनिया का कानून है। लेकिन कुरान इस कमाल के बाद जिस चीज़ का हुक्म देता है वो भी हैरत अंगेज है। वो ये नहीं कहता कि फतह आ गई बस अब जश्न मनाते रहो। आज के दौर में हम लोग तो सिर्फ जश्न मनाते रहते हैं, बल्कि फरमाया, फसबह बिहम्द रब्बिक वस्तगफिर, अपने रब की हम्द के साथ उसकी तस्बीह करो और उससे मगफिरत तलब करो। ये कुरान का मिजाज है कि कामयाबी के बाद खुद सताई नहीं इस्तिग़फ़ार, मिशन की तकमील के बाद ये न कहो कि मैंने किया हमसे हुआ बल्कि मेरे रब ने किया। यहाँ इस्तिग़फ़ार का हुक्म इसके अंदर बहुत गहरा माना है। हम जानते हैं कि इबादत और नेक अमाल के ख़त्म पर भी इस्तिग़फ़ार मशरू है। नमाज ख़त्म होती है तो हम कहते हैं अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, क्यों, क्या नमाज गुनाह थी? नहीं, बल्कि बंदा यह एतराफ़ करता है कि ये अल्लाह मैंने इबादत की लेकिन जैसी तेरी शायान शान थी वैसे न कर सका, मेरे अमल में जो कमी गफलत या नक्स रह गया उसे माफ़ फरमा, ये अमल भी तेरा फजल था और उसकी कमियों की माफ़ी भी तुझी से चाहता हूँ। सूरह नसर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्तग़फ़ार का हुक्म, इसका एक और पहलू भी है, गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे मुबारक को मुलाकात इलाही के लिए तैयार किया जा रहा है। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने इसी इशारे को समझा और यही बसीरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु में भी नज़र आती है। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे में फरमाया कि अल्लाह ने एक बंदे को इख्तियार दिया कि चाहे दुनिया और उसकी नेमतें इख्तियार करे और चाहे अल्लाह के पास जो है उसे इख्तियार करे, तो उस बंदे ने अल्लाह के पास वाली चीज़ को पसंद किया। लोगों ने उसे एक उमूमी बात समझा, लेकिन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु रो पड़े। लोग हैरान हुए कि वो क्यों रो रहे हैं। बाद में उन्हें समझ आया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरअसल अपने बारे में फरमा रहे थे।
تو یہ محبت کی نگاہ

0: FM 107. Time check.
1: आइए भाई सब आइए, 6:01 वीकेंड स्पेशल ₹75 डिस्काउंट सुबह सुबह उठने पे ₹75 डिस्काउंट। व्हाट्सएप मैसेज भाई साहब, व्हाट्सएप प्लीज। हाँ मैसेज कर दीजिए 6666221107 पे। आइए डिस्काउंट।

0: Wake up. Hey, दोहा वाला मैं कबीर.
1: हाँ जी,
0: यही कहूंगा सुबह सुबह.
1: Wake up, wake up. Assalamualaikum, good morning. जी, good morning. आपके entertainment का security guard आज रहे FM 107 पे भाई साहब. सेवा के दो मिनट लिए. A very very happy weekend. मुझे तो पता भी नहीं था भाई, ये बहुत ज्यादा जल्दी नहीं आ गया weekend. बहुत ज्यादा जल्दी है भाई. कल मेरे दिमाग में ट्यूसडे चल रहा था और आज मैं कन्विंस नहीं हूँ कि आज थर्सडे है. मुझे पता है कि है, पर कहीं ना कहीं मेरे दिमाग को लगता है कि नहीं है. ठीक है, जो भी है. अस्सलाम वालेकुम, मैं जी दोहा वाला कबीर FM 107 पे फिर से बता रहा हूँ क्योंकि भूल गया आगे का डायलॉग. बट सुबह सुबह जिन्होंने मैसेजेस किए उन सबको मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत प्यार. और आज बच्चे वैसे एक्साइटेड होते होंगे मुझे ऐसा लगता है वीकेंड पे, क्योंकि उन्हें पता है आज जाना फिर तो जी दो दिन की छुट्टी बढ़ियाली. कल मैं शो सुन रहा था और मुझे उससे जुड़ा हुआ एक सवाल सुबह सुबह पूछ लिया गया, तो मैं रिप्लाई कर देता हूँ. एक भाई ने कहा कल के सवाल पे क्या कहना है, और सवाल पता किसका, मेरा नहीं, सरोर भाई वाले और नजीर बहन वाले शो का. तो उसमें उन्होंने कल पूछा था कि मेहनत या फिर क्या पूछा था, मेहनत या फिर हार्डवर्क पूछा था ना, टैलेंट या फिर हार्डवर्क पूछा था. अरे मैं तो कह रहा हूँ सरोर भाई को खुद बताना चाहिए था अपने बारे में, उनका रेडियो का बैकग्राउंड नहीं है, बंदे ने मेहनत करी है भाई. टैलेंट को बीट करने के लिए हार्डवर्क ऑलवेज विंस. तो उन्होंने अपना नाम ही लिया, ले लेना चाहिए था, हम्बल आदमी है वो. बट ठीक है, उनके मुँह पर तारीफ भी तो नहीं कर सकता यार मैं, दिक्कत हो जाती है. हमारा रिश्ता वैसा नहीं है. बहुत ज़्यादा ही खास रिश्ता है, इसलिए ज़्यादा मुँह पर तारीफ करनी नहीं चाहिए. बट एनीवे, सुबह की शुरुआत मैसेजेस से आपके, मैं ज़्यादा देख लेता हूँ सारे मैसेज कहाँ पर हैं. एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई कह रहे हैं गुड मॉर्निंग. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम मेरे भाई, कैसे हो? चलो मसला नहीं, कल फिर आ जाना. नहीं भाई, थैंक यू सो मच. और

0: weekend. Jazakallah Shahid sahab, bahut bahut shukriya. Aur unka my side 25%. Acha okay. पर ऐसा क्यों, मतलब मैं तो ज़्यादा डिस्काउंट दे रहा था ना. जैनी बाय. और एक मैसेज और है, लेकिन मैं इनके मैसेज को डिकोड नहीं कर पा रहा. इन्होंने रात के 12:57 पे मैसेज किया है, भाई इतनी रात में घर की याद कौन दिलाता है, है? रात में इनको कौन घर की याद दिला रहा था 1 बजे. अरे कोई रिकॉर्डेड शो चल रहा होगा ये. चलो ठीक है, याद आ गई तो आ गई. मैं बड़ा खुश रहता हूँ क्योंकि वीकेंड पे मेरी पढ़ाई खत्म हो जाती है. जैसे स्कूल के बच्चे होते हैं ना कि उनको वीकेंड के बाद मतलब थर्सडे को पता होता है स्पेशली कि अभी पढ़ाई नहीं करनी है 2 दिन. तो मेरे पास भी होमवर्क नहीं होता भाई. तो आपको लग रहा होगा ना कि ये इकलौता ही है जो वीकेंड के लिए कुछ ज़्यादा ही जंपिंग जैक बना हुआ होता है, ज़्यादा एक्साइटेड होता है. उसकी वजह है भाई, क्योंकि 2 दिन मुझे कान ही नहीं सुनानी, तो रिसर्च नहीं करनी पड़ती, पढ़ाई रुक जाती है, तो थोड़ा आराम मिल जाता है. 666-22107 नंबर है, आप इस पर जाइएगा. एंड आज की कहानी के बारे में मैं इतना बता दूं आपको कि आज आप लिटरली आज आप रेडियो पे पूरा का पूरा सिनेमा सुनकर देखने वाले. ये बिल्कुल ऐसा होगा कि मैं बोलूँगा और आपको पिक्चर दिख जाएगी. इट इज सच अ नाइस स्टोरी कि पूरा सिनेमा भाई साहब आज आपको मिलेगा. वीकेंड स्पेशल है तो कुछ तो खास करना ही पड़ेगा. आज का बहुत ही खास खास किस्सा है एंड मैं नहीं चाहता कि आप मिस करें. प्लीज़ 7:30 बजे हम वो किस्सा शुरू करेंगे. बट मीनवाइल सुबह की शुरुआत आप जानते हैं सुबह के अधिकार से तला भाई की आवाज़ में. 10 मिनट 30 सेकंड के बाद आपसे मुलाकात होगी. जाना आपने ही नहीं, वो मैसेज करते हो प्लीज़. हैं है, प्लीज़ प्लीज़ स्टे ट्यून्ड है. हाँ,
1: एक पुरसुकून और खामोश सुबह फजर की रोशनी से शुरू होती है. इन्हीं पाकीज़ा लम्हों में दुआएं कबूल होती हैं, बरकतों का नुजूल होता है और अल्लाह की रहमतें उनकी तरफ मुतवज्जे होती हैं जो उसे याद रखते हैं. इरशादे खुदावंदी है, वज़्कुर इस्मा रब्बिका बुकरतन व असीला, और सुबह शाम अपने परवरदिगार के नाम का जिक्र किया करो. और अब समाज फरमाइए सुबह के अजगार FM 107 पर.

الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله.

कोई ऐसा शख्स है जिस पे आपको लगता है कि यार ये तो पिक्चर में होना चाहिए, ये दुनिया में कर क्या रहा है, इस पे तो पिक्चर होनी चाहिए. अब वो विलन भी हो सकता है उस पिक्चर का, उस पे वो हीरो भी हो सकता है, साइड हीरो भी हो सकता है. एक मैसेज है, आप टॉपिक रिकॉल नहीं करते. टॉपिक रिकॉल नहीं करते, अभी तो किया मैंने. बहन क्या बात हो गई, सुबह सुबह ये वीकेंड के मूड में भाई इनका अलग चल रहा है. सुमुल बहन अलग बैटिंग कर रही है. वो होता ना ये सुमुल बहन क्या हो गया बहन, आज टिफिन खाली है, क्या दिक्कत है, आज वीकेंड वाला जोन है, व्हाट इज द प्रॉब्लम इज द आई रियली वॉन्ट टू नो. एक मैसेज आ रहा है, अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरे तो सारे रिश्तेदारों को पिक्चर बननी चाहिए, अगर मेरी खाला और फूफो पिक्चर बनेगी तो दोनों की दोनों पिक्चर में विलन होंगी और एंडिंग भी सैड होगी. भाई कह रहे मेरी खाला और फूफो जो है उन पे तो पिक्चर बननी चाहिए, वो कह रहे हैं वो दोनों की दोनों विलन होंगी और वो दोनों की दोनों जो है एंड तक कहीं नहीं जाएंगी, तो सैड एंडिंग हुई भाई. तो यार मैं की तो अग्री करता हूँ, मैं अग्री करता हूँ. ये खाला और फूफो का कैरेक्टर ही ऐसा है भाई, वो किसी पिक्चर में आप पॉजिटिव कर ही नहीं पाएंगे. अगर आप कर पा रहे हैं तो बहुत ही रेयर केस है जहाँ पे खालों और फूफो का रोल जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो. इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, पर अगर ऐसा कहीं पे हो रहा है, सल्यूट सल्यूट सल्यूट. मैं किसी दिन ये भी सवाल पूछ लूँगा कि क्या आपकी खाले और फूफो पॉजिटिव है, हमारी तो नहीं है भाई, टू बी ऑनेस्ट. इसमें कुछ क्या मतलब, क्या छुपाना. अस्सलाम वालेकुम भाई. वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग मेरे भाई, क्या हाल है. आपने नाम मेंशन नहीं किया अपना. और एक भाई ने सऊदी अरब से मुझे मैसेज किया है, थैंक यू सो मच मेरे भाई. बहुत दूर से सुन रहे हैं ये, मतलब सऊदी अरब में भी बिल्कुल आगे से ही है. अली भाई थैंक यू सो मच मैसेज करने के लिए. तौफीक साहब मैसेज कर रहे हैं. तौफीक साहब हर रोज़ एक मैसेज ड्रॉप कर देते हैं, बड़ा सिंपल होता है. कबीर भाई अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद तौफीक अल वकरा से. ये डेली का है. सुमुल बन कह रही मैं नहीं खेल रही. मुझे पता है आप नहीं खेल रही, आज तो अलग ही जोन में, आपका सब माफ है आज. एक मैसेज, सलाम कबीर भाई, कहाँ से आते हैं. ऐसा ही है आसिम भाई, क्या कर सकते हैं आसिम भाई, ये सीन है भाई, अलग अलग जगह से लोग आते हैं. आसिम भाई आप बताइए कैसे. वाह भाई आसिम भाई, लेकिन एक तारीफ करनी पड़ेगी आपकी, आपने जो ये लंबे बालों को मेंटेन किया भाई, एकदम मतलब जलन हो रही है मुझे भाई. अभी मेरे छोटे बाल हैं तो मेरा आपसे जलना बनता भाई, बढ़िया लग रहा हूँ एकदम हीरो. और एक मैसेज आया है, ये भाई का नाम क्या है. अच्छा फैजल साहब ने मैसेज किया है. फैजल साहब लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग भाई लिखते हैं, वेलकम बैक टू द शो, थैंक यू सो मच मेरे भाई. और लिखते हैं, पिक्चर तो भाई मुझ पर ही बननी चाहिए क्योंकि मैं किसी भी जगह पे विलन का ही रोल करता हूँ और सब के सब मुझे छोड़ के चले जाते हैं. अरे रे, तो फिर आप विलन नहीं हो भाई. विलन तो मतलब आजकल ये विलन दिख रहे हैं, मॉडर्न विलन. इंसान को हीरो से बढ़िया विलन लगता है भाई आज की तारीख में. तो अगर आपको छोड़ के जा रहे हैं, विलन नहीं है भाई. आई डोंट थिंक सो. थोड़ा मुझे लगता है आपका कैरेक्टर हीरो ही है भाई, आप हीरो ही हैं. और आसिम भाई लिखते हैं, लव यू भाई, लव यू मेरे भाई, बहुत सारा प्यार आपको, थैंक यू सो मच. और एक मैसेज आया है, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. ये किन्होंने किया भाई, ये कम कम भाई ने. कम कम भाई क्या हाल है भाई के, वेलकम बैक. और हम आपके शो पे मूवी शूट करेंगे. अच्छा क्या किस बात पे मूवी शूट करेंगे सुम्बुल बहन, मतलब आप मुझे विलन बनाना चाहती हैं, यही है ना आपका सपना. मैं जानता हूँ बचपन का सपना आपका ये. एक भाई ने मैसेज किया है, अरे रे रे रे रे रे, ये मैसेज तो पढ़ने वाला भाई. एक भाई है, इनका मैं नाम नहीं लूँगा, मैं नहीं चाहता कि कुछ आगे हो. ये कह रहे हैं कि आपके रेडियो पे एक आदमी कॉल करते हैं जिनका नाम जुल्कनैन है, मुझे उन पे पिक्चर बनानी है. जुल्कनैन इफ यू आर लिसनिंग टू मी राइट नाउ मेरा भाई, तो आपके ऊपर पिक्चर बनाने के लिए डायरेक्टर हमारे पास है, तैयार है. एक मैसेज, गुड मॉर्निंग ब्रो. गुड मॉर्निंग संजीव भाई, क्या हाल है. तो आज तो भाई कमाली होंगे. एक मैसेज और है आपके, एक अच्छा आगे लिख रहे हैं, आपके एक और लिसनर है जिनका नाम है, क्या नाम है, अच्छा शहजादा सलीम है उनका नाम. अच्छा शहजादा सलीम कह रहे हैं उन पर पिक्चर बननी चाहिए. ये क्या, क्यों पीछे पड़ गए भाई ये सुनने वालों के, मेरे समझ में नहीं आया. और अलीना थैंक यू सो मच, वालेकुम अस्सलाम बेटी, क्या हाल है. और आपके मैसेज का रिप्लाई मैं अलग से करता हूँ. ये क्या है, क्या है, क्या क्या, अच्छा ओके. एक और मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई. ये इकबाल नेपाली भाई ने मैसेज किया. इकबाल भाई थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए. और एक भाई कह रहे हैं, भाई मुझे ये बताइए कि आपने वज़न कैसे, मैंने वज़न कम कब किया, मैंने कब किया भाई, ये कहाँ से बातें ली गोरी, मैंने कुछ नहीं किया भाई. पहली मरतबा अपने आप को मुझे एक अजीब बात के लिए डिफेंड करना पड़ रहा है कि मैंने नहीं किया. कहाँ दिखा आपने मैंने वज़न लूज़ किया, गलत.

0: देख लिया भाई, मेरा तो कोई बहरूपिया भी नहीं है। फराज भाई वालेकुम अस्सलाम। फराज भाई क्या हो रहा है आपके राज में? एक मैसेज है आपके शो का, एक बंदा है आसिफ, उसे पिक्चर से निकाल देना चाहिए। ये कौन भाई साहब है? एक सेकंड रुकिए। ये हुसैन अहमद भाई है। हुसैन भाई क्या हो गया? मुझे अब आर्टिस्ट को निकालने के लिए कोई वजह देनी पड़ेगी ना आसिफ भाई, तो मेरे को वजह तो दो। एक मैसेज है इरशाद उल्ला यूसुफ जई साहब का, सलाम अलैकुम गुड मॉर्निंग दोहा वाले कबीर भाई, मुझ पर फिल्म बननी चाहिए। और क्या मेरी कौन सी वाली हीरोइन, कौन सी वाली, मैं समझा नहीं लास्ट की लाइन बताओ। इतने खुश जो आप इस बात पे हो रहे हो, ये कौन सा लाइस लाइन में समझा नहीं। फराज भाई मैं टॉपिक समझाता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स है जिस पर आप पूरी पिक्चर खींच सकते हैं, आपको लगता है भाई ये तो कैरेक्टर है, मूवी का कैरेक्टर है, ये असली दुनिया में कर क्या रहा है, इस पर तो मूवी बिल्कुल बननी चाहिए, तो कोई ऐसा है तो बताइए। और कोई भी कॉल करना चाहे तो कर सकता है 4444377 पर, 4444377 पर। मैं सरोवर भाई के टोन में बता देता हूँ, 4434377, इस पे भी आप कॉल कर सकते हैं। एक मैसेज, अच्छा ओके, मैं आसिफ भाई को आपका मैसेज बता दूंगा। एक मैसेज है, अगर सरोवर भाई पे मूवी बनाना चाहूँ तो टाइटल क्या होगा? सरोवर भाई मूवी बनाना चाहेंगे तो क्या होगा टाइटल? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। मैं सोचता हूँ यार, आप भी सोचो। मुझे लगता है कि उन पे अगर कोई मूवी बनेगी तो वो बहुत ही रंगीन पिक्चर होगी भाई, मतलब उसमें हर एलिमेंट होगा, हर एलिमेंट। तो उस हिसाब से हमें कैरेक्टर सोचना पड़ेगा। एक मैसेज है, हर है क्या है, एक इंसान है, मेरे हस्बैंड फराज नाम है, पूरे 32 आर की, 32 आर की मतलब बेचारों को क्यों लपेट लिया आपने, क्या क्या खता की उन्होंने। ये दूसरी सुम्बुल बहन है। एक मैसेज है, मैं नहीं कर रही कॉल। अरे कोई बात नहीं सुम्बुल बहन, क्या बात हो गई, आज लड़ झगड़ के निकले हैं सबके सब घर से, क्या दिक्कत क्या होगी। एक मैसेज है, खाना खजाना। हाँ ये खाना खजाना कैन बी द टाइटल ऑफ सरवर भाईज मूवी डेफिनेटली, पर और भी कुछ क्रिएटिव जाना पड़ेगा अपने को ताकि वो टाइटल हम दे सकें आज उनको ना। So we will definitely give him a title today. आज शो के ख़त्म होने से पहले उनके नाम की पिक्चर का एक बढ़िया टाइटल हमें मिल जाएगा, हेल्थ इज वेल्थ। हाँ तो हेल्थ इज वेल्थ अगर सुम्बुल बहन ये नाम होगा उनकी पिक्चर का, तो आखिर में फिर सरवर भाई के कैरेक्टर को हम बचा नहीं पाएंगे, समझ रहे हैं आप? वी हैव टू, समझ गए ना आप? और एक मैसेज है, कबीर भाई आप कमाल हो, थैंक यू सो मच भाई, बहुत सारा प्यार भाई को। भाई आप कमाल है भाई, आप कमाल है, हम तो बस आ रहे हैं भाई। और एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं सवाल तो समझ गया लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा कि मुझे कौन सा रोल मिलना चाहिए। ये इंतखाब, अच्छा इंतखाब भाई ने मैसेज किया, हमारे यहाँ भी एक इंतखाब है, कह रहे हैं कि भाई मुझे अगर मूवी में कैरेक्टर मिलेगा तो मैं चाहता हूँ कि विलन का ही मिले, मुझे हीरो का रोल प्ले करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे मेरा भाई तगड़ी बात कह दी भाई, तगड़ी बात। अस्सलाम वालेकुम। अरे आज तो भाई झगड़ा कर गए हैं बहन बहन, किसको पीटा है आज आपने सुबह सुबह? आई रियली वॉन्ट टू नो।
1: किसी को भी नहीं, आपको ऐसा क्यों लग रहा है?
0: आज मुझे लग रहा है आज मतलब एकदम आतिशी पर्सनैलिटी हो रही है एकदम, मतलब आज तो कोई भी आ जाए। आज आप ड्राइव मत करना, मुझे डर है। बताइए बहन कैसे हैं आप? क्या क्या क्या
1: सुबह झगड़ा हो गया मेरा,
0: वो पता लग रहा है मुझे, मैं I can sense it.
1: I can feel it.
0: Obviously you can feel it. मतलब जीती तो आप ही होंगी, आप ही जीती होंगी, if I may ask, ऐसा ही हुआ ना?
1: मैं मेरे घर से झगड़ा नहीं होता, मेरा रास्तों पे चलते झगड़ा हो जाता है।
0: वो मुझे, अरे घर पे आपके आगे कोई बोल सकता है क्या? ये वो वाला सीन है। भारी हुआ होगा वो, I'm definitely sure. तो बहन क्या लगता है आपको, कौन है आपकी लाइफ में ऐसा कुछ है कैरेक्टर वाइज?
1: मैं खुद हूँ।
0: आप खुद हैं, तो आप क्या रोल चाहेंगे, क्या रोल प्ले करना चाहेंगे आप पिक्चर में?
1: आप ये गैस आप करो, मैं क्या रोल प्ले करूँ?
0: मुझे लगता है कि आपके अंदर वो वाली क्वालिटी, आपको मेन, वो जो मेन बॉस होता ना लास्ट में बिल्कुल चाबुक वाबुक लिए, वैसा कुछ रोल होना चाहिए है ना, चंबल की घाटी पे एकदम टॉप पे बैठा हुआ, एकदम सुरमा लगाए हुए और हाथों में चाबुक एकदम नोकीले जूते।
1: आपने नाम लिया है क्या, चंबल की घाटी?
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: सही में ही।
0: हाँ हाँ
1: आ गया। मैं घोड़ा दौड़ा रही हूँ।
0: देखा मैंने कहा ना आप पे एकदम फिट बैठता है, आप वहां तक पहुंच गई मेरे कहते के साथ ही, तो आप घोड़ा दौड़ा रही, नोकीले जूते हैं आपके, हाथ में चाबू के सुरमा लगा हुआ एकदम, और एक बैंड लगा हुआ बैंडेड वाला, ओए बेटे की जान। सही हो गया।
1: मतलब क्या कहना चाहते?
0: मैं आपको मेन रोल दे रहा हूँ ये कहना चाह रहा हूँ मैं।

0: डकैत बना दिया मुझे.
1: आप वो आपकी वर्जी, उसमें आप डकैत बन सकती हैं, बहुत सारा स्कोप है उसमें. अलग अलग किस्म की डकैत होती है. हाँ और क्या, तो कितना मजा आएगा आपको ये रोल प्ले करने में, आपको अच्छा भी लगेगा, नेचुरल आएगा. तो किस बात में झगड़ा हो गया बहन, सुबह सुबह क्या बात हो गई?
0: बस मत पूछो वरना जो है सारे मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि ये रोज जो है ड्राइवर्स को हड़का देती है जाके.
1: अच्छा वैसा वाला पंगा है, ठीक है ठीक है, फिर तो इस बात को यहीं दबा देते हैं. आप रोल पे फोकस कीजिए. आज आप स्कूल जाते हुए सोचेगा कि ये रोल के बारे में आप क्या क्या इसमें एड ऑन कर सकते हैं.
0: बिकॉज आई थिंक मुझे पसंद नहीं आया.
1: पसंद नहीं आया आपको? तो क्या कौन सा रोल चाहिए आपको? देखो हीरो वाली तो मतलब वो बात, फिर आपको आखिर में आपके रोल को मारना पड़ेगा. आजकल हीरो बचता नहीं है.
0: नहीं नहीं तो, आप जो है ना डबल रोल देते हैं.
1: डबल रोल देना,
0: स्टार्टिंग में अच्छी दिखा दो मुझे, लास्ट में मुझे विलन बना दो.
1: अच्छा वैसा प्लॉट ट्विस्ट वाला, जो आखिरी में गलती आ रही ये थी क्या? ओए हाँ ओके ठीक है. तो आपको आपको डबल रोल देते हैं फिर, ठीक है. तो एक काम करेंगे, डबल रोल देते हैं आपको. एक जो रोल है आपका वो विलन का हो गया और एक हीरो का हो गया. एंड में पता लगेगा कि जो हीरोइन प्ले कर रही थी वो विलन थी और विलन जो था वो हीरो था. ठीक है ये ठीक है.
0: कभी कोई ऐसी मूवी सोची कभी जिसमें कोई हीरोइन ही ना हो, सिर्फ हीरो हीरो हो गई?
1: हाँ है मूवी ऐसी, एक्चुअली में है बॉलीवुड में. बताइए आप नाम बताइए कौन सी.
0: मुझे नहीं मालूम.
1: मैं बताता हूँ ना, धमाल मूवी देखी आपने?
0: हाँ.
1: उसमें कोई हीरोइन नहीं है.
0: ऐसा है?
1: जी हाँ जी हाँ. देखा देखा, फन फैक्ट. सुबह सुबह आपको ट्रिविया भी दे दिया मैंने, मेरी भी नौकरी जस्टिफाई हो गई. तो ये है आप,
0: नहीं मैं आपके शो से खुश नहीं हूँ. मैंने अभी आपको मैसेज किया ना, आप टॉपिक रिकॉल नहीं करते हो, लोग भूल जाते हैं. मैं अच्छा. कहती हूँ आपके अपने शो पे ही एक मूवी शूट कर लो.
1: अच्छा.
0: देखो उसमें आप डायरेक्टर भी आप हो जाओ और हाँ. जो बेचारे एक आई डोंट नो कि वो जैज हैं कौन, वो जो बेचारे हर वक्त दुखी रहते हैं, उन्हें एक साइड रोल दे दो.
1: जैस भाई का तो मैं वो रोल दूंगा, वो जो पड़े रहते हैं ना, वो विलन से पहले जिसको जिसको मारा जाता है, हीरो से पहले जो मरता है वो विलन से पहले, वो रोल दूंगा. हाँ तो उनको निपटा देंगे.
0: आपके शो पे ही मूवी बन जाएगी, इतने सारे कैरेक्टर्स मिल जाएंगे आपको.
1: क्या बात है, ये मैं बिल्कुल तारीफ की तरह लूंगा. वैसे पैसे आपको लगाने, प्रोड्यूसर बनेंगे या पिक्चर की बताइए आप पहले.
0: नहीं
1: अरे हम लोग बहुत सस्ते, हम लोग बहुत सस्ते हैं, एकदम चीप कैरेक्टर्स. बहुत सस्ते में आ जाएंगे. हाँ बोलिए आप, सोचिए आप इस बारे में, आज पूरा दिन बताइए, संडे को ऑन पेपर डिस्कस कर लेंगे, स्क्रिप्ट में भिजवा देता हूँ आपको. ठीक है थैंक यू सो मच. और क्या प्लान है वीकेंड पे आपके?
0: आज मुझे जाना है डिनर के लिए.
1: ओए, ओए, ओए.
0: और आप भी आ सकते हो.
1: अरे रे रे रे रे भाई, हमें लगता है डर. आपके लिए एक मैसेज आया पता आपको, ये समीरा अजीज है, उन्होंने मैसेज किया है, ये लिखती है अस्सलाम वालेकुम सुम्बुल बहन, हमारी पुष्पा है अच्छा वाला गुंडा, ये मैसेज किया आपके लिए. और एक तबस्सुम मैंने भी आपको दिया है, वो कह रही है अमेजिंग कैरेक्टर, अमेजिंग मूवी होगी सुम्बुल की, द शेरनी. देखिए आपकी, देखिए आप लोग कहते हैं एक औरत ही औरत की दुश्मन है, यहाँ पे सब साथ दे रही है, माशाल्लाह यूनिटी करवाई है मैंने, सारा क्रेडिट मुझे
0: जाता है. मतलब है एक औरत ही औरत का साथ दे रही है. अरे
1: कहावत, अरे कहावत थी भैया.
0: क्या मतलब है आपका, मतलब जल गए, जल गए.
1: देखा मैं बिल्कुल नहीं जला, मुझे ये देख के मेरे आंखों में आंसू आ गए. आई एम फीलिंग सो गुड.
0: जलन
1: के like the title. कुछ भी बोलो. टाइटल बहुत बढ़िया दिया आपने. Very creative यार. बहुत creative. Very nice Sumbul man. You are definitely creative. और बताइएगा मुझे फिर बाकी. थैंक यू सो मच और आपका दिन बढ़िया जाए और enjoy your dinner tonight.
0: Okay,
1: अल्लाह हाफिज. तो भाई लोग एक रोल तो हमने डिसाइड कर लिया है बहन के लिए और एक मैसेज है कबीर भाई आप हीरो. भाई मैं हीरो वाली कैरेक्टरिस्टिक्स है नहीं मेरे, बहुत आलसी हो जाऊंगा मैं, समझ ना, बहुत आलसी किस्म का हीरो. एक मैसेज सरवर भाई के लिए, हम बिरयानी खा चुके सनम. भाई लव्ड इट अब्दुल करीम भाई, एब्सोल्युटली लव्ड इट. तो सरवर भाई पे कह रहे हैं उन पर अगर पिक्चर बनेंगे तो नाम होगा हम बिरयानी खा चुके सनम. थैंक यू भाई, मैं ये परफेक्ट है भाई. एक मैसेज है हसीना डाकू के रोल दे दो. हसीना डाकू, ये मैसेज क्या है कम कम भाई ने. और उनके बाद मैसेज आया मेरी बेटी ऑन द वे टू स्कूल, भाई इकरा और कशफ ने आपको सलाम बोले. भाई दोनों को बहुत बहुत सारा प्यार. एंड ये नाम मैंने पहली मरतब सुना, कशफ मैंने इससे पहले नहीं सुना, तो क्या मतलब होता है भाई जान? इकरा और कशफ को मेरा बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत सारा प्यार, एंड अ वेरी हैप्पी वीकेंड टू बोथ ऑफ देम, वो थैंक यू सो मच. आजकल मैं जितने ही बच्चों के नाम मैं सुन रहा हूँ, इतने माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त क्रिएटिव, क्या बात है. और ज़्यादा ओवर फैंसी भी नहीं है. एक मैसेज है, क्या लिखा है इन्होंने, हेल्थ इज़ वेल्थ की बजाय हेल्थ इन वेल इज़ अ बेटर ऑप्शन. ये मैं सारे नाम भेजूंगा उन्हें ताहिर भाई, डेफिनेटली. और ताहिर भाई के बाद मैसेज आया, सरल भाई की मूवी का नाम फूडी मैन. हाँ, उनकी छाती एक इन्हें टाइट बुसेट बना देंगे, और टाइट बुसेट पर आगे बना होगा एक बड़ा सा एफ, फूडी मैन टू द रेस्क्यू. और अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. एक भाई और इन्होंने मैसेज किया है, कह रहे हैं कबीर भाई अगर मेरे पास कोई, मैं सवाल दोहराता हूँ एक बार इनका जवाब देने से पहले. तो मैं ये पूछ रहा था कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा शख्स है जो अपने आप में एक मुकम्मल कैरेक्टर है, और आपको लगता है इस पर तो भाई पिक्चर बननी चाहिए, इसके अराउंड लाइट्स कैमरा एक्शन होना चाहिए, ये तो पिक्चर में होना चाहिए, असल जिंदगी में घूम क्यों रहा है, तो कोई ऐसा है तो बताइएगा. हाँ, तो बैक टू दिस मैसेज, एक भाई ने जो मुझे मैसेज किया है, ये कह रहे हैं कि भाई मेरी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही शख्स है जिस पे पिक्चर बननी चाहिए, वो है मेरी वाइफ. वो कह रहे जैसा आपने बताया बिल्कुल वैसा ही, हाथ में चाबुक और आंखों में सुरमा, और मेरे पास कोई चारा नहीं होगा, और एंड में हीरो मर जाएगा. ठीक है. ठीक है भाई, ये रोल डन करते हैं, आप जो हैं एक मासूम मजलूम हीरो बन के आ जाइए, आपका रोल डन हो गया. एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, कैसे हैं आप, क्या आवाज़ है, सरल भाई को सुबह सुबह रिमांड पर ले, मैं नहीं लेके आया भाई, मैं तो बहुत मासूम हूँ, मैं कुछ नहीं किया, पर ये जो पिक्चर आई है ना उन पर रिलीज होने वाली, हम बिरयानी खा चुके सनम, लव्ड इट भाई. क्या नाम दिया है, क्या नाम दिया भाई. और एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरी ज़िंदगी में एक ही करेक्टर है जिस पे पिक्चर बननी चाहिए. ओके, तो आगे तो बताइए, मैं आगे का पढ़ने के लिए बैठा हूँ अभी. भाई भाई का लिखा रहा है टाइपिंग, लिख लो लिख लो, आराम से लिख लो, कोई टेंशन नहीं है. हाँ, आ गया मैसेज. तो कह रहे हैं मेरी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही करेक्टर है जिस पे मूवी बननी चाहिए, और वो है मेरी धर्मपत्नी. अच्छा, ओके ओके. और आगे लिखते हैं कि मेरी पत्नी ही पूरी की पूरी मूवी में होगी, और मैं डायरेक्ट करना चाहूँगा. अच्छा, ये अपने हिसाब से कहानी चाहते हैं. देख लो भाई, ये आपके ऊपर है, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा. मैं डरता हूँ अभी, सुम्बुल बहन ने बहुत धमकी दी, चले गई हूँ, तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा. एक मैसेज जैस भाई लिखते हैं, दोपहर को सिंग करवाते हैं सरवर भाई से. हाँ हाँ बिल्कुल, ये वाला गाना उनसे गवाइए, उनसे बोलिए सरवर भाई एक पिक्चर रिलीज़ हो रही है आप पे, उसको गाना गा दीजिए टाइटल ट्रैक. बिरयानी दे चुके सर हमने, खा चुके सर हम, दे चुके सर हमने, करेक्ट करेक्ट लिरिक्स. ओके, तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं 4444377 पर, 4444377 पर, एंड वी कैन डिस्कस. ओके, एक और मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप, वेलकम बैक टू द मॉर्निंग शो, मैं 3 महीने से आपको ढूंढ रहा हूँ, लेकिन फाइनली गॉट ऑन होल्ड टू यू. ओके, ये मज़र मैंने मैसेज किया, लिखते हैं आगे कबीर भाई, क्या आप शाम में भी शो कर रहे हैं? नहीं भाई, इतना थोड़ी भाई. कह रहे हैं कि आप शाम में भी आ रहे हैं भाई, हो गया सुबह, क्या चाहते हो, मतलब क्या समझा हुआ है मुझे लोगों ने, ये मैं समझना चाहता हूँ. एक कॉल आ रही है, रुकिए. अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि
1: व बरकातहू. जी मेरे भाई, आपका नाम?
2: रियाज.
1: अरे रियाज भाई, क्या हाल है भाई के?
2: अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए क्या हाल है?
1: बढ़िया भाई, एकदम शानदार.
2: आज तो मूवीज टाइटल चल रही है.
1: हाँ भाई, आज जो है हम सोच रहे हैं कि जरा डिस्कस कर लें, क्योंकि हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा कैरेक्टर, ऐसा किरदार होता है जो आसपास ही घूम रहा होता है, तो इसलिए हमने पूछा भाई. जो रियाज भाई, आप बताइए आपकी जिंदगी में कोई है?
2: मैं तो आपको मैसेज किया कि सरोवर भाई के मतलब वो टाइटल ढूंढिए, उस पर फिल्म बनाएंगे, लेकिन उसमें जो है वो विलन आप होंगे.
1: विलन मैं होऊंगा? क्यों भाई, मेरे को क्यों विलन बना रहे हो, किस खुशी में?
2: नहीं, वो सरोवर भाई की नजर में आप विलन बन गए हैं.
1: अच्छा.
2: वो आपका जो सुबह सुबह करते है, हाँ. वो उस तक पहुंच जाता है.
1: अच्छा, तो हाँ, वो अच्छी बात है ना, ये मुझे तो, मुझे लग रहा है पब्लिक पब्लिक पिटते हुए देखना चाहती है, पब्लिक पिटते हुए देखना चाहती है हीरो को. ठीक है, डन हो गया भाई. हाँ, क्या कह रहे थे बताओ?
2: जी परसों मैं उसको कॉल किया था, मैं उसको बोला कबीर भाई सुबह सुबह आपका शोशा छोड़ जाते हैं, और मजनू भाई नाम रखा है, वो मैसेज पहुंचा दिया, तो वो बोला कि मुझे बस एक तारीख मिल जाए और कबीर भाई में

0: सामने आ जाए फिर देखते हैं।
1: अच्छा मैं
0: वही पूछ मैं वही पूछ रहा था कि अभी एक फिल्म बनाएंगे तो उसके लिए तो विलन आप होंगे, लेकिन अभी ये लास्ट में डिसाइड करना पड़ेगा कि मार किसको पड़ेगी और बचेगा।
1: भाई इसमें जो है विलन भाग जाएगा हेलीकॉप्टर से, एंड का शॉट ये होगा हेलीकॉप्टर से विलन भाग जाएगा, हीरो नीचे से देखता रह जाएगा और बस क्रेडिट रोल होंगे, ये होगी पिक्चर भाई रुकूंगा नहीं भाई बिल्कुल भी मैं, ये है रियाज भाई पिक्चर। ठीक है
0: और सब ठीक है?
1: बढ़िया भाई एकदम शानदार। आप सुनाइए
0: कहानी सुनते हैं रोज, कभी कभी सुनने को नहीं मिलता है तो वो भी मिल जाती है,
1: कोई दिक्कत नहीं, मिल जाएगी रियाज भाई। और बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत बहुत प्यार आपको, थैंक यू सो मच। ओके मेरे भाई, ख्याल रखिए भाई, जज़ाकअल्लाह। और रियाज भाई के बाद जो है मेरे पास मैसेज आया, जयस भाई लिखते हैं भाई हमारे लिए तो कबीर भाई पर फिल्म बननी चाहिए, टाइटल मस्ट बी दिल्ली क्रिएटिव मैन। अरे मेरा भाई आपको पता है लॉन्ग बैक जयस भाई मैंने अपने आपको एक नाम दिया था सेल्फ टाइटल्ड नाम मैंने दिया था, सुबह का शो करते हुए नाम दिया था सुबह मैन, सुपरमैन का सुबह मैन कर दिया था भाई। वो इतना हिट हो गया था ना एक टाइम पे, इतना हिट जिसकी हद नहीं, मैं इनफैक्ट उस पर टी शर्ट तक छपवाने वाला था सुबह मैन की, मज़ा आ गया था। तो मुझे वो टाइटल अभी भी बहुत पसंद है। एक मैसेज है काशिफ रिप्रेजेंट क्या है स्पिरिचुअल कश्यप, अच्छा टूथ रेफर्स टू द, अरे वाह माशाल्लाह बहुत प्यारा मतलब इसका लगता है, इट्स ऑल्सो रिलेटेड टू इनकशफ, अच्छा डिस्कवरी, ओके ओके हसन भाई थैंक यू सो मच फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। और इरफान भाई मैसेज क्या है लिखते हैं सलाम के बी आर पुरा How are you? मैं जिस पे फिल्म बनाऊंगा वो है मेरे बॉस, उनकी वाइफ उनको इतना नहीं जानती जितना मैं उनको 15 साल में जान गया हूँ। अच्छा आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड पहले मैं कॉल उठा लूँ। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम भाई।
1: अरे क्या हाल है नदीम भाई, नदीम भाई कैसे मेरा भाई?
2: आप कैसे?
1: एकदम शानदार नदीम भाई, क्या चल रहा भाई?
2: बस जा रहा हूँ घर वापस ड्यूटी करके।
1: आज आज जल्दी मतलब आज ड्रॉप ड्रॉप नहीं करना, मतलब अमूमन अब थोड़ा सा
2: करके जा रहा हूँ।
1: इतनी जल्दी आज?
2: हाँ जल्दी, मतलब होता है कभी कभी वो रोड का काम चलता है तो बहुत ही लेट हो जाता है, कभी कभी पहुंच जाते हैं टाइम पे।
1: अरे वेरी गुड वेरी गुड। तो नदीम भाई आज हम डिस्कस कर रहे थे, हमने कहा यार ऐसे लाइफ में
2: वही मैंने बोला यार अब एकदम इंटरेस्टिंग टॉपिक लाए थे, मूवी बननी चाहिए अपने पे, मतलब अपने गेमर्स पे सारे बननी चाहिए, स्पोर्ट्स एकदम
1: देसी पिक्चर है, एकदम
2: एकदम इंटेंस ई स्पोर्ट्स की मूवी बननी चाहिए जिसमें एकदम जैसे ये अपना सुल्तान उल्तान है ना जिसमें फाइट वाइट इंटेंस चलता है वैसे इंटेंस सीन पे बननी चाहिए, लास्ट में कोई गेमिंग चल रही है बंदा हार रहा है बेस्ट ऑफ फाइव हो रहा है इसमें से दो हार चुका है लास्ट के तीन जीत रहे हैं
1: भाई भाई ऐसी पिक्चर भाई मैं भी सोचता हूँ कि ऐसे कुछ बननी चाहिए, मजा ही आ जाएगा भाई, सही बता रहा हूँ मैं, ये तो है गेमर से बननी चाहिए और ये कम्युनिटी एक दिन ना, मेरा प्लान है भाई
2: जिस हिसाब से अभी मार्केट में बूम चल रहा है ना तो वो हिट भी हो जाएगी।
1: हाँ ये तो है, अभी तो हिट हो जाएगी भाई इंशाल्लाह।
2: हाँ सारे गेमर देखने जाएंगे ई स्पोर्ट्स के ऊपर अगर मूवी बन जाएगी तो बहुत चलेगी
1: भाई, आपका ये सपना मैं सोचता हूँ बस सच हो। घी शक्कर भाई सुबह सुबह आपके मुँह में नदीम भाई, और बताइए आप सीधा घर की तरफ?
2: घर की तरफ देखो अब मिल गया मेरे को थोड़ा सा ट्रैफिक,
1: अच्छा
2: लेकिन कल भी मैंने सोचा कॉल करूँ फिर सलामी की कॉल थी और आपका टाइम भी हो गया जिंगल का फिर मैंने नहीं की थी।
1: चलो कोई नहीं मैसेज ड्रॉप कर देना, खुद कर लूंगा नदीम भाई, थैंक यू मेरा भाई,
2: ओके
1: ओके मेरे भाई, अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। और नदीम भाई के बाद जो है कुछ मैसेज है मेरे पास, इरफान भाई क्या कह रहे थे, हाँ मैं हाँ तो उन्होंने बताया कि उनके जो बॉस हैं उनको वो जानते हैं उनकी भी वाइफ से ज़्यादा, अब 15 साल हो चुके हैं काम करते हुए, सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि सीक्वल्स बना सकता हूँ, उनके चेहरे को देख के बता सकता हूँ कि क्या कहने वाले। अरे भाई ये तो ये रिश्ता जो है बहुत ही ख़तरनाक भी है भाई, इतनी जो जो ये नज़दीकी होती है बॉस के साथ, चाहे वो पुलिस वाले के साथ हो चाहे वो डॉक्टर के साथ हो, बड़ी डेंजर है। और लिखते हैं ना सिर्फ फिल्म बल्कि पूरी की पूरी सीरीज़ नॉवेल्स ड्रामा मैं अपने बॉस की तफसीर लिख सकता हूँ। अरे भाई साहब ये तो ये पता क्या कहानी बनेगी इरफान भाई, एक ऑब्सेस्ड एम्प्लॉय जो अपने बॉस के पीछे पीछे लगा हुआ है, मूवी की एंडिंग एकदम
3: क्या होता ना डेंजर सी खतरनाक वाली है एंड में इंतकाम वैसी वाली फन भाई क्या बोलते हो ये रोल के लिए मना मत करना मैं पूरे पैसे लगा रहा हूँ आप पे इब्राहिम भाई वालेकुम अस्सलाम और एक भाई ने लिखा है खैरियत भाई अल्हम्दुलिल्लाह भाई खैरियत खैरियत ये रिश्ता क्या कहलाता है और एक मैसेज गुड मॉर्निंग भाई तला भाई वालेकुम अस्सलाम और गुड मॉर्निंग भाई एक सवाल है रखे हैं भूल जा उम्मीद रखें पूरी की पूरी रखें उम्मीद और एक मैसेज जैस भाई का कह रहे हैं कि सरवर भाई अगर हीरो बन गए तो खा खा कर ही विलन को मार देंगे उन ये मैं इस पे आता हूँ आई नीड टू डिस्कस अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई
4: हेलो अस्सलाम वालेकुम
3: हाय लु क्या हाल है भाई साहब क्या चल रहा है भाई
4: नहीं मैंने ये आलू मुझे उससे याद आया कि कुछ क्लिप आ रही थी इंटरनेट पे तो वो एक लेडी की आवाज आती है ना आलू मुझे वो याद आ गया
3: तो इरफान भाई क्या सीन है यार जो आपने बताया आप बॉस पे पिक्चर बना देते हैं मतलब ये कितना साल हो गया आपको इस काम करते हुए उनके साथ
4: देखिए मुझे ऑलमोस्ट 15 टू 16 इयर्स हो गए लेकिन अभी जो आपने एक स्टेटमेंट दिया ना कि ऑब्सेस्ड वाली तो ये आपने बहुत ही मुझ पे इल्जाम लगाया
3: नहीं, है नहीं नहीं नहीं
4: संगीन
3: इल्जाम ये समझिए मैं जो हूँ ना मेरी आदत है देखो फिल्म मेकिंग में ना थोड़ा सा कैरेक्टर डेवलपमेंट होना चाहिए तो अपन क्या करेंगे एक पूरा कैरेक्टर आर्क दिखाएंगे उसमें इरफान भाई जो है
4: तो हर फिल्म में सिर्फ पॉजिटिव कैरेक्टर्स थोड़ी होते हैं नेगेटिव कैरेक्टर्स भी होते हैं
3: नेगेटिव ही बनाऊंगा ना मैं एंड में जो है आपकी उनकी मुठभेड़ हो जाएगी जिसमें आप जो है मतलब खतरनाक बदला लेंगे आंखों में लाल पूरी क्या कहते हैं
4: देखिए पता है मैं आपको एक लफ्ज से अगर इतना समझाऊं हाँ। कि कभी कभी तो ऐसा होता है जैसे मैंने आपको लिखा ना कि वो क्या कहने वाले मुझे इनके चेहरे से भी पता चल जाता है तो मैंने तो उनको अक्सर ये भी कहा है कि मुझे पता था भी आप ये कहने वाले इसलिए मैं आपको ये जवाब दे रहा हूँ
3: क्या बात है यार तो,
4: यानी अच्छा नहीं इट्स नॉट लाइक आई एम सो मच यानी मैं यानी वो मेरे बहुत आइडियल है नो इट्स नॉट लाइक दैट आई नो कि उनके दिमाग में या उनकी मेंटेलिटी क्या है
3: अच्छा हां ओके हां ठीक है तो
4: मैं उस एंगल से बात कर रहा हूँ क्योंकि इतने साल में एक्चुअली हम सेम एज के भी हैं
3: अच्छा ठीक है ना ओके हां
4: तो इस वजह से यानी कोई पॉजिटिव या नेगेटिव बात नहीं है लेकिन समहाउ आप इतना क्लोज काम करते हैं ना किसी डिपार्टमेंट में या किसी यानी अगर मैं ये कहूँ बॉस की बात नहीं कहूँ मैं कहूँ कि द ओनर ऑफ द कंपनी तो फिर डेफिनेटली यू नो वेरी वेल अबाउट द पर्सन और जाहिर बात है फिर इतने साल हो जाते हैं तो ये सब चीजें आपको पता चली जाती हैं लेकिन ये कि और कोई ऐसा करेक्टर मेरी लाइफ में है नहीं मेरा ख्याल है मैं खुद एक करेक्टर हूँ
3: भाई लेकिन ये देखो मुकम्मल पिक्चर है इरफान भाई ऐसा रहेगा कि एक पूरा 15 साल का एक आर्क होगा करेक्टर आर्क ठीक है उसमें आप जो है धीरे धीरे ऑब्सेशन दिखाएंगे उसके बाद आप लास्ट में एकदम दिखाया जाएगा कि आप गंजे हो चुके हैं आपकी आंखों में सुरमा एकदम लाल हुई आंखें ठीक है और आप जो है बदले की भावना लेके ऑफिस में जा रहे हैं कह रहे 30% बढ़ा मेरी सैलरी वैसा वाला एकदम विलेनस आर्क दे रहे हैं आपको कैसा लगा आपको बताइए
4: देखिए आइडिया बहुत अच्छा
3: है ना आई नो
4: आपका शैतानी दिमाग का आइडिया बहुत अच्छा है
3: थैंक यू बहुत-बहुत शुक्रिया इसको हम साइंटिफिक मूवी इसे साईफाई भी बना सकते हैं हम मगर दिस रियली सूट्स
4: यार आप सबको छोड़ो मैं आपको पूरी की स्टोरी लिख के देता हूँ आप अपनी जो स्टोरी सुना दो ना 7:30 बजे उसी में सुना देना लेकिन उसको हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे ताकि ये नहीं पता चले और हम कुछ महीनों के बाद आप इसको पेश करना ताकि लोग भूल भी जाए कि हाँ कबीर और इरफान के दरमियान में कोई ऐसी बात भी हुई थी तो क्योंकि कुछ लोग हमें जो सुन रहे हैं ना वो मुझे जानते हैं और वो मेरे बॉस को भी जानते ही होंगे तो इस वजह से हमें थोड़ा
3: एहतियात
4: के साथ काम
3: अच्छा,
4: करना पड़ेगा
3: बाबू एक टाइटल एक था ओनर
4: नदी मैर एक दो बड़े बहुत जबरदस्त टाइटल उन्होंने चूज किया है वेरी नाइस तो इसके ऊपर अच्छा आप इसमें ना सीरियसली मैं इस पे काम करूंगा मैं आपको लिख के दूंगा
3: ऑफ कोर्स भाई ये बता एक अलग सेगमेंट खुल जाएगा इरफान भाई मैं सही बता रहा हूँ अलग सेगमेंट बन जाएगा हम जो है एक छोटे से प्लॉट को लेके पूरा की पूरी बिल्डिंग बनाएंगे मतलब बेसिकली ये भी एक अलग किस्म की कहानी हो सकती है तो डेफिनेटली भाई मेरे को लिख के देना
4: अच्छा आप तो उसकी शूटिंग क्या कहेंगे इस कहानी से एफएम को कोई ताल्लुक नहीं इरफान में कोई ताल्लुक नहीं
3: मेरे के ताल्लुक नहीं मैं नहीं जानता भाई किसी इरफान को
4: अरे हाँ जो आप बिल्कुल वो अपनी वो डिस्क्रिमिनेशन दे देना पूरा जी जी कि भाई ये है वो हम इसकी कोई जिम्मेदार नहीं है बोला हमारा से कोई ताल्लुक नहीं है
3: मैं जानता भी नहीं मानता भी नहीं
4: ताकि मेरी भी नौकरी सलामत रहे और आपको कोई अप्रोच करना चाहे कि इस बारे में, अरे तुम्हारी तुमको कैसे पता चले पूरी स्टोरी, तो फिर आप अपने आप को कवर कर सकें।
1: बिल्कुल बिल्कुल भाई, वो तो हो जाएगा, लेकिन फन भाई आई एम रियली हैप्पी भाई, जिस तरीके से आप इतना इंटरएक्टिवली सब कुछ बताते ना, उसके लिए भाई कुडोस टू यू भाई, थैंक यू फॉर बीइंग सच अ सपोर्ट भाई।
4: मैं यू वेलकम, बट मैं ऑलवेज इस चीज से बिलीव करता हूँ कि हमेशा ना रियलिटी और जो चीज लाइफ हो रही है ना उसके बारे में, मुझे ना फेक चीजें फिक्शन और ये सब चीजें पसंद नहीं है बिल्कुल, तो बिल्कुल जो रियलिटी है ना अपने कौन से अपने लिसनर है ना जो बड़ी रियलिटी की बात करते हैं, नो हाउ वाले
1: मुबारक इरफान भाई, साइन कर लिया हमने आपको, थैंक यू मेरा भाई।
4: बहुत उसके लिए आपने एक टाइटल को ना, थैंक यू टाइटल को जरा उससे बोल दे, एक था ओनर, ऐसे करके ना कोई आवाज आनी चाहिए आपकी,
1: ठीक है तो एक साइन ऑफ। हाँ ठीक है, साइन ऑफ में कुछ करते हैं, एक था ओनर, कुछ भारी भरकम इसका, इसका पता है सबटाइटल भी देंगे हम, एक था ओनर सैलरी की जंग, ऐसे करके कुछ टाइटल दे देंगे सब टाइटल। मुझे आप सब टाइटल बताइए इरफान भाई, डन हो गया भाई, ठीक है। तो ये तो पिक्चर तय हो चुकी है, ये फरद भाई ने मैसेज क्या किया है, लिखते हैं 30% आप कहना चाहते हैं, बातों बातों में दिल की बात बोल दी भाई। देखो फरद भाई, वेरी सेंसिटिव टॉपिक, और माज भाई जो आपने दिया वो प्ले नहीं कर सकता भाई, प्रोटोकॉल बदल चुके माजू, अपडेट हो जाओ बेटा। तला भाई कह रहे हैं कि मैं और मेरा ओनर, ये भी टाइटल अच्छा है। एक मैसेज है भाई, टाइटल सैलरी रखना है, इब्राहिम भाई कह रहे हैं। और एक मैसेज कबीर भाई, सरवर भाई के लिए एक और नाम जहन में आया है, क्या बोटी तेरे नाम की। भाई एक नंबर, भाई एक नंबर। सरवर भाई पिक्चर बनाएंगे, पिक्चर का नाम होगा बोटी तेरे नाम की, भाई बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। और एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या लिखा है ये मैं पढ़ नहीं पाया भाई, ये जो लिखा आपने। और एक मैसेज है, इरफान भाई की फिल्म के लिए टाइटल, अच्छा और क्या है ये पढ़ नहीं पाऊंगा मैं। और एक और मैसेज आ चुका है, अस्सलाम वालेकुम तला भाई फ्रॉम अलखोर, लिखते हैं दोस्त के ऊपर बननी चाहिए, टाइटल होगा लव स्टोरीज, माशाल्लाह लव मैरिज है, शादी से एक वीक पहले पाकिस्तान टूर पे निकल गया, हर कि हर रिश्तेदार खुद कार्ड दे के आएंगे जो दूसरी सिटीज में है, 10 साल हो गए लव मैरिज को उनकी, माशाल्लाह 2 बच्चे हैं, अब दूसरी लव मैरिज करने वाले हैं। है? सही पढ़ा ना मैंने? ये एंड में जो ट्विस्ट आया ना भाई, ये कमाल का था। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग कबीर भाई, ख्याल रखिए। ख्याल भाई का मैसेज आया, कह रहे हैं ख्याल रखिए। और फराज भाई कह रहे हैं कि विलन सॉन्ग की फरमाइश करेगा, मुझको राणा जी माफ करना। और लिखते हैं आपके विलन कैरेक्टर पे, सब मुझे विलन क्यों बनाना चाहते हैं यार। एक मैसेज है, सलीम क्या सलीम भाई पे बननी चाहिए पिक्चर, हाँ शहजादा सलीम पे तो पिक्चर बननी चाहिए। एक मैसेज है, कबीर की फिल्म का नाम होना चाहिए, बेहद जरूरी है। आए वर शहजाद भाई, वर शहजाद भाई, एक नंबर भाई, एक नंबर भाई। और एक ताहिर भाई के मैसेज, जस्ट इमेजिन स्पाइडरमैन की वेब्स की तरह सरवर भाई के हाथ से फोर्क्स और नाइफ्स निकल रहे हो। अरे रे रे रे, बहुत बढ़िया भाई। सरवर भाई एकदम स्पाइडरमैन की तरह ऐसे वो एक्शन कर रहे हैं हाथ से, और फिर छुरी काटे निकल रहे हैं, इधर से राइट हैंड से पिज्जा निकला, लेफ्ट हैंड से भाई साहब सॉस गिर रहे हैं एकदम बढ़िया वाले। क्या बात है ताहिर भाई, थैंक यू सो मच फॉर दिस इमेजिनेटिव अप्रोच, मजा आ गया भाई। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा एक दोस्त पर क्या मेरा एक दोस्त है आईटी फील्ड से है, उस पर एक फिल्म बना सकते हैं, पहले स्ट्रगलिंग दिखाएंगे फिर सेट हो जाएगा, टाइटल अच्छा सोचा है, सक्सेस पाथ। ये बड़ा सीरियस मैटर हो गया, मोहम्मद वकास इकबाल साहब बड़े इंस्पायर्ड लग रहे हैं आप। और माजिद भाई कह रहे हैं क्या टॉपिक चल रहा है, वालेकुम अस्सलाम माजिद भाई, टॉपिक माजिद भाई है ना, माजिद भाई हैं, टॉपिक ये चल रहा है माजिद भाई के आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स है जो आपको लगता है कि मुकम्मल कैरेक्टर है और उस पर मूवी बन सकती है, रोल बाद में देख लेंगे। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, मुझे एक सीरीज बनाना चाहूँगा स्कैम 2032, और उसमें लीड कैरेक्टर मैं ही रहूँगा। सादिक भाई ये मुझे प्लानिंग क्यों लग रही है कोई अलग किस्म की, शहर सलीम एक सेकंड रुको। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, 30 मिनट में बहुत सारी मूवी दिखा दी है ना आज, तो भाई मजे आ गए। बहुत सारी। एक सऊदी अरब से मैसेज, सलाम भाई, वालेकुम अस्सलाम भाई, सऊदी अरब से मैसेज किया इन्होंने। और फरद भाई वालेकुम अस्सलाम, तो कॉल कर दो लाइव सुना देता हूँ। ओके तो मैं एक पहले कॉल कर लेता हूँ, फिर मैं एक और कॉल करूँगा, लेकिन सबसे पहले इन्हें कॉल कर दूँ मैं ज़रा, क्योंकि बहुत देर से माज भाई को मैंने हैंग कर रखा है। और फिर मैं तला भाई आपकी कॉल में उठाता हूँ, पहले मैं ज़रा ये वाली कॉल ले लूँ, फिर आपको मैं कॉल कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम,
5: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
1: ہاں جی مسٹر معاذ، ہاؤ آر یو ڈوئنگ ٹوڈے؟
5: آپ موویز بنا رہے ہو، میں بس یہ بولنا چاہ رہا تھا، اپنا سی وی دینا چاہ رہا تھا میں.
1: جی جی،
5: سنگر کی ضرورت پڑے تو میں اویلیبل.
1: اچھا سنگر کی ضرورت پڑے تو بہترین. تو آپ
5: لائیو آڈیشن دینا چاہ رہا تھا، اجازت دے دیں؟
1: بالکل بالکل، لائیو آڈیشن دیجیے پلیز. پلیز پلے بیک سنگنگ ہم آپ سے کرائیں گے، بولیے.
5: ہم بریانی کھا چکے سنم، گوشت تھا بریانی میں کم، تیری قسم.
1: ارے بھائی صاحب،
5: تو سرور بھائی کی مووی ہے، آئی تھنک اٹ از ٹوورڈز کمپلیشن.
1: ارے بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی، کیا لائن دیے بھائی، کیا لائن دیے بھائی، مزہ آ گیا. یہ تو بھائی میں یہ ضرور بھیجوں گا انہیں. آئی ول ریکارڈ. ہاں آپ نے بھیجا، ڈن ڈن بھائی، بہت زبردست بہت زبردست. تو اور آپ کے پاس فٹ بھی بیٹھ جائے گی ان کے چہرے پہ نا. تو لیکن بالکل مل گیا، تھینک یو بھائی.
5: سرور بھائی کے ہاتھ سے چھری کاٹا نکل رہا ہے، بریانی آ رہی ہے، گوشت کم پڑ رہا ہے،
1: اور اینڈ میں وہ دکھائیں گے کہ وہ ایک پروت پہ بیٹھے ہوئے اور ان کے ہاتھ میں ایک بوٹی ہے جس پہ سے گوشت اترا ہوا ہے، اور وہ بہت اداس ہے اسے دیکھ کے. دیٹ ول بی دا اینڈ ٹائٹل کریڈٹ، ٹھیک ہے، وہ والا بنائیں گے. پر گانا بہت بڑھیا ہے بھائی، آئی ایم سو امپریس رائٹ ناؤ، مزہ کرا دیا بھائی. تھینک یو ماذ بھائی، اوکے بھائی، اللہ حافظ. اللہ حافظ بھائی. تو ماذ بھائی کے بعد میں ابھی کیا ہے کہ کیونکہ جنگل کا وقت ہو رہا ہے تو میں کچھ دیر میں کال کروں، کچھ میسج پڑھتا ہوں. فرد بھائی کہہ رہے ہیں آج تو خیر نہیں بھائی، اور تلا بھائی کہہ رہے ہیں سرور بھائی اور مرغی کی ٹانگ، بھوک کی کہانی. ارے یہ بہت بڑھیا ہے، وہ نا پریم کا تھا ویسے آ جائے گا یہ. سرور اور مرغی کی ٹانگ، ایک بھوک کی کہانی، ایسے ٹائٹل میں بول دوں گا، ٹائٹل کوئی دقت نہیں ہے. ارے عرفان بھائی جو کہانی بنانی تھی آپ نے بولا یہ قصہ 1932 کا ہے. محسن بھائی ایک دم صحیح، یہ تلا بھائی میرا مست ٹائٹل دیا. لیکن ایک ٹائٹل ہوگا کیا ہے؟ ہاں جی بہت کریکٹرز ہیں، لیٹسٹ ون از بائی مینیجر. یہ ماجد بھائی کہہ رہے ہیں میرے مینیجر پکچر بننی چاہیے، مسالہ مووی. ٹائٹل ہوگا ہم ہیں تمہارے کون. یہ کیا مطلب، سٹوری کیا ہے، کون سے جانر کی ہے؟ ایک میسج ہے، کبیر بھائی پہ فلم بننی چاہیے، ہیروئن شردھا کپور ہونی چاہیے. بات ختم ہو گئی یہیں پہ بھائی، یہ پکچر ختم نہیں ہوگی، یہ چلتی رہے گی. اور کہیے لیکن کبیر بھائی لڑکی کا باپ ہوگا. ارشاد اللہ بھائی نے، ارے یار میں دو منٹ کے لیے خوش ہو گیا تھا ارشاد بھائی. کیسا دل توڑا انہوں نے. کہہ رہے کبیر بھائی پکچر بنے گی، شردھا کپور اس میں ہیروئن ہوگی، لیکن ٹوسٹ یہ ہے کہ کبیر بھائی جو ہے ہیروئن کے باپ ہوں گے. یہ ایک تو یہ ارشاد اللہ کو ڈھونڈو بھائی، ان کا لوکیشن سینڈ لوکیشن پلیز. ایک میسج ہے بھائی، کال ایک سیکنڈ بھائی میں کال کرتا ہوں عثمان بھائی ابھی جنگل پلے کرنے کے بعد. ایک میسج ہے عرفان بھائی کے، لکھتے ہیں کے بی آر کی فلم کا نام ہوگا ایک تھا کے بی آر 500 MJ. کیا بات ہے بھائی صاحب. اور وہ کہہ رہے ہیں ٹائٹل ہوگا ان کی باس کا ایک تھا اونر ہماری، کیا ہماری اور کوئی برانچ نہیں. اچھا ایک تھا اونر ہماری کوئی برانچ نہیں، ویری نائس. یہ تو کمال ہو گیا بھائی، سب کے سب کیریکٹرز ہیں بھائی، کمال ہے. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے جنگل کے بعد. 666-22-107 یہ نمبر ہے. سرور بھائی والا گانا تو ضرور بھائی ہٹ ہو گیا آج، آج مجھے نہیں چھوڑیں گے وہ. چلو بھائی.

0: FM 107 टाइम चेक।
1: घड़ी में होने वाले हैं 7:02 और आप भी मेरे साथ देते रहो। 7:02 तो बोलना ही बोलना है भाई, ये तो मतलब एक किस्म का रिचुअल है, आपको बताइए है ना। तो सबसे पहले एंट्री मार लेते हैं और माज़ भाई ने क्या हिट गाना दे दिया। पिक्चर ऑलमोस्ट डन हो चुकी है भाई, पूरी डन है पिक्चर, नाम भी है, सब कुछ है।

0: Wake up. Ey, तू हवाला में कबीर,
1: हाँ जी
0: यही कहूंगा सुबह सुबह. Wake up.
2: एक और हमें पिक्चर का टाइटल मिल चुका है. एक भाई कह रहे हैं कि सरोवर भाई पिक्चर बनाऊंगा, रियाज भाई ने नाम दिया है ये. रेडी फॉर दिस? बहुत बढ़िया नाम दिया है. रियाज भाई ने बोला है हमारी अधूरी बिरयानी. अरे बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया. बहुत क्रिएटिव जनता भाई, बहुत क्रिएटिव जनता माशाल्लाह. बोला तो भाई कह रहे साथ दे दिया, थैंक यू सो मच. और कमाल भाई लिखते हैं वालेकुम सलाम, आ जा बेटा भाई, थैंक यू सो मच. जावेद भाई वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच. सात दो साउंड्स गुड है ना, थैंक यू. और एक मैसेज है माजिद भाई के बाद, हीरो और विलन कौन है? अस्सलाम वालेकुम भाई. भाई मैं तनवीर भाई, मैं समझ नहीं पा रहा कि किसको बनाऊँ. वहाँ थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, बट वी विल डिसाइड. यार ट्रेलर कब आ रहा है? आज ही आएगा भाई. आज ही आएगा. एक कॉल उठा लेता हूँ पहले मैं. अस्सलाम वालेकुम.
3: वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम है फैजान.
2: मेरा नाम फैजान भाई, कैसे हैं आप?
3: जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ. और मैं भी प्लेबैक सिंगिंग के लिए अपना नाम देना चाहूंगा.
2: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल भाई, एक गाना थोड़ी होता है पिक्चर में, तो सात आठ गाने डालेंगे, कोई टेंशन नहीं है भाई.
3: जी जी जी
2: बताइए.
3: तो कहते हैं तो मैं कुछ सुनाऊं थोड़ा?
2: बिल्कुल बिल्कुल भाई, जरूर जरूर, गो अहेड.

0: भाई भाई भाई भाई सीरियस गाना नहीं करना था इसमें, पिक्चर हमारी थोड़ी कॉमिक है समझ रहे हैं आप?
1: अच्छा अच्छा
0: हाँ आपने तो मतलब समा ही बदल दिया।
1: हाँ जो जो स्टार्ट का है मैंने सुना नहीं, मैं अभी जो गाड़ी के अंदर।
0: हाँ इसीलिए इसीलिए आपको पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ पे यहाँ पे चल रहा है। मैंने बोला था कि आपकी जिंदगी में कोई कैरेक्टर है जिसके ऊपर पिक्चर बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए, ये बोला हमने। तो उस पर बहुत सारे टाइटल आए, तो एक भाई ने टाइटल दिया कि हम बिरयानी खा चुके सनम, तो उसका टाइटल उन्होंने गाया माज भाई ने। और अभी एक और आया है, उन्होंने बोला हमारी अधूरी बिरयानी। तो ऐसे चल रहा है भाई, ये इतना सीरियस टॉपिक नहीं है।
1: नहीं फिर तो क्या कहते हैं, ऐसे बहुत सारे हैं जो ऑफिस के सपोले होते हैं ना, उन पे कुछ होना चाहिए।
0: हाँ तो आप डिसाइड करके मेरे को वापस कॉल करें और फिर हम
1: ठीक है मैं
0: डन हो गया भाई। ठीक है मेरा भाई, ओके ओके भाई। मैं थोड़ा हिल गया, मैं रुकू कैसे इस बंद

0: ना दर्द रखता हूँ कि बेचारे भाई के ना बोटियों में नजर है लोगों की तो वो गलत बात है।
1: अच्छा तो तला भाई और कोई है आपकी जिंदगी में इस पे पिक्चर बननी चाहिए?
0: यार मैं हकीकत बताऊं, हकीकत आना है, एक है किस्सा
1: बताओ।
0: ओमान में था मैं, उनका मैं टाइटल देता हूँ, बदनसीब चाचा और क्या था, सर्च ऑफ सच्चा प्यार।
1: बदनसीब चाचा, सर्च ऑफ सच्चा प्यार, वाह भाई। हाँ तो
0: भाई वो भाई मैं कंपनी ज्वाइन करी, वो अकाउंट्स में थे, बड़ी अच्छी पोजीशन पे थे।
1: अच्छा।
0: पाकिस्तानी थे लेकिन ओमान में बड़े टाइम से सेटल थे।
1: अच्छा।
0: तो वो बंदा ऐसा यार, 6 फीट प्लस उनकी हाइट, कंदुमी रंग के बंदे, मतलब नफीस इंसान, उनका बेहतरीन फिट रखा उन्होंने अपने आप को, मतलब बंदा देखे तो पहली नजर में तो इम्प्रेस हो जाए उनसे, यार क्या बंदे ने अपने आप को फिट किया 60 प्लस।
1: अरे माशाल्लाह।
0: अरे माशाल्लाह छोड़ो, रुक जाओ, यही तो उनकी बदनसीबी है खूबसूरत होना। हाँ भाई, उनके साथ मैं शुरू के 3 साल में मैंने उनके 2 वलीमे अटेंड करे।
1: अच्छा है?
0: है? हाँ हाँ भाई, उनकी टोटल कुल मिला के 6 शादियां हुई हैं।
1: भाई
0: हाँ, कुल मिला के 6 शादियां हुई भाई। वो हकीकतन जो था ना, वो पजेस थे, उनके मामला कुछ ऐसे थे कि भाई उनकी शादी होती थी, वो 1.25 साल के अंदर ना उनकी बीवी इंतकाल कर जाती थी।
1: ये
0: हाँ, उनके पास मामला, हाँ उनके ऊपर मामला ऐसे थे कि भाई वो उनकी बीवी मर जाती थी बेचारी, ना यार 6 शादियां करी उन्होंने, फिर उन्होंने हार मान ली।
1: अरे
0: अपनी करूंगा फिर उनका,
1: पर 6 मतलब के बाद हार माने, ये भी एक अपने आप में एक अलग उपलब्धि है भाई। ये
0: नहीं तो हार मानना बनता था ना, उनका खुद का इंतकाल हो गया।
1: अच्छा ऐसा, अच्छा वो नहीं हारे, जिंदगी से हारे, ऐसा कुछ हुआ है?
0: अरे हार मान ली, अब नहीं होगा, अब जो है ना।
1: हाँ।
0: तो कभी ऑफिस में ना मजाक होता था यार, ये 70 वाला जो सीन है।
1: हाँ।
0: इनकी तो 6 से मल्टीप्लाई, तो भाई दुनिया में मिली, आखरत में भी मिलेगी इनको तो।
1: ये जो 6 बार उनकी हुई है, ये ओवर कितने इयर्स का पैटर्न रहा होगा, 6 साल 7 साल?
0: अरे अब इतनी गप तो मैंने उनके ऊपर वो नहीं करी, वर्किंग नहीं करी, क्योंकि वो मैंने कहा यार अल्लाह ना करे पदेश के आदमी हमसे कोई किसी को इनसिक्योरिटी हो गई तो अगला नंबर हमारा ना आ जाए।
1: नहीं नहीं फिर तो ठीक है, दूरी अच्छी है, दूरी अच्छी है भाई। भाई लेकिन कैरेक्टर है यार, सच में कैरेक्टर है यार, ये तो बहुत कमाल का कैरेक्टर बताया आपने।
0: वो बकायदा कैरेक्टर है, और 6 शादी में उनकी 1 भी औलाद नहीं
1: भैया,
0: मतलब ऐसा नहीं कि वो बंदा था भाई, फुल ऑन था वो, लेकिन भाई उनकी औलाद हो, मतलब 2 से 3 बीवियों का तो मैंने सुना था कि इंतकाल हुआ, जो मतलब औलाद होने वाली थी और उस दौरान ही इंतकाल हुआ।
1: ये तो अखबारों में छपने वाली चीज है, आपको आप बता रहे हैं हल्के में, लेकिन ये हल्की बात है नहीं भाई, ये तो
0: नहीं है।
1: ओके क्या नाम था उसका?
0: बड़ा है अंकल का नाम,
1: हाँ
0: अशफाक
1: मियां। अच्छा ठीक है भाई।
0: ये सही अपनी ना वो लेके बैठा, ये पदेश वदेश कुछ भी नहीं है, ये खुद जादू करवाता है आदमी। फ्लेवर पसंद नहीं आया, नया फ्लेवर
1: भाई मैं कुछ नहीं, मैं निशब्द हूँ अभी, ये जो आपने किस्सा बताया ऐसे तो किस्से मैं सुनाता हूँ, आज आपने सुना के मेरा मुंह पे ताला लगा दिया भाई। तला भाई बहुत डेंजर, भाई बहुत डेंजर करेक्टर भाई।
0: नसीब चाचा, उनके बड़े नाम रखे हुए तो विचार हो गया ना, उन्होंने बड़े नाम रखे। अरे यार उनको मिल भी जाती थी यार, मसला एक हमारे में उनकी 40 प्लस थी, शादी नहीं हो रही थी जवान के बच्चे की।
1: हाँ।
0: हमने कहा भाई ये बदनसीब चाचा थे, थोड़ी सी तुम सोहबत पकड़ो।
1: हाँ।
0: तो कहला भाई हो तो जाएगी, फिर वो चलेगी नहीं चलेगी ये गारंटी नहीं है, क्योंकि इनकी थी चल रही है। तो अभी ना होना अच्छा है, रंगवाने से तो बेहतर है बंदा, खैर शादी शुदा ही सही है।
1: अरे यार मैं भाई मैं सच बता रहा हूँ, ये तो एक्चुअली में अगर कहीं छपी होती तो ये अपने आप में सुनाने वाली कहानी, पता नहीं बीच बीच में क्या क्या उनकी किस्से कहानी होंगी, तो आपने ऊपर ऊपर एक प्लॉट बताया कहानी का, बहुत जबरदस्त भाई, दिस इज द बेस्ट स्टोरी मैंने सुनी।
0: जाके मिल लो,
1: नहीं इतना कोई शौक नहीं है मुझे, इतना कोई शौक नहीं है, मैं घर पे ठीक हूँ। थैंक यू।

0: Sama macam lah bayi.
1: चले जाओ, कोई मसला नहीं है।
0: नहीं, बहुत
1: संभाल लेंगे सर्वर में। एक अच्छा था, बड़ा अच्छा हुआ करता था, ऐसा बोल लेंगे हम भी।
0: नहीं नहीं, थैंक यू सो मच, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी इतनी फिक्र दिखाई।
1: चाचा की मोहब्बत में निकल गया।
0: मैं इसी इनका टाइटल सोच रहा हूँ पिक्चर का, डेफिनेटली बहुत अच्छा टाइटल मिलेगा इसके लिए। तो
1: भाई बदनसीब तो रखना, देखो बदनसीब तो रखना।
0: एक एक रियाज भाई ने टाइटल दिया, रियाज भाई कह रहे हैं छुटकारा एक प्रेम कहानी।
1: यार रियाज भाई छुटकारा कैसे यार, वो बंदा तो अभी भी पोटेंशियल लगता था, अगर वो आखिरी सांस देना गिन रहा होता ना, वो सातवीं करके बैठा होता। मुझे लग रहा है वो सात समुंदर पार, वो सात का टोटका जब पार करता ना, मुझे लग रहा है तब तब पूरा कामयाब होती। वो मौका ही नहीं दिया उस
0: माजिद भाई, कह रहे हैं टाइटल होगा जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। अरे कितनी मर्तबा जिएगा वो आदमी।
1: भाई शुक्रमान कभी तो खूबसूरत नहीं है, भाई शुक्रमान तो खूबसूरत नहीं है।
0: वही तो मैं आपके लिए भी इतना, मुझे भी तो हमें आपकी दोस्ती है, यही तो मैं सोचता हूँ कि अगर हम दोनों खूबसूरत तो कितनी दिक्कत होती है।
1: शाहरुख खान है तुम्हारा भाई,
0: चाइनीज वेबसाइट पे मिलता हुआ शाहरुख खान है मेरा भाई इतना। और क्या,
1: हमारे ओपेक के लिए दीवानी है हमारी भाभी, क्या बात
0: थैंक यू सो मच तला भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक लास्ट नाम मिला है मुझे, ये समीरा हमारी बहन ने मैसेज किया, वो कह रही है अशफाक मियां बड़े मजाकी, ये टाइटल दिया है उन्होंने। मगर थैंक यू सो मच तला भाई,
1: एक बंदा तुम ये तुम लोग मजाक सोच रहे हो, लाहौला वाला कुछ कैसे लोगे तुम्हारे लिसनर यार।
0: शुरुआत किसने करी
1: मैं तो संजीत
0: बहुत सारा प्यार तला भाई, थैंक यू भाई। ओके मेरा भाई, लाभ इस। तो ये तला भाई के बाद मुझे दो कॉल्स करनी है एक्चुअली में। एक तो मेरे भाई ने बहुत देर से बोल रखा है कि उनको कॉल कर लेता हूँ मैं। भाई लगा रहा हूँ कॉल, उस्मान भाई होल्ड ऑन। देखो कोई भी इसमें सीरियसनेस मत ढूंढ लेना प्लीज़। हाँ, एक तो वीकेंड है, सुबह का टाइम है, मेरे को ज्ञानवर्धक बात ही नहीं चाहिए। ओके, एक मैसेज आया, रिसर्च करो आप किस बात पर। अशफाक मियां पर मैं सोच रहा हूँ, उन पर स्टोरी सुना। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम
0: जी। उस्मान भाई क्या हाल है आपके?
2: कैसे जी, ठीक है
0: एकदम बढ़िया। उस्मान भाई माशाल्लाह बड़ी संजीदा आवाज हो रही है आपकी सुबह सुबह। क्या
2: एक तो भाई मूवी का नाम बता देता हूँ आपको जल्दी से।
0: बताइए।
2: वो हमने अपने दोस्त पे रखा हुआ था, वो आपने सुना होगा बट होते हैं कॉस्ट, वो हमारे पाकिस्तान में बहुत खाते हैं, वो वैसे ही मशहूर है खाने में। तो भाई एक तो वो किसी नहीं देता था दुकान के सामने से ना, कोई खाना तो नॉर्मल बंदा खाता ही है, कोई ठेले वाला, कुल्फी वाला, पकोड़े वाला, वो सबको रोको कहता है ये गुजरा क्यों मेरे सामने से, तो रोक के खाता था। तो हमने उसका नाम रखा हुआ था लंगर का सिकंदर।
0: लंगर का सिकंदर। अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया। लंगर का सिकंदर। भाई साहब
2: एक और गाना था बड़ा मशहूर पाकिस्तान का, एक सिंगर थी उसका नाम था चंद मेरे मखना।
0: अच्छा,
2: तो उस पे एक मूवी बना सकते हो आप, बन मेरे मखना।
0: बन मेरे मखना। मैं आज मेरे को बहुत टाइटल है, आज मजा आने वाला है बहुत ज्यादा। ये लंगर का सिकंदर मुझे बहुत बढ़िया लगा भाई, दिल जीत लिया।
2: वही वो भाई दुश्मन था खाने का। दूसरा टॉपिक है क्या, सीरियस टॉपिक है, अगर आपको करेक्टर चाहिए तो मैं अपनी वाइफ पे बनाना चाहूंगा मूवी। यार अजीब अल्लाह ने मखलूक पैदा की है, ये बाकी भाई भी सुनेंगे तो मेरा ख्याल है वो मेरे साथ साथ देंगे।
0: अच्छा क्या है
2: भाई, ये एक अजीब तरह की ये मखलूक है।
0: अच्छा,
2: कोई लेडीज लोग है तो प्लीज बुरा ना मानिएगा, ये इनके साथ भी होता होगा। जैसे आप, मैं कहीं जा रहा हूँ, आप भी जाना तो उन्होंने कहीं पे पाए, तो एक मिसाल के तौर पे आपको बताऊंगा, एक तो उसके पास व्हाइट ड्रेस लेके आएगी, एक ब्लैक लेके आएगी,
0: ठीक है।
2: अब अभी उसको, अभी तक उसको भी नहीं पता कि उसको कौन सा पहनना चाहिए, ठीक है। अब मुझे दिखाए कि व्हाइट पहनूं या ब्लैक, तो मैं बोलूंगा तो

0: तुमने दोनों ही अच्छे, कोई भी पहन ले. तो वो बोले कि अच्छा मैं ये ब्लैक पहन लेती हूँ. पूछेगी तो बोले कि तुम बोलो कौन सा तुम्हारी पसंद का पहनना है. मैं बोलूंगा अच्छा ब्लैक पहन दो. अभी मैंने ब्लैक बोल दिया तो उसने क्या बोलना है, नहीं व्हाइट ना पहनो ये ज्यादा अच्छा नहीं है. मैं बोलूंगा व्हाइट पहन दो. अब बोलेगा नहीं मैं ब्लैक ही पहनती हूँ. अब उसने मैंने जो बोल दिया उसने उसको ऑपोजिट करना है, ये आपने ज़हन में रखना है.
1: नहीं एकदम फैक्ट है भाई, ये तो फैक्ट है, तो सब रिलेट कर
0: देगा. जो भी बात अभी ये सेम चीज ऐसे ही खाने में होगी, क्या पका लूं. अब मैं चिकन नहीं खाता हूं, वो गोश्त नहीं खाती है. तो मैं कहूंगा कुछ भी बना लो. तो बोलेगी मटन नहीं बना लूं. मैं बोलूंगा हाँ बना लो. तो बस मटन बच्चे नहीं खाएंगे. तो मैं बोलूंगा चिकन बना लो. हाँ चिकन. समझ रहे हो भाई किस कदर पेन है ये सारे दिन में. ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ये तो जो मेरे जेब में आ रही बोल रहा हूँ. अभी किधर जाना है, किसी जगह पे, किसी मॉल में जा रहे हैं, जैसे वीकेंड में बाजियो चले जाए या डीएससी चले जाते हैं, मैं जो बोलूंगा उसके ऑपोजिट है.
1: अच्छा
0: तो इस पे भाई एक मूवी बननी चाहिए
1: भाई, डेफिनेटली.
0: मैं छोटा था आपको,
1: पर इस पे बननी चाहिए भाई कहानी घर घर की, बिकॉज इट इज वेरी वेरी रिलेटेबल. इवन मास भाई ने मैसेज किया, मास भाई कह रहे हैं कि अल्टीमेटली वो रेड पहन के जाएंगे. रेड और ये तो है, रेड और वो ब्लैक और व्हाइट में ऑप्शन देखा.
0: छोटा सा किस्सा भी है
1: जी,
0: एक छोटा सा किस्सा भी. एक जैसे मियां बीवी जा रहे होते तो किसी वजह से वो नहर में गिर जाते हैं, ठीक है.
1: अच्छा अच्छा.
0: तो अपने बंदे को तैरना आता है, वो तैर के बाहर किनारे पे निकल आता है और साथ साथ किनारे पे चल रहा है, बीवी भी साथ से डूब रही है, बच रही है कि उसको बचाऊं किसी तरीके से. इतने में से पास से एक गाय गुजरती है.
1: अच्छा.
0: बीवी के पास नहर में ना. तो वो उसको बोलता है इसको ना पकड़ना, नहीं पकड़ना इसको, नहीं पकड़ना. वो बीवी क्या करती, पकड़ लेती है. अब बोलता है छोड़ दे इसको, छोड़ दे इसको, छोड़ दे, डूब जाएगी, छोड़ दे इसको, ये भैंस भी डूबेगी, तुझे भी ले डूबेगी. वो नहीं छोड़ती. वो तैरते तैरते खैर उसको छोड़ती नहीं, किसी तरह से वो बाहर निकल आती है.
1: ठीक है.
0: तो उनके पास बच जाती जान उसकी. बंदा पूछता है यार तू ये आ तो गए तुम लोग बच गए, लेकिन तू ये बच रही थी तू क्यों बोल रहा था इसको के नहीं पकड़ना. बोलता है भाई ये मेरी बीवी, मैं जानता हूँ, मैं अगर इसको बोलता पकड़ ले तो ये नहीं पकड़ती.
1: आज आज आपने जो भड़ास निकाली हमारे साथ भाई बैठ के, इसी बात में चाय पियो भाई हमारी तरफ से.
0: जो भी मेरी
1: बहन है
0: इसमें सुन रही है, मैं इनको बताना चाह रहा हूँ कि आपके हस्बैंड इतने बुरे नहीं, वो आपसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन उनको पता है आपको कैसे बचाना है. तो आपको बचा रहे होते, आप नहीं सुन लिया करो उनकी.
1: एक नंबर भाई, एक नंबर भाई, तालियां भाई के लिए. बेहतरीन भाई,
0: थैंक यू. ये भाई अभी बहुत सारी चीजें जेन में आ रही, लेकिन वो कॉल लंबी होती जाए कि आप बाकी लोग.
1: नहीं भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आपने ना मूड को बहुत बढ़िया सही अमाउंट ऑफ लाइट कर दिया भाई, मजा आ गया. थैंक यू सो मच मेरे भाई कॉल करने के लिए. थैंक यू
0: भाई.
1: ओके अब मैं जल्दी से कुछ मैसेज पढ़ देता हूँ, उसके बाद फिर मैं कॉल लूंगा. एक मैसेज है, उस्मान भाई भी सही परेशान है और सताए हुए बंदे, ऑल सिंपथीज भेज रहे भाई. वकास भाई, फरद भाई कह रहे हैं भाई को घर भी जाना है, जभी तो उन्होंने बिल्कुल लाइट लिटिल लिटिल कहानी घर घर की नहीं, कहानी हर मर्द की. वालेकुम अस्सलाम मलिक वकास साहब, हैप्पी वीकेंड टू यू एज वेल. और एक मैसेज आया है रिसर्च को, भाई रिसर्च करनी पड़ेगी अशफाक मियां पर, ये तो तला भाई बता के गए डेफिनेटली. रियाज भाई कह रहे हैं भाई आपको क्यों लगा कि कबीर भाई की जनता सीरियस हो जाएगी. होने नहीं देंगे भाई, होने नहीं देंगे, ज्ञान तो लेते को नहीं भाई हम. नदीम भाई कह रहे हैं मेरी मजबूरियाँ, चली गई बीवियाँ. और कोई मैसेज है, याया भाई का मैसेज है, कह रहे हैं तू ना जा मेरे बाद अच्छा बीफ बिरयानी के लिए, मटन बिरयानी छोड़ के. अरे एक नंबर याया भाई लिखते हैं, मैं वापस आऊँगा बीफ बिरयानी टेस्ट करके मटन बिरयानी खाने. अब इशफाक भाई पे स्टोरी का माइंड बना लो भाई. भाई तालियां तालियां याया भाई, तालियां भाई, एक नंबर आपने गाना दिया भाई. मुजाहिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, स्टोरी मिलेंगे, ढूंढ लें इस चाचा को, चाचा की स्टोरी ढूंढेंगे. शहजादा सलीम कुछ देर में कॉल करता हूँ, एक मैसेज है, पता करो ब्रो यू गॉट योर नेक्स्ट स्टोरी. डेफिनेटली डेफिनेटली मोना बहन मिल गई है स्टोरी. और एक मैसेज है, सरवर भाई को कॉल पर नहीं ले सकते फीडबैक के लिए, वो उनको मेहर अजीज़ भाई उनके शो में जाके ही फिर हमला बोलना पड़ेगा. और एक मैसेज है अरसलान भट्ट भाई का, उन्होंने भेजा है सर्वर की सिसकियां पिक्चर का नाम. और एक बड़ा ही प्यारा मैसेज है वजाहत शमीम भाई का, लिखते हैं अमेजिंग रैप भाई आपके शो का, आई वॉज डांसिंग एट द सिग्नल एंड पीपल आर वॉचिंग मी इन सरप्राइज भाई, दिस इज द बिगेस्ट

0: हाँ जी भाई साहब, गुड मॉर्निंग। और कॉल आ रही है आते के साथ ही। अस्सलाम वालेकुम।
1: सलाम, क्या हाल
0: है? अरे गाबा मेरा भाई, एकदम भाई चाला पड़ दिया भाई। क्या हाल है? बढ़िया।
1: आज तो मेरे भाई ने गणी फूफा करवा रखी
0: भाई। गति आज मजा आ गया भाई, एकदम मौसम बदल दिया भाई। आप बताओ गाबा जी, क्या चल रहा है?
1: मौसम बदल दिया भाई, मैं भी न्यू ही सोचूं भी दोहा की फिजा में स्नोफॉल की मूड लग रहा
0: है भाई। सबसे बढ़िया टाइटल कौन चला गया?
1: वो तो भाई बताऊंगा, पहले बात तो करना आप मेरे के लिए।
0: बताओ यार, बताओ यार गाबा जी, क्या चल रहा है सवेरे सवेरे यार? क्या प्लान है आज? चाय वाय हो गई?
1: तो भाई चाय पी है।
0: अच्छा चाय होगी, चलो बढ़िया।
1: आपके लिए भी प्रॉमिस किया था, वो मना नहीं पता भाई कब पूरा होगा।
0: प्रॉमिस हो जाएगा भाई, सरप्राइज दिया करूं भाई मैं एकदम से धप्पा।
1: सही भाई?
0: हाँ भाई एकदम सही भाई।
1: चलो ठीक है भाई, मना वेट रहेगा।
0: करेक्टर पे थोड़ा भरोसा रखो भाई, बिग पिक्चर का मेन लीड बनाऊंगा भाई, टेंशन को नहीं भाई।
1: बाबू राव 2.0।
0: अरे गाबा भाई यार, फाइनली तेरे धस जा गया। गाबा जी अब तो आपका नंबर रट गया मुझे गाबा भाई।
1: सही है कबीर भाई। यार बस चक्कर पता क्या है कबीर भाई, अच्छा याद आ गया मेरे को, एक ना दुबई में आरजे है फैजान खान, जानते हो आप उसको?
0: बहुत अच्छे से जानता हूँ भाई।
1: हाँ वो भी शायद दिल्ली से ही है ना भाई?
0: हाँ मतलब वो लखनऊ से है, मेजरली वहीं पे वो था, फिर उसके बाद वहाँ गया।
1: ठीक है ठीक है। तो भाई कभी कभी उसका शो सुनता हूँ ना दोपहर में यार, सच में मेरे को यही लग रहा है भाई कबीर भाई शो कर रहा है। वो क्यों लग रहा है मैं वो भी बताता हूँ कबीर भाई।
0: हाँ बताओ
1: यार, जैसे आपकी एनर्जी है ना, बस पहले सेकंड से लेके लास्ट सेकंड तक वो भी बंदा वही चीज है सेम।
0: थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू।
1: बोलने का तरीका, उसकी वॉइस भी आपके जैसी ही है, थोड़ी सी हैवी।
0: नहीं हम दोनों एक्चुअली में भाई एक टाइम पे बैचमेट भी थे भाई, तो वो एक साल सीनियर था मेरा, बट हम साथ में ही थे, तो वो थोड़ा सा पता नहीं शायद रिफ्लेक्शन होता होगा इस शो में, बट थैंक यू सो मच भाई, आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। बहुत प्यार भाई, थैंक यू उसके लिए। बहुत
1: मेरे को नहीं पता कबीर भाई आपने सुना है या नहीं सुना।
0: अरे मैं जानता हूँ उसको, मैं लखनऊ में रहा हूँ।
1: जब ये अपनी ट्रांसमिशन बंद हुई थी ना एक वीक के लिए पीछे, हाँ तो उस टाइम दुबई वाले तो चलते हैं ना, आपको पता है एफएम कभी कभी, फिर वो सुनने का मौका मिलता था।
0: जी।
1: चलिए छोड़िए। और कबीर भाई यार, आप क्यों एक छोटे से मासूम स्लिम ट्रिम बच्चे के पीछे पड़े हो यार, हाथ धो के यार।
0: भाई लेकिन बढ़िया टाइटल मिले आज, ये बात तो है, ये तो माननी पड़ेगा आपको भाई। एक बिल्कुल भाई, क्या
1: कबीर भाई टाइटल तो आपको आज मिला ना, मगर यार आपके आप तो उसके पीछे तकरीबन एक हफ्ते से लगे हुए हैं।
0: और क्या भाई, मेरे पड़ोसी है भाई, मेरा तो हक बनता है पूरे हक के साथ।
1: सही है सही
0: मैं तो भग जाऊंगा शो करके।
1: जो भी है नहीं, जो भी है कबीर भाई, देखो हम लोग ये साइड तो देखते हैं अभी कबीर भाई उनका खिल्ली उड़ाते हैं, मजाक करते हैं, अगर प्यार है भाई तभी ये चीज पॉसिबल है।
0: ये पॉसिबल ही नहीं बिना प्यार के भाई, नॉट पॉसिबल।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल भाई,
0: तो इसीलिए जो है ना वो हमारा ही रहता है और हम ये ऐसा रखते हैं, इससे क्या है रिश्ता बहुत गहरा बना रहता है। वरना आजकल सब सीरियस है भाई, सीरियस क्या रहने का भाई, वो मजा वही है जब ऐसा हंसी मजाक रहे, लाइट मूड बना रहे, दैट इज द बेस्ट।
1: हाँ कोशिश तो वो भी करते हैं सीरियस होने की, मगर उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है
0: हो नहीं पा रहा
1: भाई, वो सीरियस होने नहीं देती उनको। यकीन मानिए वो 2-3 दिन से ना वो टोन अपनी भाई यानी कि गुस्से वाली टोन करने की कोशिश करते हैं, मगर वो उनमें वो रिफ्लेक्शन दिखती ही नहीं कभी भाई।
0: मैं समझ रहा हूँ भाई, वो मैं आज सुनूंगा, क्योंकि आज मुझे पता है बहुत पब्लिक उनको बताने वाली है, उनके ऊपर जो इतनी सारी पिक्चर हमने सुबह बनाई है, बट यही है भाई, यही भाईचारा ऑन टॉप भाई रहना चाहिए हमेशा, मैं तो ये कहता हूँ।
1: बिल्कुल बिल्कुल भाई, बोलो आप, हम भी बता देंगे कुछ करेक्टर उनको।
0: बिल्कुल भाई, पिक्चर का नाम बता देना उन्हें, हाँ उनको बता देना भाई, बिरयानी खा चुके सनम एक पिक्चर आ रही है जिसमें सरोवर भाई को साइन करना। तो ये उन तक बता देना भाई।
1: तो और... मैं भाई शुरुआत ही ऐसे करूंगा, अगर आज मेरे को टाइम मिला ना कॉल लगाने का तो आप भी सुनना कबीर भाई।
0: डन है भाई।
1: पूरा प्लॉट बना के ना उसका मूवी का,
0: हाँ
1: मैं उसी तरीके से स्टार्ट करूंगा, आप टेंशन मत लो।
0: डन है भाई, आज तो गाओ भाई, मजे करेंगे भाई आज तो।
1: बढ़िया बढ़िया यार भाई, बस यूं ही लगे रहो भाई, मजा आवा यार।
0: नहीं ही लगे रहेंगे भाई, अभी बस कहानी का वेट कर रहा हूँ, आप कहानी सुनना आज दिखाओ भाई, टाइम मिले तो बढ़िया सिनेमा दिखाएंगे आज आपको, ठीक है?
1: बिल्कुल यार कबीर भाई, आपके साथ एक फायदा तो हो गया यार मेरे को।
0: क्या भाई?
1: देखो यार मैं शुरुआत करता हूँ हरियाणवी में, ठीक है? मेरे साथ कोई हरियाणवी बोलने वाला बंदा नहीं है यहाँ पे, थोड़ी थोड़ी बात फिर हिंदी में होती है, फिर इंग्लिश में और पंजाबी में, बस खत्म कहाँ पे जाके होती है ये मेरे को भी नहीं पता कबीर भाई।
0: भाई कोई ऐसी बात नहीं है, एक ना मैं भी प्लान कर रहा हूँ पूरा हरियाणवी में, एक करेंगे थोड़ा सा 15 मिनट का, मजे करा देंगे भाई लोगों को, ठीक है? मुझे भी कंट्रोल रखनी पड़ती है ना भाई, क्योंकि क्या है कि सारे को समझ में नहीं आएगी तो वो थोड़ी मिड वाली बोलनी पड़ती है।
1: कुछ मिलजुल के सभी चलेंगे तभी तो फायदा है।
0: डन है भाई, डन है। तो फिर करते हैं, मैं प्लान करा हुआ है इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे, इस आने वाले संडे को ही करेंगे कुछ ना कुछ। ठीक है,
1: आने वाले संडे में कुछ,
0: यही वाला संडे वीकेंड के बाद ही।
1: ये बात ना मैंने अपने दिमाग में बिठा ली
0: नहीं है भाई। ये 8 बजे के करीब सेगमेंट रखा है मैंने, तो होगा शो स्टोरी के बाद। ठीक है
1: ठीक है ठीक है भाई, ठीक है भाई,
0: ओके मेरे भाई, ख्याल
1: रखो, ओके भाई, टेक केयर।
0: और एक लास्ट कॉल ले लेते हैं जैस भाई की, फिर कहने की तरफ बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम, एक सेकंड कॉल तो उठाई नहीं मैंने। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बहुत बहुत मेहरबानी भाई साहब, आपने फोन उठा लिया
0: भाई। मैं सही बता रहा हूँ, मैं नंबर देख रहा था, मैंने कहा आज जैस भाई जो है भाला वाला उठा के आएंगे आज। आज भाई की कॉल नहीं उठी। ऐसी कैसी बात कर दी भाई, जब हमने बोला भाई चारा ऑन टॉप भाई, ऐसे कैसे जैस भाई। और बताओ,
2: ट्रेलर के इंतजार में हूँ जल्दी से, कब 1:30 बजे भाई साहब, 2 बजे भाई साहब ट्रेलर रिलीज हो।
0: तो भाई ये बढ़िया लगा आपको, ये बिरयानी खा चुके सनम, ये बढ़िया है। और एक पता है इसमें एक और भाई ने भेजा है, क्या बिरयानियाँ आ जो चुकी, तुम खाने तो आओ कभी, छूकर तुम्हें खिल जाएंगे बोटियाँ, मजीद डालो अभी। वाह, देख रहा
2: भाई, ऐसे टाइटल है, ऐसे टाइटल है, सॉन्ग भी आ गया, मुझे तो सॉन्ग जबरदस्त लगा भाई।
0: सॉन्ग बहुत बढ़िया था यार, जो वादा माज भाई ने जो गा के
2: भाई ने क्या लाइन मिलाई है जबरदस्त।
0: तो ये जो है मैं फॉरवर्ड भी करूंगा, आज बहुत मजा आने वाला है, आज उनके शो में बहुत
2: भाई, आज सुनना है तुम्हें तो पैर पे,
0: मैं आज सुनूंगा भाई,
2: उनके शो की कोई बात नहीं होगी, तुम्हारे शो की बात होगी।
0: आज भाई डेफिनेटली मैं ट्यून इन करूंगा, डेफिनेटली पक्का होता है जैस भाई,
2: सर्वर भाई की दिल्ली नहीं आ रही।
0: तो आज तो मजे करेंगे। बाकी जैस भाई, क्योंकि आज इस स्टूडियो ना बहुत बड़ी मतलब सिनेमा है, तो आप आज जरूर सुनो भाई, मजा आ जाएगा आपको।
2: बस गाड़ी हवाले खड़ी करके दूसरी उठा रहा हूँ, बस उसमें बैठे रहूंगा, टेंशन मत।
0: डन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया जैस भाई,
2: ओके
0: मेरा भाई, ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज। तो भाई अभी जो है शहजाद सलीम, मैं आपकी कॉल उठा नहीं पाऊंगा मेरी जान, मैं अभी आपको खुद कॉल करूंगा कुछ देर में। और एक मैसेज स्टोरी याद आई, दो बाइक पर जा रहे थे, उन हेलमेट नहीं पहना था, और टाउन में पहुंचते ही पुलिस वाला देखा तो राइड कर रहा था, उसने बोला हेलमेट डाल जल्दी, उसने हेलमेट उठा उल्टा पहना और दोनों गटर में। ये कहानी क्यों याद आई मतीन भाई आपको? और इरफान भाई मैं कोशिश कर रहा हूँ गा नहीं पा रहा, मैं सुर क्या लगाने हैं इसमें, बिरयानी आज मैं गा नहीं पाऊंगा। इरफान भाई गाना बहुत अच्छा दिया आपने, इस बात की तारीफ करूंगा। सरवर भाई का शो किस टाइम आता है भाई? 1:30 बजे। और एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरा भाई, ये ऐश भाई ने मैसेज किया है, और अहमद भाई ने कहा है सरवर की सुर्खियाँ सुर्खी, अच्छा अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। और फरद भाई ने मैसेज किया है, भाई सब आप क्या ये सब आपके शो में ही निकल के आते हैं भाई, चेक कर लो कभी भी, सब अपने अपने फ्री स्टाइल में बात करते हैं, बाकी शो में तमीज़ के दायरे में रहते हैं, आपके शो में पूरा फ्रेम बाहर आ जाता है। आई एम सो प्राउड यार कि खुल के बात कर पा रहे हैं शो में, आई एम रियली रियली हैप्पी। जमाल भाई आई एम रियली सॉरी मेरा भाई, कुछ देर में लगाऊंगा तो चलेगा। क्या खामोशियाँ, खामोशी बिरयानियाँ जो आ जो चुकी तुम खाने तो आओ कभी, अच्छा वो लाए, छू कर तुम्हें खिल जाएंगी बोटियां, मजीद डालो अभी। इरफान भाई एक नंबर, भाई एक नंबर। एज भाई कह रहे हैं कोई भी पसंद का गाना सुना दो, यू आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब, थैंक यू सो मच भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑलराइट, सो अब कहानी का वक्त है, एंड एज आई वाज सेइंग आज की कहानी इज प्योर प्योर सिनेमा। अगर आप लाइव सुनने वाले हैं तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, एक डॉट लगा के भेज देना, सो दैट आई कैन नो कि आप ऑडियंस में मौजूद हैं। एक गाने के बाद मिल रहे हैं, मैं गाना और छोटा लगा देता हूं ताकि जल्दी हमारी मुलाकात हो जाए। एक सेकेंड रुको, आई एम फाइंडिंग अ वेरी शॉर्ट गाना ताकि हम जल्दी से मिल सकें। 666-221-07 बाकी आप मैसेज कर दो और फिर हम मिलते हैं, ये वाला लगा देता हूँ। ऑलराइट, एक गाना 3 मिनट के बाद सीधा आप सो रही है मुलाकात with a story that is pure cinema. I'm asli mein asli hai kya?
3: Proof.
0: Hey. Tanu pata hi hai. Tell a sign one time with saath mein Karan Ojla aur Meherbani. 7:33. Shahzad Salim kuch der mein call lagaunga main.

You know what I mean. तैनू पता ही है कहानी का वक्त हो गया सी. तो अब जो है कहानी मैं शुरू कर रहा हूँ. सबसे पहले तो मैं ये रिकॉर्डिंग ऑन कर दूँ. ऑलराइट, सो एक छोटा सा डिस्क्लेमर. इस कहानी का मकसद किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं है. कहानी किसी किस्म के जेंडर प्रोपेगेंडे को प्रमोट नहीं करती है. फैन 7 किसी भी किस्म के सुपरस्टिशन को ना तो बढ़ावा देता है ना ही कभी देगा. लेकिन आज का किस्सा भाई साहब ये एंड में बताऊंगा कि इस पे क्या क्या बन रहा है आने वाले वक्त में. एंड दैट इज़ वाई मैंने इस कहानी को चूज़ भी किया है. सो तैयार हो गई, वॉल्यूम बढ़ा दिया. चलो ओके, लेट्स बिगिन. ऑलराइट, तो आज का जो किस्सा है ना उसे सुनाने के लिए मैं आपको कई साल पीछे ले चलता हूं और मेरे साथ इस इमेजिनेटिव दुनिया में साथ में रहिएगा. ओके ओके, आज चलते हैं जरा 1969 में. जुलाई की 10 तारीख थी इस वक्त और जगह थी क्लीवलैंड. इस वक्त एक लड़का 20 साल का, इसका नाम था टेड कॉनराड. टेड 20 साल का लड़का जरूर था लेकिन बहुत फुर्तीला, ऑब्वियसली जवान था लेकिन दिमाग से भी बहुत आगे था लोगों से. मतलब उसके जो उससे बड़े लोग थे 5-6 साल, उनसे आगे की ही सोचता था. बहरहाल उसका 10 जुलाई को इसी दिन बर्थडे भी था और वो डाउनटाउन में काम कर रहा था एक बैंक में, सोसाइटी नेशनल बैंक. ये पब्लिक स्क्वायर पे था, बहुत ही मेन बैंक था ये. और उसको जो जॉब मिली थी वो जॉब मिली थी वॉल्ट टेलर की. वॉल्ट होता ना मेन जिसमें सारे रखी जाती हैं चीजें, पैसा वगैरह, कैश वगैरह. सो वॉल्ट का वो टेलर था, यानी उसका काम इतना था कि लोग जब कैश दे रहे हैं भर के कैश, वो कैश लेगा अपने हाथों से, उनको गिनेगा, उसके बाद साइन करेगा, उसके बाद वो जो कैश है वो वॉल्ट के अंदर जाएगा. तो पूरे दिन में उसकी ड्यूटी पर उसके हाथ से जितना कैश गुजरता है उतना पूरे बैंक में किसी एम्प्लॉय ने देखा भी नहीं है. यूं समझ लीजिए. अब आप कहेंगे 20 साल के लड़के को इतनी बड़ी जिम्मेदारी. लेट मी गिव यू द रीजन व्हाई उसको ये जगह मिली थी. एक तो वो बहुत अच्छी तरह से बात करना जानता था. दिस वॉज 1969, आज का वाला माहौल नहीं है. उस टाइम पे जो बात अच्छी कर सकता है, कन्विंस कर सकता है, जिसमें कन्विंसिंग पावर है, फनी है, लोगों को अपने अराउंड इजी फीलिंग करवाता है, उसको नौकरी मिल जाया करती थी और टेड को ये जॉब मिल गई थी. मगर एक साल जरा और पीछे ले चलता हूं क्योंकि कुछ हुआ था 1968 में. एक साल पहले यही यंग टेड कॉनराड ये थिएटर में गया था ये पिक्चर देखने के लिए. मूवी का नाम था क्राउन अफेयर. मूवी पता कैसी थी, उसमें जो हीरो होता है वो एक बिलियनर होता है और वो ऐसी बोर हो जाता है तो वो सोचता है चलो यार बैंक को लूट लेता हूं, और वो जाके बैंक को लूट लेता है और बच भी जाता है. इस पे पूरी मूवी थी. अब टेड को ये मूवी इतनी पसंद आई कि वो बार बार बार बार बार बार इस पिक्चर को देखता था. मतलब अपने दोस्तों को बताता था कि भाई वो पिक्चर, भाई क्या पिक्चर है भाई. और इत्तफाकन हुआ ये कि एक साल बाद उसकी नौकरी लग गई बैंक के अंदर. तो जब उसकी बैंक में नौकरी लग गई तो वो इस बात को लेकर काफी मजाक करता था. मजाक ऐसा कि जैसे बैंक में काम कर रहा है, लोग आए उसके जो साथी हैं, कलीग्स हैं, और उनको बोलता था भाई कितना आसान है ना, मतलब मेरी तो यहाँ पे वॉल्ट के पास नौकरी है. एक दिन भाई मैं सही बता रहा हूँ सनक गई ना, ये सारा कैश उठा के भग लूंगा भाई मैं. सिक्योरिटी तो वैसे भी कुछ नहीं है मेरे पास इधर सब कुछ. और सारे इस बात पे हंसते थे क्योंकि क्या है ये बड़ा सेफ किस्म का जोक है, कोई ऐसा करेगा थोड़ी, और इतने टाइम से नहीं कर रहा तो क्यों करेगा. इट्स लाइक सेइंग मैं आपसे बोलूं कि भाई मैं सही बता रहा हूँ माइक बहुत महंगे लगे हैं भाई 107 पे, एक दिन ना उठा के भग जाऊंगा मैं. तो आप कहेंगे हाँ हाँ ठीक है, तो यू विल लाफ एट इट बिकॉज यू बिलीव कि ऐसा नहीं होने वाला है. और इसलिए लोग भी मानते थे कि ऐसा तो होने वाला है नहीं. तो ये बड़ा ही सेफ किस्म का उसका जोक था ये. लेकिन कुछ और सोच रहा था. टेड जो था उस वॉल्ट की रखवाली करने वाला एक लौता बंदा था और वो मूवी को फॉलो करने का सोच रहा था. तारीख आई फ्राइडे की, जुलाई 11th 1969, सोसाइटी नेशनल बैंक. फ्राइडे का दिन है, लास्ट वर्किंग डे था पूरे हफ्ते का, सब तैयारी कर रहे थे, क्लोजिंग टाइम था. टेड कॉनराड उसने एक ग्रोसरी बैग उठाया, पेपर बैग था ये, उसके अंदर उसने कैश भरा. कैश भरा उसने $215,000, आज के कितने हो गए $1.8 million. ये उसने उस ग्रोसरी बैग में रखा सबके सामने, सारे के सारे कलीग्स वहीं थे. उसके ऊपर उसने एक सिगरेट का पैक रखा, उसके ऊपर साबुन वगैरह रखा जो उस लेके आया था, क्लीनर्स रखे,
और एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल रखी और उनके सामने से, लिटरली उनके सामने से गेट के बाहर निकल गया। सबको गुड नाइट बोलता हूं, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। ना कोई नकाब, ना कोई हथियार, बस गुड नाइट। और गुड नाइट भी उन लोगों को जिनको वो वापस कभी नहीं देखेगा। इतने डॉलर्स वो लेके गया था यहां से कि वहां पर काम करने वाले कोई भी शख्स को 10 साल लग जाएंगे उतना कमाने में। अब 1969 के बैंक वोल्ट का मसला क्या था कि आज की तरह तो था नहीं, आज क्या होता है वोल्ट, जो वोल्ट्स होते हैं ना बैंक के, उनमें एक स्क्रीन लगी होती है कि उस पर काउंटिंग होती है कि भाई इतना कैश इसके अंदर है, डिजिटलाइज वर्जन होते हैं आजकल ना। लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था, मशीन ही नहीं है गिनने वाली, तो वोल्ट को खोला जाता था, उसे खोल के नोटों को गिना जाता था। अब ये चोरी जो उसने करी है फ्राइडे को करी है, तो बैंक कब खुलेगा, मंडे को। बीच में कितने आवर्स हैं, 62 आवर्स के आसपास हैं, तो 12 घंटे कुछ नहीं हुआ, 36 घंटे कुछ नहीं हुआ, फिर 62-63 आवर्स हुए, मंडे का दिन आया 12 जुलाई का। अब लोग जो आ रहे थे बैंक के अंदर काम करने वाले लोग, उन्होंने नोटिस किया कि ये जो वोल्ट के पास एक 20 साल का लड़का बैठता है टेड, वो है ही नहीं, ये तो टाइम पे आता है। उन्होंने अपार्टमेंट में कॉल करी, कोई रिस्पॉन्स नहीं। अब लोगों का दिल थोड़ा सा धड़कने लगा, भाई ये क्या हुआ। एंड फिर उन्होंने वॉल्ट को खोला और नोट गिनने के जो प्रोसेस है उसमें लग गए। नोट गिने उन्होंने, गिनते गए, पहली बार गिना नहीं यकीन हुआ, दूसरी बार गिना नहीं यकीन हुआ, तीसरी बार गिना आंसू निकल गए। और फिर बैंक का जो मैनेजर था उसने अपने दिल पे हाथ रख के सीधा FBI को बुलाया। FBI ने और फिर खोली एक फाइल, एक फेडरल वारंट जारी हुआ थियोडोर जॉन कॉनराड के खिलाफ, उर्फ टेड के खिलाफ। उन्होंने फाइल में लिखा, उम्र 20 साल, हाइट 5'10", आखिरी बार वाइट शर्ट और टाई में देखा गया है। अब 62 आवर्स किसी के लिए भी भागने के लिए बहुत होते हैं, एंड दिस इज 1969 वी आर टॉकिंग अबाउट, कहां से कहां जा सकता है वो। लेकिन टेड ने क्या किया, टेड कॉनराड जितने ये 1.8 मिलियन डॉलर्स आज की तारीख के जो लेके गया था ग्रोसरी बैग में, उसे लेकर उसने ना जाने किसी होटल शोटल में वहां पे अपना एक कमरा बुक किया और वहां से उसने खत लिखने शुरू किए। खत लिख रहा था वो अपनी मोहब्बत को, और खत में वो लिख रहा था, देखो मुझे ये सारे कानूनी मामले पता है, जो मैंने किया है वो मैंने किया है, लेकिन मुझे पता है ये वाली चोरी जो बैंक रॉबरी होती है, 7 साल के बाद ट्रायल अपने आप ठंडा हो जाएगा, मैं 7 साल के बाद तुम्हारे पास आऊंगा और फिर हम शादी कर लेंगे। तो वो जो टीनेज फिल्म चल रही होती है दिमाग में, वही टेड के दिमाग में थी कि मैं आऊंगा 7 साल बाद और फिर हम शादी कर लेंगे। पर वो एक बात भूल चुका था, उसके इस प्लान के बारे में, मतलब उसकी मोहब्बत के बारे में FBI को पता था, लगा लिया था उन्होंने पता, क्योंकि वो बार बार बताता रहता था कि वो बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छी है और हम बहुत जल्दी शादी करेंगे, तो इस वजह से उन्हें पता था। और उन्होंने उस लड़की को ट्रैक कर लिया था और उसके मेल बॉक्स पर उनकी नजर थी। तो सारे के सारे खत जो ये लिखकर प्यार भरे खत दे रहा था, वो सारे के सारे, एक तो उसके खुद की हैंडराइटिंग में तो सबूत भी दे रहा है ये, और वो सारे के सारे खत FBI ने अपने पास रख लिए। तो जिनसे ये मोहब्बत कर रहे थे मिस्टर टेड, वो पुलिस वालों के लिए सबसे बड़ा मैप बन चुकी थी। अब टेड को पकड़ने की जिम्मेदारी एक डेप्यूटी मार्शल को दी गई जिनका नाम था जॉन एलियट। जॉन एलियट साहब जो थे वो ऑब्सेस्ड हो गए, मतलब एक होता है ऑब्सेस होना कि आप चिड़के किसी से किसी के पीछे पड़ गए। जॉन एलियट इंप्रेस्ड थे और साथ में पकड़ना चाहते थे सबक सिखाने के लिए टेड को। जॉन ने कहा मैं इसको तो छोड़ूंगा नहीं, और हंट शुरू हुई। अब बीच में एक कॉन्टेक्स्ट जो बताना बड़ा जरूरी है, दरअसल टेड जो कि भाग गया था चोरी करके, उसे लग रहा था कि 7 साल बाद बैंक रॉबरी का ट्रायल खत्म हो जाएगा, मुझे लोग भूल जाएंगे। लेकिन सरकार ने कहा ये बैंक रॉबरी तो है ही नहीं, ये तो काम पे था ना, तो इसने अपनी कंपनी से चुराया है,
तो ये फिर अलग ही मामला है. तो ये कभी भी आएगा, केस हमेशा ओपन रहेगा, जेल की जो सलाखें हमेशा इसका इंतजार करेंगी. तो जब ये इसको पता लगा अखबारों से, तो इसकी हालत खराब हो गई. अब मोहब्बत जा चुकी है, ये वापस जा नहीं सकता, शादी कर नहीं सकता, सब कुछ भुलाना पड़ेगा. कहां जाएगा वो? एक फायदा उठाया उसने. फायदा ये उठाया उसने कि एक रूल को इसने अपने हक में कर लिया. रूल था अमेरिका का ही बनाया हुआ एक फिजूल का रूल. 1970 जनवरी के महीने में टेड कॉनराड छुप छुपा के बॉस्टन में पहुंचा. वहां पे एक फेडरल बिल्डिंग में गया जो कि सोशल सिक्योरिटी नंबर देते हैं. तो ये सोशल सिक्योरिटी ऑफिस था, जैसे हमारे पास QID होता है, हमारी जो QID, बिल्कुल वैसी नंबर जो पहचान होती है. वहां पे वो गया, उसने अपना नाम यहां पर टेड कॉनराड नहीं बताया, उसने अपना नाम बताया थॉमस रैंडॉल. उसने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई July 10, 1947, जबकि 49 उसकी एक्चुअल है, तो 2 साल कम करके बताई. और अपने पेरेंट्स का नाम भी एकदम सच बताया. अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे हो गया, तो क्रिमिनल है. तो रूल सुनिए, अमेरिका में 1970 में रूल ये था कि कोई भी एरा गैरा नत्थू खैरा आ सकता है और बोलेगा कि मुझे एक आईडी चाहिए, सोशल सिक्योरिटी नंबर चाहिए, तो उसे इशू हो जाएगा. कोई सवाल नहीं, कुछ नहीं. दिस वॉज 1969, अ वेरी वेरी वियर्ड वर्ल्ड. तो इसी का फायदा उठाते हुए यूं समझ लीजिए कि सोशल सिक्योरिटी नंबर चोर बाजार के सामान की तरह बिक रहा था. उसी का फायदा उठाया टेड कॉनराड ने, अपना नाम थॉमस रैंडॉल कर लिया. अब सोशल सिक्योरिटी का नंबर मिल जाने का मतलब है ड्राइविंग लाइसेंस, क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब है अपार्टमेंट ले सकता है, कार लोन ले सकता है, और अपनी पुरानी जिंदगी को डेटाबेस से बिल्कुल खत्म कर सकता है. अब थॉमस रैंडॉल, उसने एक अलग दुनिया बनानी शुरू कर रही है, कर दी. और पुलिस जो थी वो तलाश किसकी कर रही है? टेड कॉनराड की, जो अब एक तरह से है ही नहीं. ओहायो में फाइल जो तैयार हो रही थी टेड कॉनराड पे, 20 साल का लड़का चोरी करके भाग गया, वो फाइल धीरे धीरे मोटी होती चली जा रही थी और गलने लगी थी. ये जो केस था 20 साल के लड़के का, ये प्राइम टीवी पर चल रहा था. टीवी में उसके चेहरे को दिखाया जा रहा था, हर जगह दिखाया जा रहा था कि ये बहुत ही खतरनाक है, शरीफ सा दिखने वाला. वो जो कहते हैं ना, वो चैन से सोना है तो जाग जाओ टाइप वाले शोज चल रहे थे. अब टेड जो थॉमस बन चुका था, उसने एक कार डीलरशिप में नौकरी भी ढूंढी और नौकरी मिल भी गई. वो कार बेचने लगा, उसने गाड़ियां पुलिस वालों को भी बेची, डिटेक्टिव्स को भी बेची. 1982 में थॉमस रैंडॉल जब वो बन चुका था, तो उसने शादी भी करी एक लड़की से जिसका नाम था कैथी, और उसके बाद उसकी एक बच्ची भी हुई. अब ये जो झूठ बोलने की जो लेयर थी, ये परत मोटी होती चली जा रही थी. इतने सारे झूठ पे झूठ पे झूठ पे झूठ पे झूठ, सो वेरी थिक लेयर. कैथी जो वाइफ थी थॉमस रैंडॉल की, उर्फ टेड की, उसने बोला कि थॉमस मैं सोच रही हूं हम लोग एक फैमिली ट्रिप के लिए चलते हैं ना पेरिस. थॉमस का चेहरा उतर गया, यानी टेड का चेहरा उतर गया, क्योंकि उसे समझ में आया कि इसके लिए तो पासपोर्ट चाहिए. पासपोर्ट पे फिंगरप्रिंट देना पड़ेगा, और फिंगरप्रिंट अगर लगाया तो पूरे अमेरिका में वो एक क्रिमिनल है, पकड़ा जाएगा. 10 सेकंड का जो फिंगरप्रिंट है सब कुछ खराब कर देगा. तो थॉमस ने अपनी बीवी को बोला, अरे तुम जाओ ना, वो घर पे बिल्ली का ख्याल कौन रखेगा है? तो तुम लोग को कह रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है. और कैथी ने कहा, हाँ यू नो व्हाट, रहने देते हैं यार, कभी कभी और देखते हैं. एंड थॉमस को चैन की सांस आई, अरे बाप रे बच गया. उसके बाद उसने कभी भी, थॉमस ने कभी भी अपना नाम इंटरनेट एज आने के बाद सर्च तक नहीं किया, कि अगर मैं सर्च भी करूंगा तो पता नहीं मेरे घर पे ही ना आ जाए कि ये कौन सर्च कर रहा है. तो उसने कभी भी अपना नाम सर्च नहीं किया. दूसरी तरफ ये थॉमस रैंडॉल जो बन चुका है उर्फ टेड, एक्चुअल में उसकी माँ और 2 बहनें दूसरे शहर में थीं, जो ये मान चुकी थीं कि उनका बेटा और भाई इस दुनिया से चल बसा है. मगर टेड तो बन चुका था थॉमस रैंडॉल. दूसरी तरफ जो पुलिस वाले थे, जो पीछे पड़े हुए थे, जो ऑब्सेस्ड हो चुके थे, मिस्टर जॉन एलियट,
वो घर पे भी अपने जब बात करते थे अपने घर वालों से तो सिर्फ टेड की बातें करते थे, यार वो 20 साल का लड़का ना एक बार मिल गया ना मुझे, उसको सबक सिखाऊंगा, ये क्या हो गया नौजवानों को, छोड़ूंगा नहीं मैं इसको। और उनके घर वाले कहते थे कि ठीक है, अरे रिलैक्स करो, खाना तो खाओ। मगर ही बिकेम ऑब्सेस्ड कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, ये कहीं तो मिलेगा मुझको। फिर साल आया 1987, जॉन एलियट का बेटा पीट एलियट, इन्होंने भी पुलिस को ज्वाइन कर लिया, अफसर बन गए ये भी। और दूसरी तरफ मिस्टर थॉमस रैंडॉल उर्फ टेड, वो अपनी बेटी को ये तक नहीं बता पा रहा था कि उसका असली सरनेम क्या है, एक डुअल लाइफ जी रहा था। उसके बाद एक सबसे कमाल की चीज हुई और ये आपको सुनना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इनसेन चीज है, वे रिकॉर्डेड ऑन पेपर है। ओके, तो हुआ ये कि थॉमस रैंडॉल को, जो कि एक भागा हुआ क्रिमिनल है टेक्निकली, उसका नाम टेड कॉनरेड है, उसको टीवी पे एक ऐड करना था अपनी कंपनी के लिए, कार डीलरशिप का, और उसको टीवी पे आना था। अब तो दाढ़ी वाड़ी उग गई थी, बड़ा हो गया था, तो उसने खुल्ला डिसाइड किया ठीक है मैं तो जाऊंगा। और वो टीवी के ऐड में आ रहा था गाड़ियां बेचते हुए। ऑन द सेम डे, इसी दिन जब उसका ऐड एयर हुआ, एक दूसरे चैनल पे एक क्राइम पेट्रोल टाइप का शो आ रहा था जिसमें उसी का चेहरा था, बहुत सालों पुराना, जो वो 20 साल का था, टेड कॉनरेड के नाम से। तो एक ही दिन पे उसके दो शोज चल रहे थे, एक वो जगह पे कार बेच रहा था और दूसरी जगह उसका चेहरा था कि ये मासूम सा दिखने वाला चेहरा गायब हो चुका है, $215,000 लेके भाग गया है। किसी ने भी नोटिस नहीं किया कि वो जिसका एड चैनल बदल के देख रहे हैं दूसरे चैनलों पे, जो कार बेच रहा है, ये वही लड़का है जो दूसरे चैनल पे जिसका पोस्टर आया हुआ है एज अ क्रिमिनल। एक ही दिन में ये दोनों चीजें एयर हो रही थी और किसी ने भी नोटिस नहीं किया, किसी ने भी नोटिस नहीं किया कि उसकी 20 साल की फोटो भी चल रही है, वन ऑफ द मोस्ट वॉन्टेड, और दूसरी तरफ वही बंदा जो अब बड़ा हो चुका है वो खुलेआम गाड़ी बेच रहा है। कोई अगर ध्यान से देख लेता तो क्या होता। खैर, जॉन एलियट जो ऑफिसर हैं वो तो पीछे पड़े थे, आपको पता ही है। उन्हें मिला टेड कॉनरेड का कॉलेज का एप्लीकेशन जो उसने 1961 में भरा था अपने खुद के हाथों से, तो चेहरा तो बदल सकता है, राइटिंग थोड़ी बदलेगी। तो एविडेंस सारे हैं पुलिस वालों के पास, चेहरा भी है 20 साल वाले टेड कॉनरेड का, उसकी राइटिंग भी है, पर बंदा नहीं है। अब आ जाता है साल 1990। 21 साल से जॉन एलियट पीछे पड़े थे टेड कॉनरेड, 21 साल हो चुके थे अभी, पर वो हाथ नहीं आया। केस जो था वो ऑलमोस्ट डेड होने लगा, रिटायर हो गए बेचारे, पर पीछा नहीं छोड़ रहे थे। ना ना ना ना ना, ना। सोचिए, एक बुजुर्ग जो है रिटायर होने के बाद भी ऑफिस आ रहा है, पंचिंग कर रहा है, और 21 बाइंडिंग जो किताबें होती सबूतों से भरी हुई, वो इकट्ठी कर करके बार बार उसको पढ़ रहा है। देख रहे हैं तो पूछा, सर छोड़ दीजिए, अब क्या इसके पीछे पड़े। बोला, नहीं नहीं नहीं, इसको नहीं छोड़ूंगा मैं, इसको नहीं छोड़ूंगा मैं, मगर छोड़ना तो पड़ेगा, ये खुद बुजुर्ग हो रहे थे। 2003 में जॉन का बेटा पीट एलियट वो बना मार्शल, और उसके बाप ने उससे कहा कि बेटा इस केस को जिंदा रखना, इस बंदे को पकड़ना है चाहे कितने भी साल लग जाए। बेटे ने कहा, जी पापा मैं इसे पकड़ के रहूंगा। एंड बेटा भी लग गया पीछे। खैर, 2014 में कैथी और थॉमस रैंडॉल उर्फ टेड, इन्होंने बैंक्रप्सी फाइल करी, मतलब पैसा खत्म, खलास। इन्होंने बैंक में जाके बैंक्रप्सी फाइल करी और उस वक्त एक पेपर साइन किया इसने अपने नए वाले थॉमस के नाम से। अब आप सोच रहे हैं, पुलिस वालों के पास एक ऑलरेडी उसका साइन किया हुआ उसका कॉलेज एप्लीकेशन है, और अब ये कागज है जब वो खुद बुजुर्ग हो चुका है, उसने साइन किया है। दोनों कागज सरकारी दफ्तरों में है और दोनों के बीच में 50 साल का फर्क है, 50 साल का फर्क है। अब आप सोचेंगे बैंक्रप्सी कैसे हो गई, इतने सारे लूट के तो ले गया था। लेट मी टेल यू, बहुत खराब इन्वेस्टमेंट करी थी टेड कॉनरेड उर्फ थॉमस ने, इस वजह से वो बिल्कुल कंगला हो गया था आखिर तक। खैर, पूरा का पूरा जो इसका ये करियर रहा वो कार डीलरशिप में गुजरा 40 साल का।
2017 में अब केस बिल्कुल बैठ चुका था। जॉन जो इस केस के पीछे दीवानों की तरह पड़े हुए थे, उन्हें बस टेड चाहिए था। पर कब तक पीछा करेंगे उनका? मार्च 2020 जॉन एलियट, जो इतने सालों से पीछे पड़े थे, वो दुनिया से चल बसे। उन्होंने लिखा कि मुझे मेरे पुलिस बैच के साथ दफनाया जाए। वो 83 साल के थे, 83 इयर्स के थे। और फिर उनके बेटे पर ही जिम्मेदारी आई और बोले, बेटा मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि इस 20 साल की लौंडे को पकड़ना है तुम्हें, जो काफी बुजुर्ग हो चुका होगा। लास्ट में तो ये था कि पीट चाहता था कि अपने बाप का सपना पूरा करे। मगर दूसरी तरफ कहानी कुछ और बन रही थी। फरवरी 2021, लिनफील्ड मैसाच्यूसेट्स, थॉमस रेंडॉल और टेड कॉनराड, जो अपनी दोहरी जिंदगी जी रहा था, इसको लंग कैंसर हो गया। अब इसके पास दो चॉइसेस थी। एक चॉइस ये थी कि ये अपनी बेटी और बीवी को बता दे सच कि क्या है सच, या फिर ये बिल्कुल कुछ ना बताए और पूरी दुनिया यही सोच के जीती रहे कि टेड कॉनराड, वो 20 साल का लड़का 1969 में जिसने चोरी करी थी, वो तो भाग गया, दुनिया से जीत जाएगा वो। लेकिन इसने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे बता देना चाहिए अपनी असलियत। सो मार्च 2021 लिविंग रूम में बैठा हुआ था और उसने अपनी बेटी और अपनी बीवी को बुलाया और उसने देखा टीवी पर एक शो चल रहा है क्रिमिनल्स पे, और उसे देख के उसने अपनी बेटी और बीवी की तरफ देखा और बोला, यू नो व्हाट, अगर मेरा भी कुछ ऐसा सच सामने आए ना, तो मुझसे नफरत मत करना। मगर बेटी और उसकी बीवी दोनों हंस रहे थे। उन्होंने लगा मजाक कर रहा है, ऐसे कौन बोलता है, मतलब ये तो अजीब और असर लगी। बिकॉज उसे पता था उसका पति बहुत मजाक किया है, काफी खुश मिजाज है। लेकिन बेटी को थोड़ा सा बाप की इस बात में सीरियसनेस दिखी और उसने रात में जाके जब अपने कमरे में गई तो उसने इंटरनेट पे सर्च किया। उसने सर्च किया कि 1969 में टेड कॉनराड नाम का एक बंदा था जो कि $215,000 लेके भाग गया था और उसके बाद से उसका कुछ पता नहीं चला। एंड वो थोड़ी सी डर गई। वो अगली ही सुबह अपने बाप के कमरे में गई और बोला, डैड मुझे आप सच बताइए कि आप कौन है। और उसने बोला, बेटा मेरा असली नाम है टेड कॉनराड। ये जब उसने बताया तो उसकी बेटी एशली की पैरों तले जमीन खिसक गई और बेटी को समझ नहीं पाए वो क्योंकि वो कैसे रिएक्ट करे। बेटी और बीवी दोनों बहुत शॉक्ड थी। लेकिन इससे पहले वो ये पूरी बात जज्ब कर पाती अपने दिल में, मई का महीना जब आया, मई 21, तो अपने घर पर ही नींद में ही चल बसे टेड कॉनराड उर्फ थॉमस रेंडॉल। उनकी एज थी 71, मगर दुनिया के लिए असली एज थी उनकी 73। इस टाइम पे उनकी वाइफ ने दुनिया से ये बात छुपाई कि वो टेड कॉनराड है, बस इतना कहा कि ही वॉज अ ग्रेट मैन। और फिर एक ट्विस्ट आया कहानी में, एक ऑबिचरी बेसिकली लिखी जाती है और वो पूरी ऑबिचरी में सब कुछ लिखा हुआ था डिटेल, जो कि थॉमस रेंडॉल चाहता था उनकी बेटी लिखे, उसमें सच्चाई लिखे। और फिर 2021 में वही छाप दी गई अखबार में। दिसंबर का महीना था 2021 और दुनिया को एक बहुत बड़ी खबर पता लगने वाली थी। किसी ने कॉल करी एक क्राइम रिपोर्टर को और क्राइम रिपोर्टर को बताया कि थॉमस रेंडॉल, जो इतने सालों से एक जिंदगी जी रहा था, वो पूरी जिंदगी टेड कॉनराड की थी। और ये खबर दुनिया को पता लगी। पीट एलियट, जो कि वो ऑब्सेस्ड ऑफिसर का बेटा था, उसने अपना सर पकड़ लिया और वो भाग के घर पहुंचा थॉमस रेंडॉल उर्फ टेड के। लेकिन अब तो गिरफ्तार करने के लिए कोई है ही नहीं। वो पहुंचा और उसने बोला, मैम आप लोग खतरे में नहीं है, बट क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं। और पीट ने सब बताया कि उसके फादर किस तरीके से ऑब्सेस्ड थे उसके साथ। एंड अब एक लास्ट ट्विस्ट। थॉमस रेंडॉल नाम का ये बंदा और पीट
एलियट, जॉन एलियट का बेटा, ये दोनों का घर दो घर दूर था आपस से। मतलब ये हुआ कि अगर आपका घर लेफ्ट हैंड साइड पर है तो राइट की तरफ दो घर छोड़ के घर था पुलिस वाले का। एंड पीट को सबसे ज्यादा हैरानी इसी बात की हुई कि ये साइड में ही रह रहा था और इसे उसके फादर पिछले 50 सालों से ढूंढ रहे थे, 50 सालों से। टेड कॉनराड पे एक मूवी आने वाली है विच इज इन मेकिंग राइट नाउ, और उसका अभी तक टाइटल डिसाइड नहीं हुआ है, बट देर इज अ मूवी इन मेकिंग। आई एम प्रिटी श्योर जब रिलीज होगी तो दुनिया हिलने वाली है, बिकॉज ये किस्सा कमाल का है। ये बंदा अलग ही जिंदगी जी के गया है। जब भी मुझे लगता है ना कि इससे ज्यादा तो कोई अतरंगी लाइफ किसी ने नहीं जी होगी, तभी मुझे कोई ना कोई गलत साबित कर देता है। ये था किस्सा 666-22107 पे। आप बताइएगा आपको कैसा लगा। 666-22107 पे आप कहानी आपके हवाले है, एंड आपके मैसेजेस के इंतजार में मैं दोहा वाला कबीर। स्टे ट्यून्ड।

0: गलत साबित भी किया, अपने आप को गलत साबित किया उसने कि मैं गलत था।
1: हाँ, हाँ, हाँ।
0: वो बताने का उसका मकसद था ये कि मैं गलत था, ये सही तरीका नहीं था मेरा, नहीं तो वो बताता क्यों? अगर हाँ। वो सही किया होता हाँ। तो बताता क्यों? वो कहता कि भाई जरूरत क्या है हमको ज्यादा ये करने की।
1: अगर वो नहीं बताता ना भाई तो वो जीत चुका था। मतलब वो वैसे ही सबको बना चुका था, कोई नहीं पकड़ पाता आज तक किसी को। पता नहीं
0: बना भी, मतलब वो समझ लो दुनिया से चला गया, बता के गया तो समझ लो जीत ही गया अपने हिसाब से, लेकिन वो हकीकत को उसने मतलब छुपाया नहीं लोगों के सामने। ये गलत है, गलत है तो गलत है।
1: हाँ जी भाई,
0: इकरार किया इस बात को। अच्छा लगा आज का कहानी।
1: थैंक यू मेरा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला मेरा भाई, अल्लाह हाफिज। तो भाई ये थी आज की कहानी, और एक और कॉल आ रही, उठा ही लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा भाई। बढ़िया भाई, आप सुनाइए, आप कैसे?
2: अल्हम्दुलिल्लाह, आज की कहानी तो कल की तो सुकमल से नहीं परेशान कर दिया, आज तो बंदा नहीं परेशान कर दिया
1: है ना भाई। मैं बता रहा हूँ, वन ऑफ माय फेवरेट स्टोरीज भाई, मेरे को मजा ही आ गया।
2: अमेरिका जैसी कंट्री में बंदा 20 तक ये एक्सट्रीम के टाइप हो रहा है
1: भाई। उस टाइम पे बहुत ही अलग
2: माहौल था भाई, कंट्री है, हर चीज ऑटोमेटिक है, सुनने में आता है
1: भाई। लेकिन वो जमाना अलग था ना, जिस टाइम पे उसने किया वो बहुत दौर अलग था मेरे भाई। वो 1969 का टाइम था, वो बहुत अलग टाइम था जब उसने किया, तो इसलिए किसी को पता नहीं।
2: आजकल तो फोन खोलने में फिंगरप्रिंट लग रहा है, हर जगह फिंगरप्रिंट लग रहा है।
1: अभी तो नहीं कर सकता, अभी तो कोई नहीं कर सकता।
2: बचा होगा
1: तो उस टाइम को भाई ने जो किया है ना, वो अलग ही खेल गया भाई वो। तो इस पर मूवी भी
2: नहीं आने कि उसने बचपन में शायद मूवी के प्रभाव में आके उसने कर दिया गलती, उसको रिग्रेट था जिंदगी भर। वो जवानी का दौर था, टीन एजर था, वो कर गया। क्या करेंगे, मालूम नहीं चला कितना लंबा हो जाएगा
1: बेचारे को। पछतावा तो हुआ आखिर, मुझे ऐसा लगता है जब भी उसने बोल भी दे, बड़ी बात है यार।
2: वो मूवी के प्रभाव में आके, इसीलिए मूवी गलत नहीं देखना चाहिए।
1: अरे नहीं भाई, आजकल तो किसी को असर नहीं होता मूवी का, उस टाइम पे बहुत बहुत बड़ी चीज होती थी ना भाई।
2: क्राइम की डॉल से ही देख ली कितना क्राइम हो रहा है, टिक टिक कर रहे बंदे,
1: नहीं देखो
2: ऐसे करेंगे वैसे करेंगे।
1: पहले क्या है कि सिनेमा बहुत बड़ी चीज होती थी भाई, तो इसलिए लोग वो इन्फ्लुएंस हो जाते थे। आज की तारीख में कोई ना हो रहा है इन्फ्लुएंस, पहले हो जाया करते थे क्योंकि बहुत बड़ी चीज थी सिनेमा, लोग बहुत लुकअप करते थे कि वो हीरो है तो हीरो भाई स्क्रीन पर आएगा, ये बेटे अब ऐसा कुछ नहीं है भाई। तो भाई थैंक यू सो मच मेरे भाई कि आपने कहानी सुनी, अच्छा लगा मुझे, थैंक यू सो मच।
2: बहुत बेहतरीन कहानी थी वाकई,
1: थैंक यू।
2: और तअज्जुब की बात कि बंदा इतने जमाने तक कैसे बच गया।
1: जमाना, सच में जमाने बचा।
2: एक शेर पड़ा था भी पीछे, बेचारा मर भी गया फिर भी नहीं मिला।
1: हाँ तो ये वही सीन है, ये वैसा ही सीन है। थैंक यू मेरा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़ मेरा, अल्लाह भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। और इनके बाद जो है कॉल आ रही जैस भाई की। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
1: जी मेरा भाई, क्या हाल है भाई के?
3: मैं बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह भाई साहब। ये तो वो वाला किस्सा हो गया, बगल में छोरा शहर में ढिंढोरा।
1: ये उसका प्राइम एग्जांपल है भाई, इससे बड़ा एग्जांपल नहीं है
3: भाई साहब। मतलब के बंदे दुनिया में ढूंढ रहा है, खोजबीन चल रही है, सब चल रहा है, बंदा आराम से घर में बैठा, बगल में बैठा, किसी को पता ही नहीं।
1: आप सोचे कितने खून जला होगा उसका, उसे पता लगा कि ये बिल्कुल दो घर छोड़ के रहता है।
3: मुझे उसके बेटे पे अफसोस हो रहा है, बेचारा वो तो निकल लिया।
1: हाँ
3: उसके बेटे पे अफसोस हो रहा है, उसके बेटे को जब पता चला होगा ना कि लो अब्बा तो निकल लिए और ये घर के बाजू में बैठा था, हमारे अब्बा को पता ही नहीं चला, हम जाके क्या करें अब जाके।
1: ये सबसे फ्रस्ट्रेटिंग चीज रही होगी भाई, मैं सच में बता रहा हूँ, जब पिक्चर में दिखाएंगे ना तो बहुत मजा आएगा। और ये एंड एंड बड़ा प्यारा
3: भाई, मैं वेट करूंगा इस फिल्म का कब आएगी,
1: मैं अपडेट रखूंगा। अभी फिलहाल अनटाइटल्ड है, इसका कोई नाम नहीं रखा गया, कुछ रखेंगे नाम जरूर रखेंगे, बट मैंने पढ़ा फाइल्स में तो इसके ऊपर बना रहे हैं मेरे ख्याल में। जरूर जरूर जरूर जरूर भाई, डेफिनेटली बताऊंगा। थैंक यू सो मच भाई, मजा आना
3: चाहिए। फिल्म
1: तो एंड में जो उसने बताया को क्या लगता है, बताना चाहिए था कि नहीं बताना चाहिए था, क्या क्या ओपिनियन क्या जायज भाई?
3: नहीं उसको जो है ना थोड़ा रिग्रेट हुआ, उसको लगा ना कि मेरा आखिरी गाना चल रहा है,
4: जाने से पहले जो है ना अपने पाप थोड़े कम कर लो।
1: हाँ यही है दुनिया को शौक वैल्यू देके जाऊंगा मैं।
4: हाँ, पहले तुमने अपने बीवी बच्चों को बता दिया तो बीवी बच्चों को यकीन हुआ नहीं। हाँ। बाद में जब खोजबीन हुई तो तब मालूम पड़ा।
1: हाँ, तो
4: भाई अच्छा लगा, फिर भी उसका रिग्रेट

0: जो है ना उसको रिग्रेट हुआ वो अच्छा लगा।
1: हाँ डेफिनेटली यार, वो मुझे भी बहुत बढ़िया पड़ लगा इसके।
0: हाँ कि यार बंदे ने एक्सेप्ट किया अपनी गलती जो है, एक्सेप्ट किए वो बताया, दुनिया को बता दिया। मगर मुझे वो सबसे बढ़िया यही है कि बगल में छोरा शहर में ढिंढोरा।
1: जबरदस्त। थैंक यू जस भाई, बहुत सारा प्यार भाई, थैंक यू।
0: ओके भाई,
1: ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। और जस भाई के बाद कुछ मैसेज है, यूसुफ भाई कह रहे हैं लास्ट में कौन सी फिल्म, अभी फिल्म बनी नहीं है, बन रही है आज के किस्से पे। यूसुफ भाई इट्स गोना टेक सम टाइम। एक कॉल आ रही है, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम
1: जी मेरा भाई, आपका नाम?
2: गुलरेज भाई। यार देखो आप नाम भूल जाते कभी भाई।
1: मैं नाम नहीं भूलता, आपने बोही मिया की तरह स्टार्ट किया ना, गुलरेज है। क्या हाल
2: नाम है यार, आप बोल क्या कर नहीं करेंगे
1: भाई। आपके 80s वाली बहुत बढ़िया आई गुलरेज भाई फोटो, यार मानना पड़ेगा भाई, बहुत बढ़िया आई भाई सच में।
2: मुझे जब आपका लाइक आया था मुझे तक आपने भी लगाई होगी।
1: हाँ बढ़िया आई भाई, शानदार थी गुलरेज भाई, मजा आ गया। और बताओ गुलरेज भाई क्या चला?
2: वही अपने आप से सोच कर रहा था कि मैं 80s में क्यों पैदा हुआ।
1: ठीक है भाई, इस बात का क्या रिग्रेट कर रहे हो, कहानी नहीं सुन पाए होगे गुलरेज भाई, बिजी होंगे आप।
2: नहीं यार 80s लव सॉन्ग ना, ओल्ड ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड है तो गोल्ड है।
1: हाँ कहानी सुनी नहीं सुनी?
2: एक की माजत करनी थी कि मैं नहीं सुन पाया स्टोरी,
1: मैं भेजूंगा
2: वो। मुझे आप प्लीज काइंडली जो है ना वो इंस्टाग्राम पे भेज दीजिएगा।
1: डन डन डन मिल जाएगा। अच्छा भेज दूंगा, चलो नो प्रॉब्लम।
2: अच्छा मेरी बात भाई कैसा वीकेंड का क्या प्लान्स लेना आप भाई?
1: कि वीकेंड का भाई मेरा प्लान बड़ा सिंपल सा रहता है, मैं बहुत सादा किस्म का आदमी हूँ तो मेरा भाई गेमिंग का एकदम लॉक्ड रहता है अपना प्लान, ये है फिलहाल तो सीन। और एक दो मेरे शोज होते हैं,
2: है? कोई चाय पीने का कोई मूड नहीं है।
1: बना लेंगे भाई, बिल्कुल बना लेंगे, आप मैसेज कर दीजिएगा हमें, आपके पास तो है नंबर, आप बता दीजिएगा। ठीक है ठीक है, देव देव तुम आ जाओगे? हाँ देव तुम मैसेज कर
2: देना।
1: नहीं देव, नहीं देव, नहीं ऐसा मत करो देव। ठीक है ठीक है मेरा भाई, ओके मेरा भाई, ख्याल रखो अपना।
2: ओके जी
1: अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज गुलरेज भाई। और गुलरेज भाई के बाद एक मैसेज आया है आसिफ भाई का, कह रहे हैं भाई चोर हो तो ऐसा, मगर ये कहानी मैंने तुमसे सुना हूँ ये नहीं, इसके जैसी सेम आपको याद होगी, वो भी चोरी करके भाग जाता है भाई, इसको मूवी बताओ, मैं चाहता हूँ मूवी बन रही है भाई इसकी आसिफ भाई, इंशाल्लाह ज़रूर बताऊँगा मैं। शहजा सलीम कहते हैं कबीर भाई एक्सेलेंट 20 ईयर बॉय ग्रेट सुपर स्टोरी भाई, अलग ही अंग्रेजी बोल जाते हैं, लव योर अंग्रेजी भाई, एक सुपर डुपर हिट स्टोरी, नरेशन इज आउटस्टैंडिंग, थैंक यू सो मच मेरा भाई, जजाकल्ला बहुत बहुत शुक्रिया। एक मैसेज है, बहुत बहुत शुक्रिया कबीर भाई, जजाकल्ला खैर इस कहानी के लिए। एंड चोर

0: भाई बहुत खूब। पर आपको ओवरऑल कैसे लगी कहानी, क्या क्या चल रहा था आपके दिमाग में सुन रहे थे?
1: नहीं, मेरे दिमाग में तो ये चल रहा था कि देखो, अगर अगर समझा जाए कि मतलब वो चोर था, अपने प्रोफेशन में था बंदा, बड़ा पक्का।
0: हाँ। बहुत पक्का था भाई।
1: इतना पक्का था कि मतलब एक तो उसके पीछे गुजर गया, अपने अपने क्या कहते हैं, वसीयत नामे को छोड़कर बेटे की शक्ल में चला गया। पकड़ किसी ने नहीं पाया उसको, खुद से जाहिर किया उसने।
0: हाँ, वो अगर नहीं बताता ना तो अभी तक ये कहानी भी नहीं मिलती लोगों को, क्योंकि लोग तो मान चुके थे निकल।
1: वही तो शायद वो भी चले जाता और पता नहीं चलता किसी को।
0: हाँ,
1: वो लेकिन सोच रहा था कि हाँ। एक बोझ लेके जाना अच्छा नहीं है, थोड़ा हल्का होके जाए।
0: उसका लग रहा होगा एक होगा, एक आरजे होगा रेडियो पे बोलने वाला, उसको कहानी दे जाऊं तो कंटेंट दे गया भाई मुझे वो।
1: हाँ नहीं, सही है, कुछ इसी तरह की चीजें होती हैं तभी दुनिया वालों को पता चलती है।
0: डेफिनेटली,
1: नहीं तो कैसे जाने, ऐसी जाने कितनी चीजें ऐसी होंगी ना जो मतलब बिना पता के दफन हो जाती होंगी, पता ही नहीं।
0: अरे बहुत बहुत लोग हैं ऐसे भाई, बहुत ऐसी बहुत कहानियां हैं।
1: लेकिन कहानी भाई मतलब ये सही बात है कि वो जैसे कहते नहीं है कि आप अपनी जिंदगी में जो चीज हासिल करने के लिए एकदम बिल्कुल मतलब एकदम दीवानगी के हद तक चले जाओ और उसकी जुस्तजू में कभी आप अपना पैर कदम पीछे ना हटाओ तो मिल ही जाता है।
0: हाँ, पर इसको नहीं मिला भाई पुलिस वाले को, बेचारा लगा रहा पूरी जिंदगी। वो उसने पीछे पड़ा रहा पूरी जिंदगी, है ना, तो वो भी है एक एक हिस्सा कहानी का। और जमाल भाई बाकी सब सेट?
1: बहुत बढ़िया भाई। सेट का मतलब यह है कि जब मॉर्निंग में कबीर भाई के साथ लोग जुड़ते हैं तो वो कहता नहीं है कि अगर आप थोड़ी देर के लिए कहीं गमों के हिसार में भी हो तो वो फंदा तोड़कर क्या कहते हैं, मुसर्रत की दुनिया में कदम रख ही देते हैं। मजा आता है भाई,
0: बहुत बहुत
1: रियली बड़ा मजा आता है। जैसे होता नहीं है कि वो एक दिल को शाद और आबाद करने का और थोड़ा सा लबों पर तबस्सुम बिखेरने का एक हुनर हर किसी के पास नहीं होता है।
0: अरे भाई थैंक यू सो मच भाई, बहुत बहुत प्यार जमाल भाई, एकदम मतलब पेंटिंग बना देते हैं आप बातों से, माशाल्लाह बातों के पिकासो हैं आप, बहुत बढ़िया भाई। थैंक यू सो मच जमाल भाई इस मोहब्बत के लिए, और अल्लाह ताला
1: आपको एक अच्छा भाई। बहुत अच्छा दोस्त दिया है आप लोगों ने मुझे, मतलब अभी हमारी एक साहब ने पता नहीं किससे नंबर लेकर हमें कॉल किया था, तौफीक भाई ने।
0: अच्छा,
1: बड़ा अच्छा लगा और अपने आप में थोड़ा सा एक खुशी हुई कि देखो ये एक जो 2011 से लेके अभी तक मैंने कभी मतलब 107 को छोड़ा नहीं, तो इसके तसलसल से इसके वसीले से कुछ लोग अगर जानते हुए और हम जैसे जर्रे खाक को भी पहचानने लगे या तलाश करने लगे तो बड़ी अच्छी बात है ना।
0: नहीं भाई लोग पता है एफएम 107 से, क्योंकि इतना मतलब ऑब्वियसली मुझे तो अभी कम टाइम ही हुआ है, बहुत सालों से है, और मैंने ये नोटिस किया है कि हमारे रेडियो के जरिए लोग एक दूसरे को सुनते हैं तो कहीं ना कहीं दोस्ती हो जाती है, वो ऐसी दोस्ती होती है, वो बहुत खास होती थी वो दोस्ती, बड़ी खास बात है, बड़ी अच्छी बात है ये रेडियो की।
1: नहीं नहीं अच्छी बात नहीं, वही कह रहा हूँ ना कि बहुत बड़ी चीज है ये जो आपको हर जगह नहीं देखने को मिलती।
0: डेफिनेटली,
1: पर अल्लाह ताला शादो आबाद रखे आप लोगों को भी और इस क्या कहते हैं मम्बा को भी।
0: जज़ाकअल्लाह मेरे भाई, बहुत बहुत प्यार जमाल भाई, ख्याल रखिए अपना।
1: बहुत शुक्रिया मेरा भाई, बहुत शुक्रिया आपका,
0: जज़ाकअल्लाह भाई, ख्याल रखिए भाई, अल्लाह हाफिज़। और जमाल भाई की बात जो है एक कॉल आ रही है, अस्सलाम वालेकुम।
2: शुक्र है अल्लाह का जहाँ पर आपने मेरी कॉल उठा ली।
0: अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे नहीं, मैं अगली कॉल आपको ही करने वाला था मेरी जान, कैसी बात कर दी आपने यार।
2: जहाँ पर इसी को कहते हैं दिली मोहब्बत, किसी को कहते हैं इखलास और इजहार मोहब्बत।
0: अरे शेखू चाय पिलाई जाए।
2: अब आप कौन सी और एक नई फिल्म बनाने की बात कर रहे हैं कि हमारी फिल्म बन चुकी है 1960 में रिलीज हो चुकी है, तो अभी उसके बाद कहीं भी सारी दुनिया में कहीं भी किसी भी वक्त किसी भी तरह वो एक बिल्कुल
0: यार,
2: नहीं
0: यार, लेकिन शाह सलीम भाई आपका आपका ये नाम किसने रखा, मतलब सलीम ये जो नाम है किसने
2: जी, जी, जी, जी।
0: किसने
2: ये
0: रखा?
2: आपको सुनते हैं ना हैरत होगी कबीर साहब,
0: बताओ
2: आपको सुन के ये हैरत होगी कि ये विरासत में ना 107 नहीं दिया मुझे फरदानाबाजी में।
0: अच्छा ऐसा क्या?
2: हाँ उस टाइम पे वो गुड इवनिंग करती थी पहले।
0: अच्छा तो ओहो।
2: इसी तरह हुआ ना सलीम से, तो उन्होंने बोल दिया अनारकली का है शहजादे।
0: तभी आपने लगा लिया, मैंने कहा पता नहीं ये बचपने का नाम है आपका, बढ़िया ये तो पता नहीं था भाई, ये आज पता लगा मुझे।
2: मुझे 107 से मिला, वो भी फरदाना भाई से मिला, शुक्रगुजार हूँ इसका। और काफी कुछ इससे मतलब है ना, बहुत सा फीडबैक यानी इतनी जो मुझे मिला है ना माशाल्लाह माशाल्लाह सैलाब सर डायरेक्टर थे, टूर्नामेंट का इवेंट्स ले लो या फाइनेंशियल सपोर्ट ले लो या उन्होंने अपने हाथ से मेडल पिलाया।
0: चलो वो तो बहुत बढ़िया, इतिहास में नहीं जाएंगे, अभी टाइम कम है हमारे पास शहजाद सलीम, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कॉल करी।
2: हमारी एक फिल्म ऑलरेडी बन चुकी है जिसका नाम है मौके आजम, और आप जानते ना किसी भी फिल्म के बारे में तस्वीर भी ना करें।
0: ठीक है ठीक है शेखु, अपना ख्याल रखा जाए। ठीक है, खुदा हाफिज। और शहजादा सलीम के बाद गाना चलाया जाए अनारकली, 3, 2, 1।
3: ओ शुभ दी आवाज, मैगा जी वन लव।

0: wake up.
1: हाँ जी,
0: दो हवाला मैं कबीर,
2: यही कहूंगा सुबह सुबह
0: wake up.
1: हाँ जी, वेकअप. और अब मैं जरा कुछ खबरें बताता हूँ, ये बहुत जरूरी है, जो कतर की खबरें हैं इस हफ्ते. इनफैक्ट दो तीन दिनों की सब की सब आपको बताता हूँ अभी तक ही. सो कतर से जुड़ी हुई एक सबसे पहली खबर जो है कि कतर ने स्विच ऑन कर दिया है वन स्टॉप डिजिटल गेटवे फॉर हायरिंग डोमेस्टिक वर्कर्स. और ये एक कमाल की ऐप है, इसकी बहुत जरूरत थी कई सालों से, एंड डेफिनेटली इसकी उम्मीद तो की जा रही थी, और फाइनली इट इज हियर. सो द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर कतर की एक मेजर मिनिस्ट्री, उन्होंने वेंसडे को फर्स्ट फेज ऑन कर दिया है मुआवीन का. और ये इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है जो कि गूगल के साथ बना हुआ है. इसमें बेसिकली जल्दी रिक्रूटमेंट करने में आसानी रहेगी एम्प्लॉयर्स को, और इसमें रिक्रूटमेंट एजेंसीज और वर्कर्स सारे के सारे एक दूसरे से जुड़ पाएंगे. इसमें स्टेप बाई स्टेप सब कुछ दिया हुआ है, और जो इनिशियल एप्लीकेशन है वो बिल्कुल आखिरी प्रोसेस तक है. सिर्फ ये नहीं कि स्कैन कर लिए, रेज्यूमे देख लिए, सीवी देख लिए, आखिरी तक है. सो ऑफिशियल्स ने फ्रेम किया मुआविन को ये एज बोथ लेबर मार्केट रिफॉर्म और साथ ही में डिजिटल गवर्नमेंट एक माइलस्टोन है अपने आप में, जो कि कतर का नेशनल विजन 2030 उसको उसके थर्ड पिलर को जस्टिफाई करता है, विच इज द नेशनल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी. ऑलराइट, अगली खबर है कतर एयरवेज से जुड़ी हुई. सो कतर एयरवेज ने अपना डेटा जो है वो जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि दे हैव क्लाइम्ड बैक टू 90% एंड 95% ऑफ द पैसेंजर्स नंबर्स जो कि बीच में सफर कर रहे हैं. तो ये हर एक जगह से जो पहले एयरपोर्ट बनते हैं वहां से सफर करना शुरू कर चुके हैं. थर्ड जो है खबर है, ये तो आप देख ही रहे होंगे कि बहुत सारी रील्स माशाल्लाह नजर आ रही है. 10th एडिशन का सेकंड डे बहुत शानदार गया है. कतारा इंटरनेशनल हंटिंग एंड फाल्कनरी एग्जीबिशन सहेल 2026, लार्ज अमाउंट में लोग पहुंचे, सिटीजन्स हो, रेजिडेंट्स हो, विजिटर्स हो, सबके सब पहुंचे. अब अगर आप नए हैं कतर में, सो आई वुड सजेस्ट कि यहां तो आपको जाना ही जाना चाहिए. इसमें वेपनरी, हंटिंग, फाल्कनरी इक्विपमेंट्स और आउटडोर गेयर सब कुछ एग्जीबिशन में रखे गए. इट इज़ डेफिनेटली अ थिंग फॉर योर आइज, आप जाके जरूर जरूर देखें. बाकी कुछ मैसेजेस हैं, ये भी देख लेते हैं भाई कौन कौन. क्या है कबीर भाई, ऐसे भी चोर हैं जिनको कोई डर ही नहीं. हाँ तो हमारे तो मिलेंगे आपको मोहसिन भाई. मैसेज कबीर भाई, मेरा सवाल है तुमसे, मतलब क्या होता है ये मैं आपको अलग से बताता हूँ. आसिफ भाई, आई विल लेट यू नो इन योर मैसेजेस, ठीक है, वो भी वॉइस नोट पे. वॉइस नोट पे नहीं, वॉइस नोट पे बताऊंगा आपको, ठीक है. तो फिकर ना करो भाई, इसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको बढ़िया करके दे देंगे. फिलहाल तो अगर किसी का नाम, आई हैव नेवर हर्ड, मैं बताऊँ, मैं कमाल की बात ये, मैंने कभी किसी लिसनर का नाम यहाँ पर उर्वशी देखा नहीं. अगर होगा तो उन्होंने मैसेज नहीं किया है. सो अगर कोई उर्वशी है और सुन रही है तो भाई ये कमाल है, इनडायरेक्टली शाउट आउट है आपको. उर्वशी 831 ओबेन मुगारी साहब, गुड मॉर्निंग. आ गए अब,
3: स्टार्ट द बीट.
1: अब तो बिरयानी लुट गई भाई, बोटियां नहीं बची भाई.

भाई माशाल्लाह कितने मैसेज आए आप भर भर के आज की कहानी में, मतलब आ गई आपको फील, तो भी पैसा वसूल हो गया। इरफान भाई मैसेज कर रहे हैं, इरफान लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, गुड मॉर्निंग और जो कबीर, अच्छा और होप यू वेल, प्लीज स्टोरी शेयर कर दें। आपका अपना इरफान और मैं हूँ आपका अपना दोहे वाला कभी।

0: wake up.
1: भाई साहब गुड मॉर्निंग. और आज बहुत ही कमाल के दिन है जो इंटरनेशनल कैलेंडर पे मार्क्ड हैं. कुछ दिनों के पढ़ के मुझे लगता है ये क्यों है और कुछ को सोच के लगता है कि ये किसने सोचा होगा. समझ रहे हैं आप. तो बहुत क्रिएटिव एंड वेरी डिफ्लेक्टिव आंसर्स रहते हैं इसमें मेरे. लेकिन मैं बता देता हूँ, आज तारीख हो चुकी है 10 सितंबर 2026 और आज के दिन है स्कूल पिक्चर डे. इनफैक्ट पता, मैं सोच रहा हूँ एक दिन पूरा का पूरा एक एपिसोड स्कूल पिक्चर डे पे किया जाए. मैंने अगर आपको अपने स्कूल की फोटो दिखा दी ना भाई और आपसे कह दिया कि मुझे पहचानो आपका इनाम मिलेगा, एक बंदा नहीं जीतेगा भाई. उससे आसान है कि आप अमिताभ बच्चन के साथ कुर्सी पर बैठ के जीत जाए, वो ज़्यादा आसान है. आप मुझे नहीं बचा पाएंगे स्कूल पिक्चर में, बिल्कुल नहीं बचा पाएंगे. मतलब मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि आप नहीं बचा पाएंगे. एक कॉल आ रही है, पहले कॉल उठा लेते. अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम सलाम कबीर भाई, क्या हाल है.
1: बढ़िया भाई, हमारे तो एकदम बढ़िया ही रहते हैं भाई, अल्हम्दुलिल्लाह. आप सुना
2: यार, टीवी चैनल. और मैं आज फोन कर करके परेशान हो गए, आपने चक्के ही नहीं था फोन.
1: ओहो मुझे बहका दिया होगा भाई, मुझे बहका दिया होगा किसी ने. ऐसी बात नहीं है, मैं जानबूझ के नहीं करता भाई ऐसी.
2: मैं सोचता है कबीर भाई को सुबह में क्यों लेके आते, बाद में मुझे समझ में आई ये तो सोची समझी शादी से.
1: अच्छा क्यों, मतलब क्या लगता है साजिश के पीछे क्या लगता है, क्या क्या वजह रही है.
2: सुबह सुबह में कबीर भाई आप है ना माइंड आप मतलब मूड बना देते हैं सुबह सुबह में.
1: थैंक यू भाई, थैंक यू भाई, बहुत प्यार भाई को, बहुत प्यार भाई को भाई.
2: कल सुबह में है ना वो मैम बात किया ना वो टीचर, वो बहुत बढ़िया बात किया. आज बाद में वो एक और बात किया था ना, क्या नाम, दुखी चाचा.
1: अच्छा तो तल्ला भाई ने बात करी थी.
2: दुखी चाचा, मैं बोला चाचा नहीं माने लेकिन जिंदगी मान गई, चाचा चले गए, चाचा से जिंदगी ने धोखा दिया.
1: चाचा इंस्पिरेशन है, चाचा ने इंस्पायर किया लोगों को. देखो जिद इसे कहते हैं, ये होना चाहिए भाई जिंदगी में.
2: चाचा लेकिन माने नहीं,
1: माने नहीं भाई, माने को नहीं चाचा.
2: जिंदगी उसको ले गई, खत्म हो गई लेकिन चाचा नहीं माने. देखो
1: यही जिद चाहिए जिंदगी में, समझे आप भी, ये जिद चाहिए भाई.
2: सही बात है.
1: नहीं पर अच्छा लगा आपको, शो अच्छा लगता है भाई सुबह सुबह. और क्या चाहिए.
2: सुबह मैंने कोशिश किया, मैं कल भी करने वाला था, वो टीचर ने बहुत बढ़िया बात बोला कल.
1: अच्छा कौन सी, कौन सी,
2: क्या डर के कुछ कल सुबह में. बहुत अच्छी बात बोली.
1: थैंक यू भाई, तो बहुत बहुत शुक्रिया. नहीं जब कॉल ना लग रही हो तो मैसेज कर दिया करो, मैसेज कर दिया करो, मैं कॉल लगा लूंगा. ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है.
2: मेरा चक्कर क्या है कबीर भाई, मेरा थोड़ा मसला है.
1: क्या मसला है.
2: मेरा जो व्हाट्सएप है ना वो दूसरा नंबर पे है और ये जो मेरा है ना ये कंपनी का जो बिजनेस का है ना सीन ये है.
1: तो कोई नहीं, अपने वाले से, अपने वाले से.
2: 463 नंबर है मेरा, मैं जावेद बात कर रहे हैं.
1: वो तो मैं समझ गया, पर उस पे तो मैं, उस पे तो आपको मिलते रहेगा. मुझे बता दिया करो कि भाई ठीक है इस पे जो है आ जाएगा तो ठीक है. देखिए जावेद भाई, बाकी बाकी सब सेट है भाई.
2: एकदम एकदम मूड बना देते हैं आज सुबह सुबह में.
1: मेरा भाई आज तो
2: इसके लिए बोला है सुबह सुबह में आपको सोची से शादी से सेहत लेके आए.
1: थैंक यू जावेद भाई, बहुत
2: सुबह सुबह में स्कूल खुलने के बाद में आप सुबह सुबह मूड बना देते कसम से.
1: बस भाई ये कह दिया आपने, दिन बन गया मेरा. थैंक यू सो मच जावेद भाई, बहुत प्यार भाई को. ओके मेरा भाई, ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़. और एक भाई ने सऊदी अरब से मैसेज किया, भाई मैं आपको कॉल नहीं लगा पाऊंगा, आई एम रियली सॉरी, मेरे हाथ देखो बंधे हुए हैं. एक कॉल आ रही है, अस्सलाम वालेकुम. जी मेरा भाई, इतना क्या आवाज नहीं आ रही है आपकी, बहुत स्लो है. क्या नाम है आपका.
3: काशिफ कबीर भाई.
1: हाँ बताइए भाई, क्या चल रहा है.
3: अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं
1: भाई. एकदम शानदार अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ भाई, बताइए.
3: बस बढ़िया शुक्रिया, मूड बहुत खराब था वो बनाने के लिए.
1: अरे भाई किसने खराब कर दिया मेरे भाई का मूड, कौन सा भाई.
3: अपना ही बस, वो पहले तो रात में लेट हो गया सोने में, तो सुबह उठा जब तो बिल्कुल 20 मिनट बाकी है ड्यूटी पे जाने के लिए.
1: अच्छा
3: उस 20 मिनट में भी जल्दी जल्दी करके को 2-3 मिनट रख लिया मैंने.
1: अच्छा
3: तो जब बाहर आके देखा तो गाड़ी का टायर पंचर बिल्कुल हवा.
1: अरे यार दिल टूट गया होगा भाई, ये सबसे सबसे खतरनाक मंजर है.
3: बस वो जेक लगा के वो स्टेप नहीं चढ़ाना ना कसम से.
1: हाँ भाई समझ सकता हूँ,
3: दिन नहीं मेरा समझा था खराब जाएगा.
1: कोई बात नहीं, बाकी दिन सेट जाएगा भाई, हमारी दुआ है आपके साथ भाई.
3: जैसे ही रेडियो ऑन किया ना तभी आपने स्टोरी स्टार्ट की थी, उससे पहले का कुछ नहीं पता, लेकिन जैसे स्टोरी स्टार्ट हुई थी.
1: ये मेरा भाई सही टाइम पे
3: बस वो उस स्टोरी में फिर बैठा रहा, मुझे लगा अभी पकड़ा जाएगा. जब वो बात आई ना बीच में वो गर्लफ्रेंड को खत वगैरह लिखा, अभी पकड़ा जाएगा, अभी कंफर्म पकड़ा जाएगा।
1: बहुत जल्दी हो जाता है, इसलिए मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये बीच वाला पार्ट है।
3: एंड तक उसका समझ में नहीं आया कि पकड़ा जाएगा या नहीं पकड़ा जाएगा। जब मान वो मर गया, मां बात सही है, अब वो जीत गया।
1: पर अभी अभी सेट है, आपका मूड एकदम सही हो गया भाई का, टायर वायर तैयार हो गया,
3: आवाज से बात कर रहे तो लग ही रहा होगा।
1: हाँ मैं बड़ा खुश हूँ भाई, क्या काम हो गया, और मैं उम्मीद करता हूँ पूरा दिन आपका शानदार जाए भाई, भूल जाओ सुबह के पंचर को। भाई बहुत शुक्रिया भाई कि आपने कहानी सुनी भाई, और दिन आपका बढ़िया जाए भाई, यही दुआ है भाई, टेंशन नहीं भाई, ठीक है भाई, ओके भाई, अल्लाह हाफिज़ भाई, अल्लाह हाफिज़। और इरफान भाई आज वाली कहानी आ जाएगी भाई, टेंशन को नहीं। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम कबीर मेरा भाई, क्या हाल है? बढ़िया भाई, एकदम शानदार, जुबैर बलोच भाई। और एक भाई ने मैसेज किया, सऊदी अरब से अटेंड माय कॉल। भाई मैं आपकी कॉल कहाँ अटेंड करूँ मेरी जान, आप समझ नहीं रहे। मैं आपको कॉल लगा नहीं सकता, आपकी कॉल यहाँ अटेंड कर नहीं सकता, दैट इज़ द प्रॉब्लम। अली भाई आप कुछ जो कहना है मैसेज कर सकते हैं, आप सऊदी अरब से, तो मैं यहाँ से कॉल नहीं लगा पाऊँगा, ये बहुत ही कतर सेंट्रिक मामला रहता है हमारा, तो इसलिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास और कोई तरीका नहीं है भाई। सो प्लीज़ आप मुझे बता दीजिएगा, एंड वी विल ट्राई, है ना। सो 666-22107 नंबर है, आप इस पर मैसेज करके बता सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। बाकी तो भाई साहब राजा कुमारी 41 Curry King, boy.

0: हाँ जी,
1: जाके पूछ अपने बारे में।
0: जाके पूछना नहीं अपने बारे में, मैं खुद बता दूंगा। लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ, माय नेम इज दोहा वाला कबीर, दिस इज माय इंफॉर्मेशन। माइक मेरा कार्ड का है, कार्ड दो ना, ये लो कार्ड।

0: Wake up. Hey, दो हवाला में कबीर,
1: यही कहूंगा सुबह सुबह.
0: Wake up.
2: हाँ जी, wake up, wake up. और अभी मुझे आसिफ भाई, आसिफ भाई, let me call you because I know कि आपने कॉल करी थी और मैं आपको कॉल कर रहा हूँ. आप मेरे बीच में आओगे, पीछे too much fun. मैंने कॉल लगाती है आज, मैं कॉल उठा लो. अस्सलाम वालेकुम. अच्छा, हमने मुंबई वाले को बिगाड़ दिया, मतलब सक्सेसफुल हुए भाई हम. ये हम दिल्ली वालों का प्लान रहता, कोई ना कोई ऐसा हो मुंबई वाले जिसको हम अपनी तरफ ले पाए. मुबारक हो, हम अपना को मुबारकबाद दे रहे हैं
3: भाई दिल से. मैं चाहता हूँ मैं आ जाओ तुम्हारी साइड, दोनों मिलके लड़ेंगे.
2: भाई साहब बिल्कुल हरियाणवी जाट वाली टोल जाएगी. ओ माय गॉड, लाडले.
3: आगे बोले भाई, पब्लिक भड़क जाएगी, बोले ए भाई एफएमएलडी शो है ये, क्या सीन चल रहा है इधर.
2: नहीं बढ़िया भाई, थैंक यू सो मच कि आपको याद रहा. और बताओ आसिफ भाई, क्या चल रहा है
3: भाई? बढ़िया, एक नंबर.
2: बाकी कहानी कैसे
3: लगी भाई? ये कहानी तो मैंने ऐसा लग रहा है सुनी हुई कहानी है, बाकी सेम कहानी थी तुम्हारी, पहले भी तुमने सुनाई थी ये कहानी, मगर अलग थी. वो उसमें भी वही बंदा जो शॉट दिखा के चल देता है दूसरे जगह, पकड़ा नहीं जाता है, बाद में पकड़ा मतलब मर जाता है वो. सेम कहानी, अच्छी लगी कहानी भाई, बहुत अच्छी लगी कहानी.
2: थैंक यू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया. और आज आज आज जो हमने मूवीज बनाई है वो 1:30 बजे वाले शो में बता दीजिएगा, दो तीन लोग जो बता सके. आपने सुने थे नाम, जो मूवी के नाम रखे गए? नहीं सुने?
3: नहीं भाई.
2: अरे यार, आपने नहीं सुने, हमने आज पिक्चर्स बना, हमने हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि आज हम मूवीज बनाएंगे. हमने कहा देखो, आपकी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स हो जिस पे मूवी बननी चाहिए तो बताओ. तो लोगों ने सरोवर भाई को चुना और लोगों ने बनाई उस मूवी. जैसे बिरयानी, हम बिरयानी खा चुके सनम, हमारी अधूरी बिरयानी, ये सब पिक्चर
3: है भाई. वो बेचारा बंदा एक घंटे के लिए आता है बेचारा, घर में मजा आएगा भाई, रहने दो भाई.
2: एक पिक्चर का नाम है सर्वर की सिसकिया, सर्वर की सिसकिया
3: भाई.
2: तो भाई
3: आज एक पिक्चर बनाना भाई, मैं बोलता हूँ मतलब सर्वर भाई कुर्सी.
2: अच्छा, ये कुर्सी की तरफ से कहानी है? मैं अभी उनको आपका नाम देता हूँ, मैं बताऊंगा कि आसिफ
3: भाई
2: ऐसे
3: कह रहे हैं. मैं तो एक शो में सुनता हूँ भाई. एक शो मतलब कैसे मालूम, सुबह जाता हूँ तुमको सुनते हुए, समझ रहे, तुमको सुनते हुए 3 घंटा निकल जाता है मेरा, और फिर उसके बाद में खत्म कहानी, खत्म, टाटा बाय बाय, काम में बिजी रहता हूँ. उसके बाद में जब घर पे आता हूँ तो सौरभ भाई को सुनते हुए आता हूँ, तो सुनते हुए आता हूँ तो मेरे को इतनी हंसी आती, मैं बोला यार क्या बंदा यार, ये अलग ही लेवल का, ये भी अलग ही. एक सुबह में आता वो भी अलग, ये भी अलग, दोनों अलग है.
2: थैंक यू सो मच भाई, बहुत बहुत प्यार आसिफ भाई आपको.
3: और क्या बोलते भाई कबीर भाई?
2: बढ़िया भाई, एकदम शानदार भाई, बस हैप्पी वीकेंड भाई आपको भी भाई.
3: भाई वो तुम्हारा चाय का वो मेरे को दे दो भाई, वो थर्मस मेरे को दे दो भाई, बहुत प्यारा लगा.
2: प्यारा लगा ना थर्मस, मैं कह रहा था भाई
3: पक्का भाभी की चोरी होगी भाई वो.
2: भाई वहीं से तो चोरी किया भाई.
3: भाई ये मतलब इसलिए मैं बोलता हूँ भाई, ये बंदा क्यों चोरों की कहानी सुना सुना पब्लिक को एकदम होशियार कर रहा है ये भाई. पब्लिक बाकी एक बात है भाई, जो मतलब पहले जो चोरी कर लिए बंदे लोग, कर लिए भाई, अभी करके दिखा हुआ भाई.
2: अब नहीं हो सकता ये उस टाइम पे इंटरनेट जब नहीं था ना तब कर गए वो लोग, इसीलिए इजीयर था थोड़ा.
3: बाप रे बाप, वो बंदा पासपोर्ट भी नहीं बनाया अपना, बोले भाई पकड़ जाऊंगा, बोले चल दो, बोले
2: काम का कौन भागे, मौज करेंगे साइड बैठे उसका वाला सीन था.
3: और क्या, बोले रात में 2 पैक मारेंगे
2: साइड में, किसी को पता नहीं,
3: कॉफी पिएंगे.
2: हां वही सीन साइड बनाया आपने. थैंक यू सो मच आसिफ भाई, बहुत प्यार भाई को,
3: बहुत बात
2: है, ख्याल रखो भाई अपना आसिफ भाई, ठीक है? तो आसिफ भाई की बात मैं भी आपसे ज्यादा चाहूंगा. 8:50 होने वाले हैं, सो 9 बजे आप सुनेंगे न्यूज बुलेटिन. एज यू नो, एक मैसेज आया मेरे पास, सलाम अलैकुम कबीर भाई, सवाल खैर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कबीर शाह साहब. अरे कबीर शाह साहब क्या है भाई, ये एक मैसेज आया भाई, कहानी ऑडियो में भेजो, कहानी बैकग्राउंड में चलती है, चैनल में बैकग्राउंड में कहानी नहीं चलती. देखो क्या है, वो बैकग्राउंड इसलिए हट जाता है क्योंकि अपने फोन में रिकॉर्डिंग भेज रहा होता हूँ मैं, इसलिए. बट आई विल ट्राई, ठीक है? तो थोड़ा रुक जाइएगा, आपको कहानी मिल जाएगी. कबीर भाई एकदम बढ़िया, इनका नाम भी कबीर शाह रखा हुआ है, तो कबीर भाई मैं बढ़िया. ओके, सो अब आपसे मुलाकात होगी सीधा संडे को मिलेंगे भाई, ठीक है? संडे को इंशाल्लाह मुलाकात होगी फवेरी सुबह 6 बजे. सोशल मीडिया हैंडल्स FM 107 Qatar, इस नाम से हम हर जगह मौजूद हैं, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे. फॉर नाउ दिस इज दुहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ. अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप बेहद बेहद ज़रूरी हैं. मा सलामा.

0: पाकिस्तान की बैटिंग बुध को एजबस्टन में तीसरे टेस्ट के पहले दिन 133 रन पर सिमट गई। पाकिस्तान सीरीज की किसी भी इनिंग्स में 200 रन का स्कोर पार करने में नाकाम रहा है। स्पोर्ट्स हेडलाइंस में आज इतना ही। आप सुन रहे हैं FM 107। अब आप न्यूज हेडलाइंस समाप्त फरमाइए।
1: FM 107 पर न्यूज हेडलाइंस विद फरकान शाहिद।
2: गयाना के सदर ने दोहा में अपनी रहायशगाह पर वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात के दौरान कतर और गयाना के दरमियान तआवुन पर मबनी ताल्लुकात और उन्हें मुख्तलिफ शोबों में मज़ीद मजबूत और फ़रोग देने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया। काबीना ने सऊदी अरब और कुवैत को निशाना बनाने वाले ईरानी हमलों के साथ साथ अबनाए हुर्मुज़ में बहरी जहाज रानी को मुतासिर करने वाले हमलों की भी एक बार फिर शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। कतर समेत मुतअद्दिद अरब और इस्लामी ममालिक ने इसराइली बस्तियों की मसनूआत पर बरतानिया की जानिब से आयद पाबंदी का खैर मकदम किया है और आलमी बरादरी से इसी नौयत के इकदाम करने का मुतालबा किया है। और कतर ने इथोपिया में मुनाकिदा इलाकाई वजारती इजलास में वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए शिरकत की, जिसका मकसद अफ्रीका के कम तरक्की याफ्ता ममालिक में दरपेश माशी और मौसमियाती चैलेंजेस के हल और दोहा प्रोग्राम पर अमल दरामद की पेशरफ्त का जायज़ा लेना था। इसी के साथ साथ उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचता है। हमारी तकनीकी मुआविन नूर, सोशल मीडिया से युसरा और न्यूज़ रूम से मोहम्मद अमीन, सरवर मिर्ज़ा और मुझे फरकान शाहिद को दीजिए इजाज़त। फी अमानिल्लाह।
1: हमारा अगला बुलेटिन शाम 7 बजे किया जाएगा। सुनते रहिए FM 107। दिल से देखिए।

नेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी आवाम से अपील करती है कि अपनी ذاتی मालूमात की अहमियत को समझें और उन्हें शेयर करते वक्त एहतियात से काम लें। याद रखें, आपकी मालूमात कीमती हैं और इनकी हिफाजत हम सबकी जिम्मेदारी है। इसीलिए अपनी ذاتی मालूमात किसी के साथ शेयर करने से पहले अच्छी तरह सोचें कि आप ये मालूमात किसको दे रहे हैं और उसे इनकी ज़रूरत क्यों है। ज़रूरत के मुताबिक मालूमात शेयर करें और अपनी ذاتی मालूमात की हिफाजत का हमेशा ख्याल रखें। और हमेशा याद रखें कि डेटा प्राइवेसी का आगाज़ आपसे होता है।

0: शाम 7:15 बजे से 7:15 बजे से FM 107 पर दोहा वाले कबीर के साथ दोहा वाले कबीर के साथ क्रिकेट हो
1: and he's hooked that away. That's four runs.
0: फुटबॉल हो या कोई और बड़ा स्पोर्टिंग एक्शन हम लाते हैं आप तक हर एंगल हर स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे साधे अंदाज में
2: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से
0: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंड अप विद अवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन एवरी ट्यूसडे एट 1 PM
2: क्योंकि यहां हो बात सिर्फ स्पोर्ट्स की स्पोर्ट्स की
3: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से

वो भी हमें देखने को मिला लेकिन हॉकी के लिए उनका पैशन कभी कम नहीं हुआ He was so passionate, he was so focused, he was so much grounded कि उन्हें हॉकी खेलकर इंडिया का नाम और मजीद बढ़ाना था उन्हें सिर्फ हॉकी दिखता था हॉकी स्टिक हॉकी मैदान हॉकी के एस्ट्रोटर्फ पिचेस यानी सिंथेटिक पिचेस पर धनराज पिल्ले वाज समथिंग जो कि डिफाइन हम अगर आप लोगों के लिए अगर क्रिकेट के लफ्जों में अगर बात करूं तो कपिल देव सचिन तेंदुलकर विराट कोहली या बाबर आजम या जावेद मियांदाद या यू नो कोई भी अगर आप क्रिकेटर्स उठा लें क्योंकि अब क्रिकेट आप लोगों का देसी लोगों का सबसे मनपसंद खेल है तो धनराज पिल्ले को अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो धनराज पिल्ले का जो नजर था हॉकी को लेकर वो इस तरह फोकस था इस तरह पैशनेट था जैसे कि इन तमाम क्रिकेटर्स की जिंदगी मेरा है विद क्रिकेट आज भी जब इंडियन हॉकी के गोल्डन मोमेंट का जिक्र होता है तो धनराज का नाम जरूर सामने आता है एक ऐसा खिलाड़ी जो स्पीड से खेलता था जज्बे से लड़ता था और अपनी परफॉर्मेंस से फैंस के दिल जीतता था धनराज ने सिर्फ इंडिया के लिए हॉकी नहीं खेली दोस्तों उन्होंने एक पूरी जनरेशन को इंस्पायर किया कि अगर टैलेंट के साथ मेहनत हिम्मत और जुनून हो तो दुनिया के किसी भी स्टेज पर अपना नाम बनाया जा सकता है दैट वॉज द कन्विंसिंग फैक्टर दैट वॉज द कन्विंसिंग धनराज पिल्ले जो उन्होंने दिखाया एक रोड मैप एक मार्गदर्शन एक हदफ सेट किया था कि दिस आर द फैक्टर्स जिसके बलबूते पे आप हॉकी स्टार बन सकते हैं और शायद इसीलिए धनराज को सिर्फ इंडिया का हॉकी लेजेंड कहना काफी नहीं वो इंडियन हॉकी के उन चंद सितारों में से एक हैं जिनकी रोशनी आज भी नए खिलाड़ियों को रास्ता दिखाती है उम्मीद है आपको आज का हमारा ये सेगमेंट पसंद आया होगा अगली बार एक और स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत अल्लाह हाफिज़

0: अस्सलाम वालेकुम, मैं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे, एंड वेलकम टू अनदर टेक अपडेट। और जी आज भी बहुत बढ़िया बढ़िया वेबसाइट हैं, मजे आ जाएंगे, आपको चस आ जाएगी, इस बात का पूरा पूरा वादा है। लेकिन सोशल मीडिया हैंडल्स की तरफ भी जरूर आइएगा। सो सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar, FM107 Qatar। सबसे पहले वेबसाइट्स और उसके बाद हम बढ़ेंगे सीधा खबरों की तरफ। ओके, सो वेबसाइट नंबर वन, इसका नाम है driveandlisten.com। एन है, एंड नहीं है, ये भी बता दूं मैं। सो लेट मी स्पेल इट आउट फॉर यू, driveandlisten, ड्रिवन या फिर ड्राइव एंड लिसन, जैसे मर्जी आप पढ़ना चाहें, दोनों ही ठीक है। सो driveandlisten.com, इस पे जब आप जाएंगे तो आप जो है किसी भी शहर का नाम डालेंगे तो उस शहर के रेडियो को आप सुन सकते हैं, और साथ में उसकी सड़कों पे ड्राइव वाला फी भी ले सकते हैं आपकी स्क्रीन के थ्रू। हाउ क्रिएटिव इज दैट यार, क्या कहां जा रही है दुनिया, बहुत कमाल की चीज है। आई हैव नॉट ट्राइड कतर अभी तक, क्योंकि मैं तो मतलब खुद ही रेडियो हूँ, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज का अगर आप कुछ ट्राई करना चाहें ना, यू कैन ट्राई। उनकी सड़कों पे घूम सकते हैं आप किसी भी शहर का नाम डाल के, और सीधा सीधा आप जो है उसके साथ साथ आप उनके रेडियोस को भी सुन सकते हैं। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू अनदर वन। तो जी अगला जो है वो है TerraInc.app। मैं बताता हूं फिर से, टेरा TerraInc.app। इस पर जब आप जाएंगे तो आपको ये फिर से पूछेगा शहर का, जब आप शहर का नाम बताएंगे तो उस पे जाने के बाद आप अपने मैप को, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें ट्राई किया था कि दिल्ली का नाम डाल के देखता हूँ, सो मैंने दिल्ली डाला तो मैप आ गया। उस मैप को आप कैसे भी सजा सकते हैं भाई, उसको आप एंशंट लुक दे दीजिए, उसको आप एनिमे टाइप लुक दे दीजिए, उसको आप चेंज कर दीजिए, कलर चेंज कीजिए, इट इज ब्यूटिफुल। और ये काम आता है जब आप वीडियोस बना रहे होते हैं, आप कुछ फैंसी सा अपने कमरे में लगाना चाहते हैं कोई पोस्टर, आप यहां से बना के देखिए, इट इज सो सो यूनिक। और जिसने भी ये सोचा, अच्छा वो उसने इस चीज को हल्के में नहीं लिया, बिकॉज ये ऐसी चीज है जो बहुत मेहनत से बनती है अगर आप वैसे फोटोशॉप में बनाने लग जाएंगे तो। दिस इज वन ऑफ द कूलेस्ट कूलेस्ट वेबसाइट्स एवर, मैं फिर से बता रहा हूँ, TerraInc.app, TerraInc.app। जाके देखिए, अपने शहर का मैप खूबसूरती से बनाइए, एंड यू कैन देन प्रिंट इट आउट, टी शर्ट पे लगा लो, गाड़ी पे लगा लो, गाड़ी पे दीवार पे लगा लो, कहीं भी लगा लो, मजा देंगे आप। ओके, मूविंग ऑन टू अनदर वन। अगली वेबसाइट है buildcores.com, buildcores.com। buildcores.com, इस वेबसाइट पे जो आप जाएंगे तो आप अपना पीसी खुद डेवलप कर सकते हैं। आपको आइडिया लेना कि भाई मेरे पीसी में क्या क्या लगा सकता हूँ, कहाँ कहाँ लगाऊंगा, कैसे कैसे लगाऊंगा, क्योंकि गेमर्स को बड़ा शौक होता है अपने अपने पीसी खुद डिजाइन करने का, वीडियो एडिटर्स को शौक होता है अपने हिसाब से रैम सेलेक्ट करना और ग्राफिक कार्ड्स लगाना और सब कुछ शुरुआत से बिल्ड करना। तो बिल्ड कोर पे जाके आप एक पूरा का पूरा पीसी वर्चुअली बिल्ड कर सकते हैं, एंड देन यू कैन चूज के यार ये बढ़िया लग रहा है, अब मैं जाके असलियत में कर लेता हूँ काम, तो वो आप कर सकते हैं। सच अ यूनिक वे ऑफ परसुइंग दिस, लव्ड इट मैन। तो इसके बाद अब हम बढ़ेंगे खबरों की तरफ। तो देखिए, अभी रिसेंटली अपडेट्स के बारे में बात की जाती है, हम ये मानते हैं कि भाई देखो फोन को अपडेट कर लेते हैं तो फोन स्लो हो जाता है, ये कहीं हद तक सच भी है और कहीं हद तक सच नहीं भी है। मगर अभी स्मार्ट वॉचेस के ओनर्स जो हैं उनको कहा गया है, कंपनीज ने बोला कि भाई सुनो अपनी ऐप को अपडेट कर दो, अपनी वॉच को अपडेट करो। बहुत सारे ओल्डर एप्पल गूगल और सैमसंग के वॉचेस हैं जो अभी एंड ऑफ देयर सॉफ्टवेयर सपोर्ट पीरियड तक पहुंच चुकी हैं, और ये कहा जा रहा है कि उनको अपडेट नहीं किया तो फोन के साथ कनेक्ट होकर चल नहीं पाएंगे। तो अगर आपके पास वॉच है और आप अपडेट नहीं मार रहे हैं उसे, तो दिक्कत हो जाएगी। प्लीज अपने अपने स्मार्ट वॉचेस को अपडेटेड रखें, बिकॉज अगर सॉफ्टवेयर सपोर्ट चला गया तो फिर आपको धीरे धीरे तकलीफ होगी, और वो धीरे वाली तकलीफ ना नहीं सही जाती ऑनेस्टली। या ट्रू, ऑल द बेस्ट टू यू, एंड ऑन दैट नोट मिलेंगे अगले टेक अपडेट में। दिस इज कबीर साइनिंग ऑफ, अपना ख्याल रखिए दिल से देसी। टेक अपडेट, टेक
1: अपडेट, एब्सोल्यूट सिनेमा।
0: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं, और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। बट डोंट वरी, भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक। रोलिंग,
2: हर थर्सडे रात 9 बजे से आरजे फजील के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।
3: आप सुन रहे हैं एफएम 107,
4: एफएम 107,
5: दिल से देसी।
6: स्कैम अलर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एफएम 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर आपको नए जमाने के नए स्कैम्स के बारे में पता चलता है। इमेजिन करिए कि आपका कोई अपना बिजनेस है, और इमेजिन क्यों करना भाई, बड़े लोग सुन रहे हैं, आपका बिजनेस होगा, लेकिन ये बिजनेस आजकल बहुत ज्यादा टारगेट है स्कैमर्स के, फ्रॉडस्टर्स के, जिन्होंने नए तरीके निकाल के रखे हुए हैं कि लोगों को स्कैम करना है। लेकिन ये स्कैम सीईओ इम्पर्सनेशन स्कैम है, यानी कि सीईओ बनकर धोखेबाजी करने वाला स्कैम। कई बार ऐसे स्कैम में एम्प्लॉयज फंस जाते हैं, आपके ऑफिस में काम करने वाले, आपके कंपनी में काम करने वाले, आपके बिजनेस, आपके स्टोर, आपके मॉल में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज हैं, वो फंस जाते हैं। कैसे ये स्कैम काम करता है, सबसे पहले इस पर नजर डालते हैं, लेकिन साथ ही साथ सॉल्यूशन पर भी हम बात करेंगे। और सबसे पहले होता ये है कि सीईओ इम्पर्सनेशन स्कैम, जिसे बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज भी कहा जाता है, कॉर्पोरेट दुनिया का एक बहुत ही खतरनाक और चालाकी से भरा हुआ धोखा है। इस फ्रॉड में क्रिमिनल किसी भी कंपनी के सबसे बड़े बॉस, जैसे कि सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर या सीएफओ का भेष जो है वो ले लेते हैं, प्रटेंड करते हैं, और फिर वो सच में बॉस नहीं होते हैं, बल्कि एक फेक ईमेल अकाउंट बनाते हैं जो देखने में बिल्कुल असली लगता है। कभी कभी हैकर्स बॉस का असली ईमेल अकाउंट भी हैक कर लेते हैं। इसके बाद हैकर कंपनी के फिनांस या अकाउंट या एचआर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय को अर्जेंट ईमेल भेजते हैं, और ये अर्जेंट ईमेल इस बेसिस पे भेजते हैं कि इनको पैसे की जरूरत है और क्लाइंट सामने है। ईमेल में ऐसी कहानी लिखी होती है जिससे एम्प्लॉय डर जाए या बिना सोचे समझे काम कर दे। जैसे हैकर लिखेगा कि मैं एक बहुत ही सीक्रेट और इम्पोर्टेंट बिजनेस मीटिंग में हूँ, इसलिए मुझे कॉल मत करना, हम एक नए क्लाइंट को तुरंत पैसे वायर ट्रांसफर करने हैं, बैंक ट्रांसफर, नहीं तो डील हाथ से निकल जाएगी। स्कैमर जानबूझकर एम्प्लॉय पर बहुत ज्यादा प्रेशर बनाता है और कहता है कि कंपनी के स्टैंडर्ड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और वेरिफिकेशन स्टेप्स को अभी के लिए बाईपास कर दो, क्योंकि वक्त बिल्कुल नहीं है, क्लाइंट सामने है। एम्प्लॉयज अक्सर अपने सीनियर बॉस के डर से या कंपनी के नुकसान होने के डर से बिना क्रॉस चेक किए पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। आमतौर पर मैं भी यही करूंगा भाई, लेकिन ये जरूरी है कि आपकी ऐसे में ट्रेनिंग हो। वेल, हम सॉल्यूशन पर भी बात करेंगे। होता यह है कि जब आपके ऊपर जबरदस्ती या जल्दबाजी की जाती है तो आपके फैसले लेने में कहीं ना कहीं कमी आ जाती है, आप परफेक्ट फैसला नहीं ले पाते, इसलिए जल्दबाजी में जब भी आप फैसला लेते हैं आपके साथ स्कैम हो जाता है। लेकिन इस तरह के जल्दबाजी वाले ईमेल पर आप जरा भी रिएक्ट ना करें, इसके अलग अलग सॉल्यूशन हैं। इस तरह के स्कैम से आप बच सकते हैं। सबसे पहला जो तरीका है बचने का है वो है वर्बल कंफर्मेशन रूल। अगर ईमेल में ये लिखा है कि अभी मुझे कॉल मत करना, तो ये अलर्ट है आपके लिए, क्योंकि किसी भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन या बैंक डिटेल चेंज की रिक्वेस्ट आने पर सबसे पहला फर्ज यही है कि आप बॉस को डायरेक्ट कॉल करें। और अगर ईमेल में बाकायदा लिखा है कि अभी तुरंत मुझे फौरन चाहिए, तो आपको हमेशा बॉस को कॉल करना चाहिए, और बॉस को भी ये बात समझनी चाहिए कि एम्प्लॉय और बॉस के दरमियान बहुत बड़ा गैप ना हो, और इतना बड़ा गैप खास कर ना हो कि इस तरह के स्कैम हो जाए कि कोई पैसे मांगे और एम्प्लॉय ट्रांसफर कर दे। फाइनेंस डिपार्टमेंट या अकाउंट डिपार्टमेंट जो है वो ट्रांसफर कर भी देते, क्योंकि आमतौर पे सीईओ जो है वो अकाउंट डिपार्टमेंट से, एचआर डिपार्टमेंट से थोड़ा दूर दूर से रहते हैं, वो या तो प्रोडक्शन वालों से बात करते हैं या फिर सेल वालों से, है ना, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा चाहे ईमेल कितना भी अर्जेंट हो, बिना आवाज सुने, बिना डायरेक्ट उनके नंबर पे बात किए कोई भी ट्रांसफर पैसा ना करें। उसके अलावा डुअल ऑथराइजेशन प्रोसेस, दो लोगों की परमिशन जरूर होनी चाहिए, ये एक रूल होता है हर कंपनी का। कंपनी में एक नियम बनाए जहां किसी भी बड़े फंड ट्रांसफर के लिए कम से कम दो सीनियर एम्प्लॉयज का अप्रूवल मैंडेटरी हो। तीसरा तरीका है ईमेल स्पूफिंग फिल्टर। अपने आईटी डिपार्टमेंट को बोलकर एसपीएफ यानी कि सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क और ऐसे ईमेल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स का सेटअप करें जिससे इस तरह के स्कैम से बचा जा सके। उसके अलावा एक तरीका है एम्प्लॉय अवेयरनेस ट्रेनिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लास्ट में इसके बारे में इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि अपने अकाउंट्स और फाइनेंस स्टाफ को रेगुलर इंटरवल्स पे सिक्योरिटी ट्रेनिंग आपको देनी भी चाहिए, और अगर आपने नहीं भी दी है तो आपको एक बार एटलीस्ट ट्रेनिंग होनी चाहिए या फिर डिजिटल पूरा प्रॉपर PDF के जरिए कुछ कुछ वक्त में, हर 6 महीने हर 3 महीने में एक बार अपने अकाउंटेंट, अपने HR को या जो सेल्स या प्रोडक्शन वाले हैं उनको बताते रहना चाहिए थ्रू PDF, थ्रू ईमेल, कि किसी भी इस तरह के अनजान ईमेल पर या फिर पैसे ट्रांसफर करने वाली बात पर भरोसा ना करें और सारे प्रोटोकॉल के जरिए ही पेमेंट जरूर करें। तो दोस्तों ये था CEO impersonation scam। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी आपसे कल एक नए जमाने के नए स्कैम के बारे में बात करते हुए। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।
4: स्कैम अलर्ट। कहते हैं जिंदगी एक रेस है, लेकिन क्या आप इस रेस में भागने के लिए तैयार हैं?
5: आपका करियर सिर्फ एक जॉब नहीं, आपके फ्यूचर की डायरेक्शन है। तो फिर सवाल ये है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं?
4: नए करियर्स, फ्यूचर स्किल्स, चेंजिंग जॉब मार्केट और वो अपॉर्चुनिटीज जो आपके मुस्तकबिल को नई राह दे सकती हैं। सुनिए प्रोग्राम फ्यूचर करियर, फ्यूचर करियर RJ महवेश खान के साथ हर मंडे शाम 7:15 से ओनली ऑन FM 107। अपने करियर का अगला कदम सोच समझ कर उठाइए।
7: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
8: Smart money.
9: Hello and welcome to our segment called Smart Money. मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट नासिया। आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल लिटरेसी की। Why money education matter more than anything? देखिए, आज के इस फास्ट चेंजिंग फाइनेंशियल वर्ल्ड में फाइनेंशियल लिटरेसी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल बन चुकी है। जब हम फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करते हैं तो उससे पैसे को समझना नहीं बल्कि उसे पैसे को मैनेज करना, स्मार्ट डिसीजंस लेना, ये इम्पोर्टेंट होता है। इसमें आपकी बजटिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग, डेट मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। बहुत से लोग अच्छी इनकम अर्न करते हैं लेकिन फाइनेंशियल नॉलेज की कमी की वजह से अपने पैसे को इफ़िशेंटली मैनेज नहीं कर पाते।

लिटरेसी की इम्पोर्टेंस इस बात से समझी जा सकती है कि आज हर शख्स रोजाना फाइनेंशियल डिसीजंस लेता है। जब हम शॉपिंग करते हैं, सेविंग्स अकाउंट खोलते हैं, ऑनलाइन पेमेंट यूज करते हैं या इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं, तो हम फाइनेंशियल डिसीजंस ही तो ले रहे होते हैं। और अगर इन डिसीजंस के पीछे प्रॉपर नॉलेज ना हो तो इंसान फाइनेंशियल मिस्टेक्स कर सकता है जो कि फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। देखिए, फाइनेंशियल लिटरेसी का एक सबसे बेसिक पार्ट है बजटिंग। और बजटिंग का मतलब मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि अपनी इनकम और एक्सपेंसेस का हिसाब रखना। जब इंसान को पता होता है कि हर मंथ कितना पैसा आ रहा है और कितना खर्च हो रहा है, तो उसके लिए अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को कंट्रोल करना आसान हो जाता है। बजटिंग से अननेसेसरी स्पेंडिंग कम होती है और सेविंग्स के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। देखिए, सेविंग्स भी फाइनेंशियल लिटरेसी का एक और इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। बहुत से लोग सिर्फ जितना कमाते हैं उतना खर्च कर देते हैं, लेकिन फाइनेंशियली अवेयर लोग अपनी इनकम का कुछ हिस्सा फ्यूचर के लिए सेव करते हैं। सेविंग इमरजेंसी सिचुएशंस में आपके काम आती है। अगर अचानक मेडिकल एक्सपेंस आ जाए, जॉब चली जाए या कोई और इमरजेंसी, तो ये आपको एक सपोर्ट देती है। वही फाइनेंशियल लिटरेसी इन्वेस्टमेंट की इम्पोर्टेंस को भी सिखाता है। सिर्फ पैसा सेव करना या पैसा कमाना कभी कभी काफी नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से वक्त के साथ पैसे की वैल्यू भी तो कम हो रही है। जो वैल्यू कल 1 लाख की हुआ करती थी, अब बिल्कुल भी नहीं है ना। मतलब एग्जाम्पल दे रही हूँ, पैसे की वैल्यू गिरती जाती है। जब लोग इन्वेस्टमेंट के बेसिक प्रिंसिपल समझ लेते हैं, तो वो अपने लॉन्ग टर्म गोल्स जैसे एजुकेशन है, होम ओनरशिप है, रिटायरमेंट प्लान्स हैं, इन सब के लिए खुद को बेटर प्रिपेयर कर लेते हैं। देखिए, आज के इस डिजिटल एरा में फाइनेंशियल लिटरेसी और भी इम्पोर्टेंट हो गई है। ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल वॉलेट्स और कैशलेस पेमेंट्स ने ट्रांजेक्शन्स को ईजी बना दिया है। एक शख्स हाई सैलरी अर्न करके भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस करता है अगर उसे मनी खर्च करना ना आता हो। वहीं दूसरी तरफ एवरेज इनकम वाले सन फाइनेंशियल सिक्योर होता है अगर वो स्मार्ट डिसीजंस लेना चाहता हो। तो बस आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी कि फाइनेंशियल लिटरेसी मॉडर्न लाइफ की सबसे वैल्यूबल स्किल्स में से एक है। यह हमें बजट, सेविंग्स, इन्वेस्टिंग, डेट मैनेजमेंट की पूरी थोरो नॉलेज देती है। जो लोग फाइनेंशियल एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देते हैं, वो अपने गोल्स अचीव करके फाइनेंशियल स्ट्रेस को करने में कामयाब होते हैं। बस जिंदगी का जो सबसे सिंपल फंडा है ना, वो यही है। सबसे सिंपल लेसन ये हो सकता है कि जितनी जरूरी पैसे कमाना है दोस्तों, उतना ही जरूरी पैसे को समझना और मैनेज करना है। बस कोशिश कीजिए कि आप उसे प्रॉपर तरीके से कमाएं भी, मैनेज भी करें, मैनेज इन द सेंस भी करें, बजटिंग भी करें, डेट को भी मैनेज करें और इन्वेस्टिंग भी करें। वेल, चलिए आज के लिए सिर्फ मुझे यानी नासिया और हम दोनों भी इजाजत दीजिए। देखते हो, सुनते रहिए FM 1।

0: सितारे रेंगे मैदान अजमत की जुस्तजू में टीम एक टकराए पोजीशन के लिए और जोश ऐसा तो आखिरी सीढ़ी तक लेना पाए दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलका के इनक्रिप्टेड चैनल्स और शू प्लेटफॉर्म पर
1: FM 107 टाइम चेक टाइम चेक
2: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू साथियों इस वक्त एफएम 107 की घड़ी है 10:02 और हाजिर हो गए हैं सफा और
3: महावश अस्सलाम वालेकुम आप सब लोगों को यू मैटर्स में और हम लोग यहां पे 11 बजे तक आपका साथ हमारे साथ है और इसमें हमेशा की तरह हम बहुत अच्छी अच्छी वाली बातें करेंगे
2: और भाई आज तो वीकेंड है तो आज अच्छी बातें प्लीज आज अच्छी बातें करें
3: हैप्पी वीकेंड
2: और ये भी बताते हैं रोने धोने वाली बात ना प्लीज मेहरबानी
3: बिल्कुल नहीं
2: आज रोने धोने वाली बात
3: बिल्कुल अपने ऊपर तरस नहीं खाना
2: अपने ऊपर तरस खाना ना दूसरों को खिलवाना
3: एग्जैक्टली तो क्योंकि ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि हमारा जो टॉपिक है ना आज का वो कुछ ऐसा है कि जिसके ऊपर हो सकता है कि आप लोगों की आंखों में आंसू आ जाए आप लोगों को
2: मेरी तरह इमोशनल हो जाओगे
3: तो इसलिए आपको मतलब पेशगी तौर पे दिया गया कि आप लोग आंखों में आंसू नहीं लेकर आइएगा तर्स नहीं खाइए आज हम बात करेंगे कि आपने आखिरी दफा अपने लिए क्या था
2: फिर वो कुछ भी हो सकता है वो ये हो सकता है कि लिए कुछ खरीद लेना अपने लिए अपने पसंद का कुछ खा लेना
3: हो सकता है ना कुछ ऐसे लोग हों जो कहें तो अपनी पूरी जिंदगी कुछ किया ही नहीं
2: अरे ये फिर ये जब ये कोई बात कहता है ना कि हमने हाँ। दूसरों के सर्व कर दी जिंदगी हाँ ये बात है कि आप दूसरों के लिए करना अच्छा लगता है लेकिन फिर आगे बढ़कर उसको फिर उसको एज एम्पैथी नहीं होना फिर उसको आप धड़ल्ले से बोलो मेडल पहन करके हाँ भाई मुझे तो अच्छा लगता है
3: एग्जैक्टली अच्छी अच्छी वाली बात बताएं आप कोई भी हो सकती है वो अपने लिए हम बहुत कुछ करते हैं अगर देखा जाए तो बहुत अगर हम लोग ये बोलते हैं कि हम जो है वो दूसरों के लिए जिंदगी जीते हैं लेकिन हकीकत में देखा है ना हम सब अपने लिए ही जिंदगी जीते हैं
2: इंसान का जो है ना एक मसला है जब तक उसे किसी चीज में मफाद नहीं नजर आता वो तब तक नहीं करता और ये बात है ये मानो नहीं मानो ये हकीकत बात है
3: हम दूसरों के लिए यूजुअली
2: अच्छा लगना
3: हमें खुद को अच्छा लगना होता है फिर दूसरा अगर आपके जहन में कहीं बैक ऑफ द माइंड इंशाल्लाह मतलब सबके दिमाग में होती है कि अजर चाहिए तो वो जो आप चाहिए
2: हाँ, exactly.
3: आप इसलिए दूसरों के साथ अच्छा कर रहे exactly. होते हैं क्योंकि आप मतलूब है अपनी जात के लिए हर बंदे अपनी जो हम बात कहते हैं ना कि आप मैं सफा सुनती हूँ तब हमेशा ये वाली बात ना करती थी कि हम दिन हर शख्स जो है ना अपनी जात बारे में बस अपने बारे में बात
2: नफसी नफसी का माहौल होगा
3: तो वो जो है ना आपका मैं उस वक्त नहीं समझता कि यार ऐसा कैसे हो सकता है लेकिन अब रियलाइज करो है ना अब आप रियलाइज करो तो हर बंदे को फिक्र अपनी कब्र की होती है ये एक फैक्ट है चाहे माँ बाप हाँ। चाहे मतलब इवन औलाद मतलब बंदा ये सोचेगा हाँ। मेरे साथ मेरी कब्र में क्या तो ये एक हम सब हैं भाई काफी हद तक हम सेल्फ सेंटर्ड होते हैं और अपने बारे में सोचते हैं तो हम अपने लिए बहुत कुछ कर रहे होते हैं चाहे कुछ भी हो
2: ये एक और चीज से बहुत इंटरकनेक्टेड है मैं हाँ। यहाँ पर नहीं बताऊंगी आपको ऑफ एयर बताऊंगी कितनी इतनी खतरनाक बात है कि अगर कोई इंसान को कुछ समझाती हूँ कि कोई इंसान अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है ना समझ रही ना बात तो उसमें भी उस हालत में भी आपने कभी देखा होगा साइकेट्रिस्ट तक ये कहते हैं साइंस तक ये कहती है कुछ आपने देखा है कोई कोई करने लगता है तो लोग उसको डाइवर्ट करते हैं बातों को उलझाते हैं उसको बातों में उलझाते हैं ताकि उसका जो कॉन्शियस है ना वो थोड़ा सा गेन हो विद इन सेकंड्स का गेन उसने एक दफा एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी अब बहुत पहले थी मुझे अब याद नहीं आ रहा उसका नाम लेकिन उसके पूरा लुब्बे लुभाव उसका ये था कि इंसान का कॉन्शियसनेस होता है ना इंसान को अपने आप से ज्यादा प्यारा कोई नहीं होता
3: नहीं होता
2: तो मामला ये बनता है आखिर में कि अगर उसने अपने आपको नुकसान भी पहुंचाना होता ना तो वो एक जज्बाती तौर पर कुछ सेकंड्स होते हैं जिसके अंदर वो ना कॉन्शियसनेस खो देता है वो जब लोग उसे बात कहते हैं ना हमें जब कोई तकलीफ हो तो डाइवर्ट करो इसे डाइवर्ट करो ताकि कॉन्शियसनेस वापस आए और फिर उस कॉन्शियसनेस से भाई आपको नुकसान नहीं पहुंचाना वो भाई पागल है क्या मर जाऊंगा क्या होगा ये होगा फिर वो चीज वापस लेकर कोशिश करते हैं उसके अंदर क्योंकि इंसान के अंदर फितरी है एक बात एक तो साइंस भी उस डॉक्यूमेंट्री का कि एक तो ये फितरी है कि इंसान जिसको जो हम कहते हैं ना थोड़ा बहुत बेचारा मेंटली सिक हो या

0: और ये हम ऑब्जर्व भी करते हैं, हाँ, नजर भी आती है ना, हाँ, मतलब जो गलत हमारे लोग।
1: अच्छा, मजे की बात ये इस चीज से भी कनेक्टेड है कि अल्लाह ताला उन लोगों को पसंद करता है जो ख्याल रखते हैं।
0: एग्जैक्टली,
1: अल्लाह ताला कहना कि जब मैंने तुम्हें दिया है ना तो तुम्हारे खाने में, तुम्हारे पहनने में और तुम्हारी सवारी में नजर आना चाहिए।
0: एग्जैक्टली, बिल्कुल।
1: तो अल्लाह ताला को पसंद है,
0: हम इस बात को बढ़ाएंगे आगे, लेकिन हम लोगों ने इतना ज्यादा कुछ मकतबे फिक्र की वजह से कुछ इस तरह का मामला बन गया है कि इस चीज को गुनाह समझने लगे हैं। हम इस बात को करते हैं, लेकिन उससे पहले बताएं कि हम कॉल और व्हाट्सएप के लिए मैसेज
1: हमें आप कर सकते हैं 22107 पर। द नंबर इज 666-22107 फॉर मैसेज,
0: और 443-77 पे आप कॉल कर सकते हैं, जो कि हमारे पास आ चुकी है। तो हम उसकी तरफ पहले बढ़ते हैं, फिर हम बात अपनी भी करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।
0: और ये चौका मारने पे रईस भाई जो है कुछ बुझे बुझे से आए, गिरेंगे तो बोलेंगे कि मैं रोज पहला हूँ।
2: इत्तेफाक भी है मैम, करंट टाइम में आप लोगों का ये शुरू होता है, उसी टाइम में मेरा समझ लो कि कौन भी उसी टाइम में गाड़ी में अनलोड होता है, उसी टाइम मुझे मिजान गाड़ी खड़ा करना, जल्दी से मुझे पेपर पकड़ के फिर आप लोगों को बात देखा, बाकी के बाहर साउंड ज्यादा होता है।
0: चले जबरदस्त, मतलब हमारी और आपकी टाइमिंग मिल रही है, सितारे मिल रहे हैं कहीं पे,
2: मिल गए बस मैं थोड़ा बात करूंगा कि थोड़ा सा आप लोगों ने इसे कि मतलब अपनों के लिए जीना, कि अपने लिए आप लोग आपने क्या किया आखिरी वक्त में,
0: नहीं आखिरी वक्त में नहीं, आखिरी दफा,
2: आखिरी दफा हमारी आखिरी खत्म ही नहीं हो रही है ना। ये असल मकसद ही होता है वो जो दूसरी जी के और अपने करके मतलब ये करके वो ये रिफाई करे, तो मतलब मर्दों के अंदर वो फितरत ये है कि भाई वो उस जिंदगी समझ लो कि सारे फैमिली को खुश रख के ये हम लोग ये ही जीना कहना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह ने एक मौका दिया है, अगर हम दूसरे की मदद कर सकते, कोई भी किसी का जरूरत पे, चाहे एक अपनी फैमिली हो, बच्चे हो, तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि हमें अल्लाह ताला उस लायक बनाया और हम उसको मतलब हम अपना ये कर सकते हैं, मतलब मैसेज कर सकते हैं उनकी लाइफ को भी। तो ये चीजें बहुत मतलब भाई ये अपने लिए जीना बात करिए, आदमी कभी मतलब ये नहीं हो सकता कि नहीं बस आज इस चीज को, क्योंकि उस चीज बढ़ती जाएगी, ये ले लो, ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, आज साइकिल से बाइक से फोर व्हीलर से फिर उसमें उसी मतलब अब वो प्लेन हो गया, उसका ख्वाहिश पूरा हो जाएगा।
1: तो ऐसे तो बाकियों की भी ख्वाहिश पूरी नहीं होती भाई, बाकी लोग भी अगर आप दूसरों के लिए करते हैं तो हाल तो ये देखा गया है कि आज के जमाने का ये बोला जाता है कि आप लोगों के लिए इतना करते हो कि लोग आपके कंधे बैठ के कान खाना शुरू कर देते हैं।
2: भाई वो हमको अपना ख्याल करता है कि हम किसके लिए इतना ज्यादा दूसरों के लिए भी ना, वो अपने जिसके जो मतलब हम कदा करते पर गया है, कुछ हमें भाई आजकल हम लोग को खासकर बड़े सगीर के वो औरों के लिए जीते जीते घर में जाने के बाद में उनको हाथ में कुछ भी नहीं मिलता है, हाँ बस वो अब वो इस ऊपर बहुत ही गुफ्तगू हो जाएगी कि तो बहुत ज्यादा समझ लो कि उनको बस जॉइंट फैमिली और ये सब इस ऊपर, बल्कि महवेश ने प्रोग्रामिंग भी किया है कि मतलब ये अच्छा की है, तो ये सब चीजें ना कि बंदे अपने बाल बच्चों के लिए भी मैनेज करके रखना चाहिए,
1: न्यूट्रल रहना चाहिए, न्यूट्रल।
2: हाँ, ये विरासत में पोते को क्यों मतलब है इस्लाम ने ये भाई चीजें, ये बाप की है, ये बाप अपने वक्त में जब अपने बच्चों के लिए नहीं मैनेज करके रखेगा ना, तो फिर हम अल्लाह से कहेंगे, अल्लाह के ऊपर मतलब इस्लाम के उस कानून पे हम नौज बिल्ला इल्जाम लगाए कि मतलब आईशाला मेरे साथ मतलब क्यों फैसला, तो ये चीजें मैटर करती है, हमें अपने हिसाब से अपने जो खास जो हमारे से सवाल किया जाना है हमारे रिश्ते के बारे में कि तुमने उनके लिए क्या किया, उनसे मतलब उनको ये चीज के ऊपर हमें गौर करना चाहिए, ये चीजें बहुत, और ये अपने ही है, अपने लिए अपने बच्चों के लिए अगर आपने मतलब कुछ मैंने दूसरों भी एहसान किया, हमारे इस्लाम ने रोका नहीं है, अल्लाह ने कहा है अब बंदा को मतलब जब मौत आके सामने खड़े हो जाएगी तो कहेगा अल्लाह मतलब मुझे कुछ मौका दे दे, थोड़ा सा मौका दे दे, मोहलत दे दे, मैं कुरान की आयत ना पढ़ के तर्जुमा कर रहा हूँ कि मैं मतलब नेक लोगों में से हो जाऊँ, मतलब कुछ सके और कुछ ये करके, तो ये खर्च करना देख पहले सबसे पहले जो अपने करीब का जो अपना है उसको मैनेज करना, ये हमारे लिए सबसे बड़ा जरूरी काम है।

0: हमें करना चाहिए.
1: एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल सही.
0: तो ये हमें ये नहीं करना चाहिए कि मैंने क्या मतलब अपने लिए क्या भाई, जिम्मेदारी मर्द को दिया गया है, अल्लाह ने जिम्मेदारी क्या है, ये मेन पॉइंट है ना. अगर हम अगर अपने लोगों के ऊपर मतलब हम मुशाबहत करना शुरू कर देंगे तो फिर वो रिश्ता दरहम हो जाएगा कि हम ये कर रहे हैं तुमने क्या किया. ये चीजें एक अलग अलग जिम्मेदारी, औरत को जिम्मेदारी दिया गया है अलग, वो अपने घर का चिमरत से मैनेज करना, मर्द को कहीं से भी करके उसके ऊपर फर्ज किया गया, ये सब चीजें तो हमें इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए. ऐसा नहीं है कि मतलब ये हमें अपने हम अपने हमें खुशी होता है, खासकर दूसरों के अपना थोड़ा सा नॉर्मल लाइफ अपना मतलब मैनेज करके नॉर्मल कपड़े और अपने अपने जो हमारे फैमिली के उनको अच्छे अगर देखे तो मुझे ये बहुत खुशी महसूस होता है. गरीब के लोगों को तो देखे कि हाँ भाई हमारे से अगर हमारे परेशानी उठाने से हमारे 10 लोग 10 फैमिली के लोग

0: इस लायक बनाया। तो ये चीजें बहुत मतलब ये मतलब हमें इसके ऊपर घोटन लगे, मैंने यार सबके लिए दिया दिया दिया, मुझे भी क्या मिला, मैंने क्या क्या बने, तो ये चीजें ये मायने नहीं रही, इसके ऊपर हमें ज्यादा ये नहीं करना चाहिए। बस
1: आगे
0: भी नहीं कि मतलब हम भूखे रहे, अपने सेहत का ख्याल रखें, अपने ऊपर खर्च ना करें, ये भी बहुत ज्यादा की हर चीज में मेहनत रवि होना चाहिए।
1: सही बात,
0: अपने ऊपर भी, अपने बाल बच्चों के ऊपर, हरे ऊपर सब कर दिया गया, तक उसका टाइमिंग है नहीं कि मतलब उनको उनको अपने बाल बच्चों को कहा वो बारिश हो गए या वो हो गए तो उनके ऊपर सारी या तुम ही करते थे तो फिर वो सारे लिए मुसीबत वगैरह बन जाएंगे, ये अलग मौजू चल जाएगा।
1: हाँ, बिल्कुल चले चले चले। रईस भाई बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया, हैप्पी वीकेंड आपको।
0: हमारे बहुत कॉल आ रहा था लेकिन मैंने कॉल अटेंड नहीं
1: किया, बॉस को ना कर दिया आपने,
0: कंपनी के बॉस का फोन आ रहा था, कैसे मैंने आपने बात शुरू किया, कॉल आ रहा था, मैं इग्नोर कर लेते
1: ये। चलो क्या बात है, हम लोगों की क्या बात है,
0: आज हमें चौकड़ने का मौका मिला, बस ये
2: भाई कुछ ज्यादा बाहर ना निकल जाना चुके इधर
1: बाउंड्री से बाहर,
2: मैं चौकीदार हूँ, जिम्मेदार नहीं हूँ।
1: चले रईस भाई बॉस को कॉल करें और इन तरफ से बात करते हैं, बिल्कुल जी बिल्कुल जी, हैप्पी वीकेंड जी। तो हमारे साथ रईस भाई जज्बाती हो गए, बहुत ज्यादा जज्बाती हो गए, ये जज्बात महंगे ना पड़ जाएंगे। अच्छा जी, तो तुमने तो खैर बताया था कुछ दिन पहले कि तुमने खरीदी थी एक गाड़ी।
2: हाँ वो मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है, इतने साल इंतजार कर रहे था, नहीं ये काम है, कुछ चीजें ऐसी रईस भाई कहते हैं ऐसी जो प्रायोरिटी लिस्ट पर होती हैं आपकी, और पता नहीं क्यों एक हिसाब है माविश, मुझे नहीं पता कितने लोग आप में से ऐसे हैं, लेकिन मेरा शुरू से ये सब रहा है कि अगर लॉन्ड्री के कपड़े धोऊं भी ना तो जब कपड़े धुलकर आपको जाहिर बात है अलमारियों में डालने करना है, तो उसमें भी मेरी प्रायोरिटी ये होती है कि मेरे कपड़े मैं सबसे एंड में डालती हूँ, और कभी कभी तो यूं गुजबुज करके डालती हूँ, घर वालों के सारे कपड़े, आपको कोई कपड़ा उल्टा भी तय हुआ नहीं मिलेगा, हैंग हुए और सीधे होकर तय हुए, आपको आप अलमारी खोलोगे आपको लगेगा कि फाइव स्टार होटल में आ गए, और मेरी अलमारी खोलोगे ना जैसे अभी ट्रैफिक जैम यूं निकलता हुआ उबलता हुआ, यहाँ ओवर हुआ मिल्क होता है ना, जो उबला दूध होता है जो उबल के बाहर, वैसे सब कुछ बाहर आ रहा होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज जाके मैंने सीखी है कि नहीं अपने आप को भी प्रायोरिटी दो, अगर कोई ऐसा काम है आपकी लिस्ट में जो आपको थका रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं, अपनी प्रायोरिटी लिस्ट सेट करो। जिंदगी में हर काम प्रायोरिटी पे होने की जरूरत नहीं है, हर काम इमरजेंसी नहीं है, ये मुझे अब जाके समझ में आता है, पहले नहीं आता था, पहले ऐसा कि बाकी वो एक नेचर इंसान की पीपल प्लीजर वाली नेचर बीइंग वेरी ऑनेस्ट, उस चीज का डिफरेंस नहीं पता था कि पीपल प्लीजर क्या है, और ये भी नहीं पता कि आप लोगों को खुश कैसे रखते हो जब आप खुद खुश नहीं हो, एग्जॉस्ट हो जाते हो ना आप जब अपने नहीं करोगे, आइसक्रीम खाने को दिल कर रहा है, अच्छा बच्चे बोलेंगे तो हम फौरन कर लेंगे, और कोई चीज चाहिए तो अम्मा अब्बा फौरन कर लेंगे, एक एक मिसाल दे रही हूँ, अम्मा अब्बा फौरन कर लेंगे,
1: बिल्कुल
2: लेने पर बात आएगी ना तो वो जो 50 रियाल की टंगी हुई शर्ट या 40 रियाल या 30 रियाल की टंगी हुई शर्ट है दुकान में, वो भी आप सोचोगे यार ये 30 रियाल जो है ना, जबकि आपका बच्चा आपसे वो 100 रियाल की चीज ले रहा होगा, इसे खुशी खुशी दे दोगे, ये भी एक मसला होता है कि अपने ऊपर वो खुशी मिस नहीं होती फिर इंसान को, और वो गिल्ट मार देता है।
1: एग्जैक्टली, जैसे अभी रईस भाई कह रहे थे कि मैं दूसरे के लिए कुछ करता हूँ, वो अच्छा पहने सब कुछ करे, उनके घर वाले हैं तो खुशी महसूस होती है, तो ये फैक्ट होता है। जब आप इस जगह पे होते हो खासतौर पर माँ बाप की जगह पे, या वैसे भी मतलब जब मैं वहां पे भी जॉब करती 17 साल की उम्र करना शुरू की थी, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं अपना ख्याल नहीं रखती थी, मैं कपड़े बनाती थी सब कुछ करती थी, हर महीने के बिल्कुल जैसे ही सैलरी मिलती थी पहला काम यही होता था, तारीख रोड का चक्कर लगता था, अपने लिए कपड़े देती थी लेकिन साथ मम्मी के लिए भी ले लेती थी, तो मम्मी खुश होती थी बड़ा अच्छा लगता था। फिर उसके बाद खान पीने का ये होता था कि वो होता है ना मतलब पापा देखे जाते ही थे लेकिन अपने आप भी मतलब दिल चाहा मंगवा लिया और ये कर लिया, उस वक्त ये डिलीवरी वगैरह का तो नहीं सिलसिला था लेकिन लेते भी चली गई, कुछ हो गया तो उसमें बहन भाई भी खुश हो जाते थे, वो सब ही होता है। लेकिन आप साथ साथ ये नहीं कह सकते कि अपने आप को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हो।
2: मेरी बड़ी बहन ना वो साइकेट्रिस्ट है और घर की मुर्गी दाल बराबर वाला सीन है भाई उसका, तो माशाल्लाह वो तो इतनी हाई पोस्ट पर इतनी अच्छी जगह पर है, लेकिन वो हमेशा शुरू से कहती थी बिकॉज शी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम मी, आपने देखा है ना उसे, बहुत बहुत आप कहोगे एक जमीन और एक आसमान इतना डिफरेंस है, और मैंने सोचा कैसे कैसे करती हो तुम ये, तो कहती आई प्रायोरिटाइज माई सेल्फ।
1: अच्छा मैं भी ये नहीं कह सकती कि मैं बिल्कुल दूसरों के लिए अपने आप को त्याग देती हूँ, मेरी शुरू से ये नेचर नहीं,
2: और वो करती सबका है।

0: लेकिन मेरा भी ऐसे ये दिखती है जूता जो पहन रही हूँ वो मुझे अच्छा लग रहा है और उसके बाद जो मेरा बजट बचेगा तो उसके अंदर से मैं कितनों के लिए कितना खर्च कर सकती हूँ। उसने मुझे मिसाल दी थी कि फॉर एग्जांपल तुम्हें कोई चीज अच्छी लगती है ना, सफा अपने लिए खरीदो खरीदो, क्योंकि हसरतें जिंदगी एक ही दफा मिलती है इंसान को। आप कमा रहे हो, आप कर रहे हो, हाँ बाकियों का जो है फिर आप ये देखते हो कि अच्छा इसमें से मैं कितना किसके लिए सकता हूँ।
1: एग्जैक्टली अच्छा हसी की ना प्रायोरिटी चेंज होती है। जैसे तुम कह रही हो मेरा जब पर्सनल देखा जाए ना तो मुझे शॉपिंग का बहुत क्रेज है, जैसे मेरे साथ वो वाला चीज है कि अगर एक चीज चल रही है तो फिर मैं
0: मेरा भी
1: ये वाला है एक बोला है बात, लेकिन उसे हटकर ये मैं नहीं कहूंगी मैं अपने आप को बिल्कुल ही पीछे हूँ। जहाँ पे कोई चीज हाँ मुझे लगता है कि अब जरूरत है वो मैं लेती हूँ, लेकिन अगर जरूरत नहीं है तो फिर मैं नहीं लेती हूँ।
0: अच्छा कितने मजे की बात है कि अक्सर औकात ऐसा होता है खाने पीने में ना कि मेहमानों के लिए बेशक हम अच्छा अच्छा मंगवा लेंगे कुछ या कर लेंगे, लेकिन अपने लिए फिर बंदा कहता है यार पिछले दिनों की बात है, पिछले एक दो हफ्ते पहले की बात है, मुझे जो ना कढ़ाई खाना बहुत पसंद है, कढ़ाई मुझे बहुत पसंद है, मटन कढ़ाई मुझे बहुत पसंद है। अब मेरे घर में मसला ये कि लोग ना कोई गोश्त पसंद करता ना कोई चिकन पसंद करता, तो मैंने कहा बंदा एक बंदे के लिए क्या ही है। यकीन जानो 16 साल से जो ना मैं ऐसी घूम रही हूँ वेजिटेबल्स और ग्रेन्स के बीच में,
1: मैं सब्जियों से तरस रही हूँ।
0: मैंने कहा नहीं मुझे खाना है ना मैं बनाऊंगी मैं खाऊंगी, और इत्तेफाक कुछ ऐसा था मैंने बनाई भी और जब तक मैंने बनाई मेहमान भी आ गए उनके साथ बैठ के फिर मैंने खाई मजे से, क्योंकि उनसे अकेले खाया नहीं आता ना।
1: सही है चलो जी गुड,
0: ये होना चाहिए इंसान को एक दफा।
1: अच्छा मुझे ना करेले बहुत पसंद है लेकिन वो ये वो नहीं खा बना पाती मैं, क्योंकि ये होता है कि अब बैठ के वो बिल्कुल अकेले खाना। एक और जो चीज है कड़ी चावल बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो शुगर के घर वाले भी खा लेते हैं, तो आए दिन ना 10-12 दिन के बाद मतलब होता है ये कड़ी चावल बना लेते हैं। चलिए जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो
0: कड़ी चावल खाने निकल गए क्या?
1: क्या हो गया
2: भाई?
1: वालेकुम अस्सलाम
0: जी शुएब भाई
2: जी, कैसे मैम आप?
0: बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं
2: जी। अल्लाह का शुक्र है।
0: वीकेंड पे अपने लिए क्या करने वाली ये बताएं। अच्छा शुएब भाई मुझे इस टाइप के बंदे लगते हैं कि जो अपने करते होंगे मुझे ये अच्छी बात है करते होंगे अपने लिए।
2: मतलब क्या क्या करना है?
0: क्या करना है भाई? देखिए लास्ट टाइम आपने अपने लिए जैसे मुझे आपकी एक बात बड़ी अच्छी लगी थी, वो एक किस्म से लोग उसके ऊपर इत्तेफाक करेंगे भी नहीं भी, लेकिन इन्होंने एक दफा कहा था कि मुझे बहुत पसंद है, तो मैं फिशिंग के मामले में ना उनका ये पता चल गया था कि लाए प्रायोरिटाइज हिमसेल्फ, तो मैं खुश रहूंगा तो मैं दूसरों को भी खुश रखूंगा। तो हम बात आज इसी के ऊपर
1: अच्छा,
0: कर रहे हैं
1: जो कर रहा है हाँ, उस बंदे के अंदर बहुत बला
0: पूछो मैं 3-4 तो ना हो पाएगा। शुएब भाई सच सच बताना बात, फिशिंग में आपको मिल जाती है?
1: हाँ
2: sometimes तो मिलती है और sometimes मिलती है, नहीं मिल पा रही
0: भाई। मैं तो मैंने बड़ी कोशिश की है, हमने शौक भी पाला फिशिंग का,
1: मैं तो कह सकती
0: अरे महंगे महंगे ये पूरी पूरी किट्स ली, बैठे रहे भाई सुबह के 7 बजे 6 बजे जा रहे हैं तो शाम को 6 बजे उठकर आ रही है इतनी चढ़ी।
1: कहाँ मिलती है ये
2: लेना चाहिए? मैम मोस्टली मैं जाता हूँ सी लाइन बीच और इनलैंड सी टाइप, लेकिन थोड़ा सा टाइड को चेक करके जाए ना, जैसे कि अभी क्या है या तो है फिशिंग टाइड है या नहीं है,
0: तो लो टाइड में फिशिंग या हाई टाइड में आती है?
1: दो में आती होंगी,
2: हाई टाइड में ज्यादा आती है कभी। अच्छा। कभी उसका कुछ ऐसा मतलब कुछ रिजर्व नहीं है, देखिए थोड़ा सा लक का भी है और पेशेंस बहुत जरूरी है,
0: मेहरबानी
2: उसकी पैदा आ जाएगी।
0: हमारा एक दो दफा हाल हुआ कि पड़ोसियों को पड़ोसी में बैठे हमारी फिशिंग करते ना उनको हमारे पर तरस आ गया, उनका भाई हमारी मछली ले जाओ, और अच्छा वो कांटा डाल रही हूँ, अच्छा हम तो फैंसी रॉड भी लेकर गए, वो बेचारे हाथों से यूं करके ना फिशिंग की जो वो होती है वो फेंके और उनके पास आ जाए मछली।
1: वाओ,
0: और मैंने कहा भाई ये क्या चल रहा है मार्केट में, ये कौन सा स्कैम हो रहा है?
1: टैलेंट है भाई, टैलेंट है, क्या बात,
2: थोड़ा एक्सपीरियंस भी चाहिए ना। मैं ऐसे नहीं, देखो जब मैं स्टार्टिंग में जब मैंने यहाँ पे फिशिंग की मेरे को नहीं होता था, मेरे को समझ नहीं आता मैं उसे बदलने के आता था, कई बार तो वैसे होता था कि खाली खाली हाथ आता था।
0: सही,
2: लेकिन बस फिर
1: समझा चीजों को,
2: टाइम बहुत किया।
1: सही सही,
0: लेकिन ये बहुत बहुत अच्छी और शुभ भाई दिमाग को बड़ा सुकून देने चीज है,
1: मैं पागल हो जाऊँ।

0: मैं तो थोड़ी देर डाल के हूँ ना आए कुछ में। अच्छा वो नहीं होता था बचपन में, वो वाला गेम होता था वो जो फिश वाला, मैं उसमें तंग आ जाती अगर मेरे पास मछली जो है ना मुंह खोल के बंद नहीं करती थी।
1: आप अकेले भी बैठे ना थोड़ा सन्नाटे में और थोड़ा वो लहरों की हल्की सी आवाज हो, बड़ा सकून मिलता है।
0: यार जल्दबाज लोग नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा क्या है कि मैं कोई हूं ना तो फॉरन कर लूं विद इन सेकंड्स।
1: क्योंकि आपका आपके दिमाग में इसलिए पकड़नी, मेरे दिमाग में सुकून चाहिए।
0: हाँ एग्जैक्टली, ये फर्क है। सही।
1: अच्छा विश्व भाई, लास्ट टाइम आपने लिए क्या किया था अदर देन फिशिंग? अपने लिए सोली, अपने लिए। ये नहीं कहना कि फलाने के लिए ये कर दिया तो मुझे खुशी मिल गई, वो वाली चीज नहीं चाहिए हमारे को, नहीं चाहिए। अपने लिए कुछ किया हो, अपने लिए सोली, अपने लिए। ये हालत तो जो है ना उनकी होती है, लेडीज की होती है। हमारे मियाँ से हाथ पकड़ डर के मारे चलते हैं कहीं ये फिर किसी दुकान में ना चली जाए, गुम हो जाएंगी।
2: नहीं हम लोग ग्रोसरी के लिए जाते हैं ना मैडम, क्या ना एक अपनी ट्रॉली होती है।
0: अच्छा गुड गुड।
2: मतलब सब्जियाँ फल फ्रूट ये जो भी पर्सनल यूज है ना घर के लिए वो मैं खरीदता हूँ।
0: सही।
2: बाकी उनकी अपनी एक अलग ट्रॉली होती है जिसमें ब्यूटी प्रोडक्ट और दुनिया भर की पता नहीं क्या क्या होता है।
0: अच्छी बात होना चाहिए, जबरदस्त गुड।
1: अच्छी बात, दोनों को अपने लिए कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। वेरी गुड। तब ये तभी इतने स्कूल में रहते हैं, खाना समझ भी नहीं आता, खुद बना लेते हैं। सुकून चाहिए होता है फिशिंग पे निकलते हैं, वो अपनी ट्रॉल लेती हैं, सुकून में रहते हैं। चला माशाल्लाह,
0: वो भी खुश, ये भी खुश।
1: हाँ माशाल्लाह, दिस इज गुड, दिस इज गुड, आई लाइक, माशाल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड। अल्लाह ताला आप दोनों को खुश खुशियों में रखे।
2: थैंक यू सो मच।
1: चैलेंज जी अपना ढेर सारा ख्याल रखें।
0: हैप्पी वीकेंड शोएब और अपनी वाइफ की तरफ से हैप्पी वीकेंड।
2: हम तो मैम अभी 2-3 दिन से वीकेंड पर ही हैं।
0: अच्छा ओके, अरे वाह, चलें गुड भाई, तो फिर एंजॉय कीजिए। हमारे साथ तो हम फौरन से बोले लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
3: गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग।
3: कैसे
0: हैं?
1: We are both good. Adubai, tell me what was the last thing for yourself, solely for yourself?
0: क्या हुआ?
1: मेरे अंदर कोई
0: आवाज़
1: नहीं
0: आ रहा।
1: नहीं नहीं।
3: For myself, did anything?
1: अच्छा भाई ये कैसा?
0: कुछ
1: दिल तोड़ दिया अच्छा भाई?
0: कुछ भी नहीं।
3: नहीं लास्ट 2 वीक पहले मेरा बेटी के लिए एक छोटा फिश एक्वेरियम बना दिया।
1: नहीं अपने लिए, अपने लिए। वो तो बेटी बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए तो हम चांद तारे भी तोड़कर लेकर आएंगे भाई। अपने लिए क्या किया अज्जू भाई?
3: मेरे लिए मैं लास्ट टाइम 3-4 बुक्स लिया पढ़ने के लिए।
1: हाय नाइस, वेरी नाइस। ये काम मैंने भी किया था,
0: जबरदस्त चीज है।
1: पिछले महीने मैंने भी ये काम किया था। ये बताएं कि कौन सी बुक्स थी?
3: मैं एक बुक लिया, इंजन टेक्नोलॉजी का एक बुक लिया।
1: ही लाइक्स कार्स, या ओके।
3: उसके बाद न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का एक लिया, एंड देन 2 फ्री का बुक।
0: अरे भाई क्या बात है,
1: दिस इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। नाइस, आई लाइक इट।
3: एक मेरा घर में कबोर्ड के ऊपर मोर देन 1000 बुक रखा है।
0: Wow. क्या बात है, वो भी इतनी मुश्किल किताबें पढ़ रहे हैं।
1: अच्छा नहीं, he is very much interested in this technology and tech.
3: Actually, I was start collect my books when I was in 10th at that time. Once we complete 10th standard, we'll throw a book, right? But I'm not like to throw, I just keep in my cupboard. So up to in my engineering also 4 years, I'm collecting all books.
1: सही। अच्छा अजू भाई, ये बुक्स आपने सारी पढ़ी सिर्फ रखे?
3: नहीं वो कभी कभी वो मेरा काम का रिलेटेड डाउट्स आएगा तो मैं
1: ओके। दिस इज सो हैंडी, वाओ। अच्छा अजू भाई ये मुझे आपकी बात सुनकर ना मुझे वो मेडिकल यूनिवर्सिटी

0: सीन याद आ रहा है जो हमारी एनाटॉमी की और इसकी उसकी बुक्स होती थी ना, दे वर लाइक 5,000 पेजेस ऑफ देम. तो वो हम लोग पूरा पूरा टाइम हमारे पास पड़ी रहती लाइफ टाइम के लिए.
1: हमारा मेरा एक कॉलेज में डिजिटल डेटा प्रोसेस एक बुक है, वो मोर देन 600-700 पेज है. Which means it will come almost 600-700 gram weight also. तो इतना बड़ा बुक है, मैं देखा वो डिजिटल डेटा प्रोसेस एक बुक है.
0: सही.
1: मेरा अपने लिए मैं खाली बुक्स एंड मेरे को कभी भी फ्री टाइम मिलेगा एक चाय के साथ मैं आराम से बुक पढ़ेगा.
2: वेरी नाइस. दिस वे बहुत अच्छा.
0: इट रियली रिफ्रेशेस योर माइंड.
1: सोशल मीडिया बिकॉज एवरी वन हैविंग डिफरेंट डिफरेंट थॉट. फॉर एग्जाम्पल फॉर मी डिफरेंट थॉट, फॉर यू डिफरेंट थॉट. सो वॉट एवर थॉट दे आर अपलोडिंग लाइक वीडियो इन यूट्यूब. वो एक वीडियो देख के दूसरा वीडियो देखने मेरे को थोड़ा कंफ्यूज लगता है.
0: ये मेरे साथ भी होता है. मैंने कहा ना इट्स वेरी लाउड फॉर वेरी, मुझे लगता है सोशल मीडिया ना शोर है.
1: इसलिए मैं ज्यादा सोशल मीडिया का ध्यान नहीं देता हूँ, जस्ट रेफर माय इंस्टाग्राम, रेफर माय बुक. कोई भी.
2: वेरी नाइस. वेरी गुड.
0: वेरी गुड इन्वेस्टमेंट. पर्सनल इन्वेस्टमेंट इतनी अच्छी वाली है. अजू भाई फैन हो गई मेरी. फैन पंखा. वेरी गुड. दिस इज वेरी एंड दिस इज वेरी आई वुड से वेरी एनरिंग कहते हैं नरिशिंग काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट. This is very good.
1: Yeah, not like I am thinking it's not a game. And maybe मेरा बेटी को भी मैं सेम चीज में सीखेगा बुक पढ़ने के लिए.
2: सिखाएंगे.
1: सही
2: सही. गुड. जबरदस्त. बिल्कुल ये बहुत अच्छी हैबिट है. और मेरा भी होता है कि तो मैं फिर की
0: बुक्स बुक करो या कुछ ऐसा. उससे मुझे भी यही शायद हम नाइस ही बच्चों का ये हिसाब है.
2: थैंक यू जी. अच्छा ये वाकई बड़ा ट्रेंड हुआ था उस जमाने में जो मतलब ये बच्चों के मैगजीन और ये सब कुछ नौनिहाल संडे मैगजीन में लाजमी बच्चों के सफ़े होते थे और जितने भी हों चाहे वो जंग हो नवाए वक्त हों बहुत सारे. तो
0: कुछ चीजें ना जो हम लोग ये फ्रेज बोलते हैं ओल्ड इज गोल्ड. इट रियली इज. अच्छा आजकल के दौर में भी बेशक ये कितने भी गैजेट्स क्यों ना आ जाए दे कैन नॉट फुलफिल दैट थिंग. फॉर एग्जाम्पल मैं एक बहुत बेसिक सी बात बताती हूँ बच्चों को ही लेकर कि बच्चों के अब आईपैड वो चल रहे हैं ना चीजें उसके अंदर कलरिंग के इसकी उसकी चीजें आती हैं. ठीक है आप ऐप्स डाउनलोड कर लो कलर की गेम्स की वो. लेकिन उससे बच्चे ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं. कभी कभी तो खेलना ही बंद कर देते हैं. लेकिन वही आप उन्हें पेन पेपर पेंसिल पेपर की फॉर्म में पेंटिंग करने के लिए या कलरिंग करने के लिए तो फिर देखो आप उनकी क्रिएटिविटी मजा आता है उनको. लगे रहेंगे घंटों लगे रहेंगे भाई. बहुत मतलब

0: यार डिजिटल दुनिया बहुत फेक है, मतलब ये जो आपकी रियल वर्ल्ड है ना वो आपको जब भी फील होगा जब आप किसी चीज को टच कर सकते हो, कुछ आपने क्रिएट किया है,
1: टेंजिबल चीजें जो ना उसके वो सेंसरी चीजें ना ज्यादा आपको अच्छी लगती हैं। ह्यूमन माइंड इज मेंट टू बी ट्रेन्ड लाइक दैट।
0: एग्जैक्टली। चले जी, तो इसी कॉल्स हमारे पास आ रही है, लेकिन हमें एक ब्रेक तो लेना ही पड़ेगा यहाँ पे, तो हम एक ब्रेक लेते हैं फिर वापस आते हैं।

0: आप सुन रहे हैं यू मैटर
1: आरजे सफा और आरजे महविश के साथ
0: FM 107 पर दिल से देसी
2: राइट वेलकम बैक हम आ गए एक दफा फिर से आपके साथ और सफा मुझे मैसेजेस पढ़ने वो मैं लेती हूँ फिर उसके बाद हम आ जाएंगे कॉल तो हमारे पास ना जैसे पहले मुबीन भारी का अस्सलाम वालेकुम और ये कहते हैं हैप्पी वीकेंड टू ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग और कहते

0: इनके मैसेज को ये ना मैं क्या बोलूं
1: आप कौन है
0: ये वो वाले एजेंट
1: नारा खान कौन है
0: अब मैंने कहा ना ये कोड में बात करते हैं
1: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू गुड मॉर्निंग मामा जी और सफादी कैसे हैं आप लोग यू मैटर में वेलकम और ये हैप्पी थर्सडे मॉर्निंग हैप्पी वीकेंड भी कहते हैं और मुझे तो याद ही नहीं है मैंने अपने लिए कभी कुछ लिया हो बस अपनों के लिए लिया है अच्छा लिया है और मैं करता हूं उसमें ही शायद मेरी खुशी है और मुझसे ख्वाहिश ही नहीं होती अपने लिए कुछ लूं पता नहीं क्यों
0: नहीं ऐसा नहीं है ये बोलें कि आपने अपनी ख्वाहिश मार दी है क्योंकि ये याद रखें कि आपकी जान का भी आपके ऊपर कर्ज है
1: तो बस जो है अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वाइफ मेरे लिए कुछ ना कुछ लेती रहती है तो वो अच्छी तरह से जानती है कि मैं कुछ नहीं लेता हूँ ये बात हो सकती है
0: ये भी हो सकता है
1: ना और इसके अलावा मोहम्मद हुसैन का भी मैसेज आया मॉर्निंग का इसके साथ गुड मॉर्निंग वेदर इज स्टिल हॉट वेटिंग फॉर
0: भाई मैंने कहा ना ये जो क्या कहते हैं से ये तो प्रैंक हो गया है हमारे साथ
1: बहुत ज्यादा ही हो गया है मतलब ये वाला हफ्ता कल मेरे सर में दर्द हो रहा था
0: बहन रात के टाइम टेम्परेचर 44-40 चल रहा है
1: बिल्कुल ऐसे ही है अच्छा जी इर्शला यूसुफ से ही कहते हैं वालेकुम आप दोनों बहनों को सलाम जो बंदा फिशिंग करता है ना उसमें सबर का लेवल अलग ही होता है ये तो मैंने उसी वक्त बोल दिया था कि मुझसे तो बिल्कुल नहीं हो सकता इस तरह का कोई भी काम अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम ये कहें शेख इरफान अल काज़मी और इसके अलावा है ना ये कहाँ चला गया एक दफा और क्या अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू क्या है आप दोनों खुश रहो लास्ट वाला सॉन्ग फुल लाउड में एंजॉय किया सरफराज ने ये सरफराज कौन है
0: सरफराज धोखा नहीं देगा
1: अच्छा
0: ये वाला सरफराज तो नहीं है ये वाला सरफराज धोखा नहीं देगा
1: सही अच्छा जी तो हम आ जाते हैं कॉल है हमारे साथ
0: चलें जी कॉल अस्सलाम वालेकुम
1: हां कह रहे हैं वही वाला सरफराज धंगू
2: वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं आप लोग
1: बड़े ही दिनों के बाद आपकी आवाज सुनी हमने
2: वो ये बीच में मैं कुछ दिन दो दिन पहले भी कॉल कर रहा था लेकिन एंड टाइम था और बीच में काफी मतलब आपके काफी ऑडियंस है तो अच्छी बात उनकी बातें मैं सुन रहा था बाकी मैंने तो बस एनुअल लीव ली हुई घर में बच्ची ईमान बेटी में आई हुई थी अब जाने के दिन हो गए तकरीबन 2.5 months स्पेंड किए तो चलो मैंने कहा फैमिली के टाइम स्पेंड कर रहे हैं और बाकी वो मछली वाली बात से मुझे याद है बचपन में हम लोग नेटलेटी के पुल पे बहुत सुबह फजर के बाद जाके
0: मछली पकड़ते
2: जैसे कांटा खाली लेके गए वैसे ही लेके आ गए
0: मेरी तरह
2: जो बैठे हुए लोग वो पकड़ रहे हैं उनकी आ रही है फिर
0: अरे भाई एक मतलब आप यकीन जाने मतलब 2-3 कदम के फासले पर ही बैठे होंगे ना एक दूसरे से अपार्ट उनकी भाई बाल्टियां भरी हुई और हम इतनी इतनी शर्मिंदगी बैठे हुए कि अगले जाते हुए हमें अपनी मछलियां चार पकड़ा गए कि भाई लोग ये ले लो कोई मसला नहीं
1: अच्छा आप जो बात करें तो मछलियों को खाना खिलाने के लिए जब जाते हैं तो आप जैसे ही खाना डालो तो वो कैसे आ रही होती है और वही मतलब कांटे में डालो तो कितनी अकलमंद है क्यों नहीं आती
2: वो समझदार हो गई हैं तो बाकी आप तो बात ठीक है कोई
0: अपने लिए कुछ किया
2: चिकन नहीं खा
0: हाँ, ये वाला
2: खाना चाहिए प्रोटीन लें और बल्कि रिसर्च है खासतौर पर ऐसे प्रोग्राम तो मैं भी करती रहती है मैंने कहा आपको बाद में बताएंगी
0: नहीं नहीं मसला ये ना हमारे घर में किसी का कोई बीपी का इशू चल रहा है किसी को बॉयल नहीं खाई तो ये वाले मसले बड़े नखरे हैं
2: हाँ देसी मिलते हैं 3 बॉयलर की कीमत में 1 मिलता है नहीं तो पाल
0: नहीं देसी भी भाई हम देसी भी बनाने तैयार हैं लेकिन मसला एक खाओ तो सही ना नहीं खाना ही नहीं है अपने बच्चों को ना अपने बच्चों को आप फिर भी डांट ढपक के लपक पड़क के अब खिला सकते हैं अब दूसरों के जो बड़े बच्चे हमारे हाथ आते हैं उनके साथ तो कुछ ना किया जा सकता समझ जाए मतलब जो पले पलाए बच्चे हमें मिल जाते हैं ना वो वाले नहीं संभाले जाते फिर वो
2: फ्यूचर में मेडिसिन बहुत खानी पड़ जाएंगी क्योंकि प्रोटीन आपके मसल्स के लिए है और आपको पता है कि शुगर लेवल जो हाई होता है लेवल कम हो जाता है और आपके पास जो एनर्जी है वो फजूल
0: खत्म हो जाती है
2: क्या करूं नहीं वो पी रही है देखिए
0: वो इंसुलिन को समझ भी नहीं आता ना कहाँ जाना है
2: इसको शुगर में कन्वर्ट कर देती है और शुगर मसल यूज करते हैं और अगर आपका मसल मास लेवल जो है वॉल्यूम कम है तो वो आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा शुगर का तो ये हमें भी नहीं पता था कुछ अरसे बाद ही पता चला है तो मसल्स को मेंटेन करें खासतौर पे आपके जो हिप के और ये जो लेग्स के मसल्स हैं और इसकी एक्सरसाइज भी डेली करें वरना फिर आप देखें थोड़ी लोग गिरने लग जाते हैं बैलेंस आउट उनको जाता है

0: चले, ये तो एक लाइट वर्जन में हो गया, बाकी फैमिली टाइम अच्छा चल रहा है। और बात ये आपकी सही है, खुद इतना लेने के बजाय इवन मैं एंगेज में ही मैंने अर्निंग शुरू की, तो मैं अपने छोटे भाइयों के लिए या घर के लिए चीजें लाने में मुझे ज्यादा खुशी महसूस होती। इवन स्कूल के लिए तो मुझे पैसे मिलते ना वापसी में, मैं वो छोटे भाई के लिए मैं ले आता
1: जी जी अरे
0: तो इसी तरह ये होता है। तो बाकी एक एज में है आप अपने लिए चीजें लेते हैं, और वही बात है मेरे कपड़े इन चीजों को तो चीजें हैं वही देखती हैं, बल्कि वो बताती हैं कि ये अब इनकी ये हालत नहीं है, अब ये पहनने वाले नहीं है।
1: और एक वो भी एक झगड़ा होता है मियां बीवी के बीच में कि भाई ये वाला कपड़ा आप अलमारी में वापस आएगा, और मियां साहब कह रहे नहीं ये मेरा फेवरेट कपड़ा है ये अलमारी में वापस जाएगा।
0: और ऐसा हो फिर वो जब फट जाए या कोई ऐसी
1: और वो हमें छुप छुपा के जो ना वो डिस्कार्ड करने पड़ते हैं, वो हम खुलेआम में डिस्कार्ड कर भी नहीं सकते, अगर आपको किसी थैली में पड़े हुए नजर आ रहे तो वापस अलमारी में जाएंगे वो।
0: फिर कभी नाइट में भी रफ यूज करने
1: की देखा, ये बिल्कुल ये समझ रहे हैं, ये अपनी कम्युनिटी की बात समझ रहे हैं।
0: बाकी हर आने वाले दिन में पैसे कमाने बड़े मुश्किल होते जा रहे हैं, रही सही कसर एआई ने पूरी कर दी है, तो ये बंदे फिर एहसास करते हैं, वो कहते हैं चले इनको नहीं अपने ऊपर ही हम लोग ना,
1: नहीं फजूल खर्चा तो फजूल खर्चा होता है वो तो ये आज के जमाने में हो चाहे पिछले जमाने में हो, लेकिन एक होता है कि जैसे लोग कहते हैं ना नहीं अब हमारा दिल नहीं करता कि हम अपने लिए कुछ करें, अब याद ही नहीं है कि क्या करना है। एक बड़ी नॉर्मल सी बात है कि कोई आपसे बैठकर पूछे कि भाई आपको क्या पसंद है और आप ब्लैंक हो जाएं, तो आपने अपनी जिंदगी कहाँ गुजारी है? ये अपनी जान के ऊपर जुल्म नहीं है? मुझे तो ऐसा लगता है कि ये अपनी, मुझे अब जाके बात समझ में आती है कि मैं कुछ टाइम पहले खुद जो ना दिमागी तवाज़ुन मुझे ऐसा लगा मेरा लूज हो गया, मुझे किसी ने कहा कि अच्छा आपको कहाँ क्या चीज पसंद है, मैं चुप करके देख रही हूँ ब्लैंक फेस कुछ शर्त से पहले की बात है, मैंने कहा दिस इज रॉन्ग, दिस इज साइकोलॉजिकली रॉन्ग कि मुझे ये नहीं पता कि मुझे पसंद है। भूल, आप ये कहो कि आप भूल गए, ये मत कहो कि आपको शुरू से पसंद ही नहीं था। किसी को बुक रीडिंग पसंद होगी, किसी को खाना पसंद होगा, किसी को कपड़ा पसंद होगा, किसी को जूता पसंद होगा। तो लोगों को याद ही नहीं रहता कि उनको, हाँ दूसरों की चॉइस आप पूछेंगे ना, बेगम को क्या पसंद है, अम्मा को क्या पसंद है, बच्चों को क्या पसंद है, उनको याद होगा ये। अपने पर बात आए तो उनको याद नहीं होगा।
0: बंदे ये देखो ना, रहम करो ना बंदों पे, देखो ना इन लोगों के लिए पूरी उन्होंने अपनी जिंदगियां कुर्बान कर दी हैं, सुबह से शाम तक मेहनत कर रहे हैं,
1: नहीं ये
0: उसके बावजूद भी कुछ लोग खुश नहीं है।
1: ये वाला मामला जो है ना ये हमारे कल्चर और सोसाइटी का प्रॉब्लम है। आप बाहर वाले कल्चर सोसाइटी को देखिए, वो लोग ऐसे नहीं है, वो कहते नहीं हमें जो जाहिर बात है आपको खुशबाश रखेंगे तभी दूसरों को पूरा करेंगे।
0: इससे मैं कॉन्फ्लिक्ट करता हूँ, वहाँ पर फैमिली की उस तरह जिम्मेदारी,
1: हाँ, वो एक अलग चीज है, वो एक अलग चीज है, हाँ।
0: नहीं अलग चीज नहीं है, इम्पोर्टेंट चीज है कि आप किसी को रिस्पॉन्सिबल हैं और उसको फुलफिल करते हैं, बच्चों की है उसकी, तो वहाँ हर बंदा अपने तौर पे कर रहा है, 15-16 साल से बच्चे भी अर्निंग की तरफ चले जाते हैं, तो
1: लेकिन ये भी तो एक चीज है ना कि फिर अपने आप को भी तो नहीं भूलना। अभी कौन आया था हमारे साथ, कौन था, कोई कॉलर थे, नाम नहीं आता, जिन्होंने कहा कि नहीं मैं तो घर वालों की है हमेशा, मतलब खानदान वालों की अपनी, उनको उनके लिए करके मुझे खुशी मिल जाती, वो एक टाइप की खुशी है, वो एक ऐसी चीज है, वो आप कह लें हकूक लिबाद है, वो
0: एक हमारी कौम के साथ अलमिया ये है कि अगर ये मैं अभी आई एम गेटिंग प्लस 50 मैं इसको एनालाइज करता हूं, कि अगर मैं अपने मुल्क में होना तो एक डिफरेंट चीज, हम लोग अब तक माइग्रेशन की तरफ हैं, भागे जा रहे हैं कहीं ना कहीं, आप जितने मुल्कों की बात कर रहे हैं ना वो अपने मुल्कों में रहते हैं विद द फैमिली फ्रेंड, और उनको पर ये मुसीबत नाजिल नहीं है, तो इन चीजों की वजह से। फिर उसके अलावा जो बंदा एक वहां से कहीं पहुंच जाता है ना, फिर वो समझता है बस अब मैंने इन लोगों की वो पूरी करनी है चीजें, और जो पहले हैं वो भी उसी पे रिलाई करते हैं, लेकिन ये भी बड़ा आलमी, अगर हम अपने मुल्क में हो एक नॉर्मल होता है, और जो मुल्क वाले हैं ना जो बाहर चला गया वो समझते हैं कि बस अब ये बाहर चला गया है, इसके रिसोर्सेज या हर चीजें जो है ना
1: ज्यादा
0: हो गई है, वो बेचारा अपने आप को भी सेक्रीफाइस करता है, लेकिन एज ए नेशन ये एक अलमिया है कि हम अभी तक एज ए नेशन भागी जा रहे हैं, कोई इधर उधर जाने के रास्ते ढूंढ रहे हैं और इसी तरह है, तो ये एक अनस्टेबिलिटी भी बन जाती है। लेकिन अगर आप एक घर में हैं उसी जगह पे रहते हैं तो हर अपना एक छोटा शेयर करें।
1: हमारे अब्बा भी ये कहते हैं, हमारे अब्बा कहते हैं देखो भाई माशाल्लाह से घर के अंदर इतने लोग हैं तो हर किसी का अपना एक रोल है, वो हर किसी को, ये नहीं कि किसी एक के ऊपर आप सारा, अगर कोई बड़ा बच्चा है तो उसी के ऊपर आपने सारा बर्डन।

0: डाल दिया।
1: तो ये सिचुएशन की वजह से तो फिर वो अपनी खुशियाँ, अपने पसंद, ये चीजें, और खासतौर पर अच्छा ये बड़ा तुमने बड़ा है, अब तुम अब्बा की जगह पे तुम्हें करना है,
0: नहीं ये गलत है ना, दिस इज टॉक्सिकनेस, दिस इज टॉक्सिकनेस,
2: गलत बिहेवियर है जो वाकई हुआ करता था। अब यकीनन मतलब अगर देखा जाए ना, हम लोग ये वाला एक बिल्कुल,
0: मैं एक बात बोलूं, बेचारे बदनाम जमाना जो है ना, जेंजीज बेचारे जिनको हर कोई बोल रहा होता है कि ये बड़े ये हैं, ये बड़े बदतमीज हैं, तो ये बड़े हुए हैं। मैं कहती हूँ आजकल की जो जनरेशन आ रही है ना, वो इस चीज को, वो जो फाइन लाइन डिफाइन करना है ना, वो उसको बहुत बेहतर तरीके से डिफाइन करना
2: है। लेकिन उसके पीछे ना क्रेडिट हम माँ बाप का है,
0: मिलेनियल्स का,
2: एग्जैक्टली। क्योंकि अब देखिए मतलब अब जैसे ज़ुल्करनैन साहब आपकी अगर बात करें, आपके माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं, राइट, तो आप वो अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता रहे हैं, आप कह रहे हैं भाई तुमने ये करना है, अपना करियर बनाना है, हर बंदे ने अपना करियर बनाना है, ये नहीं भाई वो छोटा वाला है ना तो देखो छोटा है तो उसको तो संभालना होगा सब लोगों को मिलके और ये वो, तो ये एटीट्यूड गलत होता था जो कि होता था पहले, लेकिन अब ये मुझे लगता है कि
0: चेंज आ रहा है।
2: हम लोगों ने ये चीज इतनी समझी कि हम अपने बच्चों शुरू से बताते हैं कि देखो भाई कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं उठाता, आपने अपनी उठानी है, उसने अपनी उठानी है, अपनी अपनी जिम्मेदारी।
0: एग्जैक्टली,
1: ये भी जब तक ही होता है जब बच्चे माँ बाप के घर में हैं, जैसे ही वो इंडिपेंडेंट फैमिली या कुछ होते हैं कोई नहीं मुड़ के पीछे देखता, पूरी फैमिली में ऐसी मिसालें हैं,
2: नहीं जो बेचारे जो आए हैं मिडिल ईस्ट गल्फ में जो लोग आए हैं शुरू के, मतलब ये 80s में 90s में और इन 2000 में, इवन अभी भी जो 2010 में भी आए होंगे, तो उनकी अगर आप देखें तो उनकी पूरी पूरी जिंदगियां इस पे गुजरती हैं, अपने घर बनाते हैं, माँ बाप के नाम लेते हैं, उसमें से सबको हिस्से मिल रहे होते हैं, वो जो है जो कुछ भेज रहे होते हैं जब वो वापस जाते हैं अपने शादी के वक्त में, तो उनको पता चले कुछ बचा ही नहीं है, मतलब कुछ दूसरों के ऊपर सबकी जिंदगियां सेट करवा के आखिर में जो घर होता है उसके भी सबके हिस्से हो जाते हैं और वो बंदा सोच रहा होता है मैं क्या करूं, तो ये वाली जिंदगी आ रही है पहले वाली नस्लों ने।
1: नहीं इसमें एडिशन कर लें, उसमें जो छोटा या कोई ऐसा होता है ना जो कुछ नहीं कर रहा, तो अक्सर लोग कहते हैं अम्मा के नाम को बुरा ना माने, प्लीज अम्मा के नाम मत करें। आप लीगली भी बाउंड हो जाते हैं, फादर के बारे में कुछ होता है तो अम्मा अपने छोटे बच्चे के नाम कर जाते फाइट करना ज्यादा मुश्किल है। अगर फादर के नाम होते हैं तो आपको लीगली एक कमरा भी मिल जाता है, यार वो कमरे से भी जाते हैं।
2: बिल्कुल जी, चलिए जी ज़ुल्करनैन साहब, इसी के साथ हमारा वक्त हो गया है तमाम और इंशाल्लाह फिर बात होती है। थैंक यू जी। अच्छा मेरी मतलब जो है ना बहन जो है ना उसकी शादी हुई मेरी दोस्त ही के से, तो वो होता वो भी कुवैत में थे हम लोगों की, तो ये था कि वो अपने वालिद साहब को, जैसे ज़ुल्करनैन साहब कह रहे ना, वो अपने वालिद साहब को हर महीने पैसे भेजते थे और वो वैसे ही भेजते थे, मतलब किसी उसमें नहीं। जब वो मतलब आए हैं कुछ सालों के बाद पाकिस्तान, तो उनको वालिद लेके गए एक जगह पे, बड़ी अच्छी सोसाइटी और सब कुछ, उन्होंने कहा कि ये घर मैंने तुम्हारे लिए खरीदा तो तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर करवाना है। तो वालिद से होते हैं सीरियसली, मतलब अगर वालिद के हाथ में जो चीज जाती है ना तो वालिद बड़े कैलकुलेटिव होते हैं, ये बात मानने वाली है।
0: मैंने आपसे कहा था कि मैन आर प्रॉब्लम सॉल्वर्स, अल्लाह ताला ने बनाया उनको वैसा।
2: एग्जैक्टली, मतलब उन्होंने किया कि
0: इमोशनल होती है,
2: हाँ कि ये हमें हमारा घर चलाने के लिए, लेकिन इसका भी तो हक बनता है ना। तो वो घर पे है, मतलब जब वो वापस आए तो उनके वालिद, उनको मैंने कहा यार, और उनका घर बड़ा ही कोई जबरदस्त खूबसूरत घर माशाल्लाह से, तो वो उनके दादा ने उनको उस वक्त जो है ना लेके दिया था, और देखो
0: माशाल्लाह।
2: और अगर यही शायद माँ होती तो उनको ये मेरे दूसरे बच्चे उनका भी तो है, उसका ये कर दो उसका वो कर दो, तो ये वाला सीन होता है भाई, जो खवातीन का मामला है ये वाला, तो ये नहीं होना चाहिए। चले जी, इसी के साथ अब हमारा हो गया है वक्त तमाम। सैयद भाई समझे, जब तुम बात करी थी दूसरों के बच्चों को नहीं समझाया जा सकता, तो सैयद भाई समझे तुम मेरे बच्चों की बात कर रही हो, फिर मैंने उनको बताया नहीं दूसरों के बच्चे से मुराद है सास के बच्चे।
0: हाँ जी, सास के बच्चे जो बड़े हमें पले में मिलते हैं ना,
2: पले में मिलते हैं
0: जो हम पाल रहे होते हैं ना अपने वाले, वो माशाल्लाह से फिर भी पल जाते हैं, लेकिन जो पले पलाए में ना उनको संभालना बहुत मुश्किल होता है
2: जी। तो सैयद भाई ये जो है ना दूसरों के बच्चे से मुराद ये होती है, ये सैयद भाई मासूम इंसान है यार, समझे ही नहीं मुझे ऐसी दूसरों के बच्चों से मुराद होता है शौहर।
0: हाँ जी।
2: चले जी, इसी के साथ जो है हम आप लेते हैं इजाजत, इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात संडे को होगी। हैप्पी वीकेंड ऑल ऑफ यू, अपने लिए जरूर कुछ ना कुछ अच्छा कीजिएगा, और हमारी तरफ से
0: बेशक सी लाइन पे जाकर आराम से बैठ ही जाइए, अपने लिए जरूर कीजिएगा खामोशी या किसी को पसंद नहीं तरह। तो फिलहाल अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, याद रखें कि जो इंसान अपना ख्याल नहीं रखता वो दूसरों का क्या ही ख्याल रखेगा। टाटा, अल्लाह हाफिज, और सुनते रहें FM 107 दिल से देसी।

इज्जत छीनी जा रही हो। ऐसी मुआवनत न करो जो तुम्हारे अपने ताल्लुक को भी अल्लाह से कमजोर करे और किसी दूसरे की दुनिया भी बर्बाद करे। इसम में वो गुनाह है जो इंसान के अपने दीन को नुकसान पहुंचाता है, और उदवान में वो ज्यादती आती है जिससे दूसरे इंसान का हक पामाल होता है। हर सरक दोनों तरफ हिफाजत करता है, यानी तुम्हारा बातिन भी महफूज रहे और दूसरे का हक भी। समझे कि हम इस आयत में एक अजीब तवाजुन है। एक तरफ दो अहकाम के बिर पर नेकी पर तावन करो, तकवा पर तावन करो, दूसरी तरफ दो ममानातें यानी गुनाह पर तावन न करो, ज्यादती पर तावन न करो। गोया मोमिन से कहा जा रहा है कि खैर को अकेला मत छोड़ो और शर को सहारा मत दो। अगर तुम्हें कुरान ने हुक्म दिया कि अपने भाई के फायदे के लिए हाथ बढ़ाओ, तो जाहिर है इससे भी ज्यादा जरूरी है कि वही हाथ उसके नुकसान का जरिया न बने। अगर तुम्हें कहा गया कि उसका हक महफूज करो, तो कैसे हो सकता है कि तुम उसके माल या इज्जत पर तजावुज में शरीक हो जाओ। यहाँ तक के बात इस हद तक है कि अगर कोई शख्स किसी नेकी के काम में बराह रास्त शरीक न हो सके, लेकिन उसके लिए रास्ता हमवार कर दे, वसाइल फराहम कर दे, किसी खैर की तरफ रहनुमाई कर दे, तो वो भी अजर में हिस्सा पाएगा। इसी मफहूम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महरूफ अहादीस में यूं समझाया गया है, जो किसी खैर की तरफ रहनुमाई करे उसे भी उस खैर करने वाले की मानंद अजर मिलता है। इसी तरह एक और हदीस है, जिसने अल्लाह के राह में निकलने वाले शख्स को तैयार किया, गोया वो खुद भी शरीक हुआ, और जिसने उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर वालों की अच्छी तरह देखभाल की, उसे भी उस अमल का अजर मिलता है। तो उसूल हमें ये समझ में आया कि हर खैर सामने खड़े शख्स के हाथ ही होती। कभी कोई ऐसे भी होते हैं जो गैर मौजूद हैं, मगर वो पीछे पीछे उस खैर का हिस्सेदार होता है। तो इस तरह सामिन इकराम में इस उसूल को हम घर के अंदर भी देख सकते हैं कि अगर कोई इल्म हासिल कर रहा है, लोगों को पढ़ा रहा है, मुआशरे में खैर का काम कर रहा है, और उसके पीछे घर में कोई ऐसा साथी है जो उसके लिए सुकून, नज़म, जिम्मेदारी और ताउन का माहौल बना रहा है, तो उसकी उस खिदमत को मामूली नहीं समझना चाहिए। और यहाँ दरअसल बीवी के किरदार पर हम बात कर सकते हैं कि अगर वो अपने शौहर के घर और जमीन को इस तरह संभालती है कि वो इल्म, दावत, खिदमत या खैर के दूसरे कामों में यकसू हो सके, तो उसके ताउन का भी उस खैर में हिस्सा है। आपने देखा होगा कि कितने मुनफीन आप अपनी अहलिया के नाम इसलिए मंसूब करते हैं कि बरसों की इल्मी मेहनत के पीछे घर का वो सुकून था जो उन्हें मुहैया किया गया। एक शख्स किताब ले, लेकिन कभी उस किताब के सफहात के पीछे किसी दूसरे इंसान खामोश वाणी लिखी होती है। इसी तरह कोई शख्स मैदान में कामयाब होता है, लेकिन उस कामयाबी का हिस्सा उन लोगों का भी होता है जिन्होंने उसे उस रास्ते पर चलने के लिए सहारा दिया। यही ताउन अल बिर व तक्वा की रूह है। सबने कराम बिल्कुल हमारे करीबी के लिए भी है कि कोई शख्स मेहमानों के लिए खर्च करता है, लेकिन घर में खाना तैयार करने वाला, इंतजाम करने वाला, बच्चों को खिदमत सिखाने वाला, ये सब भी उस खैर में शरीक हो सकते हैं। हम तो सिर्फ उस शख्स को देखते हैं जिसने खर्च किया, जो सामने है, हालांकि अल्लाह ताला उस पूरे हल्का ताउन को देखता है। किसने माल दिया, किसने वक्त दिया, किसने मेहनत की, किसने मशवरा दिया, किसने खामोशी से सहारा दिया, ये सब इस ताउन के दायरे में आ जाते हैं। सभी निकराम अगर हम इस आयत को वाकई अपने घरों, इदारों और माशरे में जिंदा कर दें, तो बहुत सी शिकायत खुद ब खुद कम हो जाएं। वतावनू अलल बिर व तक्वा वला तावनू अलल इस्म वल उदवान। अबैद खुदरी रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनू लहियान की तरफ एक जमात भेजनी चाही, तो फरमाया कि हर दो आदमियों में से एक अजर दोनों के दरमियान होगा। यानी यहाँ एक इज्तिमाई उसूल है, वो ये कि कभी हालात इतकाजा करते हैं कि सब लोग एक ही मैदान में न निकलें, कि कोई शख्स आगे मैदान की जिम्मेदारी संभाले और कोई पीछे रहकर अपने घर की या इलाके की जो जिम्मेदारी है उसे संभाले, एक सफ़र में जाए दूसरा घर संभाले, एक दावत दे दूसरा वसाइल मुहैया करे, एक मैदान में हो दूसरा उसके ख़ानदान की जिम्मेदारी उठाए। और अगर दोनों अपने अपने से की जिम्मेदारी अल्लाह की रजा के लिए निभा रहे हों, तो खैर का अजर सिर्फ सामने यानी मैदान के वाले शख्स तक महदूद नहीं रहता, बल्कि सबको मिलता है, क्योंकि यहाँ ताउन अल बिर व तक्वा ये माहौल मद्देनजर था। अब जरा घर की एक मिसाल ले लीजिए। बाप

0: बाहर मेहनत कर रहा है, वहाँ घर संभाल रही है, बच्चा अपनी तालीम में लगा है, कोई खरीदारी कर रहा है, बच्चों की तरबियत कर रहा है, कोई बीमार की खबरगिरी करता है तो कोई आमदनी लाता है, कोई इस आमदनी को हिकमत से घर के निज़ाम में तब्दील करता है। बाहर सबके काम अलग है, लेकिन अगर सबका रुख खैर, जिम्मेदारी और अल्लाह की रजा की तरफ हो तो ये एक ही नेकी के मुख्तलिफ हिस्से बन जाते हैं। चूंकि एक घर ये सिर्फ ईंटों का नाम नहीं, ईंटों के मजमुए का नाम नहीं, यहाँ मुश्तरका जिम्मेदारी से ही एक घर उरूज पर पहुँचता है। और जब एक खानदान वाकई बाहमी तआवुन पर कायम हो तो मुमकिन है अल्लाह ताला की रजा का एक हिस्सा हर उस फर्द के नाम लिख दिया जाए जो अपनी जगह इखलास के साथ खड़ा रहा। खलीफा राशिद उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की मिसाल ही देख लीजिए कि बाज़ मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मदीने में अपनी जिम्मेदारी पर बाकी रखा जबकि दूसरे सहाबा किसी और मैदान में थे। तो क्या मदीने में रह जाने वाला शख्स अजर से महरूम हो गया? नहीं, क्योंकि एक शख्स की जिम्मेदारी मैदान में थी और दूसरे की जिम्मेदारी मदीने में। काम अलग थे, मकसद एक था, और यही ताउन है। एक आगे बढ़ता है, दूसरा बुनियाद को मजबूत रखता है, वहां संभालता है दूसरा मरकज, एक सफर में दूसरा हजर में यानी घर में। लेकिन अगर दोनों अल्लाह की रजा के लिए अपनी अपनी जगह सही जिम्मेदारी अदा करें तो दोनों खैर के कारवां का हिस्सा हैं।
1: आइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ सुनिए पर्ल्स ऑफ द कुरान सिर्फ FM 107 पर।
0: इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम रौहा पर एक काफिले से मिले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम कौन लोग हो? उन्होंने जवाब दिया, हम मुसलमान हैं। फिर उन्होंने पूछा, आप कौन हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। ऐसा मालूम होता है कि वो लोग दूर से इस्लाम कबूल कर चुके थे और अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बराह रास्त नहीं देखा था। इसी दौरान एक औरत ने अपने छोटे बच्चे को उठाया और पूछा, क्या इस बच्चे के लिए भी हज है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नाम वलकी अजर, हाँ और तुम्हारे लिए अजर है। अब बच्चा हज में शरीक होता है, लेकिन माँ की मेहनत, उसकी निगहदाश्त, उसका उठाना संभालना, थकावट बर्दाश्त करना, ये सब बेअजर नहीं होगा। यानी नेकी में सिर्फ असल अमल नहीं देखा जाता, उस अमल तक पहुँचाने वाली मोहब्बत और मेहनत भी देखी जाती है। तो हदीस से हम ये उसूल समझ सकते हैं, अगर तुमने किसी इबादत या खैर के काम में किसी को शरीक किया, चाहे तुम्हारा हिस्सा बड़ा हो या छोटा, नुमाया हो या खामोश, अल्लाह ताला उस ताउन को भी देखता है। वो सिर्फ ये नहीं देखता कि सिर्फ आखिरी कदम कौन सा है, किसका है, वो सफ़र के तमाम तर स्टेप्स को जानता है। इसी तरह अबू मूसा अशआरी रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मुसलमान अमानतदार खाजन, वो अमीन जिम्मेदार शख्स जो हुक्म दिया जाए उसे सही तरीके से अंजाम दे, माल पूरा पूरा पहुंचाए, खुश दिली के साथ दे, कमी न करे, हसद न करे, वो भी सदका करने वालों में से एक शुमार होता है। हाँ, यहाँ खाजन को आज की जबान में यूं समझ लीजिए, किसी इदारे का माली जिम्मेदार, किसी कमेटी का खजाना दार। तो फर्ज कीजिए किसी ने सदका किया लेकिन वो रकम एक और शख्स के पास पहुंची जिसकी जिम्मेदारी थी कि वो उसे सही मुस्तहक तक दे। अगर वो अमानतदारी से पूरा माल पहुंचाता है, दिल में हसद नहीं रखता, कमी नहीं करता, ताखीर नहीं करता, अपनी मर्जी से नहीं रोकता, तो वो भी खैर में शरीक है। तो यहाँ एक बुनियादी अखलाकी सबक ये है कि अमानतदारी भी इबादत है, और कभी कभी किसी दूसरे के सदक़े को सही हाथ तक पहुँचाना भी ऐसा काम है जिस पर इंसान को सदका करने वालों जैसा अजर मिल सकता है। ओवरऑल आज के मौजू का खुलासा यही है कि अल्लाह ताला खैर के काम में सिर्फ नतीजा नहीं देखता, शराकत भी देखता है। जो खुद करता है उसका अजर, जो उसके लिए रास्ता बनाता है उसका अजर, जो उसका बोझ हल्का करता है उसका अजर, जो उसके अहल वयाल की खबरगिरी करता है उसका अजर, जो अमानत को सही जगह पहुँचाता है उसका अजर, जो बच्चे को इबादत के सफ़र में ले जाता है उसका अजर। और शायद इसीलिए अल्लाह ताला हमें बार बार इज्तिमाईयत की तरफ बुलाता है, वतआवनु अलल बिर्री वत्तक्वा। अब अकेले नेक बनना तो अच्छी बात है, लेकिन नेकी को मुमकिन बनाना उससे भी बड़ा इज्तिमाई अमल हो सकता है। अपने लिए खैर चाहना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों के लिए खैर का रास्ता आसान करना ये भी ईमान की खूबसूरती है। सामने के नाम कुरानी आयत ताउन अल बिर व तक्वा, इसकी तफसीर भी हमने पेश की, साथ साथ अहादीस की रूह से भी हमने इस आयत को समझने की कोशिश की। अब जरा

एक सहाबी अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु की सीरत की तरफ आते हैं। वो अजीम शख्सियत जो खलीफा राशिद खलीफा राबिया थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के फर्द, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब परवरिश पाने वाले और वो सहाबी जिन्होंने नबवी अखलाक को अपनी आँखों से जीता हुआ देखा। इसीलिए अली रज़ियल्लाहु अन्हु की शख्सियत को समझने के लिए एक रास्ता ये भी है कि देखा जाए उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या क्या सीखा। सबसे पहले सबात की बात आती है। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त भी देखा जब मक्के में दावत इंतहाई मुश्किल मरहले में थी, दबाव था, मुखालफत थी, तकलीफ थी और बाज़ करीबी लोगों की तरफ से ये कोशिश भी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी तरह उस इस दावत को छोड़ दे और अपने आप को इस मुसलसल आजमाइश से बचाने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौक़िफ़ क्या था? आपके मौक़िफ़ हमें उस रवायत में मिलती है जिसमें आपने अपने चचा अबू तालिब से फरमाया था कि अगर ये लोग मेरे दाएं हाथ में सूरज और बाएं हाथ में चांद भी रखते हैं ताकि मैं ये काम छोड़ दूँ, तब भी मैं उसे नहीं छोड़ूंगा यहाँ तक कि अल्लाह उसे गालिब कर दे या मैं उसी रास्ते में जान दे दूँ। सबात अलल मब्दा। तो अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत से सबात भी सीखा, आफू भी देखा। यानी फतेह मक्के के दिन वो लोग सामने हैं जिन्होंने बरसों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया, घर से निकाला, सहाबा को अज़ियत दी, जंगें की। आज हालात पलट चुके हैं, ताकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में है। ये वो लम्हा था जब दुनिया के बहुत से फातह इंतकाम लेते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आफू और दरगुजर का मामला फरमाया। जैसा कि सीरत में मशहूर अल्फाज के मुताबिक यह हदीस बताई जाती है, इज़हबू फअतुमुक्का, जाओ तुम आज़ाद हो। तो यहाँ अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक अजीम हकीकत देखी कि असल ताकत बदला लेने की कुदरत नहीं, बदला लेने की कुदरत के बावजूद माफ़ कर देना ज़र्फ़ ये असल ताकत है। तो शख्स कमज़ोर हो और माफ़ कर दे, शायद वो मजबूरी भी हो सकती है, लेकिन जिसके हाथ में पूरा इख्तियार हो और फिर भी वो आफू इख्तियार करे, ये अखलाक की बुलंदी है। अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इशार भी देखा, अपने लिए कम दूसरों के लिए ज़्यादा, कभी एक घूंट एक चीज़ एक मौका, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने किसी ज़रूरत सलमान भाई को तरजीह दे देते हैं। तो ये तरबियत सिर्फ ज़बान से नहीं होती थी, ये घर के अंदर भी देखी जाती थी। और उसकी एक नहायत दर्द अंगेज़ मिसाल फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से मुतालिक बयान की जाती है। अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी अहलिया फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ज़रूरत के लिए भेजा। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी का टुकड़ा, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख़ानदान की ज़रूरत को भी उमूमी मुसलमानों की ज़रूरत से अलग उसूल पर नहीं रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरजीह देने के बजाय फ़ुक़रा मुस्लिम की ज़रूरत को सामने रखा। यानी बेटी अपनी जगह महबूब, लेकिन अमानत अपनी जगह अमानत है। फिर एक और मंजर देख लीजिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने किसी जिम्मेदारी या मनसब की ख्वाहिश जाहिर की। अब वो तो मुअज़्ज़ज़ थे, करीब रिश्तेदार थे, सलाहियत भी रखते थे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसूल वाज़ह रखा कि ऐसी जिम्मेदारी हम उस शख्स को नहीं देते जो खुद उसे मांगे या उस पर हिर्स दिखाए। यानी मनसब मोहब्बत की बुनियाद पर नहीं, रिश्तेदारी की बुनियाद पर नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और उसूल की बुनियाद पर मिलता है, और यही है नज़ाहत। इसी तरह अली रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से एक और नहायत अजीम मंजर है कि काबे की कुंजी अली रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में आई। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई थे। बनू हाशिम पहले ही सिकाया यानी हाजियों को पानी पिलाने की खिदमत रखते थे। अब अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने ख्वाहिश जाहिर की कि काबे की कुंजी और उस दरवाजे की खिदमत भी उसी ख़ानदान को दे दी जाए। बज़ाहिर मौका भी था, ताकत भी थी, फतह भी हो चुकी थी। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो ये जिम्मेदारी अपने ख़ानदान को दे सकते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? उस्मान इब्न तलहा को बुलाया जिनके ख़ानदान के पास पहले से जिम्मेदारी थी, और काबा की कुंजी उन्हीं के हाथ में वापस रख दी और फरमाया, आज नेकी और वफादारी का दिन है। तो एक उसूल था कि फतह का मतलब ये नहीं कि अमानतें अपने लोगों में तकसीम कर दी जाएँ। यही वजह है कि अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कई औसाफ़ एक साथ देखे कि सबात, आफू, ईसार, सखावत।

0: वजाहत, इफ़त, अमानत, उसूल पसंदी। तो अली रज़ी अल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब रहें, इसलिए उन्होंने आपकी आपका किरदार भी देखा, आपको मुश्किल में भी देखा, फतह में भी देखा, ख़ानदान के साथ देखा। और इसीलिए सामिन किराम ताउन अलबिर व तक्वा के दायरे में ये बात आ जाती है कि सालेह और बड़े ज़र्फ़ के लोगों की सोहबत इंसान के लिए बहुत कीमती है। ऐसे लोगों के करीब रहना जो हमसे अखलाक में बेहतर हों, जिनमें उसूल पसंदी हो, जिनमें आफू हो, जिनमें तकवा हो, जिनमें दुनिया से बेनियाजी और आखिरत की फिक्र हो, तो ये सोहबत आहिस्ता आहिस्ता इंसान पर अपना रंग चढ़ाती है। तो सामिन किराम, आज की पूरी गुफ्तगू का मरकजी मौजू था वताअवनु अलल बिर्री वत्तक्वा, यानी नेकी और तकवा के कामों में एक दूसरे का तआवुन करो। और जब हम सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, दूसरे सहाबा इकराम की ज़िंदगियों को देखते हैं तो ये आयत हमें सिर्फ माली मदद या किसी खिदमत के मंसूबे की शक्ल में नज़र नहीं आती, बल्कि दिलों के तआवुन, किरदार के तआवुन, इल्म के तआवुन और हक के लिए एक दूसरे को मजबूत करने की सूरत में भी सामने आती है। बाज़ लोग ये तसव्वुर करते हैं कि शायद अली रज़ी अल्लाह अन्हु, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे सहाबा के दरमियान कभी कभार ऐसी दूरी भी आई जिसमें वहाँ में कदर एहतराम बाकी ना रहा हो, लेकिन बात दरअसल ऐसी नहीं। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के इंतकाल के बाद अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनकी खिदमात को याद किया, उनके ईमान, यकीन, तस्दीक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्फाक और साबित कदमी की तारीफ़ की। और ये मफहूम ये बयान किया कि जब लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठलाया, आपने उनकी तस्दीक की। जब लोग पीछे हटे, आप साथ खड़े रहे। जब लोग बुखल से रुक गए, आपने अपना माल पेश किया। यही तो ताउन अल बिर व तक्वा की बुलंद तरीन सूरतों में से एक है। किसी खैर को कभी उस खैर के साथ उस वक्त खड़ा होना भी ताउन होता है जब लोग उससे दूर हो जाए। सामिन किराम, यहाँ एक बहुत अहम फ़र्क समझने की ज़रूरत है कि जब हक ताकतवर हो, लोग साथ हों, माहौल मुआफिक हो, तो हक की हिमायत निस्बतन आसान होती है। लेकिन जब हक कमज़ोर दिखाई दे, मुखालफत बढ़ जाए, फ़ायदे कम और नुकसान ज़्यादा नज़र आए, उस वक्त जो शख्स हक के सामने खड़ा रहता है वो सिर्फ़ अपना ईमान महफूज नहीं रखता बल्कि दूसरों के ईमान को भी सहारा दे रहा होता है। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने यही किया। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करके सिर्फ खुद हक को कबूल नहीं किया बल्कि हक के काफिले को अखलाकी कुव्वत दी। अपना माल देकर सिर्फ सदका नहीं किया बल्कि दावत के सफ़र को सहारा दिया। साथ खड़े होकर सिर्फ रफाकत नहीं निभाई बल्कि नेकी के एक बड़े मिशन में तआवुन किया। यही आयत का अमली मिजाज है कि खैर के साथ खड़े हो जाओ ताकि खैर तन्हा न रह जाए। और यही उसूल आखिर ज़माने की उन कैफियतों में और ज़्यादा अहम हो जाता है जहाँ इंसान अपने आप को दीन पर कायम रहने में तन्हा महसूस कर सकता है। सही हदीस में आया है, बदल इस्लाम गरीबन व सयउद गरीबन फतूबा लिल गुरबा। इस्लाम अजनबी हालत में शुरू हुआ और एक वक्त फिर अजनबी हो जाएगा, तो खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो उस गुरबत में हक पर कायम रहें। ऐसे माहौल में तआवुन अल बिर व तक्वा की ज़रूरत कई गुना बढ़ जाती है। अगर एक नौजवान हलाल पर कायम रहना चाहता है तो उसका मजाक ना उड़ाइए, उसका हाथ मजबूत कीजिए। अगर कोई नमाज की पाबंदी चाहता है तो उसे तनहा ना छोड़िए। अगर कोई अपने घर में शरी माहौल कायम करना चाहता है तो उसे शिद्दत पसंद कहकर दूर न कीजिए बल्कि हिकमत के साथ उसकी मदद कीजिए। अगर कोई फितनों के माहौल में अपनी निगाह, जबान, कमाई या ताल्लुकात को पाक रखना चाहता है तो उसे यह एहसास न होने दीजिए कि वो अकेला है, क्योंकि कभी एक मोमिन की सबसे बड़ी मदद ये होती है कि दूसरा मोमिन उसे सिर्फ इतना कह दे कि मैं भी तुम्हारे साथ खैर पर खड़ा हूँ। यही तआवुन सहाबा इकराम के बाहमी ताल्लुकात में भी नज़र आता है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें ऐसी नेक सोहबत और ऐसा नेक साहिब बनने की तौफीक अता फरमाए जो तआवुन अलल बिर्र व तक्वा के इस ओहदे को सही से समझता हो। आमीन या रब्बल आलमीन। इन दुआओं के साथ आज के इस हलके से तकनीकी मुआविन नदीम अंसारी और मुझे तलहा अशरफ उज़्ज़मान को दीजिए इजाजत। मा सलामा।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
3: आज ही राब्ता करें
2: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
4: दोस्तों, गाड़ियों के ड्राइवर्स और दीगर सड़क इस्तेमाल करने वालों को अर्जेंट इमरजेंसी के दौरान इमरजेंसी व्हीकल्स जैसे के सिविल डिफेंस, एम्बुलेंसेस, फायर इंजन और पुलिस की गाड़ियों को गुजरने के लिए रास्ता देना चाहिए. इन गाड़ियों के ड्राइवर्स मल्टी टोन साइरन्स और मखसूस लाइट डिवाइसेस के जरिए आपको बताते हैं कि उस वक्त इन्हें अर्जेंट इमरजेंसी है और इस इमरजेंसी कॉल के दौरान इन गाड़ियों को ओवरटेक करने से या इमरजेंसी व्हीकल्स के पीछे 50 मीटर से कम फासला बनाए रखने से आपको ट्रैफिक वायलेशन का सामना करना पड़ सकता है. ड्राइविंग के वक्त सतर्क रहिए और दूसरों का ख्याल रखना हम सब की जिम्मेदारी है. FM 107 आप सबकी खुशगवार जिंदगी का ख्वाहिशमंद है.

0: ही तीसरे इंसान की बुराई लेकर आता है, हम भी कुछ शामिल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम रुक जाएं, ये खामोशी खैर है। और कभी किसी बहस में हमें मालूम होता है कि अब मजीद गुफ्तगू से हकीकत वाज़ह नहीं होगी, सिर्फ तलखी बढ़ेगी, ऐसे वक्त खामोश हो जाना शिकस्त नहीं। इमाम नववी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, जब इंसान बोलना चाहे तो पहले देखे कि जिस बात को वो कहना चाहता है क्या उसका खैर होना वाज़ह है। अगर वो यकीनी खैर है और उस पर अजर की उम्मीद है तो बोले, और अगर ये वाज़ह नहीं कि उसमें खैर है तो जबान रोक ले। यहाँ तक कि वाज़ ऐसी मुबाह बातें भी जिनमें न कोई खास फायदा हो न जरूरत, उन्हें कम करना बेहतर है, क्योंकि बेजरूरत गुफ्तगू कभी आहिस्ता आहिस्ता इंसान को गीबत, तंज, झूठ या दूसरी नामुनासिब बातों तक पहुँचा देती है। सामिन किराम, अगर आज की इस सुन्ना को हम अपनी अमली आदत में तब्दील करना चाहें तो बोलने से पहले चंद लम्हों के लिए हमें तीन सवाल अपने आप से पूछ लेना चाहिए। पहला सवाल ये है कि क्या ये बात सच्ची है कि जो बात मुझे मालूम ही नहीं, मैं उसे यकीन के साथ क्यों बयान करूं? दूसरा सवाल ये है कि क्या ये बात खैर और फायदे की है? सच होना तो ज़रूरी है, लेकिन हर सच्ची बात हर मौके पर कहना ज़रूरी नहीं। किसी का ऐब वाकई मौजूद हो तब भी बिला ज़रूरत उसे लोगों में बयान करना मुनासिब नहीं। और तीसरा सवाल ये है कि क्या ये बात अभी अभी कहना ज़रूरी है? यानी कभी बात दुरुस्त होती है लेकिन वक्त गलत होता है, कभी अल्फाज दुरुस्त होते हैं लेकिन लहजा गलत होता है, कभी नसीहत तो अपनी जगह पर ठीक है लेकिन वो सबके सामने नहीं, तन्हाई में ज़्यादा मौसर होती है। सामिन किराम, तो हदीस का उसूल याद रखिए, फलियकुल खैरना वलियस्मुत। सामिन किराम, आज की सुन्नत हमें यही सिखाती है कि हर अहम जुमले से पहले दिल में एक छोटा सा दरवाज़ा लगा दें। खैर है हाँ तो बोल दीजिए, खैर वाज़े नहीं तो रुक जाइए। शायद दिन के अख्तिताम पर हमें एहसास हो कि हमारी कितनी गुफ्तगू गैर ज़रूरी थी, और शायद ये भी मालूम हो कि खैर के कितने अल्फाज थे जो हमें कहने चाहिए थे लेकिन हमने नहीं कहे। अल्लाह ताला हमें सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदर करने, उसे समझने और मोहब्बत के साथ अपनी ज़िंदगियों में उन्हें नाफिज करने की तौफीक अता फरमाएं। इसी दुआ के साथ प्रोग्राम रूपर व सुन्नत के आज के हलके से तकनीकी मुआविन शकीब अहमद और मुझे तलहा अशरफ जमान को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए, सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते रहिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।

0: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी हेल्थ फॉर ऑल सुनिए डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ FM 107 दिल से देसी
1: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह हेल्थ फॉर ऑल में खुश आमदीद ये तो सभी जानते हैं लिसनर्स के स्मोकिंग का इस्तेमाल खतरनाक है क्योंकि ये कैंसर दिल की बीमारी और बहुत सी बीमारियों का सबब बन सकता है इसी तरह जो टोबैको का माहौल पर भी मनफी असर पड़ता है और इस तरह बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो जन्म लेती हैं और अगर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि स्मोकिंग को ख़त्म कर दें या अगर स्मोकिंग आप कर रहे हैं और आप उसे ख़त्म करते हैं तो फिर एक हफ्ते के बाद जो है हमारे जो लंग्स हैं उनकी कारकर्दगी बेहतर हो जाती है और इसी तरह से अगर एक महीने तक आप जो है स्मोकिंग से दूर रहते हैं तो उसमें खांसी नाक की जो बंदिश है थकावट है या फिर आपकी सांस लेने में जो तंगी आ रही होती है उसमें मुसलसल कमी आती जाती है फेफड़ों में मौजूद जो सीलिया होते हैं या हम ये कह सकते हैं कि फेफड़ों की जो कारकर्दगी है वो बहाल होती है जो कि इस तरह से बलगम जो है उसको भी साफ करती है और इन्फेक्शन को कम करने में मदद देती है और अगर एक साल तक आप स्मोकिंग से दूर रहते हैं सिगरेट नोशी से दूर रहते हैं तो दिल की बीमारी का खतरा आधा रह जाता है जो कि एक सिगरेट पीने वाले के मुकाबले में होता है इसी तरह से 5 साल तक अगर आप स्मोकिंग जो है वो क्विट करते हैं तो फालिज का खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है और ये एक गैर सिगरेट नोशी करने वाले जैसा ही हो जाता है जैसे कि अगर कोई स्मोकिंग नहीं कर रहा तो उसके बराबर ही आ जाता है इसी तरह से मुंह में गले गजाई नाली जो है या फिर ये कि मसाने के कैंसर का खतरा भी निस्फ हो जाता है और 10 साल के बाद अगर आपने पहले स्मोकिंग जैसे कर रहे थे और उसके बाद स्मोकिंग को छोड़ दिया है और 10 साल हो चुके हैं तो फिर फेफड़ों के कैंसर का खतरा भी बिल्कुल वैसा ही हो जाता है जैसे कि एक नॉन स्मोकर का हो जाता है इसी तरह से लैरिंग्स और जो पेंक्रियास है या लबलबा उसके कैंसर का खतरा भी बहुत कम हो जाता है तो फिर ये है कि दिल की बीमारी का खतरा जो है उससे भी दूर रहा जा सकता है और बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनसे दूर रहा जा सकता है अगर आप जो स्मोकिंग है उसे क्विट कर दें हेल्थ फॉर ऑल
0: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी हेल्थ फॉर ऑल FM 107 दिल से देसी
2: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: दोस्तों, बिजली से लगने वाली आग का खतरा हर जगह होता है, लेकिन इससे बचाव मुमकिन है अगर हम कुछ अहम सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करें। सबसे पहले, हमेशा ओरिजिनल और सर्टिफाइड वायर्स, सॉकेट्स और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स ही इस्तेमाल करें जो कतर या इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर पूरी उतरती हों। लो क्वालिटी इलेक्ट्रिकल आइटम्स इस्तेमाल करना न सिर्फ आपके माल का नुकसान कर सकता है बल्कि जान को भी खतरे में डाल सकता है। वायर्स का सही तरीके से इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस भी बहुत जरूरी है। ये बात भी याद रखें कि ओवरलोडेड सॉकेट्स या एक्सटेंशन कॉर्ड्स का इस्तेमाल ना करें और इलेक्ट्रिकल वायरिंग को मॉइस्चर और हीट से बचाएं। अगर कभी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कोई मसला आए, जैसे कि स्पार्क, झटका या यूजुअल स्मेल, तो फॉरन क्वालिफाइड इलेक्ट्रीशियन से चेक करवाएं। आपके घर और ऑफिसेस की हिफाजत आपके हाथों में है, इसलिए कभी भी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को नजरअंदाज ना करें। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है और आप एहतियाती तदाबीर को पहली तरजीह दें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
2: स्ट्रेस या टेंशन फील कर रहे हैं, चाहते हैं लाइफ में बैलेंस और ग्रोथ, तो सुनिए यू मैटर, आपके लिए प्रैक्टिकल टिप्स और स्ट्रेटजीज ताकि आप खुश, हेल्दी और फुलफिल्ड लाइफ जी सके, क्योंकि आप मैटर करते हैं।

0: हर संडे टू थर्सडे सुबह 10 से 11 बजे यू मैटर आरजे सफा और आरजे महविश के साथ जहां वो शेयर करेंगी प्रैक्टिकल टिप्स इमोशनल इंटेलिजेंस टेक्निक्स और पर्सनल ग्रोथ हैक्स जो आपके स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्पफुल हो सकता है ट्यून इन टू एफएम 107 दिल से देसी
1: आपके ज़हन में वज़ारत दाखला या उसके मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक कोई सवाल है वज़ारत दाखला की किसी सर्विस के बारे में मालूमात चाहिए या पुलिस के किसी शोबे की जिम्मेदारियों और खिदमात को जानना चाहते हैं तो सुनिए प्रोग्राम पुलिस और अवाम जिसमें हर हफ्ते वज़ारत दाखला के मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक नुमाइंदे अपने शोबे की जिम्मेदारियों खिदमात क़वानीन और अवाम से मुतालिक अहम उमूर के बारे में तफसीली मालूमात फराहम करते हैं हर पीर रात 8 बजे से तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ पुलिस और अवाम जानिए समझिए और बाखबर रहिए ओनली ऑन एफएम 107
2: आप सुन रहे हैं एफएम 107
0: दिल से देसी
3: एफएम 107 प्रेजेंट्स टेक अपडेट
4: अस्सलाम वालेकुम मैं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे एंड वेलकम टू अनदर टेक अपडेट और जी आज भी बहुत बढ़िया-बढ़िया वेबसाइट हैं मजा आ जाएंगे आपको चस आ जाएगी इस बात का पूरा-पूरा वादा है लेकिन सोशल मीडिया हैंडल्स की तरफ भी जरूर आइएगा सो सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar FM107 Qatar सबसे पहले वेबसाइट्स और उसके बाद हम बढ़ेंगे सीधा खबरों की तरफ ओके सो वेबसाइट नंबर 1 इसका नाम है driveandlisten.com एन है एंड नहीं है ये भी बता दूं मैं सो लेट मी स्पेल इट आउट फॉर यू driveandlisten ड्रिवन या फिर ड्राइव एंड लिसन जैसे मर्जी आप पढ़ना चाहें दोनों ही ठीक है सो driveandlisten.com इस पे जब आप जाएंगे तो आप जो है किसी भी शहर का नाम डालेंगे तो उस शहर के रेडियो को आप सुन सकते हैं और साथ में उसकी सड़कों पे ड्राइव वाला फील भी ले सकते हैं आपकी स्क्रीन के थ्रू हाउ क्रिएटिव इज दैट यार क्या कहां जा रही है दुनिया बहुत कमाल की चीज है आई हैव नॉट ट्राइड कतर अभी तक क्योंकि मैं तो मतलब खुद ही रेडियो हूं लेकिन यूरोपियन कंट्रीज का अगर आप कुछ ट्राई करना चाहें ना यू कैन ट्राई उनकी सड़कों पे घूम सकते हैं आप किसी भी शहर का नाम डाल के और सीधा सीधा आप जो है उसके साथ साथ आप उनके रेडियोस को भी सुन सकते हैं ऑलराइट मूविंग ऑन टू अनदर वन तो जी अगला जो है वो है terrainc.app मैं बताता हूं फिर से टेरा terrainc.app app इस पर जब आप जाएंगे तो आपको ये फिर से पूछेगा शहर का नाम जब आप शहर का नाम बताएंगे तो उस पे जाने के बाद आप अपने मैप को फॉर एग्जांपल मैंने इसमें ट्राई किया था कि दिल्ली का नाम डाल के देखता हूं सो मैंने दिल्ली डाला तो मैप आ गया उस मैप को आप कैसे भी सजा सकते हैं भाई उसको आप एंशिएंट लुक दे दीजिए उसको आप एनिमे टाइप लुक दे दीजिए उसको आप चेंज कर दीजिए कलर चेंज कीजिए इट इज ब्यूटिफुल और ये काम आता है जब आप वीडियोस बना रहे होते हैं आप कुछ फैंसी से अपने कमरे में लगाना चाहते हैं कोई पोस्टर आप यहां से बना के देखिए इट इज सो सो यूनिक और जिसने भी ये सोचा अच्छा हुआ उसने इस चीज को हल्के में नहीं लिया बिकॉज ये ऐसी चीज है जो बहुत मेहनत से बनती है अगर आप वैसे फोटोशॉप्स में बनाने लग जाएंगे तो दिस इज वन ऑफ द कूलेस्ट वेबसाइट्स एवर मैं फिर से बता रहा हूँ terrainc.app terrainc.app जाके देखिए अपने शहर का मैप खूबसूरती से बनाइए एंड यू कैन देन प्रिंट इट आउट टी शर्ट पे लगा लो गाड़ी पे दीवार पे लगा लो कहीं भी लगा लो मजा देंगे आपको ओके मूविंग ऑन टू अनदर वन अगली वेबसाइट है buildcores.com buildcores.com buildcores.com इस वेबसाइट पे जो आप जाएंगे तो आप अपना पीसी खुद डेवलप कर सकते हैं आपको आइडिया लेना कि भाई मेरे पीसी में क्या क्या लगा सकता हूँ कहाँ कहाँ लगाऊंगा कैसे कैसे लगाऊंगा क्योंकि गेमर्स को बड़ा शौक होता है अपने अपने पीसी खुद डिजाइन करने का वीडियो एडिटर्स को शौक होता है अपने हिसाब से रैम सेलेक्ट करना और ग्राफिक कार्ड्स लगाना और सब कुछ शुरुआत से बिल्ड करना तो बिल्ड कोर पे जाके आप एक पूरा का पूरा पीसी वर्चुअली बिल्ड कर सकते हैं एंड देन यू कैन चूज के यार ये बढ़िया लग रहा है अब मैं जाके असलियत में कर लेता हूँ काम तो वो आप कर सकते हैं सच अ यूनिक वे ऑफ परसुइंग दिस लव्ड इट मैन तो इसके बाद अब हम बढ़ेंगे

0: खबरों की तरफ। तो देखिए अभी रिसेंटली अपडेट्स के बारे में बात की जाती है, हम ये मानते हैं कि भाई देखो फोन को अपडेट कर लेते हैं तो फोन स्लो हो जाता है, ये कहीं हद तक सच भी और कहीं हद तक सच नहीं भी है। मगर अभी स्मार्ट वॉचेस के ओनर्स जो हैं उनको कहा गया है, कंपनीज ने बोला कि भाई सुनो अपनी ऐप को अपडेट कर दो, अपनी वॉच को अपडेट करो। बहुत सारे ओल्डर एप्पल गूगल और सैमसंग की वॉचेस हैं जो अभी एंड ऑफ देयर सॉफ्टवेयर सपोर्ट पीरियड तक पहुंच चुकी हैं और ये कहा जा रहा है कि उनको अपडेट नहीं किया तो फोन के साथ कनेक्ट होकर चल नहीं पाएंगी। तो अगर आपके पास वॉच है और आप अपडेट नहीं मार रहे हैं उसे तो दिक्कत हो जाएगी। प्लीज अपने अपने एटलीस्ट स्मार्ट वॉचेस को अपडेटेड रखें, बिकॉज अगर सॉफ्टवेयर सपोर्ट चला गया तो फिर आपको धीरे धीरे तकलीफ होगी और वो धीरे वाली तकलीफ ना नहीं सही जाती ऑनेस्टली। या ट्रू। All the best to you. And on that note, मिलेंगे अगले tech update में. This is Kabir signing off. अपना ख्याल रखिए. दिल से देसी. Tech update. Tech update.
1: National Cyber Security Agency आवाम से अपील करती है कि अपनी जाती मालूमात की अहमियत को समझें और उन्हें शेयर करते वक्त एहतियात से काम लें. याद रखें आपकी मालूमात कीमती हैं और इनकी हिफाजत हम सबकी जिम्मेदारी है, इसीलिए अपनी जाती मालूमात किसी के साथ शेयर करने से पहले अच्छी तरह सोचें कि आप ये मालूमात किसको दे रहे हैं और उसे इनकी ज़रूरत क्यों है। ज़रूरत के मुताबिक मालूमात शेयर करें और अपनी जाती मालूमात की हिफाजत का हमेशा ख्याल रखें और हमेशा याद रखें कि डेटा प्राइवेसी का आगाज आपसे होता है।
2: FM 107 पर हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट।

0: दिल से देसी
1: स्कैम अलर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। एफएम 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर आपको नए जमाने के नए स्कैम्स के बारे में पता चलता है। इमेजिन करिए कि आपका कोई अपना बिजनेस है, और इमेजिन क्यों करना भाई, बड़े लोग सुन रहे हैं, आपका बिजनेस होगा, लेकिन ये बिजनेस आजकल बहुत ज्यादा टारगेट पे है स्कैमर्स के, फ्रॉडस्टर्स के, जिन्होंने नए तरीके निकाल के रखे हुए हैं कि लोगों को स्कैम करना है। लेकिन ये स्कैम सीईओ इम्पर्सनेशन स्कैम है, यानी कि सीईओ बनकर धोखेबाजी करने वाला स्कैम। कई बार ऐसे स्कैम में एम्प्लॉयज फंस जाते हैं। आपके ऑफिस में काम करने वाले, आपके कंपनी में काम करने वाले, आपके बिजनेस, आपके स्टोर, आपके मॉल में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज हैं, वो फंस जाते हैं। कैसे ये स्कैम काम करता है, सबसे पहले इस पर नजर डालते हैं, लेकिन साथ ही साथ सॉल्यूशन पर भी हम बात करेंगे। और सबसे पहले होता यह है कि सीईओ इम्पर्सनेशन स्कैम, जिसे बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज भी कहा जाता है, कॉर्पोरेट दुनिया का एक बहुत ही खतरनाक और चालाकी से भरा हुआ धोखा है। इस फ्रॉड में क्रिमिनल किसी भी कंपनी के सबसे बड़े बॉस, जैसे कि सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर या सीएफओ का भेष जो है वो ले लेते हैं, प्रटेंड करते हैं, और फिर वो सच में बॉस नहीं होते हैं, बल्कि एक फेक ईमेल अकाउंट बनाते हैं जो देखने में बिल्कुल असली लगता है। कभी कभी हैकर्स बॉस का असली ईमेल अकाउंट भी हैक कर लेते हैं। इसके बाद हैकर कंपनी के फिनांस या अकाउंट या एचआर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय को अर्जेंट ईमेल भेजते हैं, और ये अर्जेंट ईमेल इस बेसिस पे भेजते हैं कि इनको पैसे की जरूरत है और क्लाइंट सामने है। ईमेल में ऐसी कहानी लिखी होती है जिससे एम्प्लॉय डर जाए या बिना सोचे समझे काम कर दे। जैसे हैकर लिखेगा कि मैं एक बहुत ही सीक्रेट और इम्पोर्टेंट बिजनेस मीटिंग में हूँ, इसलिए मुझे कॉल मत करना, हमें एक नए क्लाइंट को तुरंत पैसे वायर ट्रांसफर करने हैं, बैंक ट्रांसफर, नहीं तो डील हाथ से निकल जाएगी। स्कैमर जानबूझकर एम्प्लॉय पर बहुत ज्यादा प्रेशर बनाता है और कहता है कि कंपनी के स्टैंडर्ड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और वेरिफिकेशन स्टेप्स को अभी के लिए बाईपास कर दो, क्योंकि वक्त बिल्कुल नहीं है, क्लाइंट सामने है। एम्प्लॉयज अक्सर अपने सीनियर बॉस के डर से या कंपनी के नुकसान होने के डर से बिना क्रॉस चेक किए पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। आमतौर पर मैं भी यही करूंगा भाई, लेकिन ये जरूरी है कि आपकी ऐसे में ट्रेनिंग हो। वेल, हम सॉल्यूशन पर भी बात करेंगे। होता यह है कि जब आपके ऊपर जबरदस्ती या जल्दबाजी की जाती है तो आपके फैसले लेने में कहीं ना कहीं कमी आ जाती है, आप परफेक्ट फैसला नहीं ले पाते, इसलिए जल्दबाजी में जब भी आप फैसला लेते हैं आपके साथ स्कैम हो जाता है। लेकिन इस तरह के जल्दबाजी वाले ईमेल पर आप जरा भी रिएक्ट ना करें, इसके अलग अलग सॉल्यूशन हैं। इस तरह के स्कैम से आप बच सकते हैं। सबसे पहला जो तरीका है बचने का है वो है वर्बल कंफर्मेशन रूल। अगर ईमेल में ये लिखा है कि अभी मुझे कॉल मत करना, तो ये अलर्ट है आपके लिए, क्योंकि किसी भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन या बैंक डिटेल चेंज की रिक्वेस्ट आने पर सबसे पहला फर्ज यही है कि आप बॉस को डायरेक्ट कॉल करें। और अगर ईमेल में बाकायदा लिखा है कि अभी तुरंत मुझे फौरन चाहिए, तो आपको हमेशा बॉस को कॉल करना चाहिए, और बॉस को भी ये बात समझनी चाहिए कि एम्प्लॉई और बॉस के दरमियान बहुत बड़ा गैप ना हो, और इतना बड़ा गैप खास कर ना हो कि इस तरह के स्कैम हो जाए कि कोई पैसे मांगे और एम्प्लॉई ट्रांसफर कर दे। फाइनेंस डिपार्टमेंट या अकाउंट डिपार्टमेंट जो है वो ट्रांसफर कर भी देते हैं, क्योंकि आमतौर पर सीईओ जो है वो डिपार्टमेंट से, एचआर डिपार्टमेंट से थोड़ा दूर दूर से रहते हैं, वो या तो प्रोडक्शन वालों से बात करते हैं या फिर सेल वालों से, है ना, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा चाहे ईमेल कितना भी अर्जेंट हो, बिना आवाज सुने, बिना डायरेक्ट उनके नंबर पे बात किए कोई भी ट्रांसफर पैसा ना करें। उसके अलावा डुअल ऑथोराइजेशन प्रोसेस, दो लोगों की परमिशन जरूर होनी चाहिए, ये एक रूल होता है हर कंपनी का। कंपनी में एक नियम बनाए जहां किसी भी बड़े फंड ट्रांसफर के लिए कम से कम दो सीनियर एम्प्लॉयज का अप्रूवल मैंडेटरी हो। तीसरा तरीका है ईमेल स्पूफिंग फिल्टर। अपने आईटी डिपार्टमेंट को बोलकर एसपीएफ यानी कि सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क और ऐसे ईमेल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स का सेटअप करें जिससे इस तरह के स्कैम से बचा जा सके। उसके अलावा एक तरीका है एम्प्लॉय अवेयरनेस ट्रेनिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लास्ट में इसके बारे में इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि अपने अकाउंट्स और फिनांस स्टाफ को रेगुलर इंटरवल्स पर सिक्योरिटी ट्रेनिंग आपको देनी भी चाहिए, और अगर आपने नहीं भी दी है तो आपको एक बार एटलीस्ट ट्रेनिंग होनी चाहिए, या फिर डिजिटल पूरा प्रॉपर पीडीएफ के जरिए कुछ कुछ वक्त में, हर 6 महीने, हर 3 महीने में एक बार अपने अकाउंटेंट, अपने एचआर को या जो सेल्स या प्रोडक्शन वाले हैं उनको बताते रहना चाहिए।

0: चाहिए थ्रू पीडीएफ थ्रू ईमेल, कि किसी भी इस तरह के अनजान ईमेल पर या फिर पैसे ट्रांसफर करने वाली बात पर भरोसा ना करें और सारे प्रोटोकॉल के जरिए ही पेमेंट जरूर करें। तो दोस्तों ये था सीईओ इंपर्सोनेशन स्कैम। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी आपसे कल एक नए जमाने के नए स्कैम के बारे में बात करते हुए। सुनते रहे FM 107 दिल से देसी। स्कैम अलर्ट,
1: मैक्सिमम म्यूजिक, मैक्सिमम फन ऑन FM 107 दिल से देसी।

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्पोर्ट्स हाइलाइट्स में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और आज हम बात करेंगे हॉकी के बारे में, यानी फिर हॉकी के बारे में नहीं बल्कि हॉकी के एक लेजेंड के बारे में। और नाम आप लोगों ने सुना होगा और ये नाम आज भी गूंजता है जब भी हम हॉकी कहानी के बारे में हम बात करते हैं, हॉकी न्यूज़ के बारे में हम बात करते हैं। धनराज पिल्ले के नाम ज़रूर लिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, धनराज पिल्ले की कहानी सिर्फ गोल्स, मेडल्स और रिकॉर्ड्स की कहानी नहीं, एक ऐसे खिलाड़ी की कहानी है जिन्होंने इंडियन हॉकी के एक मुश्किल दौर में अपनी अलग पहचान बनाई। धनराज पिल्ले का खेल देखने वालों के लिए उनकी सबसे बड़ी खासियत उनकी स्पीड और बॉल कंट्रोल थी। वो डिफेंडर्स के दरमियान से इस तरह निकल जाते थे जैसे गेंद उनके स्टिक का हिस्सा हो। एंड दैट रिमाइंड्स अस ऑफ सो मेनी लेजेंडरी हॉकी प्लेयर्स बिफोर हिम, मोहम्मद शाहिद, जफर इकबाल, हसन सरदार, कलीमुल्ला, समीउल्ला फ्रॉम पाकिस्तान। और उसके बाद हॉकी को स्किल्स और वो टैलेंट की कमी थी और इन सब मारूफ खिलाड़ियों के बाद, आई मीन रिटायरमेंट के बाद, हॉकी वॉज लुकिंग फॉर सम क्लासिकल प्लेयर्स, आर्टिस्टिक स्किलफुल प्लेयर्स, जो कि धनराज पिल्ले ने लेकर आए। धनराज पिल्ले को देखने के बाद धनराज पिल्ले, एवरीबडी थॉट कि हाँ धनराज पिल्ले वो खिलाड़ी हैं जो उस रेंज ऑफ प्लेयर्स जो उनसे पहले खेल चुके हैं उसी लेवल के हैं। एंड एंटरटेनर तो थे ही, उनकी ड्रिबलिंग, क्विक टर्न्स एंड अटैकिंग स्टाइल ने ओपोनेंट्स को अक्सर मुश्किल में डाल दिया। इंटरनेशनल हॉकी में उनका सफर भी कामयाबी से भरा रहा। 1992 बार्सिलोना ओलंपिक्स में डेब्यू करने के बाद उन्होंने अगले 3 ओलंपिक गेम्स में भी इंडिया की नुमाइंदगी की, यानी 4 ओलंपिक गेम्स, बार्सिलोना, अटलांटा, सिडनी और एथेंस। और हर दफा दुनिया के सबसे बड़े हॉकी स्टेज पर इंडिया की जर्सी में नजर आए। लेकिन एशियन गेम्स में धनराज का नाम और भी खास तौर पर उभर कर सामने आता है। 1990 बीजिंग, 1994 हिरोशिमा, 1998 बैंकॉक और 2002 बुसन एशियन गेम्स, इन तमाम इवेंट्स में उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। 1998 में इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाने में उनका किरदार बहुत अहम था, जबकि 2002 में भी इंडियन टीम ने गोल्ड मेडल जीता। दोस्तों, उनका इंटरनेशनल करियर इतना लंबा और शानदार था कि वो मुख्तलिफ जनरेशंस के प्लेयर्स के साथ भी खेले। उन्होंने इंडियन हॉकी के कई बदलते दौरों को अपनी आंखों से देखा और टीम को लीड भी किया। धनराज की एक और खास बात उनकी फियरलेस पर्सनैलिटी थी। वो फील्ड पर किसी भी ओपोनेंट से घबराते नहीं थे, चाहे सामने दुनिया की कोई भी मजबूत टीम हो। धनराज पिल्ले का बैटिंग अप्रोच हमेशा उन्हें एक खतरनाक खिलाड़ी बनाता था। इसी वजह से उनका नाम इंडियन हॉकी के ग्रेटेस्ट प्लेयर्स में लिया जाता है। लेकिन धनराज के लिए हॉकी सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं थी, यह उनकी जिंदगी, उनकी पहचान और उनका जज्बा। उन्होंने अपने करियर में मुश्किलात देखी, क्रिटिसिज्म का सामना किया और सिस्टम के साथ उनका जो टकराव था वो भी हमें देखने को मिला। लेकिन हॉकी के लिए उनका पैशन कभी कम नहीं हुआ। He was so passionate, he was so focused, he was so much grounded कि उन्हें हॉकी खेलकर इंडिया का नाम और मजीद बढ़ाना था। उन्हें सिर्फ हॉकी दिखता था, हॉकी स्टिक, हॉकी मैदान, हॉकी के एस्ट्रोटर्फ पिचेस यानी सिंथेटिक पिचेस पर। धनराज पिल्ले वाज समथिंग जो कि डिफाइन, हम अगर आप लोगों के लिए अगर क्रिकेट के लफ्जों में अगर बात करूं तो कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली या बाबर आजम या जावेद मियांदाद या कोई भी अगर आप क्रिकेट उठा लें, क्योंकि आप क्रिकेट आप लोगों का, देसी लोगों का सबसे मनपसंद खेल है, तो धनराज पिल्ले को अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो धनराज पिल्ले का जो नजरिया था हॉकी को लेकर वो इस तरह फोकस था, इस तरह पैशनेट था जैसे कि इन तमाम क्रिकेटर्स की जिंदगी में रहा है विद क्रिकेट। आज भी जब इन हॉकी गोल्डन मोमेंट्स का जिक्र होता है तो धनराज का नाम जरूर सामने आता है। एक ऐसा खिलाड़ी जो स्पीड से खेलता था, जज्बे से लड़ता था और अपनी परफॉर्मेंस से फैंस के दिल जीतता था।
धनराज ने सिर्फ इंडिया के लिए हॉकी नहीं खेली दोस्तों, उन्होंने एक पूरी जनरेशन को इंस्पायर किया कि अगर टैलेंट के साथ मेहनत, हिम्मत और जुनून हो तो दुनिया के किसी भी स्टेज पर अपना नाम बनाया जा सकता है। दैट वॉज द कन्विंसिंग फैक्टर, दैट वॉज द कन्विंसिंग धनराज पिल्ले, जो उन्होंने दिखाया एक रोड मैप, एक मार्गदर्शन, एक हदफ सेट किया था कि दिस आर द फैक्टर्स जिसके बलबूते पे आप हॉकी स्टार बन सकते हैं। और शायद इसीलिए धनराज को सिर्फ इंडिया का हॉकी लेजेंड कहना काफी नहीं, वो इंडियन हॉकी के उन चंद सितारों में से एक हैं जिनकी रोशनी आज भी नए खिलाड़ियों को रास्ता दिखाती है। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये सेगमेंट पसंद आया होगा। बार एक और स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

0: Absolute Cinema.
1: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। But don't worry, भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर थर्सडे रात 9 बजे से RJ फजील के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

0: Desi.
1: Assalamualaikum, आप सुन रहे हैं कल्चर मोमेंट। मैं हूं आपकी आरजे महावश। इस पांच मिनट के सफर में हम बात करेंगे कतर की खूबसूरत सकाफत, रिवायत और विरसे की। यहाँ हर रसम, हर लिबास, हर खाने और हर मेहमान नवाजी के पीछे एक प्यारी सी कहानी होती है। आइए मिलकर कतर की सकाफत को समझें, महसूस करें और इस विरसे को अगली नस्लों तक पहुँचाने का अहद करें। कतरी सकाफत में बुजुर्गों को बहुत इज्जत और अहमियत दी जाती है। बुजुर्ग खानदान की वो हस्तियां होते हैं जिनके पास जिंदगी का लंबा तजुर्बा, पुरानी यादें और कीमती मालूमात होती हैं। उनकी मौजूदगी घर में रहनुमाई, सुकून और अपनायत का एहसास पैदा करती है। बुजुर्गों का एहतराम सिर्फ अल्फाज से नहीं बल्कि रवैये से जाहिर होता है। उन्हें सलाम करना, खैरियत पूछना, उनकी बात तवज्जो से सुनना और उनका ख्याल रखना अच्छे आदाब में शामिल है। ये छोटी छोटी आदतें रिश्तों को मजबूत बनाती हैं और घर के माहौल को पुर मोहब्बत करती हैं। कतरी घरों में बच्चों की तरबियत में अदब को खास अहमियत दी जाती है। बच्चे सीखते हैं कि बड़े लोगों से किस तरह एहतराम के साथ बात करें, उनकी बात के दरमियान ना बोलें और जरूरत के वक्त उनकी मदद करें। जब एक बच्चा बुजुर्ग की कोई छोटी सी खिदमत करता है तो उसमें सिर्फ मदद का जज्बा नहीं बल्कि मोहब्बत और एहतराम भी शामिल होता है। बुजुर्ग अक्सर खानदान की तारीख और रिवायात के रखवाले होते हैं। उन्हें अपने बचपन, गांव, समंदरी सफर, पुरानी दस्तकारी, खानों और समाजी रवैयों के बारे में बहुत सी बातें याद होती हैं। उन कहानियों के जरिए नई नस्ल को अपने मुल्क और अपने विरसे को समझने का मौका मिलता है। किसी बुजुर्ग से कहानी सुनना सिर्फ एक तफरीही मशगला नहीं, इससे बच्चों को गुजरे हुए वक्त, मेहनत, सबर और शुक्रगुजारी के बारे में सीखने को भी मिलता है। कभी एक छोटी सी याद भी पुरानी जिंदगी के किसी खूबसूरत पहलू को सामने ला सकती है। बुजुर्गों की रहनुमाई घर के फैसलों में भी मददगार साबित होती है। उनका तजुर्बा हालात को बेहतर समझने और सोच समझकर कदम उठाने में मदद देता है। नई नस्ल की अपनी सोच और अपने तजुर्बात होते हैं, लेकिन बुजुर्गों की बात को इज्जत से सुनना हमेशा एक अच्छी आदत है। एहतराम का मतलब ये नहीं कि बुजुर्ग हमेशा एक जैसी सोच रखते हैं या हर बात में उनकी राय लाजमी हो, बल्कि असल बात यह है कि उनसे नरमी और अदब के साथ गुफ्तगू की जाए। मोहब्बत और एहतराम के साथ इख्तलाफ भी किया जा सकता है। बुजुर्गों का ख्याल रखना भी इस रिवायत का अहम हिस्सा है। उनकी सेहत, आराम और जरूरियात का लिहाज करना चाहिए। कभी उनके साथ वक्त गुजारना, कभी उन्हें फोन करना या कभी उनकी किसी छोटी जरूरत में मदद कर देना उनके लिए बहुत खुशी का सबब बन सकता है। आज की मसरूफ जिंदगी में घर के तमाम अफराद के लिए एक साथ वक्त निकालना जरूरी है। एक साथ खाना खाना, चाय या कहवे पर बैठना और हाल अहवाल पूछना बुजुर्गों को अपनायत का एहसास देता है। साथ ही बच्चों को भी खानदानी रवाबत की अहमियत समझ आती है। बुजुर्गों के लिए सबसे कीमती चीज अक्सर तवज्जो होती है। उनकी बात को बेदिली से नहीं बल्कि दिल लगाकर सुनना चाहिए। अगर वो किसी पुरानी रिवायत या तजुर्बे का जिक्र करें तो उनमें दिलचस्पी लेना उनकी इज्जत और खुशी दोनों बढ़ा देता है। कतरी मजलिस में भी बुजुर्गों की मौजूदगी और उनका एहतराम एक खूबसूरत मंजर पेश करता है। लोग उनका इस्तकबाल करते हैं, उनकी बात सुनते हैं और उनके साथ अदब से बैठते हैं। इसी तरह बच्चे महफिल के आदाब देकर सीखते हैं। बुजुर्गों के साथ रवैया सिर्फ खानदान की पहचान नहीं बल्कि माशरे के हुस्ने अखलाक का इजहार होता है। जब लोग अपने बुजुर्गों का एहतराम करते हैं तो वो

0: सितारे उतरेंगे मैदान में, अजमत की जुस्तजू में, टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए, और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए, थमने ना पाए। दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इनक्रिप्टेड चैनल्स और शू प्लेटफॉर्म पर।
1: आप सुन रहे हैं इट्स अ गोल्ड शो विद मोहम्मद अमीन, ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गोल्ड शो में आप सभी का इस्तकबाल है। और स्पोर्ट्स के हवाले से और स्पोर्ट्स के बारे में जितने भी अपडेट्स, न्यूज़ और मैचेस जितने भी हो रहे हैं, होने जा रहे हैं, और यही प्रोग्राम है जहां पे आप सुनते हैं मुझे, और हर इतवार और जुमेरात को। और स्पोर्ट्स के प्रोग्राम्स मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं जहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, कुछ एनालाइज भी कर लेते हैं और साथ साथ एक सवाल भी पूछते हैं। और ये हमारा शो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट शो है, और इसमें आप लोग जुड़ते हैं, और जुड़ने के साथ साथ एक सवाल भी मैं पूछता हूँ जिसमें आपके जवाब होते हैं, और मुझे अच्छा लगता है। हमेशा की तरह मैं यकीनन मैं आप लोगों को बताऊँ कि मुझे सही में बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग स्पोर्ट्स के बारे में बात करते हैं, एंड आप लोग आते हैं ऑन द व्हाट्सएप मैसेजेस में एंड यू शेयर योर इनपुट्स, और आपके जो भी यू नो स्पोर्ट्स रिलेटेड आप लोगों के पैशन है वो शेयर करते हैं। तो मुझे सच बताऊं, एक स्पोर्ट्स करते करते इतना अरसा हो गया है, देन आई फील दैट कतर में मौजूद जितने भी मुकीम हमारे देसी लोग हैं, एंड दे रियली एडमायर स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स टू द हिल्ट, जिस तरह से मैं कहता हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और आज का सवाल आप लोग नोट कर लीजिए, 666-2107 व्हाट्सएप नंबर है। और आज का सवाल ये रहा कि ओडीआई क्रिकेट की तारीख में सबसे ज़्यादा कामयाब कैप्टन अगर कोई होगा तो वो कौन हो सकता है। आपको नाम बताना है, और नाम के साथ साथ आपको आपका नाम बताना है। सो ओडीआई क्रिकेट की तारीख में सबसे कामयाब कप्तान का नाम आप बताइए, आप लोग बताइए, और बाद में मैं देखूंगा कि आप लोगों के जवाब सही हैं या गलत, तो उस पे बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो अभी बढ़ते हैं स्पोर्ट्स हाइलाइट्स ऑफ द वीक में। देखिए कतर में काफ़ी कुछ एक्टिविटीज ऑलरेडी स्टार्टेड, एंड द हीट इज़ ऑन, एंड टेम्परेचर के साथ साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज इज ऑन। और यहीं अगर देखें कि अभी थोड़े से दूर में अम्मान में, जॉर्डन का अम्मान जो कि दारुल हुकूमत है और जॉर्डन कंट्री का, और उसी कैपिटल सिटी अम्मान में कतर के हसन मंसूर ने 24th एशियन कराटे चैंपियनशिप्स फॉर कैडेट्स, जूनियर्स और अंडर 21 एथलीट्स में जूनियर कैटेगरी में ओवर 76 किलोग्राम डिवीजन में सिल्वर मेडल हासिल किया है। इट्स अ वंडरफुल अचीवमेंट। आपको मैंने हमारे इस शो के जरिए आप लोगों को बताते रहता हूँ कि एशियन गेम्स इज राउंड द कॉर्नर, एशियन गेम्स 2026, और एशियन गेम्स 2026 के बाद 2030 का एशियन गेम्स। सो विद इन 4 years टाइम कतर इज होस्टिंग एशियन गेम्स इन दोहा। तो इसीलिए ये जितने भी ओलंपिक स्पोर्ट्स है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप लोगों ने 2022 का वर्ल्ड कप बड़े ही देखा होगा, क्या शान, क्या किस तरह से कतर ने ऑर्गेनाइज किया था। सो उसी तरह एशियन गेम्स भी एक बड़े लेवल पर मल्टी डिसिप्लिन ओलंपिक स्पोर्ट है। जिन लोगों ने कतर आए 2006 के बाद, शायद उनको थोड़ा सा इस बारे में इल्म ना हो, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 2006 में कतर होस्टेड वेस्ट एशिया का पहली मर्तबा जो एशियन गेम्स था, इट वाज होस्टेड इन दोहा। सो दैट वाज द स्प्रिंग बोर्ड, और कतर के लिए वो एक कैंपेन था टू प्रमोट कतर एज अ स्पोर्टिंग डेस्टिनेशन। तो 2006 वॉज द फर्स्ट टाइम कतर होस्टेड एशियन गेम्स। एशियन गेम्स दोबारा बता दूँ कि जैसे कि ओलंपिक गेम्स हैं तो वैसे एशियन गेम्स है मल्टी स्पोर्ट्स डिसिप्लिन, और ओलंपिक स्पोर्ट्स इंक्लूडेड। और इस साल 2026 का जो एशियन गेम्स है वो नागोआ आइची में, जो जापान के शहर है दोनों, और वहाँ पर ये होने जा रहा है, और क्रिकेट भी मौजूद है इस एशियन गेम्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वर्ल्ड कप के बारे में। जैसे मैंने कहा 2022 का वर्ल्ड कप, तो 2022 के बाद अंडर 17 वर्ल्ड कप कतर के पास है, और 2026 का अंडर 17 वर्ल्ड कप जो है वो नवंबर 19 से शुरू होने जा रहा है। दोस्तों मैं इसका एक प्रचार कर रहा हूँ, एक कैंपेन कर रहा हूँ, बिकॉज इट्स अ कतर टूर्नामेंट, एंड कतर के लिए एक बहुत बहुत अहम फुटबॉल टूर्नामेंट है अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप, जो कि 19 नवंबर से 13 दिसंबर तक दोहा में खेला जाएगा। इनफैक्ट एस्पायर अकेडमी के इस जो जितने भी मुख्तलिफ ग्राउंड्स हैं तो टोटल 7-8 ऐसे ग्राउंड्स हैं वहां पर ये मैचेस होंगे एंड इसमें 48 नेशनल टीम्स विल पार्टिसिपेट. 22 नवंबर को कतर का पहला मैच होगा इन ग्रुप ए अगेंस्ट इजिप्ट. सो इस बार भी वी हैव अ लॉट टू सी. इवन कतर के अगर कतर की बात करूं तो लॉट ऑफ न्यू प्लेयर्स हम लोगों को देखने को मिलेगा. सो आप लोग भी पूरी तरह वहां पे शामिल हो जाइए, सपोर्ट कीजिए एंड टीम कतर को. एंड बिकॉज यही टीम कतर के जितने भी जूनियर्स होंगे वो आने वाले टाइम दे विल बी इन द सीनियर नेशनल स्क्वाड. दोस्तों अभी बता दूं कि दोहा में जारी है 10th फीसु वर्ल्ड यूनिवर्सिटी वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप. ये यहाँ पे चल रहा है आपका बहुत ही पास में है एजुकेशन सिटी में. और एजुकेशन सिटी में ये टूर्नामेंट जो है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी एथलेटिक वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप है. तो बेसिकली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं और ये ना समझे कि स्टूडेंट्स हैं बल्कि ये मैं तो कहूँगा कि दे आर वेरी मच प्रोफेशनल. स्पेशली चाइनीज टाइपे, मोल्डोवा, साउथ कोरिया, यहाँ के जो वेट लिफ्टर्स हैं काफ़ी मजबूत हैं. और फिलहाल दूसरे दिन जैसे बुध का बुध में दे वॉन अ लॉट ऑफ गोल्ड मेडल्स और ये मुकाबला 12 सितंबर तक जारी रहेगा. अरब गल्फ कप फुटबॉल फेडरेशन के तहत चैंपियंस लीग जो गल्फ कप चैंपियंस लीग है गल्फ कप चैंपियंस लीग ये इनका जो है ऑलरेडी ड्रॉ सेरेमनी हैज़ ऑलरेडी बीन डन. और ये टूर्नामेंट 13 अक्टूबर से 30 अप्रैल तक खेला जाएगा. तो दोस्तों यहाँ पर मैं लूंगा एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक से पहले सवाल रिपीट कर देता हूँ. जिन्होंने भी अभी ट्यून इन किया है एफएम 107 उनके लिए एक क्वेश्चन है और क्रिकेट से मुताल्लिक ये क्वेश्चन है. और ये सवाल ये है कि ओडीआई क्रिकेट की तारीख में सबसे कामयाब कप्तान का नाम बताइए. आपको सिर्फ टाइप करना है नाम, अगर उनके कंट्री का नाम बताना चाहते हैं वो भी बता दीजिए और साथ में आप लोगों का नाम बताइएगा, लिखिएगा, बताइएगा नहीं बल्कि लिखिएगा. और क्योंकि होता है कि मुझे ढूंढना पड़ता है और इसी वजह से कि वक्त जो है वो बस एक स्प्रिंट मार देता है. सो एनीवे कीप इन टच एंड नो वी टेक अ ब्रेक, शॉर्ट ब्रेक ओवर हियर. कीप लिसनिंग टू एफएम 107. आप सुन रहे हैं इट्स अ गोल प्रोग्राम. मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन एंड विल बी इन टच एंड विल बी शॉर्ट ब्रेक आफ्टर दिस.

0: आप सुन रहे हैं इट्स यॉन एफएम 107 दिल से देसी।
1: जी वेलकम बैक। दोबारा इस्तकबाल करता हूँ आप सारे लिसनर्स के, एफएम 107 के लिसनर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स के हवाले से मैं बात करूँ, आई रियली फील इनकरेज कि आप लोगों को इस तरह से जो मैं सवाल पूछता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों के पास ये सवाल एक छोड़ देता हूँ। एंड यू गाइज रियली डू वेल, एंड आप लोग जो है रिसर्च करते हैं और अपने मुख्तलिफ जितने भी सोर्सेज हैं वहाँ से मालूमात करते हैं कि मैंने सवाल जो पूछा था उसका जवाब क्या है। एंड दैट जवाब जो है काफ़ी लोग कर रहे हैं। और दोबारा रिपीट कर देता हूँ इस सवाल को कि ओडीआई क्रिकेट की तारीख में सबसे ज़्यादा अगर सक्सेसफुल कैप्टन अगर कोई है तो वो कौन है, आपको उनका नाम बताना है। हूएवर हैज ट्यून इन टू एफएम 107 लेट, उनके लिए सवाल दोबारा तीसरी मरतबा रिपीट करता हूँ, ओडीआई क्रिकेट की तारीख में सबसे कामयाब कप्तान का नाम बताइए। काफ़ी लोगों ने मैसेजेस करे जा रहे हैं और बहुत अच्छी बात है। एंड इट्स अ स्पोर्ट्स शो, आप लोगों को जुड़ना चाहिए, स्पोर्ट्स इज अ वे ऑफ लाइफ। मेरा एक कहावत है ये कि आई ऑलवेज बिलीव कि स्पोर्ट्स है तो सब कुछ फिट है, तो स्पोर्ट्स के बिना जिंदगी थोड़ा सा लगता है कि हाफ वे स्टेज है। स्पोर्ट्स इज फिटनेस, एंड फिटनेस जो है सब कोई बताते हैं कि फिटनेस इज इम्पॉर्टेंट, फिटनेस होना बहुत ज़रूरी है। एंड स्पोर्ट्स के जरिए अगर आप बच्चों को भी थोड़ा सा तरबियत दें, स्पोर्ट्स से इन्वॉल्व रखें, तो बहुत सारे ऐसे उल्टे सीधे जो चीज़ें हैं आज के डेट में, आज की दुनिया में, उससे आप दूर रह सकते हैं। आप अपने बच्चों को भी इस तरह के देंगे तो बच्चे भी दूर रह सकते हैं। बिलीव मी, अगर आप इन्वॉल्व रखें स्पोर्ट्स में, कुछ भी, बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल, कुछ भी करिए उसमें आप लोग इन्वॉल्व। इवन शतरंज भी बहुत इंपॉर्टेंट है इंडोर गेम्स में। कैरम आजकल कोई खेलता नहीं है, कैरम बहुत ही पॉपुलर गेम है इंडिया पाकिस्तान में, मैंने देखा है। आई मीन पीपल आर रियली, उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं जब गली नुक्कड़ में लोग कैरम खेलते थे और लाइट जला के, एंड शाम होने के बाद भी लोग कैरम ही खेलते थे। शतरंज है आज थोड़ा सा माहौल, या आज डेट जो बताया मैंने, जैसे बताया कि वेरी मच बिजी स्केड्यूल और हाथ में एक वो जो भी है गैजेट है, और उसी से आपकी ज़िंदगी जो है उठना बैठना सब कुछ उन्हीं से ही शेयर करते हैं। एनीवे दैट्स इट्स कॉल्ड मोबाइल एंड मोबाइल नेटवर्क। एनीवे मूविंग ऑन टू स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स के हवाले से आज जो मैं बात करूंगा इसमें, इस अभी जो बात करूंगा वो है क्रिकेट। एंड एजबेस्टन यानी बर्मिंगहम में इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान के दरमियान तीसरा टेस्ट मैच जो है अब जारी है, और ये तीन मैचों की टेस्ट सीरीज, और इसमें पाकिस्तान आई डोंट नो, कल भी मैं इस पर रिसर्च कर रहा था कि क्या हो गया पाकिस्तान टीम को, कि क्यों दे आर नॉट बीइंग एबल टू प्ले जॉश टंग एंड ओली रॉबिन्सन। एंड जॉश टंग काफ़ी खतरनाक बॉलर है। एंड फ्लैट पिच पर पाकिस्तान की इनिंग्स, जो पहली पारी जो इनिंग्स कल जो सिमट गई वो 133 रन पर, ये पूरे सीरीज में देखा गया है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने 200 रन का जो टारगेट है, टारगेट मतलब 200 रन बना ही नहीं पाए, एंड दैट इज़ सो सैड। और इसी पे काफ़ी पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स जो हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, कमेंटेटर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो भी काफ़ी रिसर्च एनालाइज कर रहे हैं कि आखिरकार हो क्या गया है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, प्लेयर्स उस लेवल का नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बाद में पता चलेगा। बट फिलहाल इंग्लैंड आर चेजिंग क्या मतलब, इंग्लैंड बैटिंग इन द फर्स्ट इनिंग्स, और इंग्लैंड की पारी जो है ऑलरेडी दे हैव लॉस्ट 4 विकेट्स और 181 रन, विच मीन्स बढ़त जो है 48 रन की है फर्स्ट इनिंग्स। और ये कहा जा रहा है कि ये मैच भी फैसला कुन मैच होगा, इस मैच में रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। एंड अगर ये हुआ तो पाकिस्तान को 3-0 यानी तीन सिफर से सीरीज को हारना पड़ेगा। दैट्स व्हाट द मोस्ट एनालिस्ट मोस्ट प्रोजेक्शन आर कि 3-0 क्लीन स्वीप इन फेवर ऑफ इंग्लैंड टीम। सो पता नहीं क्या हो रहा है, बट एनीवे पाकिस्तान ने इस मैच में तीन ऐसे नौजवान खिलाड़ियों को उतारा है, एंड दैट इज समथिंग ये देखने के लिए कि नेक्स्ट जनरेशन ऑफ प्लेयर्स में ये प्लेयर्स कितने अच्छे हैं। रजाउल्ला उनमें से एक है, और रजाउल्ला

ड्रीम स्टार्ट मैं तो कहूँगा कि हाँ, विकेट लिया है जो रूट का और अपने ही चौथे गेंद पर, बट यही तक है। बट ये वन ऑफ द थ्री न्यू कैप्स हैं, जैसे मैंने कहा 21 साल रजाउल्ला जो है बॉलर हैं और उनके साथ साथ गाजी गोरी भी एक नए क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के लिए और उन्होंने भी डेब्यू किया इस मैच में, विकेट कीपर बैट्समैन है। और मोहम्मद इमरान भी हैं इस पूरे सेटअप में, थ्री टोटल कुल मिलाकर 3 नए क्रिकेटर्स को पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने मौका दिया इस टेस्ट मैच में कुछ करके दिखाने का। और इसी टेस्ट मैच से ऐसे 7 खिलाड़ी जो पहले 2 टेस्ट मैचेस में खेले थे उनको वापस भेज दिया गया था पाकिस्तान में, और सरफराज अहमद जो कोच थे उनको भी और उनके असिस्टेंट उमर गुल को भी उनको बाहर कर दिया गया है, और इनके साथ 7 खिलाड़ियों को वापस भेज दिया, जिसमें मोहम्मद रिजवान भी शामिल है। तो ये एक होता है हर टीम के साथ, कभी कभार यू नो देयर इज अ ट्रांजिशन, कुछ एक सेटबैक्स है, स्ट्रगल्स हैं, तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि पाकिस्तान टीम विल बी एबल टू स्टैंड ऑन इट्स फीट। ये टूर तो ठीक है, हो गया, बाद में देयर शुड बी सम एनालिसिस रिसर्च कि क्या हुआ, क्या होना नहीं चाहिए था। दैट्स ऑल अप टू द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बेस्ट ऑफ लक टू द पाकिस्तान क्रिकेट टीम फॉर यू नो डूइंग सम यू नो सोल सर्चिंग होनी चाहिए, एंड आने वाले मैचेस में आई होप दैट पाकिस्तान कम बैक विथ स्ट्रॉन्ग पर्पस। पाकिस्तान जो है 9 अक्टूबर यानी अगले महीने में ही एक्चुअली 2 मैचेस 2 टूर्स होंगे, और लेकिन अब श्रीलंका और इंग्लैंड जो है वो पाकिस्तान का दौरा करेंगी, आई ए श्रीलंकन टीम और इंग्लैंड टीम, और इस दौरान बायलैटरल ट्राई सीरीज खेली जाएगी, और दैट इज ऑल्सो समथिंग हमें देखना पड़ेगा कि हाउ मच पाकिस्तान क्रिकेट हैज़ रियली यू नो हैज कम अप। और बात यह है कि ये सीरीज हारने के बाद क्या मतलब श्रीलंका और इंग्लैंड के अगेंस्ट में अपने ही घरेलू मैदान में क्या कुछ कर पाएंगे। जैसे मैंने कहा, बेस्ट ऑफ लक, उम्मीद पे दुनिया कायम है, और पाकिस्तान टीम के लिए हम हमेशा यू नो वी ऑल से दैट दे आर द बेस्ट टीम राइट नाउ, बट वही है कि कुछ परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में कुछ फ़र्क आ रहा है, तो हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आप चलते हैं फुटबॉल के बारे में, बताते हैं हम लोगों की यूएफए चैंपियंस लीग ऑलरेडी आर स्टार्टेड, बिग टूर्नामेंट, यूरोपी टूर्नामेंट है, लेकिन इसमें हमारा इंटरेस्ट भी इसलिए है कि कतर का ही एक वन ऑफ द क्लब्स अगर कहें तो पीएसजी हैज़ डन रियली वेल, और कल उन्होंने अपना शानदार आगाज करते हुए 6-1 से स्लोवन ब्रतिस्लावा को हराया है। एंड पीएसजी जो है दिफाई चैंपियन है पेरिस सेंट जर्मन के लिए गोल किसने किया बता दूं, वही हीरोज हैं उस्माने डेम्बेले 17 मिनट 23 मिनट, फेरान टोरेस 31 मिनट हैट्रिक के साथ 47 मिनट और 57 मिनट में, और फैबियन रूइस जो है 88 मिनट में ही स्कोर्ड ऑल्सो अ गोल। तो 6-1 की जीत पेरिस सेंट जर्मन के लिए, बहुत ही आसान जीत, और इनके साथ साथ काफ़ी और भी मैचेस हुए हैं, आर्सेनल जिनको हरा कर पीएसजी चैंपियन हुए थे, और आर्सेनल ने भी 1-0 से नेपोली को हराया, एंड इट्स अ ओपनिंग कैंपेन और ये अच्छा रहा। एंड वहीं पे एससीपी गलातासारे तुर्की क्लब है 3-1 से हरा दिया लिवरपूल, और एथलेटिको मैड्रिड लिवरपूल की जीत भी है, लिवरपूल 2-1 से हैज बीटन एथलेटिको मैड्रिड। और आज जो मैचेस हैं वह है रोमा, एस रोमा जो इटली के क्लब हैं, और फेनरबाशे जो कि तुर्की का क्लब है, बहुत ही शानदार मैचेस होने जा रहे हैं, आप लोग देखिए एंजॉय कीजिए, एंड आई वुड से कि दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट यू नो अगेन यू नो एवरी साल कुछ ना कुछ फुटबॉल में हमें नई चीज़ें देखने को मिलती है, और आर्सेनल देखें या यू नो पेरिस सेंट जर्मन को देखें या बार्सिलोना को देखें, तो दे आर ऑल इम्प्रूविंग, हर साल देर इज इम्प्रूवमेंट, नए नए खिलाड़ी आ रहे हैं, एंड उस वजह से जैसे कि बार्सिलोना की बात कर रहा हूँ मैं, बार्सिलोना ने भी एक शानदार शुरुआत की, इसमें फेयनूर्ड जो नेदरलैंड्स का क्लब है उनको हराया 5-1 से, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, रैपिन्हा का गोल है इसमें, और वियारियल को हार का सामना करना पड़ा स्पेनिश टीम और अगेंस्ट जर्मनी के डॉर्टमुंड के अगेंस्ट में मैन सिटी को जीत मिली है, मैन सिटी ने डिफीटेड पोर्टो 2-0 से, रियल माद्रिद की जीत हुई है, इंटर मिलान को 2-1 से हरा दिया है, एंड दैट्स हाउ द फर्स्ट राउंड ऑफ मैचेस वेंट ऑफ। और आने वाले मैचेस में भी हमें थोड़ा सा फोकस रखना है कि इस साल हु इज डूइंग द बेस्ट, और आने वाले फाइनल में, ये मई में होता है ये फाइनल हर साल, और फाइनल में कौन से दोनों टीमें पहुंचेंगी, तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। अब QSL की बात कर रहा हूँ, कतर स्टार्स लीग हमारा अपना लीग है, कतर स्टार्स लीग में क्या चल रहा है मैं आपको बता दूँ, आज अपडेट्स क्या है और आज मैचेस किस किस का है। आज मैच जो होने जा रहा है अल वकरा अशमाल का मैच है।

और 5 बजे है ऑस्ट्रेलिया और असद सामना आमने सामने होंगे। 7:15 पे गराफा का मैच लुसेल के साथ है, कल है यानी जुमे को। रयान वर्सेस अल अहली ये भी कल है। और अगर हफ्ते की बात यदि सनीचर की बात करूं, सैटरडे की बात, अल अरबी का सामना कतर स्पोर्ट्स क्लब से है और अल दोहेल का सामना शाहनिया से है। ये 7:15 पे ये मैच है। तो हर दिन दो दो मैचेस हैं, एक 5 बजे और एक 7:15 यानी 7:15 में। सद इज लुकिंग गुड एंड सद में अभी 3 मैचेस में 9 पॉइंट लेकर सबसे टॉप पर है। शमाल जो है सेकंड पोजीशन पर है और रायान भी थर्ड पोजीशन पर 7 पॉइंट्स के साथ और अल अरबी जो है वो 5 पॉइंट्स लेकर 4th पोजीशन पर है। या दोस्तों ये QSL अपडेट्स और टेनिस की अगर बात करूँ, US ओपन जारी है, ग्रैंड स्लैम इवेंट है, लास्ट ग्रैंड स्लैम इवेंट और 2026 टेनिस में अगर किसी को शौक है बताइएगा, आप लोग बता सकते हैं आप लोगों को कौन सा स्पोर्ट्स ज़्यादा पसंद है। क्रिकेट इज़ नंबर वन डेफिनेटली, फुटबॉल इज़ सेकेंड। अगर आप लोगों को कुछ इस तरह कहना है कि भाई मुझे टेनिस पसंद है, मैं फलाने खिलाड़ी को पसंद करता हूँ, आप भी अपना लिख सकते हैं, थोड़ा सा अपना पसंदीदा खिलाड़ी के बारे खिलाड़ियों के बारे में आप बता सकते हैं, सो दैट आई कैन शेयर इट। बता सकता हूँ कि हाँ फलाने साहब ने ये कहा, फलाने साहब ने वो कहा कि उनको ये खिलाड़ी पसंद है। तो जग ये जैसे कि बताया गया US ओपन टेनिस इज़ ऑन इन न्यूयॉर्क और US ओपन टेनिस में दिफाई चैंपियन कार्लोस अल्काराज में कॉम्पिटिटिव टेनिस में वापसी करते हुए सीधे सेट्स में जीत हासिल की। और वहीं वीमेंस वर्ल्ड नंबर वन अरीना साबालेंका ने भी अपने 3rd लगातार टाइटल के लिए कैंपेन का आगाज आसानी से एक आसान जीत के साथ किया है। और एक बात और आज बता दूं कि जो चेंजेस हुए हैं वो आपको बता दूं, जो अभी तक तो अरीना साबालेंका वॉज नंबर वन वीमेन प्लेयर इन द वर्ल्ड, अब वो चेंज हो गया है कल। क्यों मैं आपको बता दूं, कल जो एक मैच हुआ था इलेना रिबाकिना दूसरी सीड है, सेकंड सीड इलेना रिबाकिना ने चाइनीज क्वालिफायर जेंग किनवेन को हराने के बाद उन्होंने सेमीफाइनल तक पहुंच तो गए एंड उनके साथ साथ अगर देखा जाए उनके वर्ल्ड नंबर रैंकिंग भी चेंज हो गया, नाउ नंबर 2 से अब वो नंबर 1 बन गई हैं और वहीं साबालेंका जो है नीचे की तरफ है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हमें देखने को मिला इन US ओपन टेनिस में। अच्छा दोहा 2026 वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा जो कि 1st से 14th November तक लुसेल शूटिंग कॉम्प्लेक्स में मुनक्किद होगी। किसी को पसंद है क्या शूटिंग वूटिंग? आप लोगों को पसंद है तो आप लोग जाके देख सकते हैं, बहुत मारूफ शूटर्स होते हैं और बड़ा अच्छा लगता है, कूल काम और बड़ा ही एक वो माहौल है जहाँ पे शोरगोर नहीं है, मतलब बहुत ही क्वाइट एक एनवायरनमेंट है लुसेल शूटिंग रेंज, आप लोग जाइएगा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। एंड आई हैव सीन नासिर साले अलातिया को, आई मीन एक तरफ वो गाड़ी चलाते हैं, दूसरी तरफ जब भी शूटिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो वहाँ पर वो ज़रूर पार्टिसिपेट करते हैं। बिकॉज आप लोगों को बता दूँ, नासिर साले अलातिया कतर का यूनिक चैम्पियन है जो मोटो रैली डकार चैम्पियन और साथ साथ 2012 लंदन ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट। नासिर साले अलातिया स्कीट चैम्पियन है, स्कीट यानी शूटिंग में दो एक इवेंट्स हैं, राइफल शूटिंग में एक ट्रैप है और स्कीट है जहां पे नासिर साले अलातिया जो है वो स्कीट कैटेगरी में वो पार्टिसिपेट करते हैं। वहीं एक अस्पायर अकेडमी ने 6 दिन का इंटरनेशनल फेंसिंग ट्रेनिंग कैंप होस्ट किया जिसमें 6 ममालिक से 66 फेंसर्स ने शिरकत की। तो ये थे टोटल अपडेट्स एंड नाउ मूविंग ऑन टू द क्विज अनाउंसमेंट। दोस्तों आज का सवाल ये था कि ODI क्रिकेट कप्तान वो कौन है जो बहुत ही सक्सेसफुल हैं, बहुत ही सक्सेसफुल हैं। तो आज काफ़ी लोगों ने अपने जवाब दिए हैं, लेकिन सही जवाब आप लोगों को बता दूं या पहले बता दूं कि किन किन ने सही जवाब दिए। पहले मैं आप लोगों का नाम पढ़ देता हूं, नाम आप लोग बड़ा ही शेख इरफान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस मैसेज का, आपने बिल्कुल सही कहा है, बहुत सही जवाब है। और सदत अफरीदी साहब ने भी सही जवाब दिया है, कमाल हो गया। तौफीक साहब अलवकरा से, वालेकुम अस्सलाम तौफीक साहब जी, आपका जवाब भी सही है। और कौन है जी, इनका नाम आप लोग लिखते नहीं, अरबाज खान आपने भी सही जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। एंड कालिम पठान साहब ने भी सही जवाब दिया है एंड ऑल ऑफ देम
सही जवाब महा तौफिक साहब, रोनाल्डो फुटबॉलर आपके फेवरेट हैं, वो बहुत बहुत शुक्रिया आपने शेयर किया, आपके फेवरेट फुटबॉलर जो हैं रोनाल्डो हैं। एनीवे आज बात हो रही है कि ओडीआई क्रिकेट की तारीख में सबसे ज़्यादा कप्तान, आई मीन सक्सेसफुल कप्तान, कप्तान कौन रहा है। रिकी पॉन्टिंग ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जिन्होंने भी दिया है बहुत बहुत शुक्रिया। और ना महेंद्र सिंह धोनी ना क्लाइव लॉयड, एंड ये इसलिए कि महेंद्र सिंह धोनी जो है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर देखें तो महेंद्र सिंह धोनी का नाम ऊपर आता है। अदरवाइज अगर मोस्ट सक्सेसफुल कप्तान अगर ओडीआई क्रिकेट में है वो है रिकी पॉन्टिंग, और 200 मैचेस में 165, और अगर टोटल एवरेज की बात करूं तो वो एमएस धोनी यानी महेंद्र सिंह धोनी, किसी ने कहा लंबे बाल वाले वो खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी, उन्होंने 200 मैचेस में 110 जीत, और इंडिया को 2011 वर्ल्ड कप और 2013 का चैंपियंस ट्रॉफी। तो नंबर ऑफ मैचेस अगर काउंट करूं तो रिकी पॉन्टिंग इज द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन इन ओडीआई हिस्ट्री। और वहीं क्लाइव लॉयड के पास अगर विनिंग रेट अगर बताऊं तो वो है 76.2%, 84 मैचेस में से 64 मैचेस, और दो वर्ल्ड कप क्रिकेट टाइटल उनके नाम है 1975 और 1979। तो दोस्तों इसी के साथ आज का इट्स अ गोल प्रोग्राम यहाँ पे खत्म। आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने सही जवाब नहीं दे पाए उनको मैं कहूंगा कि अगली बार दोबारा ज्वाइन करें। तो दोस्तों इट्स अ गोल शो यहीं खत्म होता है, अगले हफ्ते दोबारा मिलते हैं नए जज्बे और अपडेट्स के साथ सिर्फ एफएम 107 पर। और फॉर मोर अपडेट्स ऑन स्पोर्ट्स सुनते और देखते रहिए हमारा एफएम 107 दिल से।

0: privacy ka tahaffuz aitmaad ko mazboot banata hai. National Cyber Security Agency awam se appeal karti hai ki apni zati malumat share karne se pehle privacy policy ko gaur se padhein taki aap jaan sakein ki aapki malumat kis tarah istemal ki jayengi. आपका सोचा समझा फैसला आपकी मालूमात को महफूज रखने के साथ-साथ एतमाद को भी मजबूत बनाता है हमेशा याद रखें डेटा प्राइवेसी का आगाज आपसे होता है
1: FM 107 टाइम चेक
2: Hello, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Studio ki ghadi mein 1:31.
3: Aap sun rahe hain Energy R, RJ Nazia aur RJ Sarwar ke saath sirf FM 107 par. Dil se desi.
2: Anji, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam adab, a very good afternoon. Aap sun rahe hain show Energy R, Sarwar aur Nazia. Hum dono 1 ghante aapke saath rahenge, bahut sari baatein karenge aur abhi se lekar 1 ghante aaj ka hamara saath weekend wala saath hai to kuch aaj khaas bhi hai.
2: Yom al khamis bhai, happy Thursday. Weekend ho gaya hai, kafi logon ka nahi hota hai mujhe pata hai, but koi baat nahi, aapki bhi chutti jab aayegi to aap itne hi khush hoiyega jitna aaj main ho raha hu. Ke bhai Allah ka shukr hai, do din chutti ke milne wale hain aur jinko ek din milta hai unko bhi bahut shukr bhejna chahiye. Alhamdulillah aur baaki apni choice pe hai. Agar hum kaam karna chahte hain chutti ke din bhi to wo to bhai apni choice pe hai. Filhal ye ki aap hamare sath jud sakte hain, program ka hissa ban sakte hain, is weekend को और भी ज्यादा बेहतर बना सकते हैं, हमारे भी मतलब मेरे और नादिया के भी और अपने अपने वीकेंड को भी. तरीके क्या हैं नादिया, किस तरीके से जुड़ सकते हैं हमारे साथ?
4: बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमें मैसेज कीजिए. मैसेज करने के लिए नंबर है 6662107, या फिर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं ओवर अ कॉल. कॉल करने के लिए नंबर है 4434377.
2: Alright then, तो भाई ये नंबर है, देखिए इसके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं. नादिया कॉल आ रही, क्या कह रही हैं?
4: चलिए जोड़ लेते हैं, हमारे साथ जो आ रहे हैं.
2: ओके,
4: हेलो
5: हेलो
4: कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम.
2: अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. जी कौन है हमारे साथ? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक है, आप बताइए कैसे हैं?
5: अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का.
2: इतनी हल्की वाइब आएगी वीकेंड में भाई, तो
4: कैसे जी हैं? कौन है?
2: कैसे काम चलेगा?
4: रईस जी हैं, नूर जी हैं, नसीम जी हैं. अरे मैं चुप रहूंगा,
2: मैं चुप रहूंगा. आपका तकल्लुस ही बदल दिया, कह रहे हैं मैं चुप रहूंगा. आप चाह रही हैं, ये एक्चुअली आप चाह रही हैं?
4: नहीं मैं चाह नहीं रही, मैं क्यों जबरदस्ती आपने मुझे मतलब ये आपके हलक के अंदर घुस के बाद निकाल रहे. नहीं ये लिखते थे ना, मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं चुप रहूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा.
2: ये है सही.
4: अरे पढ़ते आप थे, मेरे तो जहन में बस वो एक जिस्ट है. तो ये मुझे याद है. वैसे कैसे हैं आप? खैरियत से कैसे जा रही है आपकी आफ्टरनून? अल्हम्दुलिल्लाह चलिए ग्रेट. तो कुछ है आपका वीकेंड का प्लान, या फिर आज सोचा है कि आराम करूंगा, रेस्ट करूंगा?
5: क्या बोला?
4: आपका आज कुछ वीकेंड का कुछ प्लान है? पहले तो बताइए वीकेंड होता है, कल छुट्टी होती है आपकी, नहीं होती है?
5: अरे तो वीकेंड है.
4: अच्छा आपका वीकेंड ही नहीं होता. ओके चलिए फिर जब हो तब एंजॉय कीजिएगा. कुछ खास अगर आपने प्लान किया है तो वो आप शेयर करना चाहें शेयर कर सकते हैं. सरवर मिर्ज़ा आप जो है मैसेज किसी को दोस्त को बाद में भी कर सकते हैं.
2: नहीं मैं ये देख रहा हूँ कि किस किस के मैसेज आ रहे हैं. और नसीम भाई चलिए तो आज के मोजे के हिसाब से भी बात कर लेते हैं नसीम भाई से. क्या कहती है नादिया,
4: करना चाहते हैं?
2: हाँ बिल्कुल, छोड़ देंगे शोशा और अच्छा। आगे गेम वगैरह की अगर गुंजाइश रही तो जरूर कोशिश करेंगे कि अच्छा आज तो गेम भी करा जाए,
4: पूछ लेते
2: क्योंकि भाई गेम हो ही जाता हमारे साथ. देखिए 5 मिनट ऊपर हो चुके हैं, हमारा साथ बहुत लंबा रहने वाला, पूरे 55 मिनट. इसमें गाने भी हैं, इसमें अपडेट भी है.
4: माशाल्लाह.
2: और फिर इज्जत मआब हर दिल अजीज आरजे नादिया साहिबा जब तक बोल ना दें 3-4 बाल्टी भर के उनको सुकून नहीं मिलता.
4: मैं एक वर्ड नहीं बोल पा
2: रही.
4: आप ही रहते ना, वो बोल पाते ना मैं.
2: वो कह रहे मैं कुछ नहीं बोलूंगा,
4: वही है मैं चुप रहा हूँ.
2: मौजू
4: तक आप जाने कैसे
2: देंगे?
4: चला भी गया खुदा ना खासा, आप बोलने कैसे देंगे?
2: जी साहब हैं?
5: चुप रहूं?
2: हाँ
4: मैं चुप रहूं
5: तो इल्जाम लग जाते हैं,
2: चुप रहूं तो इल्जाम लग जाते हैं। आय हाय हाय, क्या शेर आ रहा है?
5: चुप रहूं तो इल्जाम लग जाते हैं,
2: हाँ,
5: और बोल पड़ूं तो रिश्ते खत्म हो जाते हैं।
2: दोनों तरफ से खराब हो रहा मामला।
4: अगर मौका मिले तो बीच में आप चले जाए, किसी एक तरफ का पलरा भारी
2: बहुत खराब, बहुत खराब ना दिया, बिल्कुल मजा नहीं आया, बहुत हल्का शेर रहा। नसीम भाई ने कोशिश तो करी अच्छा बनाने की। चलिए तो अब मौजू पे आ ही जाते हैं।
4: आ तो जाएंगे, आप इन्हें बोलने देंगे कि नहीं? नहीं,
2: कसम मैं खुश रहूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। देखो हर जगह अपने लिए कभी भी बुरा मत सोचो, अब मैं खामोश रहूंगा।
4: हाँ चलिए, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है। मिर्जा सर बोलिए
2: जी,
5: आपके लिए एक ये है।
2: एक क्या है?
5: मैं करूंगा तुम्हारा इंतजार। मैं करूंगा
2: तुम्हारा इंतजार।
5: हाँ, जिंदगी भर
2: ठीक है।
5: तुम आने का वादा तो करो एक बार।
2: अच्छा
4: चले जाइए आप।
2: अच्छा ये शेर हो गया ये? अच्छा मैंने कहा क्या अभी कुछ और भी आ रहा? क्या वाह वाह वाह वाह भाई वाह, क्या शेर हुआ, क्या शेर हुआ भाई, जबरदस्त नसीम भाई, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया।
4: हाँ
2: अब बिस्मिल्लाह जी।
4: अच्छा अब आज का जो टॉपिक है उस पर बात करें।
2: अब खुदा के वास्ते यार नसीम भाई, अल्लाह की कसम है तुम्हें, अब खुदा के वास्ते हमारा टॉपिक सुन लो, ऐसा मत करो, देखो इतना मत खुश करो हमें, सुन लो। चलिए
4: मुझे दिल से कहा चलिए, अब इतना पीछे पड़ रहे
2: हैं। मान गए मान गए।
4: अच्छा आज पूछ ही हम आपसे रहे हैं कि आपको ज्यादा क्या पसंद है, कोई आपकी ज्यादा इज्जत करे या आपसे ज्यादा प्यार करे?
2: हाय हाय हाय हाय हाय, क्या मौजू है भाई, वाह वाह वाह। ना ना एक चीज लेके जाएंगे, इतना नहीं है भाई, मार्केट में वैसी कमी बहुत है ना, इज्जत बट रही ना मोहब्बत, आपको सब कुछ चाहिए।
4: पानी तो कहेंगे मुझे मिल ही जाता है, उसकी मुझे फिक्र नहीं, खाना
2: पानी भी बना रहा। नहीं नहीं तो यही यही तो हमने मतलब यही तो खुसूसी सवाल है, खुसूसी
4: ये बोलते वाली बात कही, देखो भाई रिस्पेक्ट यही हमें चाहिए, दिखावे के लिए कर लेते हैं, मजबूरी में भी करते हैं, दिखावे के लिए भी करते हैं, लेकिन प्यार जो है वो दिल से करते हैं। तो मतलब आप चाहेंगे कि लोग आपको ज्यादा प्यार करें, है ना, इज्जत दे या ना दे?
5: तो आपकी बात बिल्कुल सही है।
4: चलिए जी।
5: वैसे नाजियाबान बादाम खाना छोड़ दिए खा रहे?
4: नाजिया मैम ने खाना छोड़ दिया कि मैं खा रही हूँ?
5: बादाम
4: मैं बादाम तो खाती रहती हूँ, इनको खिलवाइए सरवर भाई को, इन्हें वॉलनट्स की जरूरत है, आमंड्स की जरूरत है, दिमागीन तो खा ही रहे हैं, फिर शीशी
2: भाई वाह वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया भाई नसीम साहब, बहुत ही जबरदस्त बातें, और अल्लाह ताला आपका वीकेंड अच्छा गुजरवाए, हमारा भी, हम कोशिश तो कर रहे हैं, नहीं हम तो कोशिश कर रहे हैं कि हमारा अच्छा गुजर जाए किसी तरीके से, तो आगे बढ़ जाते हैं। और बड़े ही प्यारे शेर मेरे भाई, और बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे मोहब्बत करने के लिए। इंशाल्लाह ताला आप संडे में जरूर तशरीफ लाइएगा और नए शेर लाइएगा कुछ, फिर मैं भी सुनाऊंगा आपको, ठीक है? और ऐसे ऐसे सुनाऊंगा सर मैं दर्द ना कर दूं अगर, तो मेरा नाम सरवर मिर्ज़ा नहीं,
4: वो तो वैसे कर रहे
2: हैं, ठीक है? ओके ओके,
4: नाम बदल लीजिएगा संडे तक।
2: भाई शुक्रन शुक्रन शुक्रन, थैंक यू, हैप्पी वीकेंड। संडे इंशाल्लाह, ठीक है नसीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिए अपना, अल्लाह
4: हाफिज़। आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अगर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो थोड़ा सा सोच के बताइएगा कि आप क्या ज्यादा पसंद करते हैं अपने लिए, क्या लोग आपकी ज्यादा इज्जत करें या फिर आपसे ज्यादा प्यार करें, ये आज का हमारा मुद्दा है। रिस्पेक्ट या फिर लव, आपको अगर पिक करना है तो आप क्या पिक करेंगे, आप क्या प्रेफर करेंगे, बस यही सोचना है बताना है हमें, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एंड आई थिंक वी आर कनेक्टेड टू वन मोर कॉलर। हेलो, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, कौन है हमारे साथ?
6: मोहम्मद आजम।
4: मोहम्मद आजम जी कैसे हैं आप?
5: अल्हम्दुलिल्लाह
2: सरवर भाई कैसे हैं और आप कैसे हैं मैम दोनों ठीक हैं सरवर
5: भाई भी अच्छी हैं और मैडम भी अच्छी हैं माशाल्लाह
2: सरवर भाई भी बोल पड़े अरे मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ यार आदम भाई क्या बात कर रहे हैं
5: माशाल्लाह
2: कैसी तबीयत है आदम भाई और कहाँ हैं इस वक्त कैसा रहा सुबह तक से अभी तक का दिन आपका
5: अल्हम्दुलिल्लाह
2: क्या कहते हैं आजम भाई मोहब्बत या इज्जत
5: इज्जत होगी तो सारी चीजें होंगी इज्जत नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा
4: जिसकी इज्जत नहीं होगी उससे मोहब्बत भी नहीं होगी ये कह रहे
5: कुछ नहीं होगा
2: मैं चाहता हूँ एक, एक
4: अच्छा ऐसे नहीं होता आजम जी कि कई बार आप किसी को दिखावे के लिए उसकी इज्जत तो कर रहे होते लेकिन उस तरह से आप उसे मोहब्बत नहीं करते अब मजबूरी है आपको इज्जत दिखावा करना है उसको प्रटेंड करना
5: नहीं,
4: है
5: नहीं, तो दिखावे का तो कोई फायदा नहीं है ना दिखावे का तो कोई फायदा
4: अच्छा मान लेते हैं आपका कोई सुपरवाइजर है कोई आपका जो है वो इमीडिएट बॉस है अब हो सकता है उस तरह से आपकी उससे मोहब्बत ना हो लगाव ना हो लेकिन क्योंकि पोजीशन है और उस पोजीशन की इज्जत करनी ही करनी है एंड यू आर बाउंड टू डू दैट
5: असल में मामला ये है तो जिसने इज्जत करनी है ना मोहब्बत भी करनी है जिसने इज्जत नहीं करनी उसने मोहब्बत भी नहीं करनी
4: तो मतलब ये आप नहीं मानते हैं कि कोई ऐसा है जो किसी को दिखावे के लिए इज्जत करे अगर वो इज्जत कर रहा है मतलब मोहब्बत कर रहा है
5: हाँ, ये बिल्कुल, बिल्कुल।
4: अच्छा
5: सर्दी तो नहीं लग रही आपको
4: नहीं नहीं नहीं नहीं
5: भाई को गर्मी तो नहीं लग रही
4: सवाल तो नहीं लगे आपको मुझे गर्मी तो नहीं
2: नहीं नहीं, नहीं अल्लाह का शुक्र है भाई आजम भाई सब खैर है और बड़ी अच्छी बात
4: ये आइस आइस पैक्स जो है वो सर पर लगाते हैं दिमाग की गर्मी
2: बहुत शुक्रिया आजम भाई हर इंसान जुड़ने के लिए अच्छा कूलिंग के ये एसी के हवाले से नहीं नहीं इनको नहीं लगती
4: आपको वाकई पता है क्या ये हाँ ये
2: भाई देखिए शोहरत ऐसी थोड़ी है हर चीज में बदनाम कर रखा है माशाल्लाह साथ वालों ने वो एक सुबह गए अभी प्रोग्राम करके अभी आगे आगे मैसेज शुरू हो गए कि बिरयानी के कोर में मेरी बोटियां वोटियां सब बदलवा दी उन्होंने खैर अभी उसके हवाले से बात
4: कर रहे हैं आपका फायदा करा
2: जी सर
5: भाई
2: जी आदम
5: आप अक्सर आना चाहें हमारे पास हम आपको बारबेक्यू खिलाएंगे
2: अच्छा
5: टिक्का बोटी खिलाएंगे
2: ओए होए होए होए मेरा भाई
4: बस होंगे आपके
5: अच्छा जी
2: ये तो मुझे भी नहीं पता था चलिए भाई आजम भाई बहुत बहुत शुक्रिया और अल्लाह ताला खुश रखे हैप्पी वीकेंड इंशाल्लाह संडे में आपसे बात होती है तो यहाँ पर कुछ मैसेजेस हैं सऊद भाई हैं हमारे साथ कहते हैं सरवर साहब आपने सुबह का प्रोग्राम सुना था मैंने सुना था आधा तो सुना था और जहाँ तक मुझे पता चला कि बड़ी फिल्में विल्में बनाई गई हैं मुझे लेके बड़ी बड़ी मतलब
4: कल तक तो
2: यश चोपड़ा और करण जौहर और कौन कौन फेल हो गए ऐसी ऐसी बातें हुई
4: वो मूवी सर्वर से सर्वर तक
2: नहीं देखिए मैंने आपको बताया था कि मेरे हाथ में एक रेखा जा रही है एक रेखा जा रही है तो अब रेखा तो बेचारी चली गई
4: है
2: तो ये जो रेखा जा रही है इसमें एक ब्लड लिखा हुआ है मैं ज्यादा तो नहीं बोल सकता हूँ
4: कट भी पड़ा है
2: राजी कम बोलिए मुझे दो दिखने लगी देखिए अभी अभी दूसरी आपको समझ में आ रही किसकी है
4: सर मुझे
2: ये दो हो गई यार एकदम से
4: मुझे भी एक दिख रही है लेकिन चौड़ी बहुत है
2: दो लोग दोनों कलीग्स क्या बात है अकेला बैठ के प्रोग्राम किया करूंगा मैं
4: सुबह भी दोपहर
2: भी ये मैं इसको खुलासा करूंगा ये गाना है उनके लिए जो सुबह शो करते हैं भाईजान एफएम 107 पे आजकल जो सुबह शो कर रहे हैं
4: भाई मेरे भी हाथ में एक रेखा है लेकिन चौड़ी बहुत लग रही
2: जल्दी से वजन कम करना पड़ेगा तो भाई देखिए ये बिगड़ा हुआ जो लाडला है ये गाना खासम खास मैं उसको डेडिकेट कर रहा हूँ दोस्ताना मूवी याद होगी आपको अब इससे ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता ये बिगड़ा हुआ लाडला है ना ये गाना उसके लिए खासम खास मैं चला के जा रहा हूँ बाकी सब खुद समझदार है अर्ज कबीर साहब ये गाना आपके लिए खासम खास

0: उम्मीद है कि आप मुझे सुन रहे हो और आपके कलेजे को ठंडक पड़ी हो।
1: नहीं, कबीर ने, कबीर भाई ने लिख के भेजा।
0: नादिया बाजी ने ये गाना खास तौर पे आपके लिए लगवाया।
1: कबीर भाई ने लिख के भेजा है कि जब मैं बिगड़ा मैं आप ही के दर पे आया। अड्डा वही है।
0: वाह वाह वाह वाह वाह।
2: आप सुन रहे हैं एनर्जी आर।
0: ये देखिए यहाँ पे भी यही बनवाना है।
2: और आरजे सर्वर के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
0: इतना घुस गया है आदमी मेरी जिंदगी में कि मैं क्या करूं। ये मैंने खास तौर पे भाई यौवन खबीज हो गया है।
1: इसके बाद दूसरी लाइन मेरे बहुत जबान पे आती है।
0: अच्छा,
1: बोल नहीं सकती।
0: नहीं नहीं, हाँ नहीं, वो रहने दीजिए।
1: और फिर बताओ।
0: तो भाई वेलकम अहलन वसहलन, खूब सारी कॉल्स, खूब सारे मैसेजेस यहाँ पर। और मुझे मालूम है कि मैसेजेस में तो क्या ही है आज, मैं पढ़ना अच्छा नहीं समझूंगा। यहाँ पे पहले कॉलर ले लेता हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
3: हेलो,
1: वालेकुम
0: अस्सलाम। खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे?
1: खैरियत से। कौन है हमारे साथ?
3: बढ़िया भाई। और भाई, बिरयानी बिरयानी कोरमा वरमा निहारी वारी सब बढ़िया?
0: अल्लाह का शुक्र है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। तैयार करने वाला हूँ जाने के बाद। आप बताइए कि आप कैसे याद कर रहे हैं
1: खाने के हवाले से?
3: बिरयानी कोरमा कबाब सब तो रेडी हो गए, रिलीज भी होने वाले हैं।
1: रिलीज होने वाले
0: ये सुबह से रेडी हो
1: रहे हैं।
0: वही चल रहा है, वही चल रहा है, ये वही चल रहा है। और ये हाथ की लकीरें जो है ना, जो परेशान करेगा वो बढ़ती चली जाएगी। काफी रेखाएं मेरे हाथ में।
3: सर्वर भाई आज जो है ना, आपके टॉपिक पर बात कम होगी और सुबह के टॉपिक पर ज्यादा होगी।
0: अच्छा, ऐसा हो रहा है क्या? चलिए साहब,
3: ऐसे ही होगा। जितने भी मैसेज आएंगे आपके,
0: अल्लाह करेगा सुना ही ना हो किसी ने प्रोग्राम सुबह। दो तीन लोगों के अलावा
3: सुबह का जो टॉपिक चल रहा था उसका, वो तो खत्म हो गया आपका।
0: नहीं, मेरे पास आ गई खबर, आ गई मुझे और नादिया को, पता चल गया।
1: असल में ये खुद एक टॉपिक है।
0: वाह वाह,
1: टॉप से पिक, टॉप से पिक।
0: वाह नादिया, बहुत शुक्रिया यार,
3: इज्जत है। सर्वर भाई, ये बताओ सॉन्ग आया नहीं आया आपके पास?
0: कौन आया?
3: सॉन्ग, गाना आया नहीं आया?
1: गाना आया नहीं आया।
0: हाँ, कुछ
1: आया था, फिर इन्हें देख के घबराया, वापस चला गया।
3: नहीं, जाएगा नहीं वापस। इतना बढ़िया सॉन्ग बनाया सुबह सर्वर भाई।
0: मेरे ख्याल में माज साहब थे जिन्होंने गाना गाया था एक, और वो मैं सुन नहीं पाया।
1: अच्छा, सुना आपने सब? ये भी आपका टैलेंट रहा?
0: नहीं, मुझे बताया लियाकत साहब ने, कबीर भाई ने, कि उन्होंने गाना गाया है कोई और बड़ा अच्छा, और उन्होंने मुझे भेजा भी, मगर यकीन जानिए मैं अभी तक सुन नहीं पाया। सुनूंगा जरूर, उनका खुसूसी शुक्रिया अदा भी करूंगा
3: गाने में। भाई, एक नंबर सुनोगे भाई?
0: अजी हाँ, चलिए सुनूंगा, जरूर सुन लूंगा।
1: अगर कहीं कोई मेरी जरूरत हो, नहीं भाई मेरी जरूरत हो, गाने के वर्ड्स मैं भी बहुत अच्छे
0: नहीं
1: इंतखाब कर सकती
0: हूँ। ओके नादिया, अल्लाह हाफिज़। तो भाई जैद भाई, जल्दी से ये बताइए कि मोहब्बत या इज्जत क्या ज्यादा नहीं, मतलब क्या ही चाहिए दोनों में से एक चीज?
3: दोनों
0: नहीं यार, यही तो असली मुद्दा है
3: ना भाई। अरे यार, इज्जत भी जरूरी है, मोहब्बत भी जरूरी है, ऐसी कैसे बात हो गई?
0: नहीं, फिर भी
1: क्या बात हो गई? सही कहा, ये क्या क्या बात हो गई?
0: फिर भी
3: नहीं यार, आपका टॉपिक गलत है। आपके जो है,
0: मैं सुनो तो सुनो। अरे सुनिए सही,
3: आज आपके तार निकल गए थोड़े सारे।
0: अच्छा सुनिए तो सही, अगर एक चीज फिर भी चूज करनी पड़े तो क्या?
1: चले जाएंगे,
0: मतलब फिर भी
1: नहीं करेंगे, चले जाएंगे,
3: चूज भी नहीं कर सकते।
1: ये देखो कितना अच्छा बोल भाई, मैं पिक नहीं करूंगा।
0: चलिए साहब, कोई बात नहीं,
1: बहुत ही जबरदस्त जवाब दिया
0: अपनी अपनी चॉइस है। अब कोई दोनों ही चीजें रखना चाह रहा है तो क्या करें, अच्छी बात।
1: मैं जवाब से बहुत इम्प्रेस हूँ।
3: कौन भाई, कौन होगा कि या तो खाली इज्जत चुन ले या फिर मोहब्बत चुन ले? भाई दोनों जरूरी है।
0: नहीं, मोहब्बत वो वाली नहीं चुननी है, ये खुद वाली चुननी है।
3: मोहब्बत को आप चाहे किसी भी उसमें चुन लो, चाहे दोस्ती वाली।
0: वाह, ये बात ये
3: वाली मोहब्बत,
0: मैं भी इसी तरफ हूँ। बस ये जो आप जितने
1: आप हैं इसी तरफ, क्योंकि इज्जत आपको रास नहीं आती।
0: आदाब, अच्छा था, अच्छी बात सकती ना दिया।
3: सरवर भाई की तो सर आंखों पर।
0: अरे मेरा भाई कैसा, जैसे भाई पे पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा,
1: आंखें दब जाएंगी।
0: नादिया माइक बंद कर दूंगा आपका, इससे ज्यादा तारीफ
3: करी कोई बात नहीं, हम बर्दाश्त कर लेंगे।
0: अरे मेरा भाई, मेरा भाई, हैप्पी वीकेंड यार जैस भाई, आप खुश रहे भाई, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो चलिए जैस भाई का कहना है कि दोनों चीज रखनी है इनको।
1: और ये मुझे पसंद
0: है, नहीं मैं मान के दूंगा, दोनों ही रखवा देते। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया जैस भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंशाल्लाह ताला संडे में फिर बात और मुलाकात होगी। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया,
1: थैंक यू,
0: ओके, अल्लाह हाफिज़। भाई दिल तो चाहता है कि एक कॉलर से खूब खूब खूब बात करें मैं और नाज़िया, बट मजबूरी होती है। अभी देखिए हम मैसेज अभी तक नहीं ले पाए और यहाँ कॉलर्स। और हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: हेलो,
4: वालेकुम सलाम।
1: माशाल्लाह ये कितनी अच्छी थी इस वाली।
0: कबीर बेदी आ गए क्या हमारे साथ?
1: क्या लोग ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं है कोई और है,
0: ये शाहरुख खान कबीर बेदी की आवाज निकाल रहा है ऐसा लग
1: रहा है।
0: नहीं भाई बड़ा मुश्किल है पहचानना।
1: तो
4: मुश्किल नहीं है बिल्कुल।
1: ये
0: चाय की जगह इन्होंने फोन पकड़ा है आज, आंख खुलते ही बिस्तर पे आंख खुली लाओ भाई, एनर्जी यार, चाय रहने दो, ये वो वाली आवाज है।
4: बिल्कुल बात तो सही, बिस्तर पे ही लेट के बात कर रहा हूँ।
0: मेरा भाई कैसा, तौफीक भाई जैसा, कैसे हैं तौफीक भाई, खैरियत से हैं?
4: अल्हम्दुलिल्लाह, तुम्हारे इंतजार में है दावत का, वीकेंड है ना कल।
0: अच्छा
4: तुमने बोला था ना,
1: तुमने बोला था ना बुलाएंगे ना अब दावत पे।
0: नहीं नहीं आपने गलत सुना, मैंने कहा था मैं आऊंगा, दावत तो थी अपनी जगह।
4: आओगे नहीं, मांगी मुझे दावत, मुझे दावत दिया तुमने, अभी मुकर रहे हो।
1: ये हमेशा मुकर है,
0: इतनी बड़ी गलती मैं अकाउंट में गलती कर सकता हूँ, दावत मैं दे दू, इतनी बड़ी गलती तौफीक भाई ना, अभी आप उठे नहीं,
1: कोई और
0: तौफीक भाई अभी आप उठे नहीं, अभी पूरी तरह उठे नहीं,
1: नींद में,
0: अभी नींद में।
4: मेरे साथ सबूत है, फेस टू फेस।
0: मेरे साथ सबूत है, मेरे पास सबूत है, फेस टू फेस
4: मेरे पास सबूत है, तुमने फेस टू फेस बोला था।
1: हाँ मुझे भी याद है, वो एक फंक्शन में हमें भी तौफीक भाई मिले थे और तुम सरवर मिर्ज़ा आप भी
0: रह जाओ, आपको तो मैं कहीं गवाह लेके ना जाऊं और पता चला केदार गए वो भी मेरे खिलाफ, चुप रहो यार। अच्छा तौफीक भाई
4: बरानी हो जाए
0: इंशाल्लाह हो जाएगी बिल्कुल, जब बनवा ले बता दिएगा, भागता हुआ आऊंगा इंशाल्लाह, बेफिक्र रही
4: मेरे सर पे।
0: अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और दिस इज रियली वेरी गुड कि हम देख रहे हैं तौफीक भाई कितना अच्छा साउंड कर रहे हैं, पिछले दिनों इनके ऊपर आसमान टूट गया, अल्लाह ताला खैर करे। और यही जिंदगी है तौफीक भाई, इसी तरह निकलना भी चाहिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप आए और इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको सेहत दे और तमाम अहले खानों को अल्लाह ताला खुश रखे, अल्लाह ताला खुश रखे। तो चलते चलते बस ये जानना चाहेंगे कि क्या कहते हैं, मोहब्बत या इज्जत?
4: मोहब्बत।
0: अरे मेरा भाई कैसा, तौफीक भाई जैसा, लूट लिया भाई महफिल। चलो भाई मिल गया जवाब, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया।
1: क्यों पूछा ही नहीं आपने?
0: बहुत नहीं नहीं क्यों से मतलब नहीं, मोहब्बत हो गई तो बात खत्म,
4: हो गया
0: अपना तो मोहब्बत में यही उसूल है कि जब तू कबूल है तो तेरा सब कबूल है, बस बात ही नहीं करना,
4: सब कबूल फिर क्या, सिर्फ एक मुल्ला खुलाना है और क्या
0: चाहिए इनके लिए, गाना लगाऊं दोबारा रिपीट। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तौफीक भाई।

0: रहिए, हंसते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। तो भाई थोड़े से मैसेज, उसके बाद हम ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे। वक्त कम होता हुआ कहाँ से शुरुआत करूँ। एक वॉइस नोट है और एक पहला मैसेज हमने पढ़ ही दिया था, तौफीक भाई का मैसेज। चलिए इनसे तो बात हो गई, आगे बढ़ जाते हैं। ये भी वॉइस नोट है और नाम की जगह अल्लाह लिखा है, सुभान अल्लाह। नाम होता तो मैं ज़रूर आपका ले लेता। आगे बढ़ते हैं। जिंदगी पिछले 8 साल से थर्सडे फ्राइडे सब मतलब नहीं मिलता है शायद। हाँ, मेरे ख्याल में ये लिखना चाहते हैं। रिपॉन है हमारे साथ। ओके, एक वॉइस नोट।
1: हमारी बहुत सारी गुड विशेस आपके साथ
0: है। अली अकबर खान का वॉइस नोट। यार अकबर भाई जरूर कोशिश करेंगे कि सुन लें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? माशाल्लाह, अल्लाह पाक खुश व खुर्रम रखे, हंसता मुस्कुराता रखे।
1: आमीन।
0: हसनैन बलोच फ्रॉम पाकिस्तान।
1: हसनैन भाई
0: मोहब्बत नवाजिश कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। मैं सर एक बात कहना चाहूंगा, अगर आपको बुरी नजर नसीम भाई को सर कह दें कि आप कॉल नहीं करते तो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा सर। मैं ये कह रहा था कि टॉपिक के बारे में, जो लोग जिस इंसान से मोहब्बत करते हैं तो उसकी इज्जत भी करते हैं ना, जब मोहब्बत नहीं करते तो इज्जत नहीं करते। तो पहले मोहब्बत है फिर बाद में इज्जत है, मतलब हम जिससे मोहब्बत करते हैं फिर हम उसकी इज्जत भी करते हैं और फिर हम जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं दूसरे मैसेज की तरफ। ये थे गुनाह। ओहो अरबाज भाई, यार सलमान खान का भाई।
1: लेकिन चलिए आज इनका अच्छा मैसेज है।
0: अच्छा, तारिक जमील साहब हमारे साथ जुड़ गए। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया के दुनिया का आलमिया ये है, इज्जत से मोहब्बत महंगी होगी। इज्जत कमाने के लिए पैसे नहीं चाहिए, मोहब्बत के लिए पैसे चाहिए। इज्जत तो हम खुद कमा लेंगे, मोहब्बत से हमें कोई अपना कर देखे, कोई हमें अपना कर देखे, ये कहना चाहते हैं शेख इरफान अल कासमी साहब। चलिए साहब बहुत अच्छी
1: अच्छा
0: बात
1: है, आपका
0: अच्छा जवाब है। शहजादा सलीम कहते हैं मेरा नंबर कब आएगा?
1: क्यों नहीं
0: कॉल मी, मेरा नंबर कब आएगा?
1: शहजादा जी को कॉल मिलाइए।
0: बिल्कुल, जैसे ही अभी मिलाते सलाम। हैप्पी वीकेंड,
1: हैप्पी वीकेंड
0: गोइंग ऑन, प्लीज कॉल मी। दुलकरनैन साहब भी हैं, वो भी चाहते हैं हम उनसे जुड़े। अस्सलाम वालेकुम
1: सर भाई, सबसे पहले आपको मिलानी हो।
0: और नाजिया सिस्टर, सर दुनिया इज्जत करे ना करे, बीवी करे बस, और कुछ नहीं चाहिए। आई मीन वाइफ इज्जत कर ले बस। कौन है मेरा भाई दुनिया से हारा हुआ? गुलाम खान के आगे बढ़ते हैं। यूसुफ भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। गुड आफ्टरनून नाजिया जी और सरूर भाई, कैसे हैं आप दोनों? होप वेल, वेलकम टू एनर्जी आर और थर्सडे आफ्टरनून। सबको विश कर रहे हैं, कह रहे हैं दोनों जरूरी हैं। जहां पे इज्जत है वहीं मोहब्बत होती है और जहां मोहब्बत है वहीं इज्जत आ ही जाती है। ये दोनों एक दूसरे से लिंक है, बट यहां एक ही कहना है तो आई वुड चूज मोहब्बत। बस इसके आगे मैं आपका मैसेज ही नहीं पढ़ रहा, मैं मैसेज ही नहीं पढ़ रहा यूसुफ भाई, इससे आगे नहीं पढ़ रहा मैं। ओके, कौन है हमारे साथ? वसीम भाई हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सरूर भाई, कैसे हैं आप? नाजिया मैम आप कैसी हैं? नाजिया कैसी हैं आप?
1: अल्हम्दुलिल्लाह।
0: कहते हैं यार शादी हुई भी उनकी, सुबह वाला सॉन्ग सेंड कर दिए अगर पॉसिबल हो तो, मैं तो सुन ही सकता हूँ। अच्छा, ये वो शायद जो बिरयानी के ऊपर आया मुबशिर, वो वाला सॉन्ग चाहते हैं। मैं देखता हूँ यार। कहते हैं पहले इज्जत, इतना ही
1: मैं भी कहना चाहती हूँ।
0: हेलो, आई एम यूजिंग व्हाट्सएप, ये नाम की जगह है। कौन है ये नहीं मालूम, नाम नहीं लिखा है इन्होंने। ओके, बढ़ते हैं आगे। मुबीन बुखारी के 68 मैसेज हैं। बहुत बहुत शुक्रिया 68 मैसेज भेजने के लिए मुबीन भाई। कहाँ से छेड़ूं दास्ता, कहाँ तमाम करूं?
1: एक चीज मैं भी कहूंगी यहाँ पे सर्वर, बहुत ही क्विक वन, कि मुझसे भी अगर पूछा जाए इज्जत या मोहब्बत तो आई विल गो फॉर रिस्पेक्ट इज्जत, क्योंकि मेरा ये मानना है कि लव या मोहब्बत जो है वो इमोशंस हैं, कम भी हो सकते हैं ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जो इज्जत है बहुत ही कॉन्शियस चॉइस है। आप नाराज भी होंगे लेकिन आप इज्जत करते रहेंगे, हो सकता है आपका दिल खराब भी हो जाए, लव ऊपर नीचे हो, क्योंकि इमोशंस हैं, यू नो, ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन अगर इज्जत है तो इज्जत है। और मुझे लगता है जहां इज्जत नहीं होती वहां लव भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है, लेकिन जहां पर इज्जत होती है वहां लव जो है या मोहब्बत जो है वो दोबारा भी पैदा हो सकती है। सो इज्जत ज्यादा मेरे हिसाब से जरूरी है, मुझे ऐसा लग रहा है। बट आपने क्योंकि लव कहा तो आप तो जाहिर है इसको नजरअंदाज करेंगे।
0: मैं तो नाम भी ये रख लेता अपना नाजिया, अगर मेरी बात सुनी जाती तो। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, यूं गए और यूं वापस आए।

0: टॉपिक भी लाए।
1: बहुत बहुत शुक्रिया
2: नाजिया जी।
1: मेरे भाई
2: में देखिए नाजिया जी, आपकी रिस्पेक्ट तो है, वो सही है, ठीक है ना। सरवर भाई और कबीर भाई
1: नहीं है।
2: नहीं नहीं नहीं, आप दोनों के लिए लव यू 125 किलो।
1: अरे मेरा भाई, ओए ओए, तोल के लाए, क्या कह रहे। मेरा भाई सेम टू यू,
0: आपके हिसाब से लाए,
1: सेम टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बहुत घर में तो कुछ काम नहीं चलेगा।
1: क्वांटिटी का हिसाब नहीं, उनका तो हो जाता, उनका तो हो जाता, उनका तो छींटों में भी हो जाता। कभी भाई कभी भाई में छींटे भी डाल दो तो हो जाएगा। हमें तो यार चाहिए 1.5 क्विंटल तो चाहिए कम से कम, 125। चलिए साहब, बहुत बहुत शुक्रिया गावा भाई, बड़ी अच्छी बातें। अपना ख्याल रखिए, हैप्पी वीकेंड गावा भाई, हैप्पी वीकेंड, थैंक यू सो मच, टेक केयर, टेक केयर भाई। नादिया व्हाट्सएप नंबर पे भी कॉल आ रही है और इधर दोनों लाइन पे कॉल आ रही है और मैसेजेस आप जो कहते हैं।
0: क्या क्यों डर क्यों है, नंबर क्यों नहीं बता?
1: आप जो कहते हैं वो करने के लिए तैयार हूँ मैं, मतलब कॉल उठाऊं या मैसेज
0: पढ़ूं।
1: नहीं नहीं, इसके अलावा बताइए, मैसेज ले लेता हूँ क्योंकि उन लोग को भी निराश नहीं करेंगे। कहते हैं भाई, इज्जत भी उसको मिलती है जिसके पास मोहब्बत होती है। ये पुरानी हो गई बात अली भाई, नया लाओ कुछ, मार्केट में इसमें नहीं हो पा रहा। आप हमारे MBB कह रहे हैं मी टू, यार समझ में नहीं आई बात। मैं खान में उनके जो मोहब्बत से नवादा गावा भाई ने उनके ऊपर कह रहे होंगे, इकराम भाई ने। आयशा है ना बच्ची का नाम, ये आज की अपडेट,
0: जबरदस्त,
1: बहुत ही प्यारी बच्ची भाई,
0: माशाल्लाह।
1: बच्चे सभी प्यारे होते हैं, अल्लाह ताला सबको खुश रखे, कामयाब करे। कॉलिंग नंबर प्लीज नादिया जल्दी से बता दीजिए।
0: वेल, आप अगर हमें कॉल करना चाहते हैं, नंबर है 443443
1: भाई। हम इनशाला कोशिश करते हैं कि इनको भी शेयर करें। हमें मालूम है आप लोग बात करना चाहते हैं, आप लोग की मोहब्बत है। मुआजरत हम जो छूट जाते हैं हमसे, हम शॉर्ट करके पढ़ते हैं, उसके लिए माफ कीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
1: अहलेन अहलेन, अजहर भाई या सैयद भाई?
3: लोग बोल रहे मोहब्बत और इज्जत में क्या चीज जरूरी है, क्या फर्क है आपका, ये है मोहब्बत है, दिखाएं लाइफ एग्जांपल।
1: क्या बात है यार, क्या बात है, देखिए भाई क्या बात है,
0: ये मोहब्बत नहीं थी, जरूरत थी।
1: क्या बात है, बात क्या है,
0: बात
1: क्या, भूल गए बात करते करते, बात
3: क्या।
0: कैसे आप, खैरियत से?
3: अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मिस किया, बहुत ज्यादा मिस किया। कबीर भाई को ही सुनते रहे हम, और अभी अभी बस ऐसे ही रैंडमली ट्यून किया FM, तो आप दोनों की जोड़ी बैठी हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह,
1: बहुत शुक्रिया,
3: दिल खुश हो जाता। मतलब आप दोनों में से किसी की भी आवाज सुनते ही ना दिल चाहता है 443-443-77 डायल कर दो।
1: बहुत ही जबरदस्त, ये बात हुई,
0: ये और मोहब्बत दोनों है,
1: ये मोहब्बत है और इज्जत भी है, सही कहा।
3: टॉपिक
1: ये है कि भाई क्या था टॉपिक,
0: मोहब्बत या
1: इज्जत,
0: आपको क्या,
1: आपको क्या ज्यादा पसंद है या क्या ज्यादा चाहिए। एक चीज लेके जानी है, अब दो का भी हमारे पास स्टॉक था वो खत्म हो गया, अब फिलहाल दो ही थैले बचे, एक में इज्जत है एक में मोहब्बत है, क्या लेके जाएगी?
3: एक चीज लेकर जाऊं तो मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करूंगा, जो आपके
1: बातों बातों में वो जो हमने अपने लिए दोनों चीजें रखी हैं, हम वो वाला थैला नहीं खोलेंगे, बस एक ही चीज
3: वो वाला,
0: सारे थैले तो आपने अपने लिए रखे, ये बहुत अच्छा।
1: चलिए ठीक है,
3: जो आपके लिसनर्स को भी समझ आए, मतलब अगर अगर आपको आपको किसी से मोहब्बत चाहिए तो आपको मोहब्बत बांटनी पड़ेगी, आपको इज्जत चाहिए तो इज्जत देनी पड़ेगी, पैसा चाहिए तो पैसा अल्लाह की राह में बांटना पड़ेगा।
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात,
1: अच्छा
3: है, मतलब वही बात है, वो अल्लाह ताला फरमाता है कि हम तुम्हें तुम्हारे गुमान के मुताबिक अता करेंगे, तो अपने गुमान को यानी कि अपने शऊर को जो है वो इतना पॉजिटिव कर लो, इतना पॉजिटिव कि एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव फॉर यू।
1: वाह वाह वाह, बहुत आला, बहुत आला, ये हुई यार, ये हुई बात, और ऐसे ही जवाब हम ढूंढ रहे हैं आज, और सभी ने ऐसी बातें करी।
0: हम और इनका थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड वे में था, और बहुत ही अच्छा आपने किया भी और बताया भी। और पता है एक चीज और है, मोहब्बत का ताल्लुक शायद हमसे है, इज्जत का ताल्लुक दूसरे इंसान से है, वो हमारे हाथ में भी नहीं है, तो इसलिए वो ज्यादा कीमती भी है। मुझे
3: इज्जत का ताल्लुक डायरेक्टली फ्रॉम आवर अखलाक, हमारे अखलाक से इज्जत का ताल्लुक है। हमारा अखलाक अच्छा होगा, जबान मीठी होगी, अंदाज़े बयां होगा, जैसे जैसे नाजिया जी, जैसे सरवर भाई, तो इज्जत तो फिर मुकाम
1: है मेरे भाई का, मेरे भाई के साथ।
0: इनको हम दोनों की तरफ से पार्टी होनी चाहिए।
1: नहीं बिल्कुल, दोनों को पार्टी आपको देनी चाहिए, मतलब आपको
0: चाहिए
1: भाई। देखिए हाईलाइट देखिए किधर, आपको इशारा और कर दिया जाए।
0: हमको
3: बिरयानी दे दी है कल जुम्मा, बिरयानी
1: और वो भी हैदराबादी।

0: क्या बात है।
1: कल मेरे तो मेरे दोस्त है, एक एक, एक यूपी आजमगढ़, यूपी बनारस, एक बिहार और एक श्रीलंका, इन्होंने मुझे आज कॉल करके बोला है कि जमील भाई कल हमें बिरयानी खानी है।
0: वाह वाह वाह वाह,
1: हमारी नमाज पढ़ के
0: अल्लाह ताला उसमें बरकत रखे, अल्लाह ताला आप लोगों की महफिल और जो मजलिस है उसको अच्छा करे और उसमें आप लोग खुश होते हैं
2: और अल्लाह ताला इन लोग को हजम भी करवाए।
0: हाँ ये बात भी जरूरी है, हमारे कानों तक बात आ गई है तो एक प्लेट में निकाल के बस साइड में रख दिएगा थोड़ी देर के लिए और उसके बाद खा लीजिएगा, कोई बात नहीं, इंतजार मत करिएगा दादा। चलिए भाई
1: मैं एक बात कहना चाहता हूँ सर भाई, जब भी आप दोनों से बात नहीं होती, आप लोगों का शेड्यूल आगे पीछे हो जाता है तो एक चीज मुझे बहुत मजबूर कर देती है आपको याद करने के लिए, वो क्या है, जब भी मैं ट्यून करता हूँ 107 उर्दू FM तो मुझे एक चीज सुनने को मिलती है, नाजरीन मेट्रो में कदम रखते हो इस चीज का ख्याल।
0: यार इतनी भी लहक से नहीं बात हो रही है उसमें, आपने तो ज्यादा ही लचका दिया।
1: मेरा यकीन करें, मेरा डोपामिन एक्टिवेट हो जाता है सरवर भाई की आवाज सुन के, वल्लाह बता रहा हूँ सरवर भाई, मतलब एक जो हंसी मुस्कुराहट होती है ना खुशी, वो बिखेरने वाले हैं कपिल वपिल, बच्चे आपके सामने
2: के। सैयद जी आपको पता नहीं ये जो रिकॉर्ड करते हैं
0: MOI
2: अवेयरनेस, उससे पहले इनको बकायदा बहुत देर तक डांटा जाता है कि भाई आप हंसेंगे नहीं,
0: बुला के
1: नहीं। सरवर भाई का मैं नाम की नेचुरल परफॉर्मेंस आती सरवर भाई का नाम होना चाहिए डोपामिन।
0: अरे मेरा भाई कैसा, बहुत शर्मिंदा हो रहा हूँ मैं इस वक्त, तारीफ इतनी हो रही है।
1: अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई सलाहियत है सरवर भाई, इससे तो शुक्र अदा करना चाहिए कि हर किसी को नहीं मिलती।
0: बहुत शुक्रिया और अपना ख्याल रखिए इंशाल्लाह ताला।
1: जरूर जरूर, आप दोनों
0: भी हैप्पी वीकेंड भाई। एक गाना तो बनता है यार, कॉल भी है, मैसेज भी है, हम अभी लेते हैं, बस ये छोटा सा
2: मिर्ज़ा आपने नींद चुराई लगा के ये हाय हाय फिर लगा लिया, अब तो फेवरेट सॉन्ग है क्या नहीं।

0: अब पंजाबी गाना सुन के वाकई एकदम लाइफ सैड सी हो जाती है, क्या कहती है नादिया?
1: मुझे लगा आपने कहा मेरी लाइफ सैड हो जाती है।
0: नहीं, सैड सैड सैड आखिर मटा है। और सारी लैंग्वेजेस अच्छी हैं, ऐसी बात नहीं है। और जब हमारे लिसनर्स जो हैं हमारे पास आते हैं और मुख्तलिफ अंदाज में और बात में अपनी बात रखते हैं तो और भी ज्यादा मजा आता है। वक्त होता हुआ 2:20 और यहाँ पर हमारे साथ एक कॉलर भी। हेलो, सलाम अलैकुम।
2: वालेकुम
0: सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग बिल्कुल खैरियत से हैं। भाई आप कैसे हैं? खैरियत से हैं इंशाल्लाह।
1: अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग खैरियत से हैं। कौन है हमारे साथ?
2: मैं मुझे प्यारता हूँ आपको, मोहब्बत चाहिए, पहले मोहब्बत, मोहब्बत मिलेगा तो इज्जत भी मिलेगा,
1: पहले मोहब्बत।
2: जी टाइम का मैं सिर्फ एक बात बोलता हूँ।
1: हाँ जी,
2: जो यहाँ पे फोन करता है उसको मैं रिक्वेस्ट करूँ की लंबी बात ना करूँ, क्योंकि लगातार फोन आ रहा है तो थोड़ी सी बात करूँ।
0: क्या बात है भाई, मुदस्सिर भाई,
1: अच्छी बात आपने की, जबरदस्त,
0: बहुत ही अच्छी बात।
1: और पॉइंट जवाब, मोहब्बत,
0: वाह क्या बात है, मोहब्बत।
1: कह रहे हैं सब थोड़ा थोड़ा बात करें, जैसे सबको मौका मिल जाए।
0: बहुत अच्छा मैसेज,
1: और चलिए इंशाल्लाह,
0: बहुत बहुत शुक्रिया, हैप्पी वीकेंड मुदस्सिर भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू,
1: बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। और एक और हमारे साथ, एक और कॉलर, हेलो,
0: गए मतलब आ गए। हेलो, सलाम अलैकुम।
3: सलाम अलैकुम
0: वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। कैसे मिजाज है
3: भाई? चार दिन से ट्राई कर रहा हूँ, पांचवे दिन जाके कॉल लगी है।
0: अरे अरे अरे,
3: मोहब्बत
1: देख ली आपकी, मोहब्बत
3: वीकेंड आ रहा है भाई। चार दिन लग गए कॉल लगाते लगाते, लास्ट दिन आ गया, बताओ। आज मैं तो बोल रहा हूँ 2 दिन ओवर टाइम कर लो।
0: वाह वाह नादिया, जरा सा इस हफ्ते आप देख लीजिएगा।
1: नहीं, आपसे बात
0: कल परसों
1: मुखातिब आपसे।
0: अच्छा, मुझसे
3: मुखातिब। अच्छा, जब मैं 2-3 बातें बोलना चाहता हूँ। अभी मैं शुरू से प्रोग्राम सुन रहा था, जैसे तौफीक भाई ने, नसीम भाई ने एक शेयर किया था सरदार भाई आपके लिए।
0: शेयर किया ही था, वो हुआ नहीं था, वो पूरी तरीके से बस कर दिया था।
3: हुआ नहीं था वो। हाँ। बोल रहे हैं कि आप आओ तो सही, मैं बोल रहा हूँ कसम से सरवर भाई, अगर आप 1 किलो भी उनकी तरफ चले गए तो 3 किलो कबाब उनके चले जाएंगे।
0: हाय हाय हाय हाय हाय, ये उल्टी तरफ से ज्यादा हो रहे हैं, थोड़े से कबाब यहाँ से ही दे दिए जाएंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये भी सही है। आपने भी सुबह का शो सुना है लग रहा। आइए आइए, तो क्या कहना चाहते हैं, सुबह के हवाले से कहना चाहते हैं या अभी के हवाले से कुछ बात करेंगे आप?
3: अभी के हवाले से एक और कहना चाहता हूँ। नसीम भाई ने भी कहा कि आपको मैं सराखों पे रखता हूँ, अगर उन्होंने रखा तो उनकी आंखों से तो गोटी खेला जाएगा।
0: ओह माय गॉड, बहुत कुछ कहना चाह रहा हूँ मगर मैं रुक जाता हूँ, मैं शरीफ आदमी हूँ ना।
1: कीप दैट ईमेल इन योर माइंड,
0: बिल्कुल। हाँ, ईमेल हमारे साथ यहाँ पर फीमेल बैठी हुई है, तो मैं यकीन जानिए ये बहुत जब्त तो तहम्मुल का मुजाहरा करता हूँ
1: मैं यहाँ बैठ के। मुझे अगर
0: आप 3 घंटे सुबह, अगर मुझे किसी दिन सुबह मिल जाए तो आप देखिए।
1: अरे आप इनको वैसे देखिए ऑफ ईयर,
0: नहीं
1: मैं प्यार
0: को देखिए भाई। कैसे भी देगी, को देगी। अच्छा तो कौन है हमारे साथ, वैसे नाम भूल गया मैं, शुएब भाई हमारे साथ?
3: नहीं,
0: मैं तो ऐसी जानना, मैंने नादिया की तरफ इशारा किया था ताकि इनको चेक करूं कि ये पहचान पाई है या नहीं। मुझे तो पता था उस
1: समय, पहले से
3: समझ रहा हूँ मैं।
1: अल्लाह तेरा शुक्र, कोई समझदार इंसान पहले समझ रहा है ये पहला।
0: अच्छा तो क्या कहना चाहते हैं, मोहब्बत या इज्जत?
3: जी देखिए, मैं तो पहले इज्जत ही कहना चाहूंगा, और nice. मैं ये भी कहना चाहूंगा कि घर वालों प्लीज मेरी इज्जत किया करो।
0: मैं समझ गया मेरे भाई, इस तकलीफ को मैं समझ गया, ये क्यों कह रहे हैं इसके बाद। नादिया ने बड़े उससे कहा नाइस
1: नाइस, इसलिए क्योंकि इज्जत चाहिए।
3: और भाई एक दिन मैं घर में सिर्फ 2 घंटे शांति से बैठा था, घर वाले बोले कि कहां मारपीट करके आया तू। रिकॉर्ड बहुत खराब है, पहले तो मैं इज्जत चाहता हूँ, मोहब्बत तो अल्हम्दुलिल्लाह सब करते हैं।
0: मेरे भाई मैं समझ सकता हूँ,
1: ये सच का इज्जत से ना लोग ये तकलीफ अच्छा फील करते हैं।
0: अच्छा फील करते हैं?
1: आपको रास नहीं आती बात लगे, लोग अच्छा फील
4: भाई कांड करेगा पड़ोसी का लड़का, मार मैं खाऊंगा कि यही था।
0: अरे आप वही हैं? मैं भी ढूंढ रहा था आपको, मैं भी ढूंढ रहा था।
1: मेरे पास ट्रांसफर करने,
0: अरे 3-4 केस पड़े हैं पेंडिंग वो क्लोज करने।
4: खबर भाई मैं वोट बोल हूँ जो बहुत बजा।
0: अरे मेरा भाई अकेले है घर में, मतलब बेटे अकेले हैं आप?
4: नहीं मैं, हम 3 भाई
0: हैं
4: जिसमें से मैं
0: सेकंड
4: नंबर पे हूँ।
0: जबी
1: इसीलिए
0: ऊपर एक है और
1: उनके अलग इज्जत है, छोटे को प्यार बहुत है।
0: प्यार बहुत है।
1: बीच में क्या
0: बचा, कौन? हुसैन।
1: हुसैन
4: नहीं, छोटे वाले का मानदान वाकई में बहुत ज्यादा है।
0: अच्छा
1: अच्छा,
0: चलिए।

0: चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि वक्त भी हो जाता है और अभी एक दो कॉल और लेने की कोशिश है। हुसैन भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारा प्यार और खुश रहिए, हैप्पी वीकेंड,
1: हैप्पी वीकेंड, बहुत सारा प्यार, कबाब खिलाते रहिए हम लोग को, इंशाल्लाह दावत करोगे मैं आऊंगा,
0: इंशाल्लाह इंशाल्लाह
2: आप ये करेंगे नहीं, इंशाल्लाह तो कहते हैं,
0: ओके ओके,
1: नादिया भी है तो मुझे भी पता है,
0: ओके हुसैन भाई, अल्लाह अल्लाह अल्लाह
2: अल्लाह।
0: Oh my God, क्या what a lovely day, weekend बना दिया हमारा यहाँ पे। ये हेलो,
3: सलाम अलैकुम सर भाई।
0: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। हाँ भाई, कौन है?
3: सुभान से बात कर रहा हूँ।
0: कौन कर रहा हूँ?
3: सुभान
0: सुभान यूसुफ भाई। ओ अहलन अहलन अहलन सुभान भाई, कैसे हैं? खैरियत से?
3: अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप दोनों कैसे हैं? ठीक ठाक हैं?
0: अल्लाह अल्लाह का शुक्र है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, और उम्मीद करते हैं कि आप भी खैरियत से होंगे। तो क्या कहते हैं सुभान भाई, मोहब्बत या इज्जत क्या लेके जाना चाहते हैं?
3: बहुत जबरदस्त है, मोहब्बत ऑटोमेटिक हो जाती है और इज्जत आपको करवानी पड़ती है।
2: अच्छे अच्छे काम करो, लोगों की इज्जत करें,
0: मार्केट भी हो रहा है,
2: करवा नहीं पड़ेगी। अब समझ आया सरवर भाई, आप एक बंदा पीछे लेके क्यों चढ़ते? आपकी झूठी तारीफ शुरू हो जाए भाई।
0: हाँ भाई, चलिए कोई तो समझ रहा है मुझे करीब से, एक कबीर भाई के अलावा, इसलिए ये जो दो रेखाएं हैं ये गाड़ी होती जा रही है बहुत ज्यादा। चलिए भाई, कौन है हमारे साथ? अब्बास भाई, नाम भूल गया, सुभान अल्लाह भाई, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, हैप्पी वीकेंड सुभान भाई, चार मिनट रह गए, इजाजत भी देनी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नादिया क्या करें, टाइम तो पूरा हुआ, मैसेजेस नहीं हो पाए और कॉल पूरी नहीं हो पाई। चलिए माजरत तो कर ही लीजिए के हम जो कॉल नहीं ले पाए,
2: और अभी है टाइम हमारे पास, अभी एक कॉल और ले सकते हैं सर,
0: कॉल ले लें या फिर मैसेजेस, चलिए कॉल ही ले लेते हैं
2: और जल्दी से फिर लोगों के नाम।
0: ये हेलो
2: हेलो,
0: लो भैया कॉल भी कनेक्ट होना बंद हो गई। चलो एक आखिरी कॉल ये आ गई, देखिए। हेलो सलाम अलैकुम।
4: वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह
0: बरकातहू। अहलन वसहलन, कौन है हमारे साथ?
4: आसिफ अंसारी।
0: आसिफ अंसारी, आसिफ भाई, आसिफ भाई, कैसे हैं आसिफ भाई, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग भी खैरियत से हैं आसिफ भाई। अब क्योंकि चलते चलते हमारे पास सिर्फ एक ही मिनट बचा हुआ है, तो क्या कहना चाहते हैं?
4: इज्जत, इज्जत के दायरे में मोहब्बत हो ज्यादा बेहतर है।
2: वाह क्या लाइन है भाई,
4: इज्जत के दायरे में मोहब्बत हो, क्योंकि जरूरत से ज्यादा मोहब्बत भी बिगाड़ देती है ना बंदे को।
2: बहुत अच्छा का, बहुत ही सही, शायद मेरा भी झुकाव कहीं ना कहीं इज्जत की तरफ है, इसीलिए मुझे ये सारी चीजें और भी ज्यादा नाइस लग रही हैं।
0: चलिए साहब, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, इजाजत दे रहे हैं।
2: सही कहा कि ठीक है, मोहब्बत जो है वो आपके दिलों को करीब लाती है, लेकिन इज्जत वो फाउंडेशन है जो आपके रिश्ते को हमेशा मजबूत बना के रखती है, तो ये बहुत जरूरी है।
0: चलिए आसिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया,
2: हर रिश्ते में इज्जत
0: इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वक्त हो गया है, तो इंशाल्लाह संडे में आपसे बात
4: करना चाहता हूँ, बहुत लंबी नहीं,
0: बहुत शुक्रिया,
2: बट बहुत ही अच्छा जवाब, थैंक यू जी,
0: हैप्पी वीकेंड,
2: हैप्पी वीकेंड। तो आज का हम जो अगर देखें कंक्लूजन तो कर नहीं सकते, क्योंकि दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है और सभी ने सब तरह से बात की, बहुत सारे लोग जो हैं वो मोहब्बत की तरफ हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो इज्जत की तरफ हैं, जैसे हमने कहा कि दोनों ही चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन रिश्ते में, रिश्ते की जो शुरुआत है या जो रिश्ते को मजबूत बनाती है चीज, वो ऑफकोर्स पहले इज्जत है।
0: मोहम्मद मुमताज हमारे साथ, सुभान हमारे साथ, मुबीन भाई हमारे साथ, मुमताज अहमद, ये कौन थे, अरमान मलिक हमारे साथ।
2: और बस एक चीज और कहूंगी जाते जाते लोगों से, कि आप लोगों की फीलिंग्स की इज्जत कीजिए, चॉइसेस की इज्जत कीजिए, प्राइवेसी की इज्जत कीजिए, ये बहुत जरूरी है।
0: जिब्राइल भाई भी हमारे साथ, तो और जिनका नाम नहीं ले पाए, मैसेज नहीं पढ़ पाए, मुआजरत, और कॉल जिनकी नहीं ले पाए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हैप्पी वीकेंड और खुश रहिए, बस खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रखिए, टेंशन छोड़ देने का, सबको माफ कर देने का, FM 107 सुनते और देख

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: सामईन किराम, जिस तरह अहकाम खुदाबंदी से बेनियाजी नहीं हो सकती, उसी तरह उस्वे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत से बेपरवाही इख्तियार नहीं की जा सकती। सुन्नत रसूलुल्लाह की इताअत भी ऐसी ही जरूरी है जैसी किताबुल्लाह की, इसलिए कि दोनों की पैरवी हुक्म इलाही की पैरवी है। सामईन किराम, इन्हीं हिदायत की रोशनी में पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रूह परवर सुन्नतें। इस प्रोग्राम के हर किस्त में हम एक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, उसके मानी पर गौर करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह ये सुन्नत हमारी रोजमर्रा जिंदगी में रोशनी और सुकून का जरिया बन सकती है। सामईन किराम, इंसान दिन भर कितने अल्फाज बोलता है ना, घर में, दफ्तर में, दोस्तों के साथ, फोन पर गुफ्तगू, पैगामात, तबसरे, सोशल मीडिया पर रद्द अमल, शायद हमें अपने अल्फाज की तादाद याद ना हो। अलबत्ता एक मोमिन की सोच ये होती है कि मैंने जो बोला है इसमें खैर कितनी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें जबान के इस्तेमाल का एक ऐसा मुख्तसर उसूल अता फरमाते हैं जिस पर अमल कर लिया जाए तो हमारी बहुत सी परेशानियां, लड़ाइयां और पछतावे खत्म हो सकते हैं। अबू हुरैरा रदी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन औ लियस्मुत। जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि भलाई की बात कहे वरना खामोश रहे। और कीजिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबान के मामले को किस चीज से जोड़ दिया? ईमान बिल्लाह और ईमान बिल आखिरत से। यानी मोमिन ये सोचता है कि क्या मैं अल्लाह के सामने भी इस बात की जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार हूँ। सामईन किराम, जबान का असर बहुत बड़ा होता है। एक जुमला किसी मायूस इंसान को उम्मीद दे सकता है, वही जुमला दो नाराज दिलों को मिला सकता है। एक जुमला किसी गमजदा शख्स का बोझ हल्का कर सकता है। लेकिन इस लम्हे अगर इंसान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान याद करके अपनी जबान रोक ले तो ये खामोशी नफ्स पर काबू बन जाती है। कभी कोई शख्स हमारे पास किसी तीसरे इंसान की बुराई लेकर आता है, हम भी कुछ शामिल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम रुक जाएं, ये खामोशी खैर है। और कभी किसी बहस में हमें मालूम होता है कि अब मजीद गुफ्तगू से हकीकत वाज़े नहीं होगी, सिर्फ तलखी बढ़ेगी, ऐसे वक्त खामोश हो जाना शिकस्त नहीं। इमाम नववी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, जब इंसान बोलना चाहे तो पहले देखे कि जिस बात को वो कहना चाहता है क्या उसका खैर होना वाज़े है। अगर वो यकीनी खैर है और उस पर अजर की उम्मीद है तो बोले, और अगर ये वाज़े नहीं कि उसमें खैर है तो जबान रोक ले। यहाँ तक कि वाज ऐसी मुबाह बातें भी जिनमें न कोई खास फायदा हो न जरूरत, उन्हें कम करना बेहतर है, क्योंकि बेजरूरत गुफ्तगू कभी आहिस्ता आहिस्ता इंसान को गीबत, तंज, झूठ या दूसरी नामुनासिब बातों तक पहुँचा देती है। सामईन किराम, अगर आज की इस सुन्ना को हम अपनी अमली आदत में तब्दील करना चाहें तो बोलने से पहले चंद लम्हों के लिए हमें तीन सवाल अपने आप से पूछ लेना चाहिए। पहला सवाल ये है कि क्या ये बात सच्ची है कि जो बात मुझे मालूम ही नहीं मैं उसे यकीन के साथ क्यों बयान करूं? दूसरा सवाल ये है कि क्या ये बात खैर और फायदे की है? सच होना तो जरूरी है, लेकिन हर सच्ची बात हर मौके पर कहना जरूरी नहीं। किसी का ऐब वाकई मौजूद हो तब भी बिला जरूरत उसे लोगों में बयान करना मुनासिब नहीं। और तीसरा सवाल ये है कि क्या ये बात अभी अभी कहना जरूरी है? यानी कभी बात दुरुस्त होती है लेकिन वक्त गलत होता है, कभी अल्फाज दुरुस्त होते हैं लेकिन लहजा गलत होता है, कभी नसीहत तो अपनी जगह पर ठीक है लेकिन वो सबके सामने नहीं, तन्हाई में ज्यादा मुअसर होती है। सामईन किराम, तो हदीस का उसूल याद रखिए, फलयकुल खैरन औ लियस्मुत। सामईन किराम, आज की सुन्नत हमें यही सिखाती है कि हर अहम जुमले से पहले दिल में एक छोटा सा दरवाज़ा लगा दें। खैर है हाँ तो बोल दीजिए, खैर वाज़े नहीं तो रुक जाइए। शायद दिन के अख्तिताम पर हमें एहसास हो कि हमारी कितनी गुफ्तगू गैर ज़रूरी थी। اور شاید یہ بھی معلوم ہو کہ خیر کے کتنے الفاظ تھے جو ہمیں کہنے چاہیے تھے لیکن ہم نے نہیں کہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرنے، اسے سمجھنے اور محبت کے ساتھ اپنی زندگیوں میں انہیں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اسی دعا کے ساتھ پروگرام روپر و سنت کے آج کے اس حلقے سے تکنیک کی معاون شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے، سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے رہیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107، دل سے دیسی.

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्पोर्ट्स हाइलाइट्स में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और आज हम बात करेंगे हॉकी के बारे में, यानी फिर हॉकी के बारे में नहीं बल्कि हॉकी के एक लेजेंड के बारे में। और नाम आप लोगों ने सुना होगा और ये नाम आज भी गूंजता है जब भी हम हॉकी कहानी के बारे में हम बात करते हैं, हॉकी न्यूज के बारे में हम बात करते हैं। धनराज पिल्ले के नाम जरूर लिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, धनराज पिल्ले की कहानी सिर्फ गोल्स, मेडल्स और रिकॉर्ड्स की कहानी नहीं, एक ऐसे खिलाड़ी की कहानी है जिन्होंने इंडियन हॉकी के एक मुश्किल दौर में अपनी अलग पहचान बनाई। धनराज पिल्ले का खेल देखने वालों के लिए उनकी सबसे बड़ी खासियत उनकी स्पीड और बॉल कंट्रोल थी। वो डिफेंडर्स के दरमियान से इस तरह निकल जाते थे जैसे गेंद उनके स्टिक का हिस्सा हो। एंड दैट रिमाइंड्स अस ऑफ सो मेनी लेजेंडरी हॉकी प्लेयर्स बिफोर हिम, मोहम्मद शाहिद, जफर इकबाल, हसन सरदार, कलीमुल्ला, समीउल्ला फ्रॉम पाकिस्तान। और उसके बाद हॉकी को स्किल्स और वो टैलेंट की कमी थी और इन सब मारूफ खिलाड़ियों के बाद, आई मीन रिटायरमेंट के बाद, हॉकी वॉज लुकिंग फॉर सम क्लासिकल प्लेयर्स, आर्टिस्टिक स्किलफुल प्लेयर्स, जो कि धनराज पिल्ले ने लेकर आए। धनराज पिल्ले को देखने के बाद धनराज पिल्ले, एवरीबडी थॉट कि हाँ धनराज पिल्ले वो खिलाड़ी हैं जो उस रेंज ऑफ प्लेयर्स जो उनसे पहले खेल चुके हैं उसी लेवल के हैं। एंड एंटरटेनर तो थे ही, उनकी ड्रिबलिंग, क्विक टर्न्स एंड अटैकिंग स्टाइल ने ओपोनेंट्स को अक्सर मुश्किल में डाल दिया। इंटरनेशनल हॉकी में उनका सफर भी कामयाबी से भरा रहा। 1992 बार्सिलोना ओलंपिक्स में डेब्यू करने के बाद उन्होंने अगले 3 ओलंपिक गेम्स में भी इंडिया की नुमाइंदगी की, यानी 4 ओलंपिक गेम्स, बार्सिलोना, अटलांटा, सिडनी और एथेंस, और हर दफा दुनिया के सबसे बड़े हॉकी स्टेज पर इंडिया की जर्सी में नजर आए। लेकिन एशियन गेम्स में धनराज का नाम और भी खास तौर पर उभर कर सामने आता है। 1990 बीजिंग, 1994 हिरोशिमा, 1998 बैंकॉक और 2002 बुसन एशियन गेम्स, इन तमाम इवेंट्स में उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। 1998 में इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाने में उनका किरदार बहुत अहम था, जबकि 2002 में भी इंडियन टीम ने गोल्ड मेडल जीता। दोस्तों, उनका इंटरनेशनल करियर इतना लंबा और शानदार था कि वो मुख्तलिफ जनरेशंस के प्लेयर्स के साथ भी खेले। उन्होंने इंडियन हॉकी के कई बदलते दौरों को अपनी आंखों से देखा और टीम को लीड भी किया। धनराज की एक और खास बात उनकी फियरलेस पर्सनैलिटी थी। वो फील्ड पर किसी भी ओपोनेंट से घबराते नहीं थे, चाहे सामने दुनिया की कोई भी मजबूत टीम हो। धनराज पिल्ले का अटैकिंग अप्रोच हमेशा उन्हें एक खतरनाक खिलाड़ी बनाता था। इसी वजह से उनका नाम इंडियन हॉकी के ग्रेटेस्ट प्लेयर्स में लिया जाता है। लेकिन धनराज के लिए हॉकी सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं थी, यह उनकी जिंदगी, उनकी पहचान और उनका जज्बा। उन्होंने अपने करियर में मुश्किलात देखी, क्रिटिसिज्म का सामना किया और सिस्टम के साथ उनका जो टकराव था वो भी हमें देखने को मिला। लेकिन हॉकी के लिए उनका पैशन कभी कम नहीं हुआ। He was so passionate, he was so focused, he was so much grounded कि उन्हें हॉकी खेलकर इंडिया का नाम और मजीद बढ़ाना था। उन्हें सिर्फ हॉकी दिखता था, हॉकी स्टिक, हॉकी मैदान, हॉकी के एस्ट्रोटर्फ पिचेस यानी सिंथेटिक पिचेस पर। धनराज पिल्ले वाज समथिंग जो कि डिफाइन, हम अगर आप लोगों के लिए अगर क्रिकेट के लफ्जों में अगर बात करूं तो कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली या बाबर आजम या जावेद मियांदाद या कोई भी अगर आप क्रिकेटर्स उठा लें, क्योंकि अब क्रिकेट आप लोगों का, देसी लोगों का सबसे मनपसंद खेल है, तो धनराज पिल्ले को अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो धनराज पिल्ले का जो नजरिया था हॉकी को लेकर वो इस तरह फोकस था, इस तरह पैशनेट था जैसे कि इन तमाम क्रिकेटर्स की जिंदगी में रहा है विद क्रिकेट। आज भी जब इंडियन हॉकी के गोल्डन मोमेंट का जिक्र होता है तो धनराज का नाम जरूर सामने आता है। एक ऐसा खिलाड़ी जो स्पीड से खेलता था, जज्बे से लड़ता था और अपनी परफॉर्मेंस से फैंस के दिल जीतता था।
धनराज ने सिर्फ इंडिया के लिए हॉकी नहीं खेली दोस्तों, उन्होंने एक पूरी जनरेशन को इंस्पायर किया कि अगर टैलेंट के साथ मेहनत, हिम्मत और जुनून हो तो दुनिया के किसी भी स्टेज पर अपना नाम बनाया जा सकता है। दैट वॉज द कन्विंसिंग फैक्टर, दैट वॉज द कन्विंसिंग धनराज पिल्ले, जो उन्होंने दिखाया एक रोड मैप, एक मार्गदर्शन, एक हदफ सेट किया था कि दिस आर द फैक्टर्स जिसके बलबूते पे आप हॉकी स्टार बन सकते हैं। और शायद इसीलिए धनराज को सिर्फ इंडिया का हॉकी लेजेंड कहना काफी नहीं, वो इंडियन हॉकी के उन चंद सितारों में से एक हैं जिनकी रोशनी आज भी नए खिलाड़ियों को रास्ता दिखाती है। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये सेगमेंट पसंद आया होगा। अगली बार एक और स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: FM 107 presents Tech Update.
3: अस्सलाम वालेकुम, मैं दोहा वाला कबीर FM 107 पे एंड वेलकम टू अनदर टेक अपडेट। और जी आज भी बहुत बढ़िया बढ़िया वेबसाइट है, मजा आ जाएंगे आपको, चस आ जाएगी, इस बात का पूरा पूरा वादा है। लेकिन सोशल मीडिया हैंडल्स की तरफ भी जरूर आइएगा। सो सोशल मीडिया हैंडल्स FM 107 Qatar सबसे पहले वेबसाइट्स और उसके बाद हम बढ़ेंगे सीधा खबरों की तरफ। ओके, सो वेबसाइट नंबर वन, इसका नाम है driveandlisten.com। एन है, एंड नहीं है, ये भी बता दूं मैं। सो लेट मी स्पेल इट आउट फॉर यू, driveandlisten, ड्रिवन या फिर ड्राइव एंड लिसन, जैसे मर्जी आप पढ़ना चाहें, दोनों ही ठीक है। सो driveandlisten.com, इस पे जब आप जाएंगे तो आप जो है किसी भी शहर का नाम डालेंगे तो उस शहर के रेडियो को आप सुन सकते हैं और साथ में उसकी सड़कों पे ड्राइव वाला फील भी ले सकते हैं आपकी स्क्रीन के थ्रू। हाउ क्रिएटिव इज दैट यार, क्या कहां जा रही है दुनिया, बहुत कमाल की चीज है। आई हैव नॉट ट्राइड कतर अभी तक, क्योंकि मैं तो मतलब खुद ही रेडियो हूँ, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज का अगर आप कुछ ट्राई करना चाहें ना, यू कैन ट्राई इट। उनकी सड़कों पे घूम सकते हैं आप किसी भी शहर का नाम डाल के, और सीधा सीधा आप जो है उसके साथ साथ आप उनके रेडियोस को भी सुन सकते हैं। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू अनदर वन। तो जी अगला जो है वो है TerraInc.app। मैं बताता हूं फिर से, टेरा TerraInc.app। इस पर जब आप जाएंगे तो आपको ये फिर से पूछेगा शहर का नाम, जब आप शहर का नाम बताएंगे तो उस पे जाने के बाद आप अपने मैप को, फॉर एग्जांपल मैंने इसमें ट्राई किया था कि दिल्ली का नाम डाल के देखता हूं, सो मैंने दिल्ली डाला तो मैप आ गया। उस मैप को आप कैसे भी सजा सकते हैं भाई, उसको आप एंशिएंट लुक दे दीजिए, उसको आप एनिमे टाइप लुक दे दीजिए, उसको आप चेंज कर दीजिए, कलर चेंज कीजिए, इट इज ब्यूटिफुल। और ये काम आता है जब आप वीडियोस बना रहे होते हैं, आप कुछ फैंसी सा अपने कमरे में लगाना चाहते हैं कोई पोस्टर, आप यहां से बना के देखिए, इट इज सो सो यूनिक। और जिसने भी ये सोचा, अच्छा हुआ उसने इस चीज को हल्के में नहीं लिया, बिकॉज ये ऐसी चीज है जो बहुत मेहनत से बनती है अगर आप वैसे फोटोशॉप्स में बनाने लग जाएंगे तो। दिस इज वन ऑफ द कूलेस्ट वेबसाइट्स एवर, मैं फिर से बता रहा हूँ, TerraInc.app, TerraInc.app। जाके देखिए, अपने शहर का मैप खूबसूरती से बनाइए, एंड यू कैन देन प्रिंट इट आउट, टी शर्ट पे लगा लो, गाड़ी पे, दीवार पे लगा लो, कहीं भी लगा लो, मजा आ जाएंगे आपको। ओके, मूविंग ऑन टू अनदर वन, अगली वेबसाइट है buildcores.com, buildcores.com। buildcores.com जिस वेबसाइट पे, इस वेबसाइट पे जो आप जाएंगे तो आप अपना पीसी खुद डेवलप कर सकते हैं। आपको आइडिया लेना कि भाई मेरे पीसी में क्या क्या लगा सकता हूँ, कहाँ कहाँ लगाऊंगा, कैसे कैसे लगाऊंगा, क्योंकि गेमर्स को बड़ा शौक होता है अपने अपने पीसी खुद डिजाइन करने का, वीडियो एडिटर्स को शौक होता है अपने हिसाब से रैम सेलेक्ट करना और ग्राफिक कार्ड्स लगाना और सब कुछ शुरुआत से बिल्ड करना। तो बिल्ड कोर पे जाके आप एक पूरा का पूरा पीसी वर्चुअली बिल्ड कर सकते हैं, एंड देन यू कैन चूज के यार ये बढ़िया लग रहा है, अब मैं जाके असलियत में कर लेता हूँ काम, तो वो आप कर सकते हैं। सच अ यूनिक वे ऑफ परसुइंग दिस, लव्ड इट मैन। तो इसके बाद अब हम बढ़ेंगे खबरों की तरफ। तो देखिए अभी रिसेंटली अपडेट्स के बारे में बात की जाती है, हम ये मानते हैं कि भाई देखो फोन को अपडेट कर लेते हैं तो फोन स्लो हो जाता है, ये कहीं हद तक सच भी है और कहीं हद तक सच नहीं भी है। मगर अभी स्मार्ट वॉचेस के ओनर्स जो हैं उनको कहा गया है, कंपनीज ने बोला कि भाई सुनो अपनी ऐप को अपडेट कर दो, अपनी वॉच को अपडेट करो। बहुत सारे ओल्डर एप्पल गूगल और सैमसंग के वॉचेस हैं जो अभी एंड ऑफ देयर सॉफ्टवेयर सपोर्ट पीरियड तक पहुंच चुकी हैं, और ये कहा जा रहा है कि उनको अपडेट नहीं किया तो फोन के साथ कनेक्ट होकर चल नहीं पाएंगे। तो अगर आपके पास वॉच है और आप अपडेट नहीं मार रहे हैं उसे तो दिक्कत हो जाएगी। प्लीज अपने अपने स्मार्ट वॉचेस को अपडेटेड रखें, बिकॉज अगर सॉफ्टवेयर सपोर्ट चला गया तो फिर आपको धीरे धीरे तकलीफ होगी, और वो धीरे वाली तकलीफ ना नहीं सही जाती ऑनेस्टली। या ट्रू, ऑल द बेस्ट टू यू, एंड ऑन दैट नोट मिलेंगे अगले टेक अपडेट में। दिस इज कबीर साइनिंग ऑफ, अपना ख्याल रखिए, दिल से देसी।
0: आप सुन रहे हैं FM 107 107 दिल से देसी
1: स्कैम अलर्ट।
3: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर आपको नए जमाने के नए स्कैम्स के बारे में पता चलता है। इमेजिन करिए कि आपका कोई अपना बिजनेस है, और इमेजिन क्यों करना भाई, बड़े लोग सुन रहे हैं, आपका बिजनेस होगा, लेकिन ये बिजनेस आजकल बहुत ज्यादा टारगेट पे है स्कैमर्स के, फ्रॉडस्टर्स के, जिन्होंने नए तरीके निकाल के रखे हुए हैं कि लोगों को स्कैम करना है। लेकिन ये स्कैम CEO इम्पर्सनेशन स्कैम है, यानी कि CEO बनकर धोखेबाजी करने वाला स्कैम। कई बार ऐसे स्कैम में एम्प्लॉयज फंस जाते हैं, आपके ऑफिस में काम करने वाले, आपके कंपनी में काम करने वाले, आपके बिजनेस, आपके स्टोर, आपके मॉल में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज हैं वो फंस जाते हैं। कैसे ये स्कैम काम करता है, सबसे पहले इस पर नजर डालते हैं, लेकिन साथ ही साथ सॉल्यूशन पर भी हम बात करेंगे। और सबसे पहले होता ये है कि CEO इम्पर्सनेशन स्कैम, जिसे बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज भी कहा जाता है, कॉर्पोरेट दुनिया का एक बहुत ही खतरनाक और चालाकी से भरा हुआ धोखा है। इस फ्रॉड में क्रिमिनल किसी भी कंपनी के सबसे बड़े बॉस, जैसे कि CEO, मैनेजिंग डायरेक्टर या CFO का भेष जो है वो ले लेते हैं, प्रटेंड करते हैं, और फिर वो सच में बॉस नहीं होते हैं बल्कि एक फेक ईमेल अकाउंट बनाते हैं जो देखने में बिल्कुल असली लगता है। कभी कभी हैकर्स बॉस का असली ईमेल अकाउंट भी हैक कर लेते हैं। इसके बाद हैकर कंपनी के फिनांस या अकाउंट या HR डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय को अर्जेंट ईमेल भेजते हैं, और ये अर्जेंट ईमेल इस बेसिस पे भेजते हैं कि इनको पैसे की जरूरत है और क्लाइंट सामने है। ईमेल में ऐसी कहानी लिखी होती है जिससे एम्प्लॉय डर जाए या बिना सोचे समझे काम कर दे। जैसे हैकर लिखेगा कि मैं एक बहुत ही सीक्रेट और इम्पोर्टेंट बिजनेस मीटिंग में हूँ, इसलिए मुझे कॉल मत करना, हमें एक नए क्लाइंट को तुरंत पैसे वायर ट्रांसफर करने हैं, बैंक ट्रांसफर, नहीं तो डील हाथ से निकल जाएगी। स्कैमर जानबूझकर एम्प्लॉय पर बहुत ज्यादा प्रेशर बनाता है और कहता है कि कंपनी के स्टैंडर्ड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और वेरिफिकेशन स्टेप्स को अभी के लिए बाईपास कर दो, क्योंकि वक्त बिल्कुल नहीं है, क्लाइंट सामने है। एम्प्लॉयज अक्सर अपने सीनियर बॉस के डर से या कंपनी के नुकसान होने के डर से बिना क्रॉस चेक किए पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। आमतौर पर मैं भी यही करूंगा भाई, लेकिन ये जरूरी है कि आपकी ऐसे में ट्रेनिंग हो। वेल, हम सॉल्यूशन पर भी बात करेंगे। होता यह है कि जब आपके ऊपर जबरदस्ती या जल्दबाजी की जाती है तो आपके फैसले लेने में कहीं ना कहीं कमी आ जाती है, आप परफेक्ट फैसला नहीं ले पाते, इसलिए जल्दबाजी में जब भी आप फैसला लेते हैं आपके साथ स्कैम हो जाता है। लेकिन इस तरह के जल्दबाजी वाले ईमेल पर आप जरा भी रिएक्ट ना करें, इसके अलग अलग सॉल्यूशन हैं। इस तरह के स्कैम से आप बच सकते हैं। सबसे पहला जो तरीका है बचने का है वो है वर्बल कंफर्मेशन रूल। अगर ईमेल में ये लिखा है कि अभी मुझे कॉल मत करना, तो ये अलर्ट है आपके लिए, क्योंकि किसी भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन या बैंक डिटेल चेंज की रिक्वेस्ट आने पर सबसे पहला फर्ज यही है कि आप बॉस को डायरेक्ट कॉल करें। और अगर ईमेल में बाकायदा लिखा है कि अभी तुरंत मुझे फौरन चाहिए, तो आपको हमेशा बॉस को कॉल करना चाहिए, और बॉस को भी ये बात समझनी चाहिए कि एम्प्लॉई और बॉस के दरमियान बहुत बड़ा गैप ना हो, और इतना बड़ा गैप खास कर ना हो कि इस तरह के स्कैम हो जाए कि कोई पैसे मांगे और एम्प्लॉई ट्रांसफर कर दे। फाइनेंस डिपार्टमेंट या अकाउंट डिपार्टमेंट जो है वो ट्रांसफर कर भी देते, क्योंकि आमतौर पे CEO जो है वो अकाउंट डिपार्टमेंट से, HR डिपार्टमेंट से थोड़ा दूर दूर से रहते हैं, वो या तो प्रोडक्शन वालों से बात करते हैं या फिर सेल वालों से, है ना, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा चाहे ईमेल कितना भी अर्जेंट हो, बिना आवाज सुने, बिना डायरेक्ट उनके नंबर पे बात किए कोई भी ट्रांसफर पैसा ना करें। उसके अलावा डुअल ऑथराइजेशन प्रोसेस, दो लोगों की परमिशन जरूर होनी चाहिए, ये एक रूल होता है हर कंपनी का। कंपनी में एक नियम बनाए जहां किसी भी बड़े फंड ट्रांसफर के लिए कम से कम दो सीनियर एम्प्लॉयज का अप्रूवल मैंडेटरी हो। तीसरा तरीका है ईमेल स्पूफिंग फिल्टर। अपने IT डिपार्टमेंट को बोलकर SPF यानी कि सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क और ऐसे ईमेल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स का सेटअप करें जिससे इस तरह के स्कैम से बचा जा सके। उसके अलावा एक तरीका है एम्प्लॉय अवेयरनेस ट्रेनिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लास्ट में इसके बारे में इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि अपने अकाउंट्स और फिनांस स्टाफ को रेगुलर इंटरवल्स पर सिक्योरिटी ट्रेनिंग आपको देनी भी चाहिए, और अगर आपने नहीं भी दी है तो आपको एक बार एटलीस्ट ट्रेनिंग होनी चाहिए, या फिर डिजिटल पूरा प्रॉपर PDF के जरिए
1: कुछ कुछ वक्त में हर छह महीने हर तीन महीने में एक बार अपने अकाउंटेंट अपने एचआर को या जो सेल्स या प्रोडक्शन वाले हैं उनको बताते रहना चाहिए थ्रू पीडीएफ थ्रू ईमेल कि किसी भी इस तरह के अनजान ईमेल पर या फिर पैसे ट्रांसफर करने वाली बात पर भरोसा ना करें और सारे प्रोटोकॉल के जरिए ही पेमेंट जरूर करें। तो दोस्तों ये था सीईओ इंपर्सोनेशन स्कैम। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी आपसे कल एक नए जमाने के नए स्कैम के बारे में बात करते हुए। सुनते रहे FM 107 दिल से देसी
4: स्कैम अलर्ट। आप सुन रहे हैं FM 107
5: दिल से देसी।
6: Welcome to our segment called Smart Money. मैं हूँ आपकी दोस्त आपकी होस्ट नासिया। आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल लिटरेसी की। Why money education matter more than anything? देखिए आज के इस फास्ट चेंजिंग फाइनेंशियल वर्ल्ड में फाइनेंशियल लिटरेसी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल बन चुकी है। जब हम फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करते हैं तो उससे पैसे को समझना नहीं बल्कि उसे पैसे को मैनेज करना स्मार्ट डिसीजंस लेना ये इम्पोर्टेंट होता है। इसमें आपकी बजटिंग सेविंग इन्वेस्टिंग डेट मैनेजमेंट फाइनेंशियल प्लानिंग ये सारी चीज़ें शामिल हैं। बहुत से लोग अच्छी इनकम अर्न करते हैं लेकिन फाइनेंशियल नॉलेज की कमी की वजह से अपने पैसे को इफिशेंटली मैनेज नहीं कर पाते। फाइनेंशियल लिटरेसी की इम्पोर्टेंस इस बात से समझी जा सकती है कि आज हर शख्स रोजाना फाइनेंशियल डिसीजंस लेता है। जब हम शॉपिंग करते हैं सेविंग्स अकाउंट खोलते हैं ऑनलाइन पेमेंट यूज करते हैं या इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं तो हम फाइनेंशियल डिसीजंस ही तो ले रहे होते हैं। और अगर इन डिसीजंस के पीछे प्रॉपर नॉलेज ना हो तो इंसान फाइनेंशियल मिस्टेक्स कर सकता है जो कि फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। देखिए फाइनेंशियल लिटरेसी का एक सबसे बेसिक पार्ट है बजटिंग। बजटिंग का मतलब मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि अपनी इनकम और एक्सपेंसेस का हिसाब रखना। जब इंसान को पता होता है कि हर मंथ कितना पैसा आ रहा है और कितना खर्च हो रहा है तो उसके लिए अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को कंट्रोल करना आसान हो जाता है। बजटिंग से अननेसेसरी स्पेंडिंग कम होती है और सेविंग्स के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। देखिए सेविंग्स भी फाइनेंशियल लिटरेसी का एक और इम्पोर्टेंट हिस्सा है। बहुत से लोग सिर्फ जितना कमाते हैं उतना खर्च कर देते हैं लेकिन फाइनेंशियली अवेयर लोग अपनी इनकम का कुछ हिस्सा फ्यूचर के लिए सेव करते हैं। सेविंग इमरजेंसी सिचुएशंस में आपके काम आती है। अगर अचानक मेडिकल एक्सपेंस आ जाए जॉब चली जाए या कोई और इमरजेंसी तो ये आपको एक सपोर्ट देती है। वही फाइनेंशियल लिटरेसी इन्वेस्टमेंट की इम्पोर्टेंस को भी सिखाता है। सिर्फ पैसा सेव करना या पैसा कमाना कभी कभी काफी नहीं है क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से वक्त के साथ पैसे की वैल्यू भी तो कम हो रही है। जो वैल्यू कल 1 लाख की हुआ करती थी अब बिल्कुल भी नहीं है ना। मतलब एक एग्जांपल दे रही हूँ, पैसे की वैल्यू गिरती जाती है। जब लोग इन्वेस्टमेंट के बेसिक प्रिंसिपल समझ लेते हैं तो वो अपने लॉन्ग टर्म गोल्स जैसे एजुकेशन है होम ओनरशिप है रिटायरमेंट प्लान्स हैं इन सब के लिए खुद को बेटर प्रिपेयर कर लेते हैं। देखिए आज के इस डिजिटल एरा में फाइनेंशियल लिटरेसी और भी इम्पोर्टेंट हो गई है। ऑनलाइन बैंकिंग डिजिटल वॉलेट्स और कैशलेस पेमेंट्स ने ट्रांजेक्शन्स को ईजी बना दिया है। एक शख्स हाई सैलरी अर्न करके भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस करता है अगर उसे मनी को मैनेज करना ना आता हो। वहीं दूसरी तरफ एवरेज इनकम वाला पर्सन फाइनेंशियल सिक्योर हो सकता है अगर वो स्मार्ट डिसीजंस लेना जानता हो। तो बस आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी कि फाइनेंशियल लिटरेसी मॉडर्न लाइफ की सबसे वैल्यूबल स्किल्स में से एक है। यह हमें बजट सेविंग्स इन्वेस्टिंग डेट मैनेजमेंट की पूरी थोरो नॉलेज देती है। जो लोग फाइनेंशियल एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देते हैं वो अपने गोल्स अचीव करके फाइनेंशियल स्ट्रेस को कम करने में कामयाब होते हैं। बस जिंदगी का जो सबसे सिंपल फंडा है ना वो यही है। सबसे सिंपल लेसन ये हो सकता है कि जितनी जरूरी पैसे कमाना है दोस्तों उतना ही जरूरी पैसे को समझना और मैनेज करना है। बस कोशिश कीजिए कि आप उसे प्रॉपर तरीके से कमाएं भी मैनेज भी करें मैनेज इन द सेंस सेव भी करें बजटिंग भी करें, डेट को भी मैनेज करें और इन्वेस्टिंग भी करें। वेल चलिए आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी नासिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो सुनते रहिए FM 107 दिल से।

0: सितारे उतरेंगे मैदान में अजमत की जुस्तजू में, टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए, दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इनक्रिप्टेड चैनल्स और शूव प्लेटफॉर्म पर।
1: आप सुन रहे हैं एफएम 107,
2: एफएम 107
3: दिल से देसी।
4: जब नई सोच और नए जज्बात टकराते हैं तो बनता है एक नया नजरिया, द डिबेटेबल टेबल, एक ऐसा शो जहां यंग डिबेटर्स अपने पर्सपेक्टिव से इंस्पायर करते हैं और हर डिस्कशन बन जाता है एक थॉट प्रोवोकिंग जर्नी। द डिबेटेबल टेबल, आरजे फजील और आरजे कबीर के साथ, ओनली ऑन एफएम 107, दिल से देसी।
5: तो अस्सलाम वालेकुम, मैं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे, और आज भी मुझे मौका मिला है, दो मेरे साथ बच्चे हैं जो आज डिबेट करने वाले हैं। देखो, बहसबाजी का नतीजा में तब मजा आता है बहस में, जब बहस जो है वो थोड़ी अकलमंदी की हो, कुछ उससे निकल के भी सामने आए। एंड आई हैव दिस अपॉर्चुनिटी कि इन दोनों के साथ बैठ के आज मैं बहुत सारी बातें करने वाला हूँ। एक बहुत मेजर टॉपिक है आज का, वो टॉपिक ये है कि क्या पढ़ाई करते करते पार्ट टाइम जॉब करने देना चाहिए या नहीं। सो हु इज अगेंस्ट एंड हु इज फॉर?
6: I'm for studying alone.
5: Okay. And
7: group study.
5: Group study के साथ हैं आप? Okay, ठीक है। तो आपने मेरा नाम बता दो एक बार।
6: मेरा नाम हना है।
7: मेरा नाम जागरूक गुप्ता।
5: और दोनों बिरला पब्लिक स्कूल से हैं, right? ओके, सो शाउट आउट टू बिरला पब्लिक स्कूल, एक दो दफा जाने का मौका मिला है, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त बनाया भाई साहब, बहुत बढ़िया बच्चे। एंड मैं तुम दोनों को बताना चाहूंगा, मैं पता शॉकिंग मोमेंट क्या था मेरे लिए, मैं बिरला पब्लिक स्कूल में तुम्हारे स्कूल में गया था और वहां पे एक 8 साल का कोई बच्चा था और मैंने उससे पूछा कि क्या बनना चाहते हो, एंड ही सेड माइक्रोबायोलॉजिस्ट। मुझे गूगल करना पड़ा था होता क्या है। So that's kind of a shock to me. But today, let's discuss. सबसे पहले कौन शुरू करने वाला है तुम दोनों में से? Who's going first?
7: मैं शुरू करता
5: हूँ। Okay, बताओ।
7: तो मेरा पहला पॉइंट है ग्रुप स्टडी के अंदर, कि ग्रुप स्टडी में अलग अलग पर्सपेक्टिव से कॉन्सेप्ट्स बहुत जल्दी क्लियर हो सकते हैं और डीपली हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे आइडियाज जो होते हैं उनको कंबाइन करके बहुत अच्छे आइडियाज बन सकते हैं।
5: ओके,
7: स्ट्रॉन्ग वाले।
5: ओके ओके, क्या कहना चाहोगे हना इस पे?
6: तो अगर अगर वो बोल रहा है कि अलग अलग पर्सपेक्टिव से होता है, हर पर्सपेक्टिव सही नहीं हो सकता है, कंफ्यूजन बहुत होता है। यूजुअली मेरे साथ भी होता है, जब हम लोग ग्रुप स्टडी करते हैं स्कूल पे तो फिर बहुत सारे सजेशन आते हैं एक टॉपिक के लिए कि ये सब चीजें एकदम इम्पोर्टेंट है, लेकिन हर चीज सही नहीं होता है।
5: ठीक है, ओके, तो हर चीज सही नहीं होती, इनका कहने का पर्सपेक्टिव जितने होंगे, जितने चेहरे उतनी कहानियां निकलेंगी और दिक्कत हो जाएगी। सो व्हाट इज योर काउंटर टू इट?
7: मेरा काउंटर है कि ग्रुप हमें अपने हिसाब से सेलेक्ट करना चाहिए, जो अच्छे तुम्हें लगते हैं और जो सही करते हैं उनको हमें रहना, उनके साथ रहना चाहिए और उनके साथ ही ग्रुप स्टडी करना चाहिए, तो फिर हमारा भी पर्सपेक्टिव बदलेगा और फिर सारे पर्सपेक्टिव्स अच्छे हो जाएंगे।
5: अच्छा, ओके, तो कितने तुम मानते हो ग्रुप में दोस्त होने चाहिए एक ग्रुप स्टडीज के लिए?
7: एक ग्रुप स्टडी के अंदर अराउंड 4 to 6 पीपल सही
5: इज इनफ।
7: हाँ,
5: ओके, व्हाट इज योर काउंटर हना, क्या क्या कहना चाहोगे? तो कह रहे हैं कि ऐसे लोग ढूंढो।
6: So, I prefer to study alone, usually at home, because like you have a private space.
5: Okay.
6: ठीक है, तो फिर even if you like, जब कोई friends लोग रहते हैं तो फिर there's mostly a distraction.

0: एक ऐसी चीज है जो अगर तुम चाहते हो तो फिर तभी मिलेगा. तो जो ग्रुप, जैसे मैंने पहले बोला था कि ग्रुप हमें सेलेक्ट करना चाहिए अपने हिसाब से.
1: Okay.
0: जो बच्चे जो होते हैं वो फोकस से थोड़े डिविएट हो सकते हैं, पर अगर तुम सारे एक साथ पढ़ रहे हो तो एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट होता है कि सारे पढ़ने लग जाते हैं.
1: पर आर यू अलाउड टू हैव ग्रुप स्टडीज एट होम? ये पर्सनल क्वेश्चन है.
0: अलाउड है.
1: अलाउड है.
0: हाँ.
1: तो करते हो ट्राई?
0: हाँ करता हूँ मैं. रेगुलरली होता है.
1: रेगुलरली होता
0: है.
1: पढ़ाई होती है उसमें?
0: पढ़ाई तो बहुत होती है.
1: अच्छा ठीक है. तो है ना, हैव यू ट्राइड?
2: नो, कभी बिफोर द एट स्कूल यूजुअली हम लोग के टीचर्स हम लोग को एक पीरियड देते हैं कि ये पीरियड पे तुम लोग स्टडी कर सकते हो, तभी हाँ ठीक है चलता है, क्योंकि टीचर रहते हैं और फिर बातचीत होती है तो ऑब्वियसली इन लोग को पता चल जाता है. तो स्कूल में बेटर है, घर पे कभी करी नहीं
1: है. घर पे कभी?
2: हाँ घर पे हमेशा मेरी भाई बहन लोग के साथ ही मैं पढ़ाई करती हूँ.
1: एंड हाउ डज दैट वर्क? हो जाता है भाई बहन?
2: या क्योंकि भाई बहन बड़े है एंड देन दे नो व्हाट इज लाइक इम्पोर्टेंट. तो I listen to them mostly.
1: वहाँ पे वो एज के हिसाब से विजडम आ जाता है ना, then you kind of एक अंडर प्रेशर के अब तो पढ़ाई करनी पड़ी. अच्छा ओके. पर एक बात बताया, क्योंकि तुमने बताया इतनी सारी ग्रुप स्टडीज करी हैं, उसमें जो मेजर एक बात आती है, जैसे हान ने बोला कि लोग जो हैं उसमें ब्रेक लेते हैं तो फिर वो ब्रेक ही चलता रहता है. अभी देखते हैं यार, पढ़ेंगे यार, एक घंटे बाद देखेंगे, जाना नहीं ना यार. तो डू यू गेट दोज डिस्ट्रैक्शंस? आई एम सो श्योर यू डू, बट हाउ डू यू
0: टैकल? हमने उसको टैकल करने का बहुत बढ़िया तरीका निकाला है.
1: क्या तरीका निकाला है?
0: तो एक चीज होती है पोमोडोरो टाइमर, जिसको हम कहते हैं टमेटो टाइमर या फिर पोमोडोरो टाइमर, जो भी वो
1: एक्सप्लेन कर दो.
0: तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि पहले उसके अंदर कुछ टाइम सेट कर लेते हैं हम, 25 मिनट हम पढ़ेंगे, फिर 10 मिनट ब्रेक लेंगे, तो फिर वो उसमें रहता है कुछ.
1: अच्छा,
0: तो फिर वो रिपीट होता है.
1: योर ब्रेन इज ट्रिक्ड इनटू बिलीविंग कि ये काम कर जाएगा, दैट्स व्हाई. ओके. सो हाँ, क्योंकि मेजरली जब लोग अकेले पढ़ते हैं और पढ़ाई करने का शौक होता है तो फोकस रहता है वहाँ पे. बट अगर तुम्हें कहूँ कि 3-4 टॉपर्स तुम्हारी दोस्त हैं, ऑल ऑफ देम आर टॉपर्स, डू यू थिंक कि अगर सीरियस लोग तुम्हारे आसपास हो गए तो यू विल बी एबल टू फोकस? या
2: यस, इफ यू हैव अ प्रॉपर ग्रुप स्टडी हाँ होएगा, लेकिन फिर प्रॉब्लम है कि हर कोई सेम टाइम पे फ्री नहीं हो सकता है ग्रुप स्टडी करने.
1: अच्छा.
2: एवरीबॉडीज टाइम वेरीज.
1: ओके.
2: और फिर इफ यू स्टडी अलोन यू विल बी फ्लेक्सिबल.
1: Okay.
2: You can study at what time you want, keep a timer, then take a break for 5 minutes, then study again.
1: Okay. So, वैसे क्या टाइमिंग था तुम्हारी पढ़ाई करने का? घर पे कुछ टाइमिंग सेट है? Do you set your alarms and is time से time तक?
2: I don't set alarms usually. I just start studying and when I end, I'll usually like take a break and then I'll start to study again.
1: But like, do you study for 1 hour, 2 hours? What is that time limit? That तक मैं लगता मैं मेरा अब दिमाग थक गया है मुझसे.
2: Yeah, like 1 hour. I don't study much actually.
1: लग नहीं रहा तुम्हें देख के, लग रहा है कि पढ़ाई वढ़ाई बहुत जम के करती हो, है माशाल्लाह.
2: 1 hour is usually मैं दम like एकदम cut to cut, like I don't get any distractions.
1: Okay.
2: 1 hour फिर जो भी है फिर भाई बहन लोग के साथ खेलती हूँ.
1: हाँ.
2: फिर वापस मतलब आधा घंटा जैसा रिविजन नेक्स्ट दिन के लिए जो सब होमवर्क्स है वो सब कम्प्लीट कर
1: देती. Okay, so 1.5 घंटा usually घर पे. तो तुम्हारा क्या सीन रहता भाई अगर ग्रुप स्टडीज का सीन है? हम देखो लड़कों का थोड़ा सा मामला अलग हो जाता है, बिकॉज देन यू हैव थिंग्स इन योर हेड कि आपको लगता है ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ. हाउ डू यू मैनेज? कितने घंटे पढ़ाई हो पाती है?
0: मेरी ग्रुप स्टडी के अंदर एटलीस्ट 2.5 hours नॉर्मली हो पाता है बिना डिस्ट्रैक्शन के. बिना डिस्ट्रैक्शन के थोड़ी तो क्लास भी थोड़ी बढ़ गई है, 9th में हूँ तो फिर वो फिर भी थोड़ा सा रहता है उस पर इन्फ्लुएंस. पर जनरली तो सारे सीरियस है हमारे में अभी. तो
1: सारे सीरियस तो सब पर है, क्या बात कर रहे, लग रही तुम्हें सीरियस नहीं होगी?
0: थोड़ा तो कम है.
1: अच्छा ओके.
0: फिर भी
1: अच्छा
0: रहता है हमारा 2.5 hours रहता है वो. तो, पोमोडोरो टाइमर है ना वो. हाँ, उससे बहुत बढ़िया होता है.
1: या पता नहीं तुम्हारे लिए कैसे काम कर रहा है, बिकॉज़ आई थिंक दैट्स सच अ डिफिकल्ट थिंग. डू यू अंडरस्टैंड दिस होल कॉन्सेप्ट?
2: It's a good concept.
1: Yeah. But do you have anything to say against it? Because
2: no, it's a good concept. It's good to follow a timer and attend it. Like it's good.
1: Okay, तो अगर जो group discussions हैं उसमें कभी जाने का मौका मिला है, जैसे usually लोग रखते हैं group discussions में seniors भी होते हैं juniors भी होते हैं, उस dynamic के बारे में क्या होगा? Do you agree ये dynamic काम करता है या फिर same age same class का dynamic हो तो ज़्यादा बेहतर है?
0: सेम एज सेम क्लास के अंदर सिलेबस सेम होता है तो फिर उसके ज्यादा हम बात कर पाते हैं, तो फिर उससे बल्कि ज्यादा बेटर रहता है.
1: अच्छा, but what if the dynamic is different? Then you have your seniors.
0: Dynamic different है तो फिर सीनियर्स रहना ज्यादा बेटर रहते हैं क्योंकि उनको वो पहले से ही सिलेबस कवर कर चुके हैं तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग रहती है उनके अंदर
1: ओके
0: तो फिर वो तुम्हारी

0: हेल्प भी कर सकते हैं. और लाइक माइनर डाउट जैसे होता है सीनियर के पास, वो तो फिर तभी तो गूगल करना पड़ता है.
1: अब तो खैर मामला गूगल तक जा चुका. बट जैसे हना ने बोला कि जो पढ़ाई है अभी डेढ़ घंटे की उसकी हो रही, it, is it fruitful for you?
2: Yes, it is. Normal days में 1.5 hours, yeah. But like on exam days मैं usually ज़्यादा करती हूँ. Usually हम लोग को exams के बीच में holidays भी मिलती है, तो उसमें ज़्यादा पढ़ाई करती हूँ. Exams के पहले भी एक हफ्ता पहले I study more than my average.
1: ओके, बट जैसे अभी बताया इन्होंने बोला कि ढाई घंटे पढ़ लेते हैं, तो इनका तो ग्रुप स्टडी से मामला इंक्रीज हो रहा है, a number of hours बढ़ रहे हैं, तो क्या कहोगे तुम इस पे?
2: It's actually concept अच्छा है, but like I don't मैं usually भाई बहन लोग के साथ ऐसी group study जैसा हम लोग करते हैं, तो I have my seniors जैसा, तो फिर I take points from them and it's good.
1: सवाल जवाब पूछने में तुम्हें internet का सहारा लगता है या फिर भाई बहन से हो जाता है?
2: नहीं, internet का कभी कभार, क्योंकि ये साल हम लोग के textbooks change हो गए हैं, तो same concepts है but like different topics है, तो कभी कभार internet में जाना पड़ता है.
1: अच्छा, एंड डू यू कंसीडर योरसेल्फ एज एन एवरेज स्टूडेंट या फिर थोड़ा बहुत? देखो मैं एवरेज हूं, तो मेरे सामने तुम बोल सकते हो, कोई टेंशन नहीं.
0: सारे ए वन से सारे ही तक.
1: अरे क्या बात कर रहे हो, माशाल्लाह, वेरी नाइस. एंड हाउ डू यू?
2: या मैथ और साइंस में थोड़ा सा A2 जैसा, लेकिन फिर बाकी सब में A1 ही.
1: ओके. और जो तुम्हारे ग्रुप में लोग हैं उनसे कितने ख्यालात मिलते हैं? अगर पढ़ाई से अलग बात करूं,
0: हाँ,
1: तो ख्यालात कितने मिलते हैं? थॉट्स मैच होते हैं, सिर्फ पढ़ाई के मामले में मैच होते हैं?
0: पढ़ाई के मामले में मैच होते हैं, क्योंकि हमारे में सबको पढ़ना है. लाइक उनके पहले लो मार्क्स आ चुके हैं, तो फिर वो थोड़ा और ज्यादा अचीव करना चाहते हैं, क्योंकि पेरेंट्स को प्राउड करना है और थोड़ा उसमें रहते हैं, तो फिर उससे मार्क्स की वो वैल्यू ज्यादा आती है, तो फिर वो पढ़ने के अंदर भी आती है.
1: तो कोई ऐसा है जो तुम्हारे ग्रुप में तुम्हें लगता है कि थोड़ी शरारत कर जाता है, तो हाउ डू यू कंट्रोल दैट?
0: शरारत करता है तो फिर पोमोडोरो टाइमर जैसे है, उसके अंदर थोड़ा सा एक बार के लिए ब्रेक डाल दो.
1: अच्छा.
0: वो थोड़ा सा कंसिस्टेंसी, वो जनरली होता नहीं है, बहुत रेयर केसेस होता है हमारे के अंदर.
1: But do you think that that's the problem with group studies?
2: Yeah, mostly I think that's the problem. क्योंकि मेरे साथ होता है, distraction बहुत easily हो जाता है. Like you start on one topic about studying, then slowly slowly you go on about the usual life and everything talking. So that's one of the main things why I don't like.
1: But this. Would you like to suggest anything for those who are group studying? उनको भी बताना चाहेंगे भाई ये कर लो तो तुम्हारे उसमें आसानी रहेगी या फिर?
2: के वो timer is a very good idea. Studying by keeping a timer or focusing on one topic is a good idea. But I, if you ask my choice, I prefer to study alone.
1: Okay. तो ये अलोन स्टडी की वकालत कर रही हैं इतनी देर से, तुम्हें अगर कल को कहते हैं तुम्हें क्या दिक्कत है भाई अलोन स्टडी से?
0: अलोन स्टडी के अंदर
1: हाँ.
0: मन बहुत डिवीएट होता है.
1: कैसे डिवीएट होता है?
0: लाइक देखो, पेरेंट्स जो है
1: हाँ.
0: वो देखते हैं कि ग्रुप स्टडी कर रहे हैं बच्चे,
1: ठीक है,
0: तो फिर उनको पढ़ने दो. लाइक बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे, डिस्ट्रैक्ट करने में ऐसे थोड़ा हिसाब नहीं रह पाता,
1: ठीक है.
0: तो फिर जब वो स्टडी अलोन करता है ना, तो फिर देखते हैं कि अकेला ही तो है, उसको जल्दी से बुला लेते हैं, एक मिनट का काम है.
1: हाँ, अच्छा.
0: ऐसे उसमें वो थोड़ा माइंडसेट चेंज हो जाता है स्टडी अलोन करने में, तो फिर डिस्ट्रैक्शन बल्कि ज्यादा बढ़ता है, और पोमोडोरो टाइमर फिर एडजस्ट हो नहीं पाता, और फिर कंसिस्टेंसी छूट जाती
1: है. टाइमर का नाम तो टी शर्ट में छपवाना पड़ेगा, इतना सेल कर दिया इन्होंने. तो व्हाट डू यू से अबाउट दिस? ये कह रहे हैं कि सिंगल स्टडीज में ये प्रॉब्लम है.
2: मेरे पास तो ये प्रॉब्लम नहीं है. जब
1: इट इज अ प्रॉब्लम, डू यू थिंक इट इज?
2: या इट इज अ प्रॉब्लम. यूजुअली मेरे जो दोस्त लोग हैं, लोग बोलते हैं कि इस लोग के साथ ये सब होता है, लेकिन फिर मेरे साथ मेरे पेरेंट्स लोग बोलते हैं कि जब पढ़ाई करते हो तो एकदम पढ़ाई में ध्यान दो. टेल अस व्हेन यू स्टार्टिंग, वी विल नॉट डिस्ट्रैक्ट यू.
1: Okay.
2: So for I have like my own space. I start and then when I end, I tell them and then they can like.
1: Do you like do things before getting into this zone of studying? Ke mere desk pe hona chahiye, hona chahiye.
2: Thoda sa organize karti hu main. Box jaisa hai. Whichever subject I want to study, I'll start. Usually main math or science hi karti hu. Maths mein mere paas ek box hai, to ek practice book, textbook aur wo sab usme.
1: Do you guys prepare anything? मुझे लगता तो नहीं है, लड़के करते नहीं फिर भी.
0: हमारी कबर्ड रहती है.
1: अच्छा, ठीक है.
0: तो उसमें मैथ साइंस अलग अलग करके रखा हुआ है पहले से. तो फिर उसमें पढ़ाई शुरू की, लियो अपना जो पढ़ना है. लाइक मैथ्स जनरली पढ़ते हैं हम, और मैथ्स में वो मार्क्स भी इस बार पेपर जो 9th grade में मिला था उसमें बहुत हार्ड पेपर मिला था. तो फिर जो भी बच्चे मेरे साथ ग्रुप स्टडीज, जैसे हमने ग्रुप जो बना रखा था उसमें A1s

0: निकले सबके और बाकी के 11 फेलियर निकले हमारे.
1: 11 फेलियर निकले. तुम्हारे खुद के कितने नंबर आए थे?
0: 20 आउट ऑफ 20.
1: अच्छा क्या बात है भाई. मैं 100 में से 20 ला चुका हूँ. कोशिश मत करना, डोंट ट्राई दिस एट होम. और हाउ गुड आर यू मैथ्स? मतलब तुमने बताया तुम्हें मैथ्स से
2: चिड़स. मैथ्स मेरा थोड़ा सा वीक पॉइंट है. यूजुअली मैं पढ़ाई में अच्छा करती हूं, बट आई डोंट नो, दिस यूजुअली हैपेंस विद मी इन एग्जाम. आई गॉट कंफ्यूज्ड.
1: तो अकेले स्टडीज तुम्हें लगता है कि अगर कोई ग्रुप में हो तो मैं बता सके, अपार्ट फ्रॉम योर सिस्टर एंड ब्रदर, लाइक अ फ्रेंड हु कुड हेल्प यू?
2: प्रॉब्लम. हां, हम लोग यूजुअली एग्जाम के टाइम पे मेरे फ्रेंड्स लोग, हम लोग एक ग्रुप बनाते हैं. तो फिर उसमें से वी कैन आस्क डाउट. वी डोंट से एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट about studies.
1: Okay.
2: So I'll ask a doubt there ke iska answer kya yahi hai, to fir then they'll answer that.
1: But you don't prefer group studies, you rather make a group?
2: Yeah.
1: But isn't that too tough for you? क्योंकि group studies से उन्होंने बोला कि सब आमने सामने ही है तो काम चल जाता है. उसमें क्या है कि कोई कुछ भी ले सकता है.
2: हम लोग एकदम regular वो नहीं करते. Usually हम लोग के सब doubts clear हो जाते क्योंकि हम लोग को teachers हम लोग पूछ लेते उन लोग को.
1: But that requires lot of discipline, you know.
2: Yeah.
1: क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप बनाना और उसमें एक्टिवनेस दिखाना और इतने अच्छे से पार्टिसिपेशन करना इज अ वेरी वेरी वेरी हार्ड टास्क है ना. डोंट यू थिंक सो? तुम लोगों के भी ग्रुप है भाई?
0: एक ग्रुप बना था, रहा नहीं पा.
1: पढ़ाई की तो बात नहीं होती थी उस पर? नहीं,
0: पहले पढ़ाई की बात होती थी. फर्स्ट मैसेज पढ़ाई का था, फिर उसके बाद सारा बदल गया.
1: ग्रुप का नाम क्या रखा वैसे तुमने?
2: ग्रुप का नाम हम लोग बस मैथ या साइंस डाउट्स जैसा रखते हैं. एक एग्जाम के एक दिन पहले जैसा हम लोग डिस्कस करते, वी सेंड अ वर्कशीट चलते ना हम लोग को, तो जो जिसमें जिस क्वेश्चन में डाउट है वी सेंड अ पिक ऑफ दैट एंड वी टेल देम कि इसका आंसर क्या है. तो फिर एवरीबॉडी गिव्स द सेम आंसर.
1: और तुम्हारा ग्रुप का नाम क्या? Don't say maths and science.
0: नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं होगा.
1: क्या नाम है?
0: रीनेम हो गया वो तो. हाँ. अब वो BPS कोड बन गया था. वैसे
1: तो देखो हाँ ना, क्योंकि इस क्लास में कई मर्तबा होता है, जैसे मैं खुद मैथ्स में बहुत बुरा रहा हूँ, सो यू काइंड ऑफ नीड पीपल अराउंड यू. टेल यू विद ऑल डू रिस्पेक्ट, सेम एज के होते हैं तो थोड़ा आसानी रहती है. उस केस में ग्रुप स्टडीज बिकम अ लिटिल
2: लेकिन ग्रुप्स में भी स्टडी करते तो आई फील बेटर क्योंकि मेरे फ्रेंड्स लोग अच्छे हैं एंड देन दे गिव मी करेक्ट पॉइंट्स. समटाइम्स गलत हो जाता है लेकिन फिर मैं घर पे जाके चेक कर लेती हूँ.
1: सो यू थिंक इट क्रिएट्स कंफ्यूजन काइंड ऑफ ग्रुप?
2: या कंफ्यूजन, कंफ्यूजन बहुत होता है,
1: बहुत ज्यादा होती है.
2: हां
1: ओके, पर ये तो कह रही कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है. क्या कुछ यू हैव अ काउंटर टू इट?
0: कंफ्यूजन तो तभी बनेगा जब आइडियाज क्लियर नहीं होंगे ना. पर हमारे आइडियाज जो हैं वो सारे कंबाइन करते हैं हम, तो फिर उनसे बेटर आइडिया बनता है, तो फिर हमारे कंफ्यूजन बनते ही नहीं है.
1: ओके,
0: जैसे मैंने पहले बोला था वो आइडियाज वाला पॉइंट.
1: हाँ हाँ हाँ ओके. तो ये कुछ कहना चाहोगे तुम इस पे?
2: नहीं,
1: इस पे कुछ नहीं कहना चाहोगे. बट व्हाट डू यू विश टू ग्रो, वांट टू बिकम व्हेन यू ग्रो अप?
2: कार्डियोलॉजिस्ट.
1: कार्डियोलॉजिस्ट?
2: या.
1: Why, sir? But you have to love science then, man.
2: Yeah, I like science. Yeah. I like, but this year it was like kind of tricky. Yeah, it's like, मुझे usually human body के बारे में पसंद है, but like we had acid and bases and everything. So formulas are वो सब में.
1: Ah, now I know what. तुम क्या बनना चाहते हो मेरे भाई, बताओ.
0: Computer scientist.
1: Computer scientist. Because now there are number of branches in.
0: Okay, right? तो branches के अंदर cyber security सबसे interest जागा है अभी तक तो.
1: अच्छा, okay.
0: तो फिर उसी में ही
1: ये interest कहाँ से जगा? Have you seen somebody like?
0: तो क्या था कि basically एक photo से बिल्कुल एक अंदर से photo के अंदर से file निकाल डाली एक.
1: ओके.
0: और ऐसे बहुत सारे hidden चीजें जो होती है वो cyber security से ही निकलती है, like attackers prevent कर रहे हैं, ये सब चीजें कर रहे हैं. उसमें थोड़ा हाइड एंड सीक जैसा गेम भी हो गया तो फिर उसमें भी इंटरेस्ट जगा हुआ है. तो फिर ऐसे वो बनते रहते हैं.
1: एंड इज देयर एनीवन यू लुक अप टू सिंस यू वांट टू बिकम अ कार्डियोलॉजिस्ट? कोई ऐसा है?
2: सर, मैं मेरी बहन को बनने का था और फिर बट लाइक नो, बट आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग द हार्ट. आई मुझे एकदम इंटरेस्टिंग लगता है उसका स्ट्रक्चर और वो सब. तो फिर आई वांट टू स्टडी इट मोर एंड देन यू नो ट्रीट.
1: बेचारे ब्रेन को क्यों अकेला छोड़ दिया तुम? ब्रेन इतनी बुरी चीज थोड़ी है. Why not brain then? You never make...
2: Brain मुझे पसंद है but not as much as I like the heart.
1: Just the shape of it or is there some...
2: No. I just like the studies of it. Like usually heart तो ही main part करता है, उसे pumping blood continuously.
1: Yeah.
2: और वो सब तो I find it very interesting.
1: बेचारा देखो brain की कोई इज्जत नहीं है. देखो हमारी actually पता गाने भी नहीं बनते brain पे. Problem ये भी है. There are no songs as such. And is there any other field you're interested in?

0: not in terms of career choice, but is there any other field that you see?
1: Yeah, I'm interested in running. In sports, usually, I'm very interested.
0: Okay.
1: Swimming, to abhi main classes kar rahi hu, but running has always been a favorite sport. Of mine.
0: Oh, nice. So, is sports mein specifically koi sport hai?
1: Teams rehte hum log ke school mein, to coco ke team mein main hu.
0: Oh, nice.
1: Haan, offer sports day bhi hota hai hum log ke school mein, to running mein main usually 100 meter, 50 meter jaisa part.
0: Very nice, very nice. So, tumhare kaise ne cyber security love? Do you see anything else? Kuch aise skill hai jo achhe lagte?
2: Football mein bahut improve hua hu main.
0: Acha, improve ho.
2: Improve hua hu aur self-confidence bhi rehta hai.
0: Acha, interesting.
2: Ki like ghar pe bhi, like कुछ काम नहीं है तो फिर बॉल दिखी शुरू हो गया
0: अच्छा वैसा
2: लाइक इंटरेस्ट खुद ही आ जाता है अंदर से
0: क्रिकेट की तरफ नहीं गए कभी
2: हां
0: क्रिकेट की तरफ नहीं गए कभी
2: क्रिकेट की तरफ एक बार गया था फिर उसके बाद हार्ट टूटने का इंसिडेंट हो गया
0: अच्छा ओके ओके सर जितना मुझे लगता है ना तुम ग्रुप स्टडीज कास्ट में अगेंस्ट बोलना है उतने ही ज्यादा तुम्हें लगता है कि जरूरत पड़ेगी ना ग्रुप की जरूरत चाहिए
1: ग्रुप की चाहिए रहती है लेकिन फिर मुझे तो पसंद है ग्रुप स्टडीज
0: डू यू थिंक ग्रुप स्टडीज में एक को sort of a leadership quality होनी चाहिए
1: हाँ हम लोग के पास है लड़की है जो बहुत अच्छा करती है she organizes everything she's like ये person ये पढ़ के लेके आएगा और फिर हम लोग कल इसको discuss करेंगे तो फिर वो अच्छा है वो
0: and this really works for you okay but तो कोई है ऐसा group
2: equal सा रहता है पर फिर भी थोड़ा सा पावर थोड़ी सी रहती है
0: किसी मेरी तरफ अच्छा तुम्हारे
2: क्योंकि मेरे घर पे आते हैं वो लोग तो फिर
0: हाँ ऐसा क्यों तुम्हारे घर पे क्यों आ रहे
2: वो जनरली वो क्लोज
0: प्रॉक्सिमिटी में सारे क्यों
2: मैं सेंटर की तरफ पढ़ता हूँ तो फिर
0: तुम्हें लीडर हो गए
2: ऑलमोस्ट हाँ
0: क्या बात है भाई नेतागिरी है ये तो क्या बात है माशाल्लाह एंड एनी शॉट आउट टू योर फ्रेंड्स जो जो खास हैं अभी सुनेंगे तुम्हें रेडियो पर एफएम 107 पर इस डिबेट के जरिए वांट टू शॉट आउट देयर नेम योर बेस्ट फ्रेंड्स प्रोबब्ली
1: लोग यूजुअली दे डोंट स्पीक हिंदी
0: नो बट मेक देम लिसन टू योर वॉइस एट लीस्ट लेट देम नो दैट यू हियर ओके नेम्स अगेन
1: Ivana,
0: okay.
1: Megan,
0: okay.
1: Janvi,
0: okay.
1: And Alia.
0: Janvi sounds a bit Indian, so she yeah. doesn't speak.
1: No, it looks sab hum log ki school ek to usually matlab jo log Kerala se Malayali log hai, lekin Megan jo hai wo Mumbai mein rehti hai.
0: Okay, Megan doesn't sound Mumbai at all, by the way. Okay.
1: Yeah, she stays in Mumbai and usko Hindi aati hai. She's the only one who understands Hindi.
0: Thank God. So you both should listen to this. तुम तो बोल ही रही
1: हो।
0: उसको बोलना बाकी में फैला दे ये। तेज़ दे। और तुम्हारे किस्म क्या सीन है भाई?
2: Okay.
0: हाँ।
2: सबको हिंदी आती है एक थोड़ा सा कम आती है।
0: Okay.
2: पर है।
0: तो वो कहाँ से है?
2: तो फिर एक नाम है वर्षांत।
0: Okay.
2: वो पुणे से है।
0: अच्छा okay.
2: तो फिर वो उसको ज्यादा हिंदी नहीं आती
0: हाँ?
2: पर फिर भी आती है थोड़ी बहुत
0: अच्छा okay.
2: और एक रोहन है मध्य प्रदेश से भोपाल से और एक सोम्या है वो गुजरात से तो फिर लाइक सारा एक
0: पूरा इंडियन है चलो तुम खुद कहाँ से हो
2: राजस्थान
0: राजस्थान में कहाँ से
2: जयपुर
0: जयपुर ओके मेरा करियर जोधपुर से शुरू हुआ इसलिए आई फॉर तुम जोधपुर बोलने वाले आप कहाँ से आने
1: मुंबई
0: मुंबई में कहाँ से
1: नेरल
0: अरे क्या बात है यार बहुत जबरदस्त दो पर कभी ऐसा हुआ कि कोई रिक्वेस्ट दी कि मुझे कहीं और भी घूमना घूमने को मिला इंडिया में
1: नहीं हम लोग कब से इंडिया गए नहीं है क्योंकि
0: टाइम हो गया
1: पता नहीं 5-6 साल जैसा
0: अरे यू शुड गो वरना तुम
1: आई नीड लेकिन फिर हम लोग के अभी जो मेरी बड़ी बहन है उसके एग्जाम बोर्ड्स और वो सब थे वो टाइम पे अभी मेरे बड़े भाई का भी हो गया था तो वी डिडंट यूजुअली गेट मच टाइम क्योंकि जब हम लोग के हॉलीडेज होते थे तो लोग के एग्जाम्स होते थे तो
0: हां ओके एंड हैव यू बीन ट्रैवलिंग कुछ
2: पिछले महीने ही हम अभी जस्ट गंगा घूम के आए थे
0: अरे वेरी नाइस भाई ये सही है मामला बट आई शुड रियली टेल यू बोथ कि अपने अपने आई नो यहाँ पे आके ऐसा लगता है कि जाने का मनी नहीं होगा प्लानिंग नहीं बनेगा आई डोंट नो कि तुम साल में कितनी मरतबा जाते हो नहीं जाते
1: हम लोग सऊदी जाते थे जब मल्टीपल वीजा था
0: मल्टीपल वीजा थे
1: तो लाइक बॉर्डर के बाहर ऐसा आते जाते थे और फिर मजा आती थी हम लोग एक आभा करके एक जगह एकदम अच्छी जगह है
0: ब्यूटीफुल
1: हां एकदम माउंटेन जगह है और फिर हम लोग फैमिली के साथ गए थे वो लास्ट ईयर था
0: ओके
1: बहुत मजा आई थी
0: बट यू शुड ट्रैवल टू इंडिया हमारे इंडिया में हर जगह हर जगह है अवेलेबल है स्पेशली क्या होता है ना कि ये देखो तुम्हारे सामने नॉर्थ से बैठे हुए हैं हम नॉर्थ वालों की शिकायत रहती है मुंबई वालों से, वो ये शिकायत रहती है कि कभी मुंबई वाले नॉर्थ में आ ही नहीं पाते, मतलब आई डोंट नो, कभी जाते नहीं है कभी आते नहीं है।
1: मेरे मम्मी और मेरे मम्मी के भाई लोग महाबलेश्वर और दे हैव ट्रैवल टू द नॉर्थ दर्दन
0: पार्ट।
1: क्योंकि उधर लोग ने बोले कि आभा से जैसा है लेकिन वे बेटर,
0: वहां जाके डिबेट करना। अच्छा ऑन दैट नोट, ये लास्ट में अगर तुम कुछ कहना चाहो अपने इस पॉइंट को रखना चाहो, यू हैव योर मोनोलॉग देयर, व्हाई डू यू बिलीव ग्रुप स्टडीज इज द ओनली आंसर आज के जमाने में? हाँ,
2: के अंदर हम नॉलेज को शेयर कर पाते हैं, तो शेयर करने से नॉलेज बढ़ेगी सबकी, लाइक एक के पास नॉलेज हुई एक चीज के बारे में तो फिर उसके पास ही रहेगी, पर अगर उसको शेयर करेंगे तो फिर अपनी भी नहीं घटेगी और दूसरे की भी बढ़ेगी, तो उसमें बल्कि ज्यादा एडवांटेज हुआ।
0: ओके, एनीथिंग एल्स?
2: और कि जैसे हम बोलते हैं कि क्लासरूम डिस्कशंस हो गए, स्कूल के ग्रुप प्रोजेक्ट्स हो गए, और कोविड के टाइम भी जैसे ऑनलाइन क्लासरूम्स कर रहे थे हम, वो ग्रुप स्टडीज बेटर हो पाए, क्योंकि लाइक पेरेंट्स बोल कंप्लेन जैसे कर रहे थे कि सेल्फ स्टडी घर पे हो नहीं पा रही कोविड के टाइम, क्योंकि लाइक ऑनलाइन से बेटर हुआ है ग्रुप स्टडी, बल्कि बेटर हुई है।
0: हैव यू डू यू प्रेफर ऑनलाइन स्टडीज या नहीं?
2: ऑनलाइन स्टडीज के अंदर थोड़ा सा नोटिफिकेशन का रहता है, पर फिर भी उस
0: नोटिफिकेशन का क्या रहता है,
2: नोटिफिकेशन आता है गेम्स जैसे मान लिए, तो फिर उसको बंद करके करोगे तो फिर आराम से हो जाता है, वरना फिर उसके बिना नहीं होता।
0: आह ओके, एंड व्हाट इज योर पॉइंट, लास्ट पॉइंट्स दैट यू वांट टू कीप?
1: To study in groups is obviously very good. To take others' opinions is good. But har koi ka opinion sahi nahi hoega.
0: Okay, you might get distracted in between.
1: Confusion bhi bahut hota hai, mere saath bahut hota hai. Aur, to iske liye that's why studying alone is better, because you focus on one topic and you complete. Or phir study, I forgot to tell that group study mein, everybody has different weak points.
0: Yeah.
1: So studying alone mein, you can focus on your weak point, not on others, and you know, improve on that.
0: Okay, and do you prefer online classes?
1: No, I prefer offline.
0: Okay, online mein kya masla hai?
1: Online mein, I don't usually like it. Matlab video on rakhna, or fir dam bore hota hai online class mein.
0: Achha, okay, so theek hai, dono ne apne apne points rakhe hain, dono ne bahut acche se baat kari. I really loved having this conversation with both of you. Thank you so much. कमिंग बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स हमारे FM 107 कतर है, एंड व्हाट्सएप है 666-222-107, जब भी आपको लगे किसकी साइड है किसकी साइड नहीं है जरूर जरूर बताइएगा। आई एक्चुअली एंजॉयड इट, मेरे यही सलाह है कि मुंबई वालों गोवा के प्लान के अलावा कुछ और प्लान बनाओ, एंड नॉर्थ वालों हमें भी कहीं ना कहीं जाना चाहिए ना, बट वी शुड ट्रैवल, क्योंकि हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हम लोग बाहर जाते रहते ना तो हमें लगता है कि हम भूल जाते हैं इंडिया में घूमने के लिए बहुत कुछ है। So we should be traveling there as well. So of course, and please, jana Mumbai, yeah. Zid karke jana is bari.
1: Okay, ha.
0: Itte time se nahi gaye, ab jana padega. And you too, brother. Thank you so much. Jaipur ke alawa kuch aur dekha before you let you go?
2: Jaipur ke alawa, hum south ke andar bhi gaye.
0: Arey wah, bethre.
2: Ha, Kerala ki taraf gaye.
0: Wayanad gaye? Kitar gaye? Usually log Wayanad jaate, isliye pucha maine.
2: Wo capital mein rahe, Tiruvananthapuram mein. उसके बोट राइड वगैरह और वो सब।
0: वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड। तो
2: और पौंडेचेरी में भी गए हम, वो आई ट्रीटमेंट कराने के लिए एक बार, थोड़ा सा
0: मतलब आई ट्रीटमेंट के लिए। अभी सब सही है, सेट है?
2: हाँ, अब सही है।
0: चलो वेरी नाइस। तुम दोनों वैसे लास्ट क्वेश्चन है दोनों के लिए, क्या मतलब आर यू अ नॉटी स्टूडेंट, कैसा रहता है, शरारती हो, कम शरारती हो?
1: मिक्स एक्चुअली,
0: डिपेंड्स राइट?
1: या इट डिपेंड्स, मतलब जब क्लासेस चलती है तो हम लोग मतलब ध्यान देते हैं, लेकिन फिर जब ब्रेक्स होती है रिसेस जैसा तो फिर तभी हम लोग बातचीत करते
0: हैं। एंड व्हाट अबाउट यू ब्रो?
2: क्लास के अंदर थोड़ा सा शरारती होता है, पर घर पे आके फिर क्योंकि पढ़ना तो है कभी ना कभी, तो फिर सीरियस हो जाता है।
0: मुखौटा पहन के चलते हो तो, बट जोक्स अपार्ट, थैंक यू सो मच टू बोथ ऑफ यू बीइंग हियर, एंड आई होप यू एंजॉयड योर टाइम हियर। और अभी लोग सुन भी रहे हैं तो उनको यही है कि उनका अपना पॉइंट रखें किस साइड में है, क्योंकि घर पर जिनके बच्चे हैं जरूर जरूर बताएं 666-222-107 पर। एंड दिस इज V3 साइनिंग ऑफ, अपना ख्याल रखें, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: FM 107 दिल से देसी।
0: अरे मेरा भाई टैकाई।
3: Anytime, anywhere.
4: Yes, anytime, anywhere.
3: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107.
5: FM 107.
3: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
5: ओवरसीज कतर वीजा सेंटर्स में विजन टेस्ट सर्विसेज की सहूलियात खासतौर पर उन कैंडिडेट्स के लिए दस्तयाब हैं जो ड्राइवर्स के तौर पर रिक्रूट किए जाते हैं। ये सर्विसेज उन्हें अपना जरूरी विजन टेस्ट अपने मुल्क में ही मुकम्मल करने का मौका देती हैं, जो

0: सुविधा जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रैफिक के लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट के सिस्टम से लिंक्ड होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब ड्राइवर कतर पहुंचते हैं तो उन्हें दोबारा आई टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी वक्त और मेहनत दोनों की बचत होती है। इस तरह वीजा के अमल का एक अहम हिस्सा पहले ही मुकम्मल हो जाता है, जो एप्लीकेंट्स के लिए आसानी, सहूलत और फास्ट प्रोसेसिंग का सबब बनता है। ये कदम मॉडर्न और एफिशिएंट सर्विसेज की मिसाल है, जो लोगों के लिए प्रोसेस को सिंपलीफाई करती है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: Gen Z, Gen X, Gen Alpha, Millennials, ये सब महज टर्म्स नहीं है, ये अलग अलग ख्याल, आदतें, इन सब को अगर एक दूसरे से मुखातिब कराया जाए तो क्या होगा?
0: तो ये जानने के लिए सुनिएगा जनरेशन टॉक, जनरेशन टॉक विद आरजे कबीर एंड आरजे सफा एवरी ट्यूजडे एट 3 PM, एट 3 PM ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
2: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: مقابلے کے دروازے کھل چکے ہیں, پوائنٹس کی دوڑ کا آغاز ہو چکا ہے, مقابلے پھر سجیں گے اور ہر راؤنڈ لے کر آئے گا ایک نئی کہانی. یتور لیگ صرف اور صرف الکاس چینل اور شوف پلیٹ فارم پر.
1: ایف ایم 107 ٹائم چیک. چیک چیک چیک ٹائم چیک. اس وقت ہماری اسٹوڈیو کلاک میں شام کے 4:01 یعنی اٹس ٹائم فار,
2: آپ سن رہے ہیں دا ریکویسٹ شو اے فار امیتا کے ساتھ اونلی آن ایف ایم 107. دل سے دیسی.
1: Yes, my desi audience, happy wala weekend aap sabhi ko. Assalamu alaikum, very very good evening. FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता एंड द रिक्वेस्ट शो. भाई शुरू हो चुका है, आपका पर्सनल म्यूजिकल शो है जहां पर सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा गाने प्ले होते हैं. तो आज का थीम क्या है? मुझे लगता है आज का थीम वो है जो गाना हम कभी भी भूल नहीं पाते. मतलब वो गाना चाहे हम किचन में खाना बना रहे होते हैं तब गुनगुना रहे होते हैं, ड्राइव कर रहे होते हैं तो गुनगुना रहे होते हैं, अपनी कार रिपेयर कर रहे होते हैं तो गुनगुना रहे होते हैं, कपड़ों में इस्त्री कर रहे होते हैं, मतलब that song, that one song जो हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा. हाँ, it can be anything, anyone. तो आप बताएं कि वो कौन सा गाना है जो आपका पीछा नहीं छोड़ता. Yes, वो गाना हमेशा आपके जहन में रहता है. So 666-22-107, 666-22-107 पर अपने नाम के साथ बताओ कि ये वाला गाना है जो हमारे दिल में हमेशा रहता है चाहे सिचुएशन कितनी भी बदल जाए. हाँ, और वो गाना क्यों आपको इतना पसंद है आप शेयर कर सकते हैं, और किसी खास को भी अगर कोई स्पेशल सॉन्ग डेडिकेट करना है ना तो वो भी कर दो. सो 666-22-107 पर अपने नाम के साथ अपनी रिक्वेस्ट, अपने डेडिकेशंस भेजो एंड डेफिनेटली ये पूरे घंटे गाने जो बजेंगे वो सिर्फ आपकी पसंद के होने वाले हैं. एंड जरा वीकेंड है तो वाइब बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, है कि नहीं? और हाँ, आखिर में हमारे शो के क्विज टाइम होगा जहां पर आपका फिल्मी नॉलेज हम चेक करेंगे. लेकिन अभी के लिए भाई एनर्जी फुल ऑन है क्योंकि वीकेंड वाइब है. सो दीप मणि और नेहा भसीन की आवाज में हम सुनेंगे हीरिए, उसके बाद आपके डेडिकेशंस एक के बाद एक हम लेते जाएंगे. सो स्टे ट्यून्ड टू एफएम 107, दिल से देसी.

0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी.
1: वेलकम वंस अगेन FM 107 सुन रहे हैं, मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता. देखो वीकेंड वाइब्स ऑन है और इस वक्त मैं पानी करक सब कुछ एक साथ पी रही हूँ. आई मीन आई एम रियली लविंग इट. वेल गाइस, आज सबसे पहली जो रिक्वेस्ट आई है वो आई है जमील की और वो कह रहे हैं कि अमिता मुझे ये गाना सुनना ही सुनना है और मेरे सारे दोस्तों को ये गाना पसंद है, सो कैन यू प्लीज प्ले दिस सॉन्ग. और मेरे ख्याल से इसकी धुन सुनते ही यू विल अंडरस्टैंड कि गाना कौन सा है. यस, हिमेश रेशमिया का म्यूजिक एंड उनकी आवाज और इमरान हाशमी का ग्रेट कॉम्बिनेशन. वैसे अक्सर फिल्म का ये गाना है झलक दिखला जा एंड ये मूवी का जो म्यूजिक सक्सेस है वो उसका क्रेडिट दिया जाता है हिमेश रेशमिया साहब को एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ इमरान हाशमी. एंड दूसरी जो रिक्वेस्ट आई है वो आई है नूर की और ये भी बड़ा कमाल का गाना है भाई. लव आजकल फिल्म का ओरिजिनल ट्विस्ट, ओ हो हो हो, नीरज श्रीधर की आवाज़ और इसको सुन के तो अपने आप ही पैर थिरकते हैं, तो है कि नहीं. ये दोनों ही गाने आपकी राहों में आने वाले हैं, सो गेट रेडी फॉर इट. और हाँ, आपकी प्लेलिस्ट में वो कौन सा गाना है जो आपका पीछा नहीं छोड़ता या जिसका पीछा आप नहीं छोड़ते, हमेशा जहन में रहता है, सो कम ऑन, उस गाने की रिक्वेस्ट आप कर सकते हैं 6622107 पर अपने नाम के साथ, इवन अपने डेडिकेशंस भी. फिलहाल हिमेश साहब को एंजॉय करते ना झलक दिखला जा में, तो वॉल्यूम बढ़ा लो बिकॉज दिस इज अ रियली वाइब, अ वीकेंड वाइब का सबसे स्पेशल सॉन्ग है. स्टे ट्यून्ड टू FM 107 दिल से देसी.

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.
2: वक्त रुका नहीं है, वो तो नए रास्ते बना रहा है. क्या आप तैयार हैं उस कल के लिए जो आज शुरू हो चुका है? पेश करते हैं नेक्स्ट जेन. आरजे सफा और आरजे अमिता के साथ

0: ऐसा सफर जो है आपकी क्रिएटिविटी, टेक्नोलॉजी और फ्यूचर का नया ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट, सिंपल स्टाइल, बिग इंपैक्ट। पर्सनल ग्रोथ हो या टेक रेवोल्यूशन, अपने आइडियाज को दीजिए एक नई पहचान। बनिए कल का चेहरा आज ही। आज ही सुनिए नेक्स्ट जेन आरजे सफा और आरजे अमिता के साथ हर संडे शाम 5 बजे से FM 107 पर। दिल से देसी। स्ट्रेस या टेंशन फील कर रहे हैं, चाहते हैं लाइफ में बैलेंस और ग्रोथ, तो सुनिए यू मैटर। आपके लिए प्रैक्टिकल टिप्स और स्ट्रेटजीज ताकि आप खुश, हेल्दी और फुलफिल्ड लाइफ जी सके, क्योंकि आप मैटर करते हैं।
1: सुनिए हर संडे टू थर्सडे सुबह 10 से 11 बजे यू मैटर। आरजे सफा और आरजे महविश के साथ, जहां वो शेयर करेंगी प्रैक्टिकल टिप्स, इमोशनल इंटेलिजेंस टेक्निक्स और पर्सनल ग्रोथ हैक्स, जो आपके स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्पफुल हो सकता है। ट्यून इन टू FM 107, दिल से देसी।
0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
2: यस जनाब, वेलकम वंस अगेन। FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता द रिक्वेस्ट शो पर। हाँ जी, तो क्या कहती है आपकी प्लेलिस्ट, कौन सा वो गाना है जो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता? मतलब सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, कितनी भी बदल जाए, लेकिन वो गाना आपके जहन में हमेशा रहता ही रहता है। सो यस, शेयर दैट सॉन्ग 6622107, 6622107 पर अपने नाम के साथ, या किसी खास को डेडिकेट भी कर सकते हैं, है कि नहीं? वेल, अभी हमें जो रिक्वेस्ट आई है वो आई है आसिफ एंड अमजद की। इन दोनों ने एक ही गाने की रिक्वेस्ट की है एंड द सॉन्ग इज, ओहो, बड़ा ही शानदार सा गाना है, एंड दैट इज कर गई चुल, बादशाह अमाल मलिक, फजील पुरिया, नेहा कक्कर का ग्रेट कॉम्बिनेशन है। तो ये गाना पूरा आपको आगे सुनाएंगे, और उसके बाद एक बेहद रोमांटिक गाने की रिक्वेस्ट आई है, मोहम्मद ने की है, एंड इस गाने को अपनी बेटर हाफ को डेडिकेट करना चाहते हैं। एंड द सॉन्ग इज तेरी मेरी कहानी, अरिजीत सिंह एंड पलक मुच्छल की ये खूबसूरत आवाज़ में ये गाना है, एंड गब्बर इज़ बैक मूवी का नाम। सो ये दोनों ही गाने आप आगे इन्जॉय करने वाले हैं, और आप क्या कर रहे हैं, अपनी प्लेलिस्ट को बस एक मैसेज का रूप दीजिए ना, जल्दी से हमें मैसेज कीजिए 6622107 पर अपने डेडिकेशंस, और आपका पसंदीदा गाना द रिक्वेस्ट शो पर फुल वॉल्यूम पर प्ले हो जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड।

0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: यस जनाब, वेलकम वंस अगेन। एफएम 107 सुन रहे हैं आप। क्या कहना। सो क्या कहता है हमारी प्लेलिस्ट की, हमारे जो लिसनर्स हैं एक से बढ़कर एक रिक्वेस्ट हमारे सामने पेश करते जा रहे हैं। और अभी जो हमें रिक्वेस्ट आई है दैट इज रियली इमोशनल रिक्वेस्ट। उन्होंने कहा है, ये जनाब का पहले नाम मैं बताती हूँ आपको, मोहम्मद फयाज अहमद, और कहते हैं कि अमिता एक गाना है फ्रॉम द मूवी फिर तेरी कहानी याद आएगा।

एंड इस पर्टिकुलर गाने ने मुझे जिंदगी में मोहब्बत करवाना सिखाई है. एंड डेफिनेटली मैंने एक अपनी जिंदगी की खास शख्स को इस गाने के जरिए ही अपने प्यार का इजहार किया था. तो कहते हैं कि ये गाना अगर आप सुना देंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि ये मेरी जिंदगी से जुड़ा हुआ गाना है. एंड डेफिनेटली, और साथ में लिखते हैं, जरा सा हम रिक्वेस्ट प्ले करने में लेट हुए तो अपना एतराज़ भी जता रहे हैं और कह रहे हैं कि लगता है मेरी रिक्वेस्ट नहीं प्ले होगी. ओहो, आपकी रिक्वेस्ट ज़रूर प्ले होगी. हाँ जी, फिर तेरी कहानी याद आई फिल्म का ये गाना, दिल में सनम की सूरत, कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज़ का ये गाना है जो आपको हम पूरा पूरा सुनाएंगे. और उसके बाद अवैज साहब जो हैं उनकी रिक्वेस्ट पर तेरे नाम फिल्म का हम ये गाना प्ले करेंगे, दैट इज ओ जाना. आई एम श्योर कि वीकेंड वाइब में ये गाने आपके दिल के जो करीब है ना, आपको और भी अच्छा फील कराए. सो डेफिनेटली बी प्रिपेयर्ड. और आपसे मैं कहूँगी कि आपके फेवरेट कौन से गाने हैं जो आपके जहन में हमेशा रहते हैं ना, उन गानों की आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं या किसी खास को डेडिकेट कर सकते हैं विद अ ब्यूटीफुल स्टोरी. सो 666-22-107 पर मैसेज करें और बने रहें FM 107 पर दिल से देसी.

0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: यस जनाब, वेलकम वंस अगेन। एफएम 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता। क्या कहना, द रिक्वेस्ट शो पर इतनी खूबसूरत रिक्वेस्ट आएंगी मैंने सोचा नहीं था। मतलब आज तो वीकेंड बनते जा रहा है एंड मुझे लगता है कि हर किसी के घर में कोई ना कोई खूबसूरत माहौल बनते जा रहा है। सो अभी जो हमें रिक्वेस्ट आई है, इनका नाम है मोहम्मद अदनान। इन्होंने कहा है कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, अभी कतर में रहता हूँ और एक महीना बाकी है इनकी शादी को। वाओ, कंग्रेचुलेशंस, बहुत सारी मुबारकबाद। और कहते हैं कि अमिता ये वाला गाना प्लीज़ प्ले कर दो और ये मैं अपनी होने वाली वाइफ के नाम करना चाहता हूँ और ये मेरी पहली रिक्वेस्ट है, तो हम इस गाने को कैसे प्ले नहीं करेंगे भाई। जब शादी का टाइम होता है, सेलिब्रेशन होता है, सबसे पहले आगे होते हैं। सो हमारी शादी में इज द सॉन्ग फ्रॉम द मूवी विवाह, जो कि हम पूरा बस थोड़ी देर में प्ले करने वाले हैं। और अगली रिक्वेस्ट ये भी काफ़ी सेलिब्रेटेड रिक्वेस्ट है और इरफान जी की रिक्वेस्ट है, वो हम आपके हैं कौन फिल्म से ये गाना सुनना चाहते हैं। दीदी तेरा देवर दीवाना, वाह क्या बात है, काफ़ी ट्रेंड, मतलब अभी तो ट्रेंड वाला सीन चल रहा है लेकिन ये गाना उस टाइम पे काफ़ी पॉपुलर हुआ था। तो चलिए, ये दोनों ही गाने जो कि सेलिब्रेशंस में चार चांद लगाते हैं आपकी राहों में आने वाले हैं, आप इंजॉय करें फुल वॉल्यूम पर। और हाँ, और आप जो बैठे हुए हैं ना 666-22-107 पर अपने गानों की रिक्वेस्ट भेजो यहाँ पर अपने नाम के साथ। ओके, स्टे ट्यून्ड टू एफएम 107 दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: यस नाउ वेलकम वेलकम वेलकम एफएम 107 सुन रहे हैं आप। मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता द रिक्वेस्ट शो पर और ये टाइम है क्विज टाइम जहां पर हम आपका फिल्मी नॉलेज चेक करने वाले हैं।
0: क्विज टाइम।
1: हाँ तो गाना एक आपको बीच से सुनाएंगे, आपको गैस करना है कि ये गाना कौन सा है और अगर गैस कर लेते हैं तो ये पूरा पूरा गाना आपके नाम हो जाएगा।

गैस गैस गैस कीजिए गाना कौन सा है। 666-222-107 पर अपने नाम के साथ हमसे शेयर कीजिए, क्या पता ये गाना आपके नाम ही लिखा हो, है कि नहीं, तो जरूर शेयर कीजिए। और अभी के लिए हम अगली दो रिक्वेस्ट प्ले करने वाले हैं। सो हमें रिजवान की रिक्वेस्ट आई है और वो कहते हैं अमिता प्लीज ये गाना प्ले करोगी क्या। ओहो हो, जावेद अली साहब की आवाज में एक दिन तेरी राहों में फ्रॉम द मूवी नकाब, एंड इट्स अ रियली रोमांटिक सॉन्ग। मतलब एक बार सुन लो तो जहन में उतर जाता है। और दूसरा गाना वो गाना है धूम 3 फिल्म का, जिसके लिए बहुत स्पेकुलेशन थी कि कैटरीना कैफ ने क्या सारे स्टंट्स खुद किए हैं। तो मैं कहूंगी कि 95% सारे स्टंट्स उन्होंने खुद किए, लेकिन ओनली लास्ट के जो 5% थे ना, जो हाई रिस्क वाले थे, उसमें एक फ्रेंच परफॉर्मर ने उनकी हेल्प की थी। ओके सो यस, ये दोनों ही गाने आपकी राहों में आने वाले हैं। एंड भूलिएगा नहीं क्विज टाइम भी, देखते हैं कि ये जो गाना मैंने बीच से प्ले किया क्या वो आप अपने नाम कर पाते हैं। फिलहाल बने रहिए FM 107 पर दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: Yes, and now welcome once again. FM 107 सुन रहे हैं आप और द रिक्वेस्ट शो का बिल्कुल हमारा आखिरी पड़ाव चल रहा है। देखो लास्ट में यही होता है, मतलब जब चाय और पानी दोनों साथ में पी लेते हैं। वैसे मैंने क्विज टाइम में एक आपको गाना बीच से सुनाया था और कहा था कि ये गाना पहचानो जना। तो गेस कर पा रहे हो कि नहीं? क्या बात है, क्या बात है। वैसे आई कैन सी हमारे कुछ लिसनर्स ने तो गेस कर लिया है कि अमिता ये गाना कौन सा है। आइए जरा देख लेते हैं कि कौन कौन है जिन्होंने सही गेस किया है। सो फलक ने सही गेस किया है, रिजवान ने सही गेस किया है, मोहम्मद यूसुफ खान ने भी सही गेस कर लिया है। और कौन कौन है जिन्होंने सही गेस किया है? राहिल ने सही गेस किया है और अफजल ने सही गेस किया है और एडी ने सही गेस किया है, हिशाम ने सही गेस किया है। ओके, द सॉन्ग इज लंदन ठुमकदा। तो आपके लिए जोरदार तालियां हो जाए। क्या बात है जनाब, बड़े फिल्मी हैं आप सब। वैसे आज के हमारे शो की शान आपकी ही प्लेलिस्ट थी और द रिक्वेस्ट शो हमेशा आपके लिए रहेगा। तो शाम 4 बजे हर दिन आप सुनना ना भूलें, जहां पर आपके पसंदीदा गाने फुल वॉल्यूम पर हम प्ले करेंगे। तो हर दिन शाम 4 बजे, ठीक है, लेकिन वीकेंड्स छोड़ के। फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जिन्होंने हमें लंदन ठुमकदा ये गाना पहचाना है, ये गाना उनके नाम करने वाले, प्लस हमारे वो सारे लिसनर्स के नाम भी जो हमारे शो की शान बढ़ा देते हैं। और इसी के साथ मैं कहूंगी जनाब, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए। प्लस जाते जाते कहना तो बनता है, हमें राय प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते। एंजॉय योर वीकेंड, स्टे ट्यून्ड टू FM 107 दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का एहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं। आइए समाअत कीजिए शाम के अजगार FM 107 पर।

الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله.

अस्सलाम वालेकुम, मैं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे एंड वेलकम टू अनदर टेक अपडेट। मैं आपको बताता हूँ अपडेट्स में कि टेक्नोलॉजी में क्या आ रहा है या क्या काम का है जो आपसे चूक में छूट गया है, या फिर ऐसा कौन सा गैजेट है जो आपको काम आ सकता है। गैजेट्स पर हम आएंगे कुछ दिनों में, लेकिन अभी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स हैं जो आपके बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत काम आने वाली हैं। सो स्टार्टिंग ऑफ विद अ वेबसाइट जो आपके काम आएगी, अगर आपको म्यूजिकल कुछ करना है आप, या चाहते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट करना, आप गाने लिखते हैं, यू आर अ सॉन्ग राइटर, यू वांट टू डू समथिंग ऑन द इंटरनेट, ये भी आपका कंटेंट जनरेशन हो सकता है। तो एक बहुत ही पावरफुल वेबसाइट है, इसका नाम है, पहले तो लिखना है आपको एक्स, फिर डालना है स्लैश, फिर लिखना है माइनस MINUS माइनस डॉट, फिर लिखना है प्रो PRO फॉरवर्ड स्लैश AI। आई नो नाम बहुत लंबा है, पर लेट मी जस्ट रिपीट। ओके, तो आपने लिखा सबसे पहले एक्स, एक्सरे वाला, उसके बाद आपने डाला डैश, और उसके बाद आपने लिखा माइनस MINUS, उसके बाद आपने डॉट लगाना है, फिर लिखना है प्रो PRO फिर फॉरवर्ड स्लैश और लिखना है AI। अब क्या होगा, आपके पास मान लीजिए कोई ऑडियो है और उसके पीछे जो है नॉइजेस हैं, या मान लीजिए लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ सॉन्ग, आपने कोई गाना जो है चुन लिया और आप चाहते हैं कि इस पे कवर बनाना है, मुझे कुछ ट्राई करना है, यू वांट टू सिंग, यू वांट टू रैप, कुछ भी करना है, आपने वो ऑडियो अपलोड किया इस वेबसाइट पे और ये जो है उसके सारे कॉम्पोनेंट्स जो उसमें बज रहे हैं उन सबको अलग करके आपको दे देगा। Right from drums to everything will be separated और audio अलग, तो आप उन सबको जैसे मर्जी चाहें experiment कर सकते हैं, उन्हें जैसे मर्जी चाहे use कर सकते हैं, या simple audio हटा के जो main vocal है उसे हटा के आप music पे कुछ कर सकते हैं। It will not only teach you music, it will also help you कि आप अपने content generation के लिए कुछ अगर tweak करना चाहें। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो हैं अपनी अपनी languages में गाना बनाते हैं और वो

0: म्यूजिक यूज कर रहे होते हैं जो ओरिजिनल बॉलीवुड के किसी मूवी का होता है. दैट इज अ काइंड ऑफ कंटेंट जो बहुत ही नीश है. अभी भी लोग कर रहे हैं लेकिन वो उस उतना हिट नहीं किया है. मगर इसका मतलब ये भी है कि अपॉर्चुनिटी की जो खिड़की है वो खुली हुई है. यहाँ पे यू कैन ऑल्सो डू इट. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेबसाइट्स. अब जरा एक और वेबसाइट की तरफ चलते हैं जो आपके बहुत काम आएगी. और ये जो वेबसाइट है ये है म्यूजिकल, सॉरी मैं म्यूजिकल बना रहा हूं इसको, म्यूजिकल नहीं हड्डियों की आवाज म्यूजिकल भी हो सकती है वैसे तो. दिस इज मसल विकी. ओके मसल विकी MUSCLEWIKI.com. तो मसल विकी पे जब आप जाएंगे तो ये वेबसाइट आपको पूरा बॉडी एनाटॉमी दिखा देगी. भाई देखो आपको कौन से मसल पे काम करना है. आप कोई भी मसल इसमें चूज कर सकते हैं कि मुझे ये वाली मसल पे काम करना है या इन दो मसल्स पे साथ में काम करना है. एंड उसके बाद आपको ये पूरा पूरा चार्ट बना के देगा कि भाई आपको ये एक्सरसाइज करनी है, ये वाली एक्सरसाइज बढ़िया है और ये वाली एक्सरसाइज आपको ऐसे करनी है. तो आपको आसानी रहेगी. समटाइम्स यू नो पीपल हु आर शाई लाइक मी, हम लोग पूछ नहीं पाते कि भाई ये कैसे करना है वैसे करना है, क्योंकि नहीं पूछा जाता भाई, होता है हमसे एक्स्ट्रा सॉस नहीं मांगा जाता. तो हम जैसे लोगों के लिए जो चाहते हैं कि स्पेसिफिकली किस मसल पे या कैसे काम करना है, तो ये मसल विकी जो वेबसाइट है इस पे जाके बहुत बहुत हेल्प होगी आपकी. आप जहां पे टारगेट करना चाहते हैं उस जगह की एक्सरसाइज आपको मिल जाएगी. यू नीड टू सिंपली फॉलो द स्टेप्स एंड दैट इज इट. ओके अब बढ़ते हैं जरा जरा जरा खबर की तरफ. ठीक है तो खबर आ चुकी है मार्केट में. अभी बात करी है बिल गेट्स ने, बड़ा शौक था कि बिल गेट्स. अच्छा तो बिल गेट्स ने बात करी है कि एआई रेगुलेशन बहुत जरूरी है, ग्लोबली एक इशू बन चुका है. अब वो कह रहे हैं तो ठीक ही होगा. उनका ये भी कहना है कि एआई की सेफ्टी को लेकर और उसको मॉनिटर करने के लिए उसकी कैपेबिलिटीज पे बात करनी चाहिए, कोई नहीं कर रहा है. लोग जो हैं उसके फ्रेमवर्क पे काम नहीं कर रहे हैं, पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग. एंड ऑल्सो उन्होंने बात करा कि बात करी एआई को लेकर कि किस तरीके से एविएशन की सेफ्टी सिस्टम में इंटीग्रेट किया जा सकता है इसे. एंड साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि रेगुलेशन बहुत सारे एआई पे बहुत जरूरी है. आई होप कि उनका मतलब ये नहीं है कि रेगुलेशन का मतलब है कि पैसे बढ़ा दो. आई रियली होप सो. बट ये थी अपडेट्स. दिस इज कबीर साइनिंग ऑफ. अपना ख्याल रखिए एंड दिल से देसी. सी यू इन द नेक्स्ट वन.
1: आप सुन रहे हैं FM 107.
2: दिल से देसी.

0: privacy ka tahaffuz aitmaad ko mazboot banata hai. National Cyber Security Agency awam se appeal karti hai ki apni zati malumat share karne se pehle privacy policy ko gaur se padhein taki aap jaan sakein ki aapki malumat kis tarah istemal ki jayengi. आपका सोचा समझा फैसला आपकी मालूमात को महफूज रखने के साथ-साथ एतमाद को भी मजबूत बनाता है। हमेशा याद रखें, डेटा प्राइवेसी का आगाज आपसे होता है।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: ऐ बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो, दुआ को हकीर समझते हो, हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते, अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। तो दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ

मिलवाता हूँ। एक्चुअली ये फ्रॉड इतने ज्यादा आम हो गए हैं कि किसी के साथ भी हो सकते हैं और कोई भी कर सकता है। इवन आजकल 12, 15 और 18 से लेकर 22, 25, 30 और 45 से लेकर 50 साल तक के उम्र के बच्चे और बूढ़े सारे लोग इस तरह के स्कैम में शामिल हो चुके हैं, क्योंकि लोगों के लिए ये है आसान पैसा। दोस्तों, चालाकी का खेल, ये इस फ्रॉड के बारे में हम बात करने वाले हैं। डायरेक्टरी लिस्टिंग स्कैम्स, ये स्कैम खास तौर पर स्मॉल बिजनेसेस को फंसाने के लिए बनाया गया है। इसमें होता ये है कि एक दिन आपके पास अचानक एक कॉल या ईमेल आएगा। स्कैमर्स बहुत ही पोलाइट आवाज में, बेहतरीन आवाज में आपसे बात करते हैं कि सर, हम आपके बिजनेस इंफॉर्मेशन को एक लोकल ऑनलाइन डायरेक्टरी में वेरीफाई करना चाहते हैं ताकि आपको नए कस्टमर मिल सके। आप ऐसे में बिजनेसमैन हैं, आपको नए कस्टमर्स की जरूरत है। वो आपसे साफ साफ कहेंगे कि ये बेसिक लिस्टिंग बिल्कुल फ्री है और आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा। आपके एम्प्लॉइज बिना सोचे समझे हाँ बोल देते हैं, और कई बार अगर आप भी बिजनेस ओनर भी कॉल पर होता है तो वो बिना सोचे समझे हाँ बोल देगा कि यार फ्री का काम है, हमें कुछ करना नहीं है, और डिटेल्स वेरीफाई करवा दिया जाता है। लेकिन असली खेल कुछ हफ्तों बाद शुरू होता है। आपके बिजनेसेस के नाम पर एक बहुत बड़ा एक्सपेंसिव इनवॉइस बिल आता है जिसमें हंड्रेड्स ऑफ रियाल्स या डॉलर्स मांगे जाते हैं। जब आप उन्हें कॉल करते हैं तो स्कैमर्स क्लेम करते हैं कि आपने एक प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के लिए साइन अप किया था। अगर आप मना करते हैं तो वो आपको डराने के लिए एक हैवीली एडिटेड वॉइस रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग का कट पेस्ट करके बनाई गई एक ऑडियो होती है, वो सुनाते हैं जिसमें ऐसा लगता है कि आपके एम्प्लॉई ने पैसा देने के लिए हाँ बोला था। लोग कोर्ट कचहरी या लीगल एक्शन का डर बहुत ज्यादा उनको सता देता है, इसलिए वो किसी भी तरह के बवाले में, किसी तरह के स्कैम में पड़ना नहीं चाहते। ऐसे में इस तरह के अलग और अजीब स्कैम से कैसे बिजनेस ओनर बचे या फिर एम्प्लॉयज बचे, इसका सॉल्यूशन भी है। दोस्तों, इस तरह के स्कैम बड़े यूनिक होते हैं। ऐसे में इस तरह के स्कैम से हम बच पाए ये बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बचने का तरीका थोड़ा लेंदी जरूर है। सबसे पहले किसी भी एम्प्लॉय को जब आप हायर करें तो एम्प्लॉय की ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए और बेहतरीन होनी चाहिए। किसी भी एम्प्लॉय को बिजनेस से ना जाने देना ये एक ऑप्शन होता है, ये एक प्रिविलेज है किसी भी बिजनेस ओनर के लिए कि उसका एम्प्लॉय लंबे वक्त तक उसके साथ रहे। लेकिन जब आप अच्छी ट्रेनिंग करते हैं अपने एम्प्लॉयज की तो वो आपके साथ लंबे वक्त तक रहता भी है और सीखता समझता है। इसके लिए उसकी ट्रेनिंग भी बड़ी जरूरी है। अपने सभी स्टाफ और एम्प्लॉयज को सख्त इंस्ट्रक्शन दें कि फोन पर कभी भी बिजनेस की सेंसिटिव डिटेल्स या अकाउंट इन्फो वेरीफाई ना करें। अगर कोई फ्री लिस्टिंग का कॉल आए तो सीधे बोल दें कि उन्हें ईमेल पर ऑफिशियल प्रपोजल भेजा जाए। बगैर किसी ऑफिशियल प्रपोजल के काम बिजनेस ओनर को या एम्प्लॉयज को नहीं करना चाहिए। उसके अलावा इनवॉइस अप्रूवल सिस्टम, पीओ सिस्टम भी जरूर रखना चाहिए। आमतौर पे ये बिजनेस लैंग्वेज है पीओ सिस्टम। अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट में एक रूल सेट करें, कोई भी बिल तब तक पे नहीं होगा जब तक उसे एक असली परचेज ऑर्डर यानी कि पीओ और डिलीवरी रिसीट के साथ मैच ना किया गया हो। बिना चेक किए किसी भी बिल को पास ना करें, ना ही एम्प्लॉयज और ना ही ऑब्वियसली बिजनेस ओनर। उसके अलावा अर्जेंसी से कभी ना डरे। अगर कोई ईमेल कहे कि वेबसाइट बंद हो जाएगी या लीगल एक्शन होगा तो डर में अक्सर तुरंत पेमेंट ना करें। पहले उस वेंडर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उनके रियल कस्टमर केयर पर कॉल करके कंफर्म करें, फिर रिकॉर्डिंग की सच्चाई पर भी आते हैं। अगर कोई आपको फोन पर एडिटेड वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाकर डराए तो बिल्कुल ना डरे। उनसे कहें कि आप इसकी कंप्लेंट साइबर क्राइम सेल में करने जा रहे हैं। स्कैमर्स साइबर क्राइम का नाम सुनते ही भाग जाते हैं। आमतौर पे आपको 99% जो स्कैमर्स हैं वो साइबर क्राइम के डिपार्टमेंट से या साइबर क्राइम सेल से डर जाते हैं और वो भाग जाते हैं। उसके अलावा रिपोर्ट कैसे करें, रिपोर्ट करने के अलग अलग तरीके हैं। साइबर सेल डिपार्टमेंट सबसे अहम होता है। किसी भी कंट्री का साइबर सेल डिपार्टमेंट इन सब मामलों में एक्टिव रहता है। अगर आप किसी शहर में हैं या अगर आप कतर में हैं तो आपका बिजनेस ऐसे किसी फ्रॉड का शिकार ना बने, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो भी जाए तो साइबर क्राइम विंग को रिपोर्ट करें, या मेट्रेश 2 ऐप के थ्रू भी फ्रॉड की रिपोर्ट आप दर्ज करा सकते हैं। ये कुछ आसान तरीके हैं जिससे आप नए जमाने के नए स्कैम से बच सकते हैं। तो फिर कैसे बचना है? एम्प्लॉय की ट्रेनिंग, पीओ सिस्टम, इनवॉइस अप्रूवल सिस्टम, अर्जेंसी से बिल्कुल ना डरें, रिकॉर्डिंग की सच्चाई, उसके अलावा कतर में कैसे रिपोर्ट करा, उसके अलावा अगर आप किसी दूसरे कंट्री में भी हैं तो वहां पर भी

0: साइबर सेल होते हैं, साइबर डिपार्टमेंट, साइबर क्राइम डिपार्टमेंट होते हैं, वहां पर आप रिपोर्ट कर सकते हैं। और शुरुआत के एक दो घंटे बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाए तो। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी आपसे कल एक नए जमाने के नए फ्रॉड में बात करते हुए। दिल से देसी
1: स्कैम अलर्ट,
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: सितारे उतरेंगे मैदान में अजमत की जुस्तजू में टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इनक्रिप्टेड चैनल्स और शू प्लेटफॉर्म पर
1: FM 107 टाइम चेक
2: अरे भाई टाइम बिल्कुल बढ़िया चल रहा है क्योंकि आज ही तो वो दिन है जिसका इंतजार हम पूरे हफ्ते करते हैं भाई वीकेंड आ गया भाई पाजी दिल तो बस खुश हो जाता है थर्सडे का नाम सुनकर और शाम का वक्त हो जोश एकदम से आ जाता है बस ये थर्सडे के अंदर कोई तो ऐसा विटामिन है कि शाम को जैसे ही ऑफिस

0: क्या बात है, अभी भी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 6:02 हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस्तकबाल आप सभी का। 7 बजे तक हमारा और आपका साथ रहने वाला है और उम्मीद है कि आज आपका कोई ना कोई प्लान होगा। और वैसे भी अब वो दिन वापस आ रहे हैं जब आप सी लाइन की तरफ, अजरबैजानी बीच की तरफ, इधर और उधर, मतलब कहीं पर भी जहां पर मोमेंट मिल रहा हो, जहां पर वाइब आ रही हो, वहां का प्लान आप बना रहे हो, है ना। तो वैसे भी वो वक्त तो आ रहा है, लेकिन शुरुआत जो असली घुमक्कड़ लोग हैं वो शुरुआत तो अब शुरू कर ही रहे हैं, वो शुरुआत कर चुके होंगे। और आज भी कहीं ना कहीं प्लान होगा, क्योंकि कई मैंने अपने दोस्तों को सुना है क्या कहते हुए कि चलें क्या बीच बीच चलें। अरे भाई साहब, उनके दिलों में तो ये अच्छे मौसम को लेकर ही यही आ जाता है कि लेकिन बढ़िया भी है। मैं देखो इस बात पे तो हमेशा, वैसे मैंने देखा भी है कि चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, जो बीच पे जाने के शौकीन हैं, जो घूमने फिरने के शौकीन हैं, उनको ठेंगा फर्क पड़ रहा है कि गर्मी पड़ रही है, सर्दी पड़ रही है, रात का मौसम कैसा, रात में हवा चल रही नहीं चल रही, उनको ठेंगा किसी बात से फर्क नहीं पड़ता भाई। वो अपने घर में भी कहे जा रहे थे कि अरे बैल नथा बैल हो गया है, घूमता रहता है, इसके घर में पैर टिकते नहीं है। और अभी तो उनको आज़ादी मिल गई है, अभी तो वो फ्री एल्फ हो गए, है ना। जैसे हैरी पॉटर में वो एल्फ था वो फ्री हो जाने के बाद कितना खुश था, अपने मास्टर की बात ही नहीं सुन रहा था। तो बस अभी तो आप वही हैं, आप तो अब फ्री हो गए हैं, अब कमाने भी लगे हैं, अब क्या अम्मा अब्बा की बात सुनेंगे, पहले ही बैल न था बैल थे अब तो छुट्टा बैल हो गए लेकिन मैं उन लोगों की दाद देता हूँ भाई जो घूमने का शौक रखते हैं और फिर वो किसी की नहीं सुनते और कहीं ना कहीं घूम लेते हैं। वीकेंड पर भी मैंने लोगों को बीच पर जाते हुए देखा। मैं दूसरों की क्या बात करूं, एक वक्त था जब मैं भी जाया करता था। खैर, 6:04 हमारे स्टूडियो की घड़ी में और ये शो अनप्लग्ड इवनिंग।
1: आप सुन रहे हैं अनप्लग्ड इवनिंग विद आरजे फजील,
2: ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
0: तो भाई आज 10 तारीख है और कुछ लोगों की सैलरी इसी हफ्ते, पिछले हफ्ते आई होगी और अभी वो एकदम ऐसे भी जवान फील कर रहे होंगे, उनको तरोताज़ा लग रहा होगा, ऐसा लग रहा है जैसे होता नहीं नहाए आप 10 दिन बाद नहाओ तो ऐसा, सर्दी में 7 दिन बाद ऐसे कई लोग हैं भाई शीशे के सामने खड़े हो जाओ वही लोग हैं जो आपको दिख रहे हैं शीशे में ना, वही लोग हैं ऐसे। तो वैसे ही ताज़ा आपको फील हो रहा होगा। तो मैंने ये सोचा है कि यार आज उसी पर एक सवाल भी हो और मेरे दिमाग में भी चल रहा था कि कई बार ऐसा होता है ना, एम्प्लॉय थोड़ा एडवांस में पेमेंट मांग लेते हैं और कतर का भी थोड़ा कहीं कहीं रूल है कि अगर आप छुट्टी पर जा रहे हैं तो आप एडवांस में पेमेंट मांग सकते हैं, लेकिन वो ऑफिशियल आपका कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हो तब ये अलग होता है कहीं कहीं है। अगर एडवांस में पैसा मिल जाए तो कितना बढ़िया हो, नहीं एडवांस में सैलरी मिल जाए, आपको पता है कि हाँ ठीक है पूरे महीने में काम करना। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है, इसका एक नुकसान भी, वो ये कि ऑनेस्टली फिर क्या एम्प्लॉई काम करेंगे या नहीं। तो मेरे मन में ये सवाल था, मैंने 2-4 लोगों से पूछा, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग जवाब दिए हैं। लेकिन मैंने कहा कि क्यों ना हम FM 107 पर भी ये सवाल करें कि अगर एम्प्लॉयज़ को सैलरी एडवांस में मिल जाए तो क्या वो बाकी जो दिन हैं शुरुआत के एक पहले दिन, ये ऐसा हो जैसे आपने किसी अपने घर को रेंट पे चढ़ाया हो और एडवांस में पेमेंट आ गया हो, कितना खुश होता है ना दिल। तो वैसे ही अगर आपको एडवांस में पेमेंट या सैलरी मिल जाए तो बाकी के महीने क्या आप ईमानदारी से काम करेंगे या लोग क्या ईमानदारी से काम करेंगे। अब इसका जवाब भी आपको ईमानदारी से देना पड़ेगा, ये सवाल डबल ईमानदारी का है, आप क्रॉस भी नहीं कर सकते, बाईपास नहीं कर सकते ना। एक ईमानदारी के बारे में आपने बात करी और फिर पता चला खुद ही काम नहीं कर रहे कि भाई साहब देखिए दूसरे लोग काम नहीं कर पाएंगे और फिर अपने बारे में कह रहे नहीं सब ये होना चाहिए, मैं ईमानदारी से काम करूंगा, एडवांस कोई दे तो सैलरी। सो आज का यही सवाल मैंने सोचा क्यों ना पूछा जाए और इसका आपको जवाब देना है 6:62107 पे। अगर एम्प्लॉय को सैलरी एडवांस में मिले तो क्या पूरे महीने वो ईमानदारी से ऑनेस्टली अपने वो काम मुकम्मल कंप्लीट करेगा जो बाद में सैलरी मिलने पर करता था, कि भाई बाद में सैलरी मिलेगी अभी काम करो, पता चला सैलरी नहीं मिली तो। इसका जवाब 6:62107। फिलहाल बाबू भैया लोगों का मैसेज आ गया होगा, हम मैसेज की तरफ बढ़ते हैं FM 107 पे।
1: आप सुन रहे हैं अनप्लग्ड इवनिंग विद आरजे फजील,
2: ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
0: भैया 082 वाले जो भी शख्स हैं कॉल ना करो मेरा भाई, हम यहाँ पर नहीं उठा पाएंगे, अगर हमने कॉल उठा ली तो फिर हमको कोड़े वाले भैया जो हैं पीठ पे मोहब्बत में एडवांस ही दे देंगे, तो फिर ये कहेंगे अरे मुझे पता ही है कि आप कुछ ना कुछ तो गलती करेंगे शो में, तो लीजिए कोड़ा सटाख। पता है आमतौर पे आप अपने ऑफिस में जो भी एम्प्लॉई हैं उनसे काम करवा सकते हैं कि अरे यार वो पानी की बॉटल उठाना, अरे यार वो फलाना काम करना, अरे वो उधर समोसा रखा देना देना तेरा, है ना, तो आप ऐसे काम करा सकते हैं या कंप्यूटर पे कोई बैठा है। लेकिन ये कोड़े वाला आदमी, इससे आप कोई काम ही नहीं कर सकते, आपको डर लगता है कि कह दिया अरे वो कोड़े वाले भैया ये एसी बहुत तेज़ चल रही है, वैसे बातों बातों में मैं कह रहा हूँ अगर सुन ले तो अच्छा है कि एसी बहुत तेज़ चल रही है, प्लीज अगर ऐसा हो पाए कि ये एसी कम कर दो या बंद कर दो। यू नेवर नो भाई, गुस्सा हो गया तो बड़ा यार डर है माहौल में, एक अलग सा खौफ जो है वो बना रहता है। फिलहाल मैसेज की तरफ बढ़ते हैं, और भाई लोगों ने जो मैसेज दिया है वो ऑडियो में ही दिया है। ले भाई ऑडियो में अभी थोड़ा रुक कर पढ़ूंगा। हाय हाउ आर यू, आई वांटेड टू आस्क यू, ओके आपने जो भी आस्क किया है भाई, आपने एफ एम 107 नहीं सुना, अगर सुना होता तो आपको अभी तक ये आस्क का जवाब मिल जाता। आपको जवाब मिल जाता, लेकिन कोई बात नहीं, मैं ये जो मैसेज है आपका आगे बढ़ाता हूँ। फिर एक और भाई का मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मेरा भाई कैसे हैं, उम्मीद है कि आप भी अच्छे होंगे। आपका नाम जुहैब साहब, जुहैब भाई को सलाम। फिर ये है कौन, सलाम वालेकुम, सवाल का इन्होंने जवाब दिया है कि मुझे भी एडवांस ही सैलरी चाहिए, अकेली सैलरी ही बहुत देर में मिलती है, सीरियसली। नहीं लेकिन अब तो ये रूल भी आ गया कि भाई जब भी सैलरी ड्यू है, यानी कि अगर आपने 30 तारीख तक काम किया है फिर 7 दिन के अंदर आपको पेमेंट मिल जानी चाहिए, ये नया रूल आया, आपको इस रूल पर काम करना पड़ेगा। भाई फुल काम कर रहे हैं, और भाई ने बाकायदा तस्वीर भी भेजी है, वीडियो भेजी है बाकायदा, कृपाल, अच्छा कृपाल भाई। कृपाल भाई तो अपने काम को निकले हैं, कृपाल हमारे मित्र हैं, वो काम पर निकले हुए हैं, ठीक है, लेकिन मजदूरी तो देखो हम सबको करना ही पड़ता है, हम कहाँ बच सकते हैं। मर्द हजरात जो हैं मजदूरी करने निकलते ही निकलता है, उसको घर पर बैठने की सहूलियत है नहीं, और एडवांस कोई अलग नहीं दे रहा। ऊपर से अलग बॉस कह रहा है सुनो वो फलाना जो है छुट्टी पर है, आप एक काम करिए फलाने का काम भी आप ले लीजिए, और आप जबान से कह भी नहीं सकते सर वो एक्स्ट्रा टाइम या फिर उसका जो काम कर रहा है उसका पैसा, नहीं बाबू ये नहीं हो सकता है। बाकी आगे मैसेज है एक और भाई का, सलाम वालेकुम अस्सलाम, नाम है इनका आशिक, मुझे आशिक नाम बहुत बड़ा लगता है, आशिक भाई एक है, एक तो नहीं बहुत सारे आ ही जाते कहीं ना कहीं से, तो बहुत ही उम्दा आशिक नाम, बहुत ही उम्दा है। फिर उसके बाद देखिए आप अगर आशिक नाम है तो उसका एक और फ़ायदा ये भी है कि आप अपना नाम तो बता ही सकते हैं, और फिर साथ ही साथ ये भी कह सकते हैं कि मैं अपने बीवी का आशिक हूँ। मतलब आप इसमें डबल बातें हैं, है ना, दो बातें कि नाम तो है ही आशिक और मैं अपनी बीवी का, नाम ही है इसमें और कुछ नहीं है। आगे 6:10 हमारे स्टूडियो घड़ी में, बाकी लोगों के मैसेज कुछ ही देर में हम लेंगे। सवाल एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि अगर आपको एडवांस में सैलरी मिले या आम जनता को एम्प्लॉय को एडवांस में सैलरी मिले तो क्या वो ईमानदारी से काम करेगा या नहीं। 666-22107 ये है हमारा व्हाट्सअप का नंबर। अगर आपका स्टोर है, बिजनेस करते हैं आप, आपका कोई शॉप वगैरह है आपकी, तो अगर आप अपने एम्प्लॉय को एडवांस में पैसा सैलरी देंगे तो ईमानदारी वो दिखाएगा कि नहीं, क्योंकि आप तो बड़ा करीब से एम्प्लॉय को जानते ही होंगे, फितरत क्या होती है इंसान की, वो हाय हाय बस इसी आवाज के लिए तो तरस रहे हैं, एक बार फिर से ये वाली आवाज आ जाए फलक शब्बीर भाई। देखो खिड़की के बाहर कहीं होते नहीं। फिलहाल FM 107 पे फजील के साथ हैं, जवाब आपको देना है 6-6-6-2-2-107 पे, 6:11 स्टूडियो की घड़ी में, दिल से।

0: आप सुन रहे हैं अनप्लग्ड इवनिंग विद आरजे फजील
1: ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।

0: अनप्लग्ड ये गाने एफएम 107 पे, सनम का ये बैंड आपने सुना एफएम 107 पे, ये गाना दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं अनप्लग्ड इवनिंग विद आरजे फजील,
2: ओनली ऑन एफएम 107।

हाँ जी, दिल से देसी एफएम 107 पे इस्तकबाल आप सभी का, और 6:22 हमारे स्टूडियो की घड़ी में। और उम्मीद है कि आपने 80 की वो तस्वीर सोशल मीडिया पर बनाकर पोस्ट या स्टोरी लगा दिया होगा, पोस्ट कर दिया होगा, क्योंकि मार्केट में वैसे तो अफवाह उड़ी, इसी वजह से ये काम सारे लोग कर रहे हैं। वो हो ये रहा है कि जिसने ये नहीं किया उसको लीग में नहीं आने देंगे, उनको पार्टी आर्टी में एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। जब आप पार्टी पे जा रहे हैं ना, तो वो आपकी 80 की फोटोज देख रहे हैं, फिर आपको एंट्री दे रहे हैं। आपको कोई दावत पे अगर नहीं पूछ रहा है ना, तो आप अपनी स्टोरी पे लगाओ, क्योंकि जो स्टोरी पे नहीं लगाया अभी तक उसको दावतों में नहीं पूछ रहे भाई। ये अफवाह चल रही है मार्केट में। तो ऐसा भी है कि अगर आपने अभी तक 80 की वो तस्वीर फोटो उस वेबसाइट से या कहें उस AI से नहीं बनवाई है, तो हो सकता है आपका जो येलो कार्ड है वो गरीबी की रेखा के नीचे वाला वो भी ना बने, और इनका बन गया है उनका कैंसिल भी हो जाएगा भाई। बनवा लो। वो तो ऐसा मैंडेटरी कर दिया गया है सोशल मीडिया पे, और वो भी है कि जिनका जो ब्लू टिक हो गया है वो ब्लू टिक कैंसिल हो जाएगा अगर ब्लू टिक वाले ने, है ना, वो 80 की तस्वीरें नहीं डाली। 80s का आदमी कैसे लगेगा कि एक रंग बिरंगी जैकेट डाला है, अंदर एक शर्ट है, हाथ में पतली वाली घड़ी है, अगर ये सोशल मीडिया पे नहीं आ रहा है तो सोशल मीडिया भी कैंसिल कर रहे हैं वो आपका, है ना। जितने भी आपके एप्लीकेशंस हैं वो डिलीट अपने आप हो जाएंगे ऑटोमेटिक। तो भाई बना लो, ठीक है, तुम भी बना लो। कोई ऐसा वो नहीं है कि नहीं हम क्यों अकेले, हम नहीं बनाएंगे, बड़े बेवकूफ़ी वाला काम है, बना लो मेरा भाई, सब बना रहे हैं। कोई नहीं, ये ऐसा वायरस लगा है लोगों को, वो हाथों में और दिमाग में जो कीड़ा, जो वायरस सवार हो गया है कि हर एक आदमी करे डाल रहा। भाई मैंने उस आदमी को भी देख लिया है जिसको सोशल मीडिया ज़्यादा बढ़िया चलाना नहीं आता। भाई मैं 80 साल के आदमी को देख रहा हूँ, 80 की फ़ोटो लगा रहा है मेरा भाई, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? अरे अंकल को खुद नहीं चलाना आता यार, वो AI से नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो अपने नाती पोतों से ये काम करवा रहा है। अगर अंकल ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी यार। अब देखो, जिन अंकल को आपने देखा ही 60 के बाद है, 65 के बाद है, और वो अब 80 के हो गए, उनकी मूंछें देख के आपने सफ़ेद सफ़ेद, उनके उड़े हुए बाल को देखने के बाद अब आप 80 की जवान की फ़ोटो देखो, तो क्या अंदर से इतनी कुलबुलाहट मच रही है, मतलब अजीब सा लग रहा है मेरा वो। मेरे को एक दिन खाना नहीं पचा है भाई, क्योंकि मैंने अपने अंकल को देख लिया भाई, उनके नाक के बाल सफ़ेद देख लिए थे मैंने, अब उनको देख रहा हूँ जवान 80 के। कैसे अंकल, रहने दो ना यार। तो तुम भी बना लो, जब सब आ ही गए हैं इस वाले एरा में, तो तुम भी आ ही जाओ भाई 80 के एरा में। फिलहाल 6:25 स्टूडियो की घड़ी में, और अब हम बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। लोगों ने अपने अपने जवाब जो है वो दे दिए हैं। एक का मैसेज है, नुसरत जी का मैसेज है, ऑनेस्टली आई डोंट थिंक सो, सैलरी एडवांस में मिल गई तो एम्प्लॉय भी छुट्टी में रहेगा और एम्प्लॉयर फुल स्ट्रेस में रहेगा। एम्प्लॉय बोलेगा सैलरी तो आ गई, अब काम कल से, और एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर सोचेगा अब काम कौन करेगा। ये बात भी काफ़ी हद तक सही भी है, और काफ़ी हद तक क्या यार, मैं खुद भी वैसे ही हूँ अब तो। ये मुझे एक तो क्रिकेट में आता है याद कि भाई बैटिंग कर ली है, अब क्या दूसरी टीम की बैटिंग आए ना आए, अपनी बैटिंग मिल गई है, बरसात हो रही नहीं खेलेंगे जाओ। तो सैलरी मिल गई अब कौन काम करेगा। ये वैसा ही है जैसे आप किसी एक कंपनी से रिजाइन कर देते हैं, और जब आप अपना वो 2 महीना या 1 महीना काट रहे होते हैं ना FNF से पहले, तो आप कितना ज्यादा, मतलब इसमें वल्नरेबल आपका बॉस हो जाता है। कि अरे भैया वो PPT एक बनानी थी प्लीज, वो हाथ जोड़ के कहता है बॉस ये बना दोगे क्या, मतलब कैसे ऑर्डर से रिक्वेस्ट पे बॉस आ जाता है, आप देखिए ही दे, तब जब रिजाइन आप मार दें। कि भैया कर दोगे क्या प्लीज। और आप देखेंगे सर अभी आज तो कुछ बिजी हैं, वो हाँ अकाउंटेंट का ही काम हो रहा है, तो उसमें थोड़ा सा लगे थे सर, पेपर फिल करना था, और आपके वो भी की नोट्स भी तो बना के देने हैं, है ना। तो आप अलग से एटीट्यूड में रह सकते हैं। खैर काफ़ी हद तक ये बात सही है कि एम्प्लॉयर स्ट्रेस में आ जाएगा अगर सैलरी पहले मिल गई तो। भाई कौन सी वेबसाइट है यार, ये वेबसाइट तो नहीं AI है, मैं अब क्या, अब तो आप पता ही चल गया होगा, अगर आप स्टोरी देख रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा, मुझे तो ये लगता है। हुसैन भाई अगर नहीं भी पता चला है ना, तो जिसकी भी स्टोरी देखो तो वहाँ पर लिखा होगा कि आप भी अगर अपनी ये चीज़ कहानी बनाना चाहते, मैं नाम नहीं ले सकता ना इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, वो AI है। फिर एक और ये मैसेज है, सलाम का वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, मतीन साहब कहते हैं, कैसे हैं, सैलरी एडवांस में नहीं चाहिए पर बढ़ा के चाहिए। आहा, मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है भाई, जो मतलब दिल खोल के कहते हैं हाँ लालच है तो क्या।

0: तो दो ना, पैसे दो, लालच है, एडवांस में मत दो, लेकिन जब भी दो बढ़ा के दो। मैं एक दिन एक और सवाल सोच रहा हूँ कि भाई सैलरी क्या इंसान के काम के हिसाब से मिलनी चाहिए या फिर सैलरी जितनी तय है उस हिसाब से। मिसाल के तौर पे एक बंदा है जो बहुत ही मेहनत करता है और वो कंपनी को रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है। खैर वो किसी और दिन पूछ लेंगे कि उसकी मेहनत के हिसाब से पैसा मिलना चाहिए या फिर ये कि अरे भैया वो तो पैसा दे रहा है लाला के आपको सेल दे रहा है, वो किसी और दिन। लेकिन आज का सवाल ये है कि आप क्या सोचते हैं कि सैलरी जो है वो एडवांस में एम्प्लॉई को मिलना चाहिए या फिर नहीं। एडवांस में मिलेगी तो क्या वो ऑनेस्टली ईमानदारी से काम करेगा या नहीं करेगा, ये आपको बताना। नंबर है 666-22107। उसके बाद मुबीन भाई का सलाम है, वालेकुम अस्सलाम मेरा भाई, उम्मीद है आप बढ़िया होंगे। फिर ये मैसेज किस भाई का है, खान साहब का है। खान साहब कह रहे हैं कि मुझे सैलरी चाहिए एडवांस में, काम जैसा हो कर देंगे। अच्छा ये आपने क्यों कहा, लेकिन रीजन के साथ बताओ कि एडवांस में करने के बाद आपकी ईमानदारी पर आपको शक नहीं है, क्योंकि मुझे तो मेरी ईमानदारी पर बहुत शक है। अगर मुझे कोई सैलरी पहले दे दी तो भाई काम तो फिर मैं जो कोताही मचाऊंगा मजा ही आ जाएगा। फिर एक और ये मैसेज है किस भाई का है, राशिद साहब का मैसेज है, सलाम लिखा है, वालेकुम अस्सलाम। भाई किसी भी एम्प्लॉयर को पहले पैसा कभी ना दें, किसी भी एम्प्लॉय को कभी भी पैसा पहले ना दे। हाँ तो कौन ही दे रहा भाई, सैलरी मुकम्मल हो जाती है उसके बाद भी कोई ना दे रहा। आप कहाँ की बात कर रहे हैं राशिद साहब, मतलब महीना पूरा होने के बाद भी कोई नहीं दे रहा, ये बॉस का है साहब, क्या ही कर सकते हैं। फिर हैशाम साहब का मैसेज है, और हैशाम साहब ने कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काम कर गया, क्या काम कर गया, काम करेगा, क्या काम करेगा। अरे भाई ये क्या इंफॉर्मेशन है ये मेरे को, मैं कैसे समझूं हैशाम साहब, क्या कोशिश, आप ऑडियो भेज दो कोई मसला नहीं है। फिर एक और ये मैसेज है अनिरुद्ध भाई का, क्या यार इन्होंने ऑडियो भेजी थी, मैं भूल गया क्या कहा था इन्होंने। ऑडियो मत भेजा करो, लिख कर भेजा करो, क्योंकि यहाँ कोड़े वाले भैया वो कहते हैं ऑडियो नहीं चला सकते आप, और 10 ऑडियो मैं सुन सुन कर भूल जाता हूँ। अनिरुद्ध ने कहा था शायद कि काम करने में कोई कोताही नहीं करते, ये तो है, ईमानदारी से काम करते हैं, इतनी बात मुझे याद है, उसके बाद की बात मुझे याद नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना, मैं भुलक्कड़ हूँ फिर इस मामले में, एक बार मुझे भी अगर बॉस पहले सैलरी दे दे फिर मैं भूल जाता हूँ, अरे आपने सैलरी दी थी, काम करना है, छोड़ देते हैं आज बॉस, आज छुट्टी कर दो मेरी। फिर एक और ये मैसेज है करीम साहब का, सलाम लिखा है और कहते हैं मैं तो एडवांस ही लेता हूँ। क्यों भाई, आपका कौन सा काम है भाई, मेरे को भी लगवा लो। ऐसा कौन सा काम है यार जिसमें एडवांस पेमेंट आती है, डिलीवरी वाले भैया तो नहीं है उसमें भी डिलीवरी के बाद आता है यार, और कौन सा काम है जिसमें एडवांस में पेमेंट आता है। एक काम है मैं बोल नहीं सकता वो यहाँ पे आप जब दूसरे मुल्क जाते हैं ना तो सुबह सुबह आपको जरूरत पड़ती है, या दूसरे शहर भी जाते हैं तो आपको जरूरत, बस उसका नाम ले सकते हैं। बाकी और कौन सा काम है जिसमें एडवांस में पेमेंट है, तो लेकिन जो भी है भाई बहुत ही उम्दा, करीम साहब आप बहुत परफेक्ट जगह पे हैं सबको लगवा लो जहां पर एडवांस में पेमेंट मिल रहा है, इससे बढ़िया और क्या ही चाहिए। फिलहाल 6:31 हमारे स्टूडियो की घड़ी में, और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम बात करेंगे एक खत के बारे में कि ये खत लिखना है और किसको खत लिखना है इस पर भी, लेकिन कुछ ही देर में FM 107 पे एक छोटा सा ब्रेक, दिल से देसी।
1: नेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी अवाम से अपील करती है कि अपनी जाती मालूमात की अहमियत को समझें और उन्हें शेयर करते वक्त एहतियात से काम लें। याद रखें आपकी मालूमात कीमती हैं और इनकी हिफाजत हम सबकी जिम्मेदारी है, इसीलिए अपनी जाती मालूमात किसी के साथ शेयर करने से पहले अच्छी तरह सोचें कि आप ये मालूमात किसको दे रहे हैं और उसे इनकी ज़रूरत क्यों है। ज़रूरत के मुताबिक मालूमात शेयर करें और अपनी जाती मालूमात की हिफाजत का हमेशा ख्याल रखें, और हमेशा याद रखें कि डेटा प्राइवेसी का आगाज आपसे होता है।
2: Anytime, anywhere.
3: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107.
2: FM 107.
3: Log into our website.

0: website urduradio.qa or download the app QMC now.
1: कहते हैं जिंदगी एक रेस है, लेकिन क्या आप इस रेस में भागने के लिए तैयार हैं?
2: आपका करियर सिर्फ एक जॉब नहीं, आपके फ्यूचर की डायरेक्शन है। तो फिर सवाल ये है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं?
1: नए करियर्स, फ्यूचर स्किल्स, चेंजिंग जॉब मार्केट और वो अपॉर्चुनिटीज जो आपके मुस्तकबिल को नई राह दे सकती हैं। सुनिए प्रोग्राम फ्यूचर करियर, फ्यूचर करियर आरजे महविश खान के साथ हर मंडे शाम 7:15 बजे से ओनली ऑन FM 107। अपने करियर का अगला कदम सोच समझ कर उठाइए।
3: Gen Z की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है FOMO, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है। पर हम है ना, 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे। सो नो फोमो एवर अगेन। सुनिए कतर 2026 आरजे फजील के साथ, रहिए अपडेटेड हर ट्यूसडे रात 9 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
4: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil Se Desi.

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

हाय हाय क्या बात है, ये खूबसूरत सा ट्रैक सुना आपने राहत फतेह अली खान और फराह की आवाज में। फिलहाल 6:42 हमारे स्टूडियो की घड़ी में, और ऐसे गाने हो तो थोड़ी शाम और भी बन जाती है। अनप्लग्ड इवनिंग, ये शो अनप्लग्ड, ये गाने आपके लिए। वेल, अभी मार्क बाबू का कॉल आया था, कह रहे थे कि आपने ये सब बातें करी हैं कि ज़रूरी है ये बनवाना। मैंने कहा हाँ, तो कह रहे नहीं ये तो और लोगों को बता भी दो, 80s की फ़ोटो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर नहीं करवाए तो फिर मसले हो जाएंगे। तो कह रहे नहीं है वरना आधार कार्ड भी कैंसिल हो जाएगा। मैंने कहा हैं आधार कार्ड कैंसिल कर दोगे? कह रहा हाँ, वो बात हो रही है कि जिसने 80s के ये मैसेज या 80s के ये तस्वीरें नहीं बनवाई और जवान नहीं लगे, जो बूढ़े लोग हैं उनको भी मैंडेटरी है, तो कह रहे हैं हाँ उनको भी बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, नहीं बनवाया तो उनका फिर हिसाब हो जाएगा, आधार कार्ड से नाम कट जाएगा। और हमने कतर में ये भी हाँ बहुत जरूरी, सब कर रहे हैं कतर में भी, सब कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे भैया तो भैया बनवा लो तुम लोग भी, है ना, 80 के लग जाओ। 80 में तो मेरा तो कुछ नहीं था यार, मैंने कहा कि जो 2000 में पैदा हुए हैं, 95 में पैदा हुए हैं, 97 98, उसके वो तो 80 में पैदा होने का, नहीं नहीं नहीं उनके लिए भी जरूरी है, उनको भी बनवाना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा भैया, कह रहे ट्रेंड है फॉलो नहीं करा तो QID भी कैंसिल हो जाएगा। अरे अरे ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? तो कहते नहीं नहीं नहीं, हमने कहा नाम बता, कह रहे मार्क ज़ुकरबर्ग। तो मैंने कहा अरे ये तो फेक स्कैम है, इसीलिए फ्रॉड अवेयरनेस शो जरूर सुने हर रोज FM 107 पे। फ्रॉड भी बहुत आ रहा है ना, तो मैं शो भी कर रहा हूँ फ्रॉड अवेयरनेस, तो मैं कहा हल्के हाथ से प्रमोशन। फिलहाल मैसेज की तरफ बढ़ते हैं, और लोगों के मैसेज भी हैं, जैसे कि मजरुद्दीन साहब का है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम फजील भाई। वालेकुम अस्सलाम। गेटिंग एन एडवांस सैलरी मोटिवेट्स मी टू डू माई एब्सोल्यूट बेस्ट वर्क सो दैट दिस ट्रस्ट स्टेज स्ट्रॉन्ग फॉर एवर। भरोसा करो मुझ पर, आई वॉन्ट ट्राई टू गेट अ सैलरी एडवांस एंड इट वॉज एन अपहिल बैटल, बट थ्रू इट ऑल आई नेवर स्टॉप गिविंग माई एब्सोल्यूट बेस्ट। सीधा बंदा हूँ भाई, इतना ज़्यादा ईमानदार हूँ कि भाई मैं भी बहुत ज़्यादा ईमानदार हूँ, पता नहीं ये कैसी ईमानदारी है मेरी, सब मेरा ही फायदा उठा के लेके चले जाते हैं। जैसे मजर भाई, आप एडवांस में सैलरी लेके ईमानदारी से काम कर रहे हैं, मैं एडवांस में ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, सैलरी में नहीं, सैलरी आ जाती भाई इधर आ जाती है। लेकिन कई भाई लोग हैं ऐसा, वो कह रहे हैं कि मैं तो ईमानदारी से काम कर रहा हूँ एडवांस में, सैलरी मुझे थोड़ा लेट में मिले। लेकिन कतर का रूल आ गया है, 7 दिन के अंदर सैलरी देनी है भाई साहब। मदर भाई अब सब सीधे होंगे। आगे बढ़ते, अस्सलाम वालेकुम सर, प्रॉम्प्ट सेंड कर दो। अरे मेरा भाई सीधा सही तो नहीं सोच लिया भाई, वो स्कैमर था, मैंने बताया ना। हर रोज सुनिए फ्रॉड अवेयरनेस FM 107 पे। मोहम्मद साहब कोई प्रॉम्प्ट नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है बनवाना, तुम्हारा आधार कार्ड कैंसिल नहीं हो रहा, डरो नहीं भाई। अस्सलाम वालेकुम, ये है रिजवान खान, कहते हैं एडवांस सैलरी ऐसे है जैसे बॉस ने आपको कर्जा दिया और अपने आपने वापस चुकाना। हाँ ये बॉस फिर ऐसी आंखों से देखता, हाँ भाई काम कर रहे, हाँ बैठा हूँ मैं सामने, अरे बॉस सामने क्या बैठे हो, एकदम मुंह पे चढ़ जाओगे क्या। रियाज साहब कहते हैं ये फ्रॉड शो आपको एक्सपीरियंस के बिना पर दिया गया है। हाँ भाई बहुत एक्सपीरियंस किया है मैंने, बाकी मैं देखता भी रहता हूँ ना, मैंने तो एक बाकायदा 3-4 घंटे का एपिसोड देखा है कि ज़माने में कैसे कैसे फ्रॉड हो रहे हैं भाई, तो है अच्छा खासा है रियाज भाई। मुबीन साहब सलाम करते हैं, ओके वालेकुम सलाम। अब ख़त पर आ जाते हैं दोस्त, आज आपको ख़त लिखना है अपने बॉस को, और ये ख़त होना चाहिए एडवांस सैलरी को लेकर, ठीक है। और बस आपको इतनी मोहब्बत से बात करनी है कि आपको अगर एडवांस सैलरी बॉस दे तो आप अपने बॉस को क्या वादा करोगे कि आप काम मुकम्मल करके दोगे बगैर किसी आरामे डरामे के, ठीक है। तो अगर आपको बॉस सैलरी एडवांस में दे तो एक खत उसमें आप क्या लिखोगे जिसमें आप वादा करोगे कि अगर आपने एडवांस सैलरी दी तो मैं एक्स्ट्रा और ये काम करूंगा, तो वो क्या हो सकता है आप बताएं। नंबर है 666-22107, 666-22107। तो आप ऑनेस्टली ईमानदारी से काम करेंगे या नहीं करेंगे अगर आपको एडवांस में सैलरी मिल जाए तो, और थोड़ी बढ़ाकर मिल जाए तो, है ना, तब तो और भी अच्छी बात है। लेकिन फिर काम जो बॉस कहेगा वो, ऐसा हो सकता है वैसे। मुझे पता है काहिल लोग जो हैं, लेजी लोग हमारे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है, ये तो और कमी हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप 666-22107 पे आप बता सकते हैं, 666-22107 पे। डियर बॉस लिखने के बाद ईमानदारी से बॉस को एक खत लिखिए कि अगर एडवांस में पैसा दिया आपके बॉस ने आपको तो आप क्या करेंगे पूरे महीने, ईमानदारी से काम करेंगे या नहीं।
बाकी अब मैसेज की तरफ बढ़ते हैं और एक भाई का और मैसेज है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई एडवांस सैलरी मुझे भी मिलती है लेकिन मैं डिलीवरी वाला नहीं हूँ। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि आप डिलीवरी वाले। तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि ऐसा क्या काम है भाई, आपने बताया भी नहीं। जब आपने इतना बता दिया, आपने सुना भी होगा मैंने उस वक्त कहा कि ऐसे कौन से काम है जिसमें सही में एडवांस में आपको पैसे मिल जाते हैं, तो वो भी बताना चाहिए। ऐसा भी नहीं है ना कि वो खबरी अबरी है एडवांस में मिल गया पैसा, नहीं ऐसा नहीं होता, वो खबर देने के बाद मिलता है। और कौन लोग हैं, मैं लोगों से पूछना चाह रहा हूँ, अगर है कोई सुन रहा है तो प्लीज़ जवाब दें। फिर उसके बाद ये मैसेज है, अगर मुझे एडवांस में पैसे मिल जाएं सर तो अच्छा, ये खत ही है क्या? चलो ऐसा ऐसा खत तो नहीं दिखाएं, लेकिन ठीक है मोहम्मद भाई की बात हम ऐसा खत पढ़ते हैं। डियर बॉस लिखा नहीं है लेने, फिर भी अगर मुझे एडवांस में पैसा मिल जाए सर तो मैं फिर काम क्यों करना है, मैंने तो कुछ जो भी छोड़ देना जो है वो भी छोड़ देना है। अरे भाई आप तो लेजीनेस की हद ही पार कर चुके हैं, आप फिर वो मुर्गे बन जाएंगे जिसने एक बार में अंडा नहीं, एम्प्लॉयर वो मुर्गा बन जाएगा जिसने एक बार में अंडा दे दिया है, आई मीन सॉरी मुर्गी पर उसके बाद आपको सैलरी कहाँ मिलेगी। सादिक भाई ने कहा है अपने आप को एक महीना पीछे लेकर चलें तो अगली सैलरी एडवांस लगेगी। वाह भाई वाह, मोहम्मद सादिक साहब आपको यार तो एक अलग से अवार्ड मिलना चाहिए भाई, जिसे ओवर मोटिवेशन कहते हैं वो सादिक भाई। भाई सादिक तुम सही में ओवर मोटिवेटेड हो मेरा भाई, ये कैसी बात है, ये सुनने में कितना अटपटा लग रहा है, अब फील ही नहीं हो पाएगा। बस हम एहसास कर लें कि हमें एडवांस सैलरी मिल चुकी है, अब बाकी के काम जो है हमें बस एडवांस में करना ही है। बाकी एक और खत है और ये है आरिफ भाई का खत, कहते हैं डियर बॉस पैसा एडवांस दिया तो आपकी कसम ज्यादा काम करेंगे। अरे मेरा भाई अब अल्लाह मालिक है, अगर पैसा एडवांस में दे दिया तो फिर अगले महीने पता चलेगा कि बॉस रहेगा या फिर जाएगा। ये सही है, खत ऐसा लिखो कि बॉस पर क्वेश्चन मार्क बन जाए, जैसे वो माथे पे परेश के क्वेश्चन मार्क बना था वैसे। फिर एक और ये मैसेज है मोहसिन साहब का, कहते हैं डियर मुदीर, मैं डर गया भाई ये क्या लिखा, डियर मुदीर सैलरी एडवांस ना भी दो लेकिन सैलरी ज्यादा चलेगी, महीने के आखिर में काम करने के बाद ज्यादा चलेगी, तो फिर वो सैलरी कहाँ हुई, वो तो इंसेंटिव हो गई सैलरी के साथ, ये तो कोई बात नहीं हुई यार। फिर एक और मैसेज है और है शेख साहब का, डियर बॉस साल में बार सैलरी बढ़ाओ, साल में एक बार सैलरी बढ़ाओ, मुनाफा नहीं है कंपनी को कह के उल्लू मत बन अरे आप वाले भी नहीं यार, नहीं नहीं नहीं, आप वाले भी यही कहते हैं कि मुनाफा नहीं है, ये हर जगह चल रहा है क्या, ये तो 80s की तस्वीर की तरह हो गया यार, ये वायरस हर जगह फैला हुआ है, अरे कंपनी को बहुत लॉस है, मुनाफा नहीं है, इस बार सैलरी नहीं बढ़ पाएगी, इतना कांटा है ना हमारा बेवकूफ इतना बनाया है बॉस लोगों ने, पिछली कंपनी ने मेरे को बहुत बनाया। बाकी एक और ये मैसेज है डियर बॉस, डियर दो बार लिख दिया डियर बॉस, अगर एडवांस में थोड़ा ज्यादा सैलरी दिया तो घर का ग्रोसरी भी ले आऊंगा, तो घर अच्छा बॉस के घर का ग्रोसरी कह रहे हैं या खुद के घर का, अगर बॉस के घर का ग्रोसरी कह रहे हैं तो ये वाले तो अच्छा, ये आपने सही रीजन दिया है अपने बॉस को सैलरी एडवांस देने का नहीं यार ये सैलरी को लेकर कितना, हाँ ये तो आपने फिर बहुत ही कड़क बोल दिया मेरा भाई। फिर ये मैसेज है नुसरत का, कहती हैं डियर बॉस अगर आप मुझे सैलरी एडवांस में दें तो मैं वादा करती हूँ एक एक्स्ट्रा डेडिकेशन के साथ काम करूँगी, इतनी मोटिवेशन मिलेगी कि मंडे भी फ्राइडे जैसा लगेगा, तो बॉस एडवांस सैलरी इज इक्वल टू खुश एम्प्लॉय खुश वर्क प्लेस। हाँ यार ये मुझे सही में लगता भी है कि अगर आपने सही में माहौल अच्छा बनाना ना अपने ऑफिस का, एडवांस में सैलरी दो, और ऐसा नहीं कि एक ही बार में एडवांस सैलरी, नहीं नहीं हर 10 दिन में सैलरी है ना, मतलब आगे के 10 दिन का सैलरी, काहे कि अगर उसने जरा भी इधर उधर करी काम में जरा भी कोताही करी अगला जो 10 दिन है उसमें थोड़ी काट के सैलरी ले बेटा ये भी है, आप खेल सकते हैं। सलाम फजील भाई, वालेकुम अस्सलाम। मुदस्सर बंगाश कहते हैं ठेकेदारी के काम में पैसा एडवांस में मिलते हैं। हाँ ये बात, ठेकेदारी के काम में, मैं ठेकेदारी पढ़ रहा हूँ भाई
लेकिन मजदूरों के पैसे पर भी महीने के आखिर में मिलेंगे, मजदूरों के तो मिलते हैं आखिर में ठेकेदारे में, लेकिन पैसे एडवांस में मिलते हैं। बट उसमें भी है ना कि वो 30% 50% मिलते हैं, मटेरियल ले आओ। कभी कभार फील होता है कि मैं भी यार मजदूर ही हूँ क्या? एहसास तो होता है कभी कभी, लेकिन हर मर्द मजदूर ही तो है, मैं तो ये बात एक्सेप्ट कर चुका हूँ। अबू भाई ने क्या लिखा है, फजील भाई सलाम अलैकुम, सैलरी शुड बी इन 15 डेज सो बोथ पार्टी विल बी हैप्पी। हाँ, ये देखो मैं कह भी रहा था कि जहाँ इधर उधर कुछ करा एम्प्लॉय ने, एम्प्लॉयर ने एक चाबुक घुमाया, जैसे हमारा कोड़े वाला भाई है ना वैसे, बहुत ही उम्दा, ये मैं इस बात पे एग्री करता हूँ। अगर बॉस के ग्रोसरी में ही आपका पूरा एडवांस चला गया तो अमीर लोगों के खर्चे नहीं, मतलब बॉस की ग्रोसरी, ऐसा नहीं कि वो बॉस ने जो पैसे दिया है मुझे, मेरे एडवांस सैलरी जो मुझे दिया है, उस एडवांस सैलरी से थोड़ी बॉस किसी ग्रोसरी लेकर आएंगे, बॉस अपना अलग दे ग्रोसरी के लिए। रियाज भाई तो सीरियस ही हो गए नहीं मेरा भाई। फिर एक और ही मैसेज है, और काफ़ी लंबे वक्त से मैसेज कर रहे हैं, धै ऑडियो पे ऑडियो रिप्लाई, किस चीज़ की बात कर रहे हो, किस चीज़ की, अच्छा मैं पता नहीं, हो सकता है इन्होंने मार्क जुकरबर्ग की बात सुनी हो, नहीं भाई वो वाली तो बात अलग है, बात किस चीज़ की हो रही है बताओ, आपको सारी सैलरी दे दूंगा। इनने टोटल किया 1 2 3 4 फिर डॉट डॉट डॉट डॉट, ये भी मैसेज किया है, फिर लिखा किस चीज़ की बात हो रही बताओ। भाई अब वक्त निकल गया है, छोड़ो काजी हैदर साहब जान दो यार, अब निकल गई बात तो छोड़ो, जो बीत गई सो बात गई, पानी डालो। सादिक साहब कहते हैं अरे ठेकेदारी का एटीट्यूड भी खतरनाक होता है। लो भाई वेद, यहाँ तो बात ही छिड़ गई है, यार ठेकेदारी को कैसा बोला, ठेकेदार का एटीट्यूड खराब होता है। डंडा उठाओ यार दादाजी का। हमारी सैलरी 45 दिन के बाद आती है। अच्छा, रिजवान साहब का ये कहना है, अच्छा जहाँ पर ये काम करते हैं वहाँ का ये रूल है, लेकिन अभी रूल में चेंजेस आए हैं, पिछले 2-4 दिनों से ये बात हो भी रही है और ये रूल में चेंजेस आए हैं, लॉ नंबर आई गेस, मैं श्योर नहीं हूँ तो मैं बता नहीं सकता, आई गेस 11 के अराउंड है, 11 तो है, फिर उसके में ब्रैकेट में भी है कुछ भाई, बट ये श्योर है कि 30 दिन कंप्लीट होने के बाद, मुकम्मल होने के बाद 7 दिन के अंदर अंदर पेमेंट देनी ही पड़ेगी। बाकी आपकी जो काजी साहब, काजी हैदर इनका नाम है, आपकी जो क्यूरियोसिटी है मैं वो बता दूँ, सैलरी पर लेकर बात हो रही थी कि क्या एम्प्लॉई को एडवांस में अगर सैलरी दी जाए तो वो ईमानदारी से काम करेगा या नहीं करेगा, ये आज का सवाल था। लोगों ने अपने ख़त में ऐसी बातें कही हैं, लेकिन एक जो सबसे ज़बरदस्त ख़त मुझे लगा वो यही कि डियर बॉस, अगर एडवांस में ज़्यादा सैलरी दिया

खैर भाई अपने अपनी दिल लगी है, अपनी अपनी मेहनत है, अपनी अपनी डिमांड है। इसी के साथ हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:54 और मेरे यहाँ से जाने का वक्त आ गया है। ये दो दिन मैं थोड़ा आराम करूँगा। आराम क्या, ये तो वो है कि जबान को धार लगाऊंगा, कहे कि संडे को फिर से रेतना है ना। तो संडे को रेताई करने के लिए मिलेंगे 6:00 और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इन अफवाहों पर भरोसा बिल्कुल मत करिए कि 80s की तस्वीरें अगर आपने बनाकर सोशल मीडिया पे नहीं डाली तो कैंसिल हो जाएगा, आधार कार्ड आपका बना रहेगा, ठीक है, चिल है। बाकी मार्क भैया सबको कॉल करके कह रहे हैं कि बनवा लो वरना ऑफिस में इज्जत भी नहीं कर रहे हैं, बनवा लो, बहुत ज़रूरी है, आपको बड़ी अजीब नज़रों से देखा जा रहा है अगर आपने 80s की तस्वीर ना अपने सोशल मीडिया में नहीं डाली तो। ये बातें चल रही हैं भाई, आप अपने एम्प्लॉयज़ के बीच भी बात करो जाके, आपको अलग नजरों से देखा जा रहा है, 80s की तस्वीर बनाई लो भाई। बाकी प्रिया बनर्जी की आवाज में आपकी नजरों ने समझा, ये खूबसूरत सा ट्रैक आपके लिए। FM 107 पे इंशाल्लाह मुलाकात होगी संडे शाम 6:00। आज का दिन एंजॉय करें, इस वीकेंड को एंजॉय करें और अभी कुछ ही देर में आपको सुनने को मिलेगा कतर की तमाम न्यूज FM 107 पे शाम को 7:00। दिल से देसी।

मिट्टी से ओलंपिक गोल्ड तक उनका ये सफर आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे मुमकिन हुआ। सीजन टू। अरशद नदीम एक छोटा सा शहर मियां छन्नू, जी हाँ पंजाब का वो इलाका जहां से दुनिया के सबसे बड़े एथलेटिक स्टेडियम तक का सफर किसी ख्वाब से कम नहीं था। लेकिन कभी कभी ख्वाब उन्हीं लोगों के सच होते हैं जो मुश्किलों के सामने रुकते नहीं। एक लड़का था जिसे क्रिकेट बेहद पसंद थी, लेकिन किस्मत ने उनके हाथ में बैट नहीं जैवलिन पकड़ा दी। और फिर उस लड़के ने सिर्फ एक जैवलिन नहीं फेंकी, उन्होंने पाकिस्तान की स्पोर्टिंग हिस्ट्री बदल दी। जी हाँ, अरशद नदीम नाम तो सुना होगा। आज वो सिर्फ पाकिस्तान का ओलंपिक चैंपियन नहीं, वो साउथ एशियन एथलेटिक्स की एक पहचान है। लेकिन उस कहानी में सिर्फ 92.97 मीटर्स की एक थ्रो नहीं, इस कहानी में सालों की मेहनत है, इंजरीज हैं, लिमिटेड फैसिलिटीज हैं, प्रेशर है और गिरकर दोबारा उठने का जज्बा है। यूं कह लीजिए, अरशद नदीम का सफर किसी वर्ल्ड क्लास एथलेटिक्स एकेडमी से शुरू नहीं हुआ, वो मियां छन्नू से निकला जहां रिसोर्सेज लिमिटेड थे और जैवलिन थ्रो पाकिस्तान में क्रिकेट के साए में एक छोटा सा स्पोर्ट समझा जाता था। अरशद ने बचपन में क्रिकेट भी खेली, लेकिन स्कूल एथलेटिक्स के दौरान एक कोच की नजर उन पर जाकर पड़ी और उस कोच ने उनके कद, स्ट्रेंथ और थ्रोइंग एबिलिटी में कुछ खास देखा और यहीं से एक नए सफर का आगाज हुआ। ना मॉडर्न ट्रेनिंग सेंटर, ना दुनिया के बेहतरीन इक्विपमेंट, ना मिलियन डॉलर फैसिलिटीज, बस सिर्फ महज टैलेंट, मेहनत

उनकी थ्रोज दूर होती गई और फिर पाकिस्तान के एथलेटिक सर्किट में एक नया नाम उभरने लगा, अरशद नदीम। अच्छा, पाकिस्तान में अगर आप किसी बच्चे से पूछें तुम क्या बनना चाहते हो तो जवाब अक्सर होता है क्रिकेटर, लेकिन अरशद का रास्ता अलग था। एथलेटिक्स में पाकिस्तान के एथलीट्स को अक्सर वो रिसोर्सेज नहीं मिलते जो दुनिया के टॉप स्पोर्टिंग नेशंस में आम हैं, जैसे कि अमेरिका या वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें। अरशद ने इसी कमी के दरमियान अपनी पहचान बनाई। 2016 साउथ एशियन गेम्स में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, फिर कॉमनवेल्थ गेम्स, फिर इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स, और हर कॉम्पिटिशन के साथ उनकी थ्रो और लंबी होती गई। 2019 में उन्होंने 86 मीटर से ज्यादा की थ्रो के साथ अपनी इंटरनेशनल एबिलिटी का स्ट्रॉन्ग सिग्नल दिया और फिर आए टोक्यो यानी ओलंपिक गेम्स, टोक्यो ओलंपिक्स 2020। अरशद नदीम पाकिस्तान की तरफ से जैवलिन कंपटीशन में उतरता है और सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं करता, फाइनल तक पहुंचता है और उनकी बेस्ट थ्रो 84.62 मीटर, पोजीशन 5th। मेडल नहीं मिला लेकिन पाकिस्तान को एक चीज मिल गई, यकीन कि पाकिस्तान का एक एथलीट दुनिया के बेहतरीन जैवलिन थ्रोअर्स के साथ खड़ा हो सकता है। टोक्यो के बाद अरशद ने रुकना नहीं था, उन्होंने अपनी वीकनेस को समझा, ट्रेनिंग इंप्रूव की, स्ट्रेंथ पर काम किया, टेक्निक पर काम किया और इंजरीज के बावजूद अपने जिस्म और जहन दोनों को अगले लेवल के लिए तैयार किया। इसके बाद 2022 का कॉमनवेल्थ गेम्स इन बर्मिंगम यूनाइटेड किंगडम बर्तानिया में अरशद नदीम के सामने दुनिया के टॉप थ्रोअर्स में से एक एंडरसन पीटर्स, लेकिन फाइनल में अरशद ने वो कर दिखाया जिसका इंतजार था। 90.18 मीटर्स यानी 90.18 मीटर पाकिस्तान का अरशद नदीम 90 मीटर की बैरियर क्रॉस कर चुका था और कॉमनवेल्थ गेम्स का रिकॉर्ड भी बना दिया और इसके साथ गोल्ड मेडल। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था दोस्तों, ये सिग्नल था कि अरशद अब दुनिया के एलिट जैवलिन थ्रोअर्स में शामिल हो चुका है। अगले साल 2023 का वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप्स और ये हुआ था हंगरी के दारुल हुकूमत बुदापेस्ट शहर में। अरशद ने एक और माइलस्टोन अचीव किया, 87.82 मीटर, और यहाँ मिला उनको सिल्वर मेडल। गोल्ड तो गया नीरज चोपड़ा के पास और यहाँ से इंडिया और पाकिस्तान की जैवलिन राइवलरी को दुनिया ने और गहराई से देखना शुरू किया। दो एथलीट्स, दो ममालिक, एक ही इवेंट, लेकिन राइवलरी के पीछे देयर वाज म्यूचुअल रेस्पेक्ट। नीरज और अरशद की कहानी सिर्फ कॉम्पिटिशन की कहानी नहीं, यह स्पोर्ट्समैनशिप की भी कहानी है। दोनों ने एक दूसरे की सक्सेस को अप्रिशिएट करते रहे और दोनों ने साउथ एशिया में जैवलिन को एक नई पॉपुलरिटी दी। 8 अगस्त 2024 पेरिस, स्टेट डी फ्रांस, दुनिया के बेहतरीन जैवलिन थ्रोअर्स का एक जगह और पाकिस्तान की नजरें एक एथलीट पर, अरशद नदीम। पहली अटेम्प्ट फाउल, लेकिन चैंपियन प्रेशर से नहीं टूटता। दूसरी अटेम्प्ट, अरशद रनवे पर आता है, स्पीड, रिदम, रिलीज और फिर 92.97 मीटर्स एक थ्रो और ओलंपिक रिकॉर्ड टूट गए। अरशद सीधा हिस्ट्री के सफे पर। नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता 89.45 मीटर्स के साथ। एंडरसन पीटर्स ब्रॉन्ज पर रहे, ये वही एंडरसन पीटर्स, लेकिन रात पाकिस्तान की थी। अरशद नदीम का 92.97 मीटर्स का थ्रो ओलंपिक रिकॉर्ड बन गया और वो पाकिस्तान का पहला इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बना। पाकिस्तान का एथलेटिक्स में पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल और मुल्क के लिए 32 साल बाद ओलंपिक मेडल। वर्ल्ड एथलेटिक्स के मुताबिक 92.97 मीटर्स उस वक्त मेंस जैवलिन में ऑल टाइम लिस्ट पर भी दुनिया की टॉप परफॉर्मेंसेस में शामिल था। और फिर आखिरी राउंड में अरशद ने एक और मॉन्स्टर थ्रो की 91.79 मीटर्स, जैसे वो दुनिया को बता रहा हो यह सिर्फ एक लकी थ्रो नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, दैट वाज नॉट अ फ्लूक बाय विनिंग द ओलंपिक गोल्ड मेडल, और उन्हें ये प्रूव किया मुसलसल।

मकतूब करता रहा कि पाकिस्तान में क्रिकेट हो या हॉकी, जैवलिन भी वन ऑफ द स्पोर्ट जहां पे कुछ कर सकता है। मियां छन्नू में सेलिब्रेशन शुरू हुए। आई मीन इट वाज नेचुरल कि मियां छन्नू का वो लड़का, वो बच्चा जो एक टाइम क्रिकेट सोचता था फिर जैवलिन लिया, आज जैवलिन के वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक चैंपियन, तो जाहिर सी बात है कि मियां छन्नू में जश्न तो होनी चाहिए। पाकिस्तान के शहरों में लोग सड़कों पर आ गए, ढोल बजने लगे, मिठाई बनती गई और एक ऐसा एथलीट जिसे कुछ साल पहले तक सिर्फ एथलीट्स के फैंस जानते थे, अब हर पाकिस्तानी जानता था, अरशद नदीम। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, उनकी जीत ने एक सवाल भी उठाया। अगर एक एथलीट लिमिटेड रिसोर्स के बावजूद ओलंपिक चैंपियन बन सकता है तो पाकिस्तान के पास और कितने अरशद नदीम हो सकते हैं? दैट्स अ बिग क्वेश्चन। ओलंपिक गोल्ड के बाद कहानी खत्म नहीं हुई, असल चैलेंज अब शुरू हुआ। अरशद को इंजुरीज का सामना रहा। एथलेटिक्स में, फिजिकल स्पोर्ट में, एथलेटिक्स, फिजिकल स्पोर्ट्स, कोई भी अब गेम उठा लीजिए, इंजुरी इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द स्पोर्ट, एनी गेम। तो यहाँ अरशद को एल्बो, नी यानी कोनी, घुटने और बैक इश्यूज, सब कुछ धीरे धीरे सताने लगा। पेरिस ओलंपिक से पहले भी उनकी नी इंजरी ने प्रिपरेशन को अफेक्ट किया था, लेकिन उन्होंने सर्जरी और रिहैब के बाद जबरदस्त कमबैक किया और पेरिस में दुनिया को जवाब दे दिया। लेकिन 2025 और 2026 ने एक और सबक दिया कि चैंपियन भी इंसान होता है दोस्तों। 2026 अरशद के लिए आसान साल नहीं रहा। सीजन के शुरू में उनकी परफॉर्मेंसेस उस स्टैंडर्ड की नहीं थी जिस स्टैंडर्ड का दुनिया ओलंपिक चैंपियन से इंतजार करती है, ना दे एक्सपेक्ट लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम एन ओलंपिक चैंपियन। तो ये अरशद को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा। फिर आया कॉमनवेल्थ गेम 2026 जो कि ग्लासगो यानी स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में हुआ और यहाँ पर अरशद नदीम डिफेंडिंग चैंपियन था। 2022 में उन्होंने कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडल जीता था और इस बार फिर उम्मीदें बहुत ज्यादा थी। क्वालिफाइंग राउंड में अरशद ने सीजन बेस्ट 78.63 मीटर थ्रो करके फाइनल में जगह बनाई, लेकिन फाइनल एक नाइटमेयर बन गया। पहली थ्रो फाउल, दूसरी 77.41 मीटर, तीसरी 75.39 मीटर और रिजल्ट उफ, 9th पोजीशन। इवन उनके जो यू नो जो राइवल कॉम्पिटिटर, वो भी ये समझते थे कि तो ये हुआ क्या, अरशद नदीम को हो क्या गया है। नीरज चोपड़ा जो उनके खास दोस्त हैं, वो भी परेशान कि यार ये हो सकता है कि यू नो ओलंपिक चैंपियन, कॉमनवेल्थ डिफेंडिंग चैंपियन, वो 9th पोजीशन पर फिनिश करे। अरशद टॉप 8 में जगह नहीं बना सका और अपना कॉमनवेल्थ टाइटल डिफेंड नहीं कर सका। गोल्ड गया श्रीलंका के राइजिंग स्टार रुमेश थरंगा पथिरागे के पास। उनकी विनिंग थ्रो थी 89.75 मीटर्स और नीरज ने जीता सिल्वर और अरशद नदीम 9th पोजीशन पर। और होता यूं है कि जब ओलंपिक चैंपियन हो या वर्ल्ड चैंपियन हो, आपके ऊपर एक एक्सपेक्टेशंस, यू नो स्काई हाई एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज देयर, और जब आप परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं तो उसके साथ साथ आपको क्या मिलता है, तंकीद, सोशल मीडिया और पता नहीं क्या क्या यू नो लिखे जाते हैं कि ख़त्म हो गया। ओलंपिक चैंपियन होने के बावजूद अरशद को क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। सोशल मीडिया पर तो आजकल तो इट्स अ रूटीन जॉब, कोई भी उठाता है फ़ोन और अपना कमेंट लिखता है। नेगेटिव कमेंट्स तो आए, कुछ लोगों ने उनके परफॉर्मेंसेस पर सवाल उठाए, लेकिन अरशद ने कहा कि इन कमेंट्स ने उन्हें डीपली हर्ट किया। एक चैंपियन के लिए सबसे मुश्किल वक्त वो नहीं होता जब आप हारते हैं, सबसे मुश्किल वक्त वो होता है जब दुनिया आपको सिर्फ आपकी एक हार से जज करने लगे। क्या खत्म हो गया। अरशद ने ग्लासगो की ठंड को भी अपनी परफॉर्मेंस का एक फैक्टर बताया। उनका कहना यह था कि शदीद इस ठंड में उनके यू नो जिस्म को स्टिफ कर दिया था और उनका नॉर्मल रन अप अफेक्ट हुआ था, लेकिन उन्होंने एक्सक्यूजेस के पीछे छुपने के बजाय अगला टारगेट देखना शुरू कर दिया है। अब कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद अरशद के पास एक चॉइस थी, कॉम्पिटिशन यानी या ट्रेनिंग कह लीजिए, और उन्होंने ट्रेनिंग को चूज किया कि कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद वो क्या करते, कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं करना था उन्हें, बिकॉज उनको अपने ही पुराने फॉर्म यानी बैक फॉर्म में अगर वापस जाना था तो उनको चाहिए थी ट्रेनिंग, एंड ट्रेनिंग होना

ना बहुत इंपॉर्टेंट है. ट्रेनिंग में आप अपने प्लस माइनस जो भी आपके यू नो ड्रॉबैक्स हैं उसको आप नोटिफाई कर सकते हैं. आपका कोच जो है वो आपको बता सकता है कि व्हाट आर द रॉन्ग्स दैट आर गोइंग ऑन इन हिज स्टिंट, इन हिज रन अप, इन हिज थ्रोज. सो उन्होंने ट्रेनिंग को चूज किया. यानी अर्शद नदीम थॉट कि बेटर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके दोबारा ना इंजरी हो जाए, इससे बेटर है कि हम ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग पे फोकस करें. अगस्त 2026 में अर्शद ने लोसैन डायमंड लीग से विदड्रॉ करने का फैसला किया. दैट वाज अ मेजर डिसीजन बाय अर्शद. और डायमंड लीग जो है एक स्टॉप ओवर इवेंट है, हर शहरों में होता है. दोहा में भी डायमंड लीग का आगाज होता है एंड द फर्स्ट स्टॉप ओवर इज दोहा सिटी. सो डायमंड लीग में दुनिया के तमाम टॉप एथलीट्स दे कम एंड दे पार्टिसिपेट, जस्ट लाइक एन ATP टूर इन टेनिस में, ठीक है ना. तो यहाँ पे अर्शद ने सोचा कि बेटर है, जैसे मैंने बताया कि ट्रेनिंग पे फोकस करा जाए तो बेटर है, कॉम्पिटिशन को छोड़ते हैं. और इनका मकसद क्या था? अपने अगले मेजर कॉम्पिटिशन के लिए पीक फॉर्म हासिल करना. उनके कोच सलमान बट के मुताबिक अर्शद साउथ अफ्रीका के प्रोचेस फ्रोम में ट्रेनिंग करने वाला था, जहां वो अपने कोच ट्रेसिस ल्यूमबर्ग और लोकल ट्रेनर्स के साथ काम करेगा. और ये बताता है कि चैंपियन का असली माइंडसेट क्या होता है. जब परफॉर्मेंस डाउन हो तो चैंपियन शो नहीं करता, चैंपियन वर्क करता है, यानी काम करता है, छुप कर काम करता है, कोई शोर गोल लाउड नहीं होता है. और यही अर्शद नदीम का एक वन ऑफ द पिक्यूलियर क्वालिटी जो मैं समझता हूँ. एक तो यू नो ही इज नॉट फ्रॉम द यू नो द अर्बन सिटी, ही इज फ्रॉम अ रूरल एरिया, मियाँ छन्नू. तो एक नौजवान, उनकी जो तरबियत है, उनकी जो परवरिश रहा होगा एक गांव में, तो वो एक ज़्यादा लाउड नहीं होता है. दे ट्राई टू कीप देमसेल्व्स विद इन यू नो देयर कन्फाइनमेंट ऑफ देयर ओन माइंड सेट, बिकॉज दे वॉन्ट टू प्रूव टू द वर्ल्ड. एक गांव का लड़का एक यू नो मजबूत होते हैं और उनको ये लगता है कि यार हमसे क्या हो गया कि चला दुनिया वाले हमारे पीछे पड़ गए. ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, पाकिस्तान का यू नो इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट, और यहाँ पर ही कुडंट परफॉर्म इन द कॉमनवेल्थ गेम्स इन ग्लासगो. तो ही डिसाइडेड, उन्होंने अपना दिमाग बना लिया था कि अब वो फोकस करेगा सिर्फ ट्रेनिंग पर. लेकिन अगस्त 2026 में अर्शद का साउथ अफ्रीका ट्रेनिंग ट्रिप एक नए कंट्रोवर्सी का सबब भी बना. और रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके साउथ अफ्रीका ट्रेनिंग कैंप को लेकर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट से रिलेटेड सवाल उठे. अर्शद ट्रेनिंग के लिए साउथ अफ्रीका पहुंच गया, लेकिन स्पोर्ट्स अथॉरिटीज के साथ कोऑर्डिनेशन और परमिशन को लेकर कंट्रोवर्सी सामने आ गई. एक बार फिर सवाल वही था, क्या पाकिस्तान अपने सबसे सक्सेसफुल इंडिविजुअल एथलीट को वो सिस्टम दे सकता है जिसकी उसे जरूरत है. एनीवे, 2026 का अगला चैप्टर अब बहुत इंपॉर्टेंट है. अर्शद के सामने मेजर इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन हैं, वर्ल्ड एथलेटिक्स अल्टीमेट चैंपियनशिप बुदापेस्ट यानी हंगेरी के दारुल हुकूमत बुदापेस्ट शहर में, जो कि सितंबर में होने जा रहा है, इसी महीने में होने जा रहा है. और मेंस जैवलिन फाइनल्स का स्केड्यूल जो है 13 सितंबर को होगा. और अर्शद नदीम इवेंट के कंफर्म स्टार एथलीट्स में शामिल है. उसके बाद एशियन गेम्स इन जापान यानी ग्लासगो की डिसअपॉइंटमेंट के बाद अर्शद के पास कमबैक का बहुत जबरदस्त मौका है. और शायद यही उनकी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा भी है. अच्छा, आप चलते हैं कि अर्शद वर्सेस नीरज चोपड़ा की जो ये राइवलरी है, ये राइवलरी के बारे में मीडिया ने काफ़ी कुछ इंटरेस्ट शो किया है. और यहाँ पर राइवलरी से ज़्यादा दोस्ताना, दोस्ती, इसके बारे में काफ़ी कुछ हमें पढ़ने को मिला है, देखने को मिला है. तो अर्शद नदीम और नीरज चोपड़ा दोनों ने अपने मुल्कों की हिस्ट्री बदली. वहीं नीरज चोपड़ा 2020 टोक्यो ओलंपिक्स की बात अगर ज़रा आप सोचें तो ही क्रिएटेड हिस्ट्री. नीरज ने इंडिया के लिए ओलंपिक एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल लेके आया और पाकिस्तान के लिए अर्शद ने, पेरिस में अर्शद गोल्ड मेडल पर था, नीरज सिल्वर पर. लेकिन स्टेडियम से बाहर ये दोनों राइवल्स से ज़्यादा एथलीट्स और दोस्त हैं. अर्शद ने खुद कहा था कि कॉम्पिटिशन के वक्त एथलीट अपने परफॉर्मेंस पर फोकस करता है, लेकिन ट्रैक के बाहर दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे टर्म्स में हैं. और शायद इसीलिए उनकी राइवलरी इतनी खास है, क्योंकि ये राइवलरी जो
जो है रेस्पेक्ट पर,

0: बनती है। सोशल मीडिया आप लोगों ने देखा भी होगा कि जब अरशद नदीम मेडल जीतता है और यहाँ पर एक वीडियो वायरल हमें होने को देखा था, एक वीडियो वायरल भी हुआ था। वो वीडियो में नीरज चोपड़ा की जो अम्मी है उन्होंने बड़ा ही कॉन्ग्रेचुलेट, आई मीन बखूबी अगर कहूँ उनके जो अल्फाज वो बड़े इमोशनल, एक एक माँ अपने बेटे के लिए कह रहा है। तो उन्होंने ये कहा था कि अरशद भी मेरा बेटा है, नीरज जैसा मेरा बेटा है, और उसके इस गोल्ड मेडल जीतने पर उनको मतलब इंतहाई शी वाज सो हैप्पी। और वही एक्चुअली यू नो इस वीडियो में इट ट्राइज टू पोर्ट्रे द ब्रदरहुड बिटवीन नीरज चोपड़ा एंड अरशद नदीम। दोनों ज़बरदस्त परफॉर्मर्स, दोनों दो डिफरेंट कंट्रीज से साउथ एशियन एथलेटिक्स को ऊपर ले जाने में इन जैवलिन इन दोनों का ही बड़ा ही अहम नो किरदार रहा है। आने वाले वक्त में अगर 20 साल के बाद 25 साल के बाद आई थिंक लॉट ऑफ पीपल विल रिलेट द स्टोरीज ऑन द फील्ड ऑफ द फील्ड, यानी ऑन द ट्रैक एंड ऑफ द ट्रैक, इन दोनों की कॉम्पिटिशन्स, राइवलरी, इन दोनों की दोस्ती, साथ ही साथ इन दोनों की परफॉर्मेंसेस। दोनों ही ओलंपिक चैंपियंस और वर्ल्ड चैंपियन, और देखिए क्या बात है कि जो इंडिया पाकिस्तान में क्रिकेट के बारे में लोग बातें करते हैं, क्रिकेट को छोड़कर जैवलिन में वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक चैंपियन एक बहुत बड़ी बात है। आई वुड से कि क्रिकेट से बहुत ज़्यादा है। अगर क्रिकेट में इंडिया वर्ल्ड चैंपियन है और पाकिस्तान एक ज़माना पहले वाज वर्ल्ड चैंपियन 1992 ODI वर्ल्ड चैंपियन, कितने वो मालिक खेलते हैं, गिने चुने 9-10। और ओलंपिक की प्रेजेंस देखिए, ओलंपिक में दुनिया के तमाम ममालिक वहाँ पे मौजूद रहते हैं एंड दे कम्पीट, और वहाँ पे ओलंपिक चैंपियन बनना मोर देन 200 नेशंस एंड पाकिस्तान और इंडिया, आई मीन सोचिए ज़रा कि क्रिकेट कहाँ और ओलंपिक कहाँ। सो इन दोनों के जो परफॉर्मेंसेस हमने देखा है एंड दैट रियली यू फील प्राउड कि जैवलिन जैसे स्पोर्ट में इन दोनों एक अनजान दोनों एथलीट्स आकर एक स्पोर्ट को एक हाई लेवल यू नो हाई लेवल हाई डिग्निटी वाले बात जो अगर करूँ मैं यहाँ पर उस जैवलिन को वहाँ तक ले जाते हैं। सो सल्यूट टू बोथ नीरज चोपड़ा एंड अरशद नदीम इनकी इस कॉन्ट्रीब्यूशन पर इन जैवलिन को उस लेवल तक पहुँचाने पर। दोस्तों एक वक्त था जब अरशद नदीम यहाँ छन्नों के एक लड़के के तौर पर जैवलिन पकड़ता था, आज उनके नाम के साथ एक और लफ्ज जुड़ा है, ओलंपिक चैंपियन, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया 92.97 मीटर्स, एक नंबर। लेकिन उस नंबर के पीछे हजारों घंटे की ट्रेनिंग है, इंजरीज हैं, फेलियर्स हैं, फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, क्रिटिसिज्म भी है, और सबसे बढ़कर एक एथलीट का यकीन है, यकीन कि अगर फैसिलिटीज कम हैं तो मेहनत ज्यादा होगी, अगर सपोर्ट कम है तो हौसला ज्यादा होगा, और अगर एक दिन थ्रो सिर्फ 77 मीटर्स जाती है तो अगले दिन दोबारा रनवे पर आया जाएगा, क्योंकि चैंपियन वो नहीं जो कभी नहीं हारता, चैंपियन वो है जो हार के बाद दोबारा थ्रो करता है। अरशद नदीम ने पाकिस्तान को ओलंपिक गोल्ड दिया, लेकिन शायद उनका सबसे बड़ा मेडल वो उम्मीद है जो उन्होंने पाकिस्तान के बच्चों के दिलों में डाल दी। आज कोई मियां छन्नू का बच्चा जैवलिन उठाता है, कोई पंजाब के स्कूल में एथलेटिक्स ट्राई करता है, कोई क्रिकेट बैट के बजाय थ्रोइंग टेक्निक सीखता है, और शायद किसी के जहन में एक ख्वाब पैदा होता है, मैं भी अरशद नदीम बन सकता हूँ। ये होती है लेगेसी। मेडल अलमारी में रखा जा सकता है, रिकॉर्ड एक दिन टूट सकता है, लेकिन इंस्पिरेशन जेनरेशंस तक जिंदा रहती है। मियां छन्नू का वो बच्चा जिन्होंने एक जैवलिन से दुनिया को हैरान कर दिया, अब एक और मिशन पर है, कमबैक, बुदापेस्ट एशियन गेम्स, और एक नया टारगेट, शायद 93 मीटर्स, शायद 95, शायद उससे भी आगे हो, क्योंकि अरशद खुद कह चुका है 92.97 मीटर्स के बाद भी मैं और आगे जाना चाहता हूं। यह सिर्फ अरशद नदीम की कहानी नहीं दोस्तों, ये पाकिस्तान के हर उस एथलीट की कहानी है जो रिसोर्सेस की कमी के बावजूद ख्वाब देखता है, हर उस माँ बाप की कहानी जो अपने बच्चे को कहता है मेहनत करो, हर उस कोच की कहानी जो एक अननोन टैलेंट में चैंपियन देख लेता है, और हर उस इंसान की कहानी जो गिरने के बाद दोबारा खड़ा होता है। अरशद नदीम मियां छन्नू से पेरिस तक और पेरिस से अगली मंजिल तक, पाकिस्तान का जैवलिन किंग, ओलंपिक चैंपियन और एक ऐसा गेम चेंजर जिन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि कभी कभी सबसे दूर थ्रो सबसे छोटी जगह से आती है। अरशद नदीम द चैंपियन फ्रॉम मियां छन्नू। अच्छा, आप लोग सोचते होंगे कि गेम चेंजर में अरशद नदीम क्यों। अक्सर लोगों का ये क्वेश्चन होता ही है कि गेम चेंजर में क्रिकेटर हो, गेम चेंजर में कोई फुटबॉलर हो, लेकिन हमारा फोकस थोड़ा इस तरह है FM 107 की जानिब से कि आई ट्राई टू पुट इन उस खिलाड़ियों को, उस एथलीट्स को जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, जो हमारे देसी लोग हैं और इस ममालिक से जो छोटे छोटे गांव से आकर दे बिकम एन इंस्टेंट स्टार, ओलंपिक चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन। क्रिकेट की बातें तो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बताते रहते हैं, क्रिकेट में ये हुआ, यू नो विराट कोहली ने ये कर दिया, यू नो सचिन ने ये किया था, गावस्कर ने वो किया था, जावेद मियांदर ने वो किया था, सबको पता है। क्रिकेट इज़ लाइक एवरीडे नॉलेज। लेकिन जैवलिन हॉकी कौन याद करता है, कौन याद करता है आज के डेट में अरशद नदीम को, कौन याद करता है यू नो ऐसे एथलीट को जो कि एक नॉन डिस्क्रिप्ट विलेज, जिस गांव का कोई नाम पता किसी ने सुना भी नहीं था, मियां छन्नू पंजाब में, और आज हर कोई बच्चा जानता है, हर कोई जर्नलिस्ट लिखता भी होगा, राइटर लिखता भी होगा कि ही हेल्स फ्रॉम, या ये अरशद नदीम जो है इस गांव से है, मियां छन्नू से है। तो FM 107 की जानिब हमारा ये जो एक, ये कह लीजिए कैंपेन, कह लीजिए एक कोशिश है कि वी विल हाईलाइट दोज गेम चेंजर्स, मोस्टली कोशिश हम करेंगे, निकालेंगे रिसर्च करके कि जो कि हमारे लिए इंस्पिरेशन हो, हमारे बच्चों के लिए इंस्पिरेशन हो और एक मोटिवेशन लेवल तक ले जाए। आई मीन सबके लिए मोटिवेशन है, यू नो आपके पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके पास नहीं हो, तब भी आप कर सकते हैं मेहनत के साथ, एक इरादे के साथ और वो एक ड्रीम के साथ, एक हदफ रखिए कि नो वी हैव टू डू इट, आई हैव टू डू इट, दिस इज माई गोल, एंड अरशद नदीम इज़ अ गेम चेंजर इन एवरी वे। तो उम्मीद है आपको आज का हमारा ये गेम चेंजर शो ऑन अरशद नदीम पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, FM 107 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, इस फेसबुक है, यूट्यूब है, ट्विटर हैंडल है यानी एक्स प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम भी है, आप वहां पर जाके कमेंट कर सकते हैं और अपने रिक्वेस्ट भी डाल सकते हैं कि मुझे फलाने एथलीट्स के बारे में सुनना है। सो वी विल ट्राई अवर लेवल बेस्ट टू पुट इन दैट काइंड ऑफ यू नो एथलीट्स जिनके परफॉर्मेंसेस से आने वाले जनरेशंस काफ़ी मुतासिर होते हैं या होंगे। इसी के साथ मुझे निमामुद अमीन और साउंड डिज़ाइनर शहबाज अंसारी को दीजिए इजाज़त। कीप लिसनिंग टू FM 107, दिल से देसी। गेम चेंजर सीजन 2,
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

प्राइवेसी का तहफ्फुज़ एतमाद को मजबूत बनाता है। नेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी आवाम से अपील करती है कि अपनी ज़ाती मालूमात शेयर करने से पहले प्राइवेसी पॉलिसी को गौर से पढ़ें ताकि आप जान सकें कि आपकी मालूमात किस तरह इस्तेमाल की जाएंगी। आपका सोचा समझा फैसला आपकी मालूमात को महफूज रखने के साथ साथ एतमाद को भी मजबूत बनाता है। हमेशा याद रखें, डेटा प्राइवेसी का आगाज आपसे होता है।

वेलकम टू अ सेगमेंट कॉल्ड स्मार्ट मनी. मैं हूं आपकी दोस्त आपकी होस्ट नासिया. आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल लिटरेसी की. व्हाई मनी एजुकेशन मैटर मोर देन एनीथिंग. देखिए आज के इस फास्ट चेंजिंग फाइनेंशियल वर्ल्ड में फाइनेंशियल लिटरेसी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल बन चुकी है. जब हम फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करते हैं

उससे पैसे को समझना नहीं बल्कि उसे पैसे को मैनेज करना स्मार्ट डिसीजंस लेना ये इंपॉर्टेंट होता है इसमें आपकी बजटिंग सेविंग इन्वेस्टिंग डेट मैनेजमेंट फाइनेंशियल प्लानिंग ये सारी चीजें शामिल हैं बहुत से लोग अच्छी इनकम अर्न करते हैं लेकिन फाइनेंशियल नॉलेज की कमी की वजह से अपने पैसे को एफिशिएंटली मैनेज नहीं कर पाते फाइनेंशियल लिटरेसी की इम्पोर्टेंस इस बात से समझी जा सकती है कि आज हर शख्स रोजाना फाइनेंशियल डिसीजंस लेता है जब हम शॉपिंग करते हैं सेविंग्स अकाउंट खोलते हैं ऑनलाइन पेमेंट यूज करते हैं या इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं तो हम फाइनेंशियल डिसीजंस ही तो ले रहे होते हैं और अगर इन डिसीजंस के पीछे प्रॉपर नॉलेज ना हो तो इंसान फाइनेंशियल मिस्टेक्स कर सकता है जो कि फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं देखिए फाइनेंशियल लिटरेसी का एक सबसे बेसिक पार्ट है बजटिंग और बजटिंग का मतलब मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि अपनी इनकम और एक्सपेंसेस का हिसाब रखना जब इंसान को पता होता है कि हर मंथ कितना पैसा आ रहा है और कितना खर्च हो रहा है तो उसके लिए अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को कंट्रोल करना आसान हो जाता है बजटिंग से अननेसेसरी स्पेंडिंग कम होती है और सेविंग्स के चांसेस भी बढ़ जाते हैं देखिए सेविंग्स भी फाइनेंशियल लिटरेसी का एक और इम्पॉर्टेंट हिस्सा है बहुत से लोग सिर्फ जितना कमाते हैं उतना खर्च कर देते हैं लेकिन फाइनेंशियली अवेयर लोग अपनी इनकम का कुछ हिस्सा फ्यूचर के लिए सेव करते हैं सेविंग इमरजेंसी सिचुएशंस में आपके काम आती है अगर अचानक मेडिकल एक्सपेंस आ जाए जॉब चली जाए या कोई और इमरजेंसी तो ये आपको एक सपोर्ट देती है वही फाइनेंशियल लिटरेसी इन्वेस्टमेंट की इम्पोर्टेंस को भी सिखाता है सिर्फ पैसा सेव करना या पैसा कमाना कभी कभी काफी नहीं है क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से वक्त के साथ पैसे की वैल्यू भी तो कम हो रही है जो वैल्यू कल 1,00,000 की हुआ करती थी अब बिल्कुल भी नहीं है ना मतलब एक एग्जाम्पल दे रही हूँ पैसे की वैल्यू गिरती जाती है जब लोग इन्वेस्टमेंट के बेसिक प्रिंसिपल समझ लेते हैं तो वो अपने लॉन्ग टर्म गोल्स जैसे एजुकेशन है होम ओनरशिप है रिटायरमेंट प्लान्स हैं इन सब के लिए खुद को बेटर प्रिपेयर कर लेते हैं देखिए आज के इस डिजिटल एरा में फाइनेंशियल लिटरेसी और भी इम्पोर्टेंट हो गई है ऑनलाइन बैंकिंग डिजिटल वॉलेट्स और कैशलेस पेमेंट्स ने ट्रांजेक्शन्स को ईजी बना दिया है एक शख्स हाई सैलरी अर्न करके भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस करता है अगर उसे मनी को मैनेज करना ना आता हो वहीं दूसरी तरफ एवरेज इनकम वाला पर्सन फाइनेंशियल सिक्योर हो सकता है अगर वो स्मार्ट डिसीजंस लेना जानता हो तो बस आखिर में

जी कि आप उसे प्रॉपर तरीके से कमाएं भी मैनेज भी करें मैनेज इन द सेंस सेव भी करें बजटिंग भी करें डेट को भी मैनेज करें और इन्वेस्टिंग भी करें वेल चलिए आज के लिए बस इतना ही मुझे यानी नासिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए देखते हो सुनते रहिए FM 107 दिल से दिल

अस्सलाम वालेकुम, मैं दोहा वाला कबीर FM 107 PN, वेलकम टू अनदर टेक अपडेट। और जी आज भी बहुत बढ़िया बढ़िया वेबसाइट हैं, मजा आ जाएंगी, आपको चस आ जाएगी, इस बात का पूरा पूरा वादा है। लेकिन सोशल मीडिया हैंडल्स की तरफ भी जरूर आइएगा। सो सोशल मीडिया हैंडल्स FM 107 Qatar, FM 107 Qatar। सबसे पहले वेबसाइट्स और उसके बाद हम बढ़ेंगे सीधा खबरों की तरफ। ओके, सो वेबसाइट नंबर वन, इसका नाम है driveandlisten.com। एन है, एंड नहीं है, ये भी बता दूं मैं। सो लेट मी स्पेल इट आउट फॉर यू, driveandlisten। ड्रिवन या फिर ड्राइव एंड लिसन, जैसे मर्जी आप पढ़ना चाहें, दोनों ही ठीक है। सो driveandlisten.com, इस पे जब आप जाएंगे तो आप जो है किसी भी शहर का नाम डालेंगे तो उस शहर के रेडियो को आप सुन सकते हैं, और साथ में उसकी सड़कों पे ड्राइव वाला फील भी ले सकते हैं आपकी स्क्रीन के थ्रू। हाउ क्रिएटिव इज दैट यार, क्या कहां जा रही है दुनिया, बहुत कमाल की चीज है। आई हैव नॉट ट्राइड कतर अभी तक, क्योंकि मैं तो मतलब खुद ही रेडियो हूँ, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज का अगर आप कुछ ट्राई करना चाहें ना, यू कैन ट्राई इट। उनकी सड़कों पे घूम सकते हैं आप किसी भी शहर का नाम डाल के, और सीधा सीधा आप जो है उसके साथ साथ आप उनके रेडियोस को भी सुन सकते हैं। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू अनदर वन। तो जी अगला जो है वो है TerraInc.app। मैं बताता हूं फिर से, टेरा TerraInc.app। इस पर जब आप जाएंगे तो आपको ये फिर से पूछेगा शहर का नाम, जब आप शहर का नाम बताएंगे तो उस पे जाने के बाद आप अपने मैप को, फॉर एग्जांपल मैंने इसमें ट्राई किया था कि दिल्ली का नाम डाल के देखता हूं, सो मैंने दिल्ली डाला तो मैप आ गया। उस मैप को आप कैसे भी सजा सकते हैं भाई, उसको आप एंशिएंट लुक दे दीजिए, उसको आप एनिमे टाइप लुक दे दीजिए, उसको आप चेंज कर दीजिए, कलर चेंज कीजिए, इट इज ब्यूटिफुल। और ये काम आता है जब आप वीडियोस बना रहे होते हैं, आप कुछ फैंसी सा अपने कमरे में लगाना चाहते हैं, कोई

पोस्टर आप यहां से बना के देखिए, इट इज सो यूनिक. और जिसने भी ये सोचा, अच्छा हुआ उसने इस चीज को हल्के में नहीं लिया, बिकॉज ये ऐसी चीज है जो बहुत मेहनत से बनती है अगर आप वैसे फोटोशॉप्स में बनाने लग जाएंगे तो. दिस इज वन ऑफ द कूलेस्ट वेबसाइट्स एवर. मैं फिर से बता रहा हूँ, terrainc.app terrainc.app. जाके देखिए, अपने शहर का मैप खूबसूरती से बनाइए, एंड यू कैन देन प्रिंट इट आउट, टी शर्ट पे लगा लो, गाड़ी पे, दीवार पे लगा लो, कहीं भी लगा लो, मजा देंगे आपको. ओके, मूविंग ऑन टू अनदर वन. अगली वेबसाइट है buildcores.com, buildcores.com. buildcores.com इस वेबसाइट पे जो आप जाएंगे तो आप अपना पीसी खुद डेवलप कर सकते हैं. आपको आइडिया लेना कि भाई मेरे पीसी में क्या क्या लगा सकता हूँ, कहाँ कहाँ लगाऊंगा, कैसे कैसे लगाऊंगा, क्योंकि गेमर्स को बड़ा शौक होता है अपने अपने पीसी खुद डिजाइन करने का. वीडियो एडिटर्स को शौक होता है अपने हिसाब से रैम सेलेक्ट करना और ग्राफिक कार्ड्स लगाना और सब कुछ शुरुआत से बिल्ड करना. तो बिल्ड कोर पे जाके आप एक पूरा का पूरा पीसी वर्चुअली बिल्ड कर सकते हैं, एंड देन यू कैन चूज के यार ये बढ़िया लग रहा है, अब मैं जाके असलियत में कर लेता हूँ काम, तो वो आप कर सकते हैं. सच अ यूनिक वे ऑफ परसुइंग दिस, लव्ड इट मैन. तो इसके बाद अब हम बढ़ेंगे खबरों की तरफ. तो देखिए, अभी रिसेंटली अपडेट्स के बारे में बात की जाती है. हम ये मानते हैं कि भाई देखो, फोन को अपडेट कर लेते हैं तो फोन स्लो हो जाता है. ये कहीं हद तक सच भी है और कहीं हद तक सच नहीं भी है. मगर अभी स्मार्ट वॉचेस के ओनर्स जो हैं, उनको कहा गया है, कंपनीज ने बोला कि भाई सुनो, अपनी ऐप को अपडेट कर दो, अपनी वॉच को अपडेट करो. बहुत सारे ओल्डर एप्पल, गूगल और सैमसंग के वॉचेस हैं जो अभी एंड ऑफ देयर सॉफ्टवेयर सपोर्ट पीरियड तक पहुंच चुकी हैं, और ये कहा जा रहा है कि उनको अपडेट नहीं किया तो फोन के साथ कनेक्ट होकर चल नहीं पाएंगे. तो अगर आपके पास वॉच है और आप अपडेट नहीं मार रहे हैं उसे, तो दिक्कत हो जाएगी. प्लीज अपने अपने एटलीस्ट स्मार्ट वॉचेस को अपडेटेड रखें, बिकॉज अगर सॉफ्टवेयर सपोर्ट चला गया तो फिर आपको धीरे धीरे तकलीफ होगी, और वो धीरे वाली तकलीफ ना नहीं सही जाती ऑनेस्टली. या ट्रू. All the best to you. And on that note, मिलेंगे अगले tech update में. This is Kabir signing off. अपना ख्याल रखिए, दिल से देसी.

0: Gen Z, Gen X, Gen Alpha, Millennials. ये सब महज टर्म्स नहीं हैं, ये अलग अलग ख्याल आदतें, इन सब को अगर एक दूसरे से मुखातिब कराया जाए तो क्या होगा?
1: तो ये जानने के लिए सुनिएगा जनरेशन टॉक, जनरेशन टॉक विद आरजे कबीर एंड आरजे सफा एवरी ट्यूजडे एट 3 PM, एट 3 PM ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
2: सामईन किराम, जिस तरह अहकाम खुदाबंदी से बेनियाजी नहीं हो सकती, उसी तरह उस्वाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत से बेपरवाही इख्तियार नहीं की जा सकती। सुन्नत रसूलुल्लाह की इताअत भी ऐसी ही जरूरी है जैसी किताबुल्लाह की, इसलिए कि दोनों की पैरवी हुक्म इलाही की पैरवी है। सामीन किराम, इन्हीं हिदायत की रोशनी में पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रूह परवर सुन्नतें। इस प्रोग्राम के हर किस्त में हम एक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, उसके मानी पर गौर करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह ये सुन्नत हमारी रोजमर्रा जिंदगी में रोशनी और सुकून का जरिया बन सकती है। सामीन किराम, इंसान दिन भर कितने अल्फाज बोलता है ना, घर में, दफ्तर में, दोस्तों के साथ, फ़ोन पर गुफ्तगू, पैगामात, तबसरें, सोशल मीडिया पर रद्दअमल, शायद हमें अपने अल्फाज की तादाद याद ना हो। अलबत्ते एक मोमिन की सोच ये होती है कि मैंने जो बोला है इसमें खैर कितनी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ज़बान के इस्तेमाल का एक ऐसा मुख्तसर उसूल अता फरमाते हैं जिस पर अमल कर लिया जाए तो हमारी बहुत सी परेशानियां, लड़ाइयां और पछतावे ख़त्म हो सकते हैं। अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन औ लियस्मुत। जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि भलाई की बात कहे वरना खामोश रहे। और कीजिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबान के मामले को किस चीज से जोड़ दिया? ईमान बिल्लाह और ईमान बिल आखिरत से। यानी मोमिन ये सोचता है कि क्या मैं अल्लाह के सामने भी इस बात की जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार हूँ? समय क्रम, जबान का असर बहुत बड़ा होता है। एक जुमला किसी मायूस इंसान को उम्मीद दे सकता है, वही जुमला दो नाराज दिलों को मिला सकता है। एक जुमला किसी गमजदा शख्स का बोझ हल्का कर सकता है। लेकिन इस लम्हे अगर इंसान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान याद करके अपनी जबान रोक ले तो ये खामोशी नफ्स पर काबू बन जाती है। कभी कोई शख्स हमारे पास किसी तीसरे इंसान की बुराई लेकर आता है, हम भी कुछ शामिल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम रुक जाएं ये खामोशी खैर है। और कभी किसी बहस में हमें मालूम होता है कि अब मजीद गुफ्तगू से हकीकत वाज़ह नहीं होगी, सिर्फ तलखी बढ़ेगी, ऐसे वक्त खामोश हो जाना शिकस्त नहीं। इमाम नववी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, जब इंसान बोलना चाहे तो पहले देखे कि जिस बात को वो कहना चाहता है क्या उसका खैर होना वाज़ह है। अगर वो यकीनी खैर है और उस पर अजर की उम्मीद है तो बोले, और अगर ये वाज़ह नहीं कि उसमें खैर है तो जबान रोक ले। यहाँ तक कि बाज ऐसी मुबाह बातें भी जिनमें न कोई खास फायदा हो न जरूरत, उन्हें कम करना बेहतर है, क्योंकि बेजरूरत गुफ्तगू कभी आहिस्ता आहिस्ता इंसान को गीबत, तंज, झूठ या दूसरी नामुनासिब बातों तक पहुँचा देती है। समझने के नाम, अगर आज की इस सुन्ना को हम अपनी अमली आदत में तब्दील करना चाहें तो बोलने से पहले चंद लम्हों के लिए हमें 3 सवाल अपने आप से पूछ लेना चाहिए। पहला सवाल ये है कि क्या ये बात सच्ची है कि जो बात मुझे मालूम ही नहीं मैं उसे यकीन के साथ क्यों बयान करूं? दूसरा सवाल ये है कि क्या ये बात खैर और फायदे की है? सच होना तो जरूरी है, लेकिन हर सच्ची बात हर मौके पर कहना जरूरी नहीं। किसी का ऐब वाकई मौजूद हो तब भी बिला जरूरत उसे लोगों में बयान करना मुनासिब नहीं। और तीसरा सवाल ये है कि क्या ये बात अभी अभी कहना जरूरी है? यानी कभी बात दुरुस्त होती है लेकिन वक्त गलत होता है, कभी अल्फाज दुरुस्त होते हैं लेकिन लहजा गलत होता है, कभी नसीहत तो अपनी जगह पर ठीक है लेकिन वो सबके सामने नहीं तन्हाई में ज्यादा मुअसर होती है। سامعین کرام، تو حدیث کا اصول یاد رکھیے، فلیقل خیر نو لیصمت. سامعین کرام، آج کی سنت ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ ہر اہم جملے سے پہلے دل میں ایک چھوٹا سا دروازہ لگا دیں. خیر ہے؟ ہاں تو بول دیجیے. خیر واضح نہیں تو رک جائیے، شاید دن کے اختتام پر ہمیں احساس ہو کہ

अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एफएम 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर आपको नए जमाने के नए स्कैम्स के बारे में पता चलता है। इमेजिन करिए कि आपका कोई अपना बिजनेस है, और इमेजिन क्यों करना भाई, बड़े लोग सुन रहे हैं, आपका बिजनेस होगा, लेकिन ये बिजनेस आजकल बहुत ज्यादा टारगेट पे है स्कैमर्स के, फ्रॉडस्टर्स के, जिन्होंने नए तरीके निकाल के रखे हुए हैं कि लोगों को स्कैम करना है। लेकिन ये स्कैम सीईओ इम्पर्सनेशन स्कैम है, यानी कि सीईओ बनकर धोखेबाजी करने वाला स्कैम। कई बार ऐसे स्कैम में एम्प्लॉयज फंस जाते हैं, आपके ऑफिस में काम करने वाले, आपके कंपनी में काम करने वाले, आपके बिजनेस, आपके स्टोर, आपके मॉल में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज हैं वो फंस जाते हैं। कैसे ये स्कैम काम करता है, सबसे पहले इस पर नजर डालते हैं, लेकिन साथ ही साथ सॉल्यूशन पर भी हम बात करेंगे। और सबसे पहले होता यह है कि सीईओ इम्पर्सनेशन स्कैम, जिसे बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज भी कहा जाता है, कॉर्पोरेट दुनिया का एक बहुत ही खतरनाक और चालाकी से भरा हुआ धोखा है। इस फ्रॉड में क्रिमिनल किसी भी कंपनी के सबसे बड़े बॉस, जैसे कि सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर या सीएफओ का भेष जो है वो ले लेते हैं, प्रटेंड करते हैं, और फिर वो सच में बॉस नहीं होते हैं, बल्कि एक फेक ईमेल अकाउंट बनाते हैं जो देखने में बिल्कुल असली लगता है। कभी कभी हैकर्स बॉस का असली ईमेल अकाउंट भी हैक कर लेते हैं। इसके बाद हैकर कंपनी के फिनांस या अकाउंट या एचआर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय को अर्जेंट ईमेल भेजते हैं, और ये अर्जेंट ईमेल इस बेसिस पे भेजते हैं कि इनको पैसे की जरूरत है और क्लाइंट सामने है। ईमेल में ऐसी कहानी लिखी होती है जिससे एम्प्लॉय डर जाए या बिना सोचे समझे काम कर दे। जैसे हैकर लिखेगा कि मैं एक बहुत ही सीक्रेट और इम्पोर्टेंट बिजनेस मीटिंग में हूँ, इसलिए मुझे कॉल मत करना, हमें एक नए क्लाइंट को तुरंत पैसे वायर ट्रांसफर करने हैं, बैंक ट्रांसफर, नहीं तो डील हाथ से निकल जाएगी। स्कैमर जानबूझकर एम्प्लॉय पर बहुत ज्यादा प्रेशर बनाता है और कहता है कि कंपनी के स्टैंडर्ड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और वेरिफिकेशन स्टेप्स को अभी के लिए बाईपास कर दो, क्योंकि वक्त बिल्कुल नहीं है, क्लाइंट सामने है। एम्प्लॉयज अक्सर अपने सीनियर बॉस के डर से या कंपनी के नुकसान होने के डर से बिना क्रॉस चेक किए पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। आमतौर पर मैं भी यही करूंगा भाई, लेकिन ये जरूरी है कि आपकी ऐसे में ट्रेनिंग हो। वेल, हम सॉल्यूशन पर भी बात करेंगे। होता यह है कि जब आपके ऊपर जबरदस्ती या जल्दबाजी की जाती है तो आपके फैसले लेने में कहीं ना कहीं कमी आ जाती है, आप परफेक्ट फैसला नहीं ले पाते, इसलिए जल्दबाजी में जब भी आप फैसला लेते हैं आपके साथ स्कैम हो जाता है। लेकिन इस तरह के जल्दबाजी वाले ईमेल पर आप जरा भी रिएक्ट ना करें, इसके अलग अलग सॉल्यूशन हैं। इस तरह के स्कैम से आप बच सकते हैं। सबसे पहला जो तरीका है बचने का है वो है वर्बल कंफर्मेशन रूल। अगर ईमेल में ये लिखा है कि अभी मुझे कॉल मत करना, तो ये अलर्ट है आपके लिए, क्योंकि किसी भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन या बैंक डिटेल चेंज की रिक्वेस्ट आने पर सबसे पहला फर्ज यही है कि आप बॉस को डायरेक्ट कॉल करें। और अगर ईमेल में बाकायदा लिखा है कि अभी तुरंत मुझे फौरन चाहिए, तो आपको हमेशा बॉस को कॉल करना चाहिए, और बॉस को भी ये बात समझनी चाहिए कि एम्प्लॉई और बॉस के दरमियान बहुत बड़ा गैप ना हो, और इतना बड़ा गैप खास कर ना हो कि इस तरह के स्कैम हो जाए कि कोई पैसे मांगे और एम्प्लॉई ट्रांसफर कर दे। फाइनेंस डिपार्टमेंट या अकाउंट डिपार्टमेंट जो है वो ट्रांसफर कर भी देते हैं, क्योंकि आमतौर पर सीईओ जो है वो अकाउंट डिपार्टमेंट से, एचआर डिपार्टमेंट से थोड़ा दूर दूर से रहते हैं, वो या तो प्रोडक्शन वालों से बात करते हैं या फिर सेल वालों से, है ना, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा चाहे ईमेल कितना भी अर्जेंट हो, बिना आवाज सुने, बिना डायरेक्ट उनके नंबर पे बात किए कोई भी ट्रांसफर पैसा ना करें। उसके अलावा डुअल ऑथराइजेशन प्रोसेस, दो लोगों की परमिशन जरूर होनी चाहिए, ये एक रूल होता है हर कंपनी का। कंपनी में एक नियम बनाए जहां किसी भी बड़े फंड ट्रांसफर के लिए कम से कम दो सीनियर एम्प्लॉयज का अप्रूवल मैंडेटरी हो। तीसरा तरीका है ईमेल स्पूफिंग फिल्टर। अपने आईटी डिपार्टमेंट को बोलकर एसपीएफ यानी कि सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क और ऐसे ईमेल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स का सेटअप करें जिससे इस तरह के स्कैम से बचा जा सके। उसके अलावा एक तरीका है एम्प्लॉय अवेयरनेस ट्रेनिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लास्ट में इसके बारे में इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि अपने अकाउंट्स और फिनांस स्टाफ को रेगुलर इंटरवल्स पर सिक्योरिटी ट्रेनिंग आपको देनी भी चाहिए, और अगर आपने नहीं भी दी है तो आपको एक बार एटलीस्ट ट्रेनिंग होनी चाहिए, या फिर डिजिटल पूरा प्रॉपर पीडीएफ के जरिए कुछ कुछ वक्त में, हर 6 महीने, हर 3 महीने में एक बार अपने अकाउंटेंट, अपने एचआर को या जो सेल्स या प्रोडक्शन वाले हैं उनको बताते रहना चाहिए थ्रू पीडीएफ, थ्रू ईमेल, कि किसी भी इस तरह के अनजान

0: ईमेल पर या फिर पैसे ट्रांसफर करने वाली बात पर भरोसा ना करें और सारे प्रोटोकॉल के जरिए ही पेमेंट जरूर करें। तो दोस्तों ये था CEO impersonation scam। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी आपसे कल एक नए जमाने के नए स्कैम के बारे में बात करते हुए। सुनते रहे FM 107 दिल से देसी।
1: स्कैम अलर्ट, Qatar's most heard radio station FM 107 दिल से देसी।

0: एब्सोल्यूट सिनेमा।
1: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मरतबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। पर डोंट वरी, भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा। अस्सलाम वालेकुम, FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। मेरा नाम है फजील और ये शो है रिव्यू ऑफ द वीक। तो दोस्तों, जहां पर हर हफ्ते हम एक मूवी के बारे में बात करते हैं, चाहे वो एक्टर के ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर बात हो, स्टोरी के बारे में बात हो, मूवी का हाइप क्या रहा, मूड क्या है मूवी का, क्या स्टार रेटिंग मिली, और फिर क्रिटिक्स से लेकर वर्डिक्ट तक, और फिर स्टोरी, सब कुछ डिस्कस करते हैं शो में जिसका नाम है रिव्यू ऑफ द वीक
0: एब्सोल्यूट सिनेमा।
1: और इस हफ्ते हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो पिछले हफ्ते की तरह बॉलीवुड नहीं लेकिन हॉलीवुड मूवी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड 2 के बारे में बात करते हुए रिव्यू ऑफ द वीक में। सो आज जिस मूवी का हम रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम थोड़ा अजीब है यार। मूवी का नाम है द डॉग स्टार्स। अब जब आप मूवी देखेंगे तो आपको पता चलेगा नाम से कोई मतलब नहीं होता। कई बार ऐसा होता है ना कि नाम से कोई मतलब नहीं है, बस आप मूवी देखिए। तो अगर हम फिल्म को देखने के बारे में बात करें, पहले इंप्रेशन के बारे में बात करें या मूड की बात करें, तो ये मूवी ऑडियंस के अंदर एक बहुत ही सोबर, सीरियस और डीपली कंटेम्पलेटिव, यानी कि सोचने पर मजबूर करने वाली मूवी है।
2: Before the world ended.
3: Jasper!
1: कहानी में हमेशा एक अजीब सा सन्नाटा रहता है इस मूवी में, जिसे बीच बीच में सडन बर्स्ट ऑफ सर्वाइवलिस्ट टेंशन जो है वो तोड़ देती है। ये फिल्म पहले स्प्रिंग सीजन में आने वाली थी, यानी कि थोड़ा और पहले आने वाली।

0: वाली थी। लेकिन फिर इसकी डेट को थोड़ा आगे बढ़ाकर लेट अगस्त किया गया, यानी कि आज से कुछ दिन पहले अगस्त के महीने में। इस हाई प्रोफाइल लेट अगस्त रिलीज की वजह से मार्केट में इस मूवी का बहुत ही ज्यादा बोलबाला बढ़ गया। क्या होता है ना कि इस तरह से मीडिया में बज बनाना होता है, और ये बज क्रिएट हो भी गया और लोग इसे एक मेजर साईफाई इवेंट की तरह देखने लग गए थे। ऑडियंस के बीच इसकी हाइप बहुत ज्यादा ही थी, क्योंकि लोग डायरेक्टर रिडली स्कॉट के उस यूनिक और ग्राउंडेड अप्रोच को देखने के लिए एक्साइटेड थे जो उन्होंने एक पोस्ट पेंडेमिक वाइल्डरनेस यानी कि महामारी के बाद की एक उजाड़ी हुई दुनिया जो है ना, उसको दिखाने के लिए यूज किया था एक जमाने में। सो आई मीन जमाने में नहीं, कुछ सालों पहले। स्टार रेटिंग के मामले में अगर हम बात करें, ओवरऑल इस फिल्म को 3 स्टार रेटिंग मिलती है 5 में से। फिल्म विजुअली काफी स्टनिंग और खूबसूरत दिखती है, और सभी एक्टर्स ने काफी कंपेलिंग और मजबूत परफॉर्मेंसेस भी दी हैं। इन सब के बावजूद ये फिल्म पुराने और घिसे पिटे पोस्ट एपोकलिप्टिक ट्रोप्स यानी कि वही पुरानी तबाही वाली कहानी, उससे बाहर निकलने में काफी स्ट्रगल करती हुई दिखी है। मतलब इस तरह की मूवी आपने कई बार देखी होगी, कुछ नया सा हो वो नहीं दिखा मुझे इस मूवी में। ये एक इंटीमेट और एटमॉस्फेरिक कैरेक्टर पीस के रूप में तो अच्छा काम करती है मूवी, जहां अकेलापन को महसूस किया जा सकता है, आपको फील देगा, है ना। पर इसमें टाइटली पेस्ड नैरेटिव मोमेंटम की काफी कमी, अब ये सब आपको खलेगी। इस खराब पेसिंग की वजह से इसका 2 घंटे का जो रन टाइम है वो व्यूवर्स के लिए पूरी तरह से ग्रिपिंग या मेमोरेबल नहीं बन पाई। तो जब आप ये मूवी देखेंगे तो शुरुआत में आपको लगेगा हाँ यार ये वही पुरानी बीमारियों वाली मूवी है, कुछ यूनिक देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। इस तरह की मूवीज या इस तरह की शॉर्ट क्लिप्स इतनी ज्यादा आ गई हैं सोशल मीडिया पे कि अब ये ना धोखा लगता है। अब ऐसा लगता है कि वो एपोकलिप्टिक के बाद ना बस पैसे कमाना चाहते हैं डायरेक्टर लोग, और कुछ नया करना नहीं चाहते। तो चलिए अब शुरू करते हैं फन फैक्ट के बारे में जानना, डायरेक्टर का विजन क्या रहा, फिल्मिंग की लोकेशन क्या है, सिनेमाटोग्राफी और साउंड क्या है, है ना, सारा सब कुछ हम यहाँ पर अब देखेंगे समझेंगे।
1: The world that was doesn't exist. Here it's just us trying to hold on to what was. But out there, it's kill or be killed. The only thing left to fear.
0: बिहाइंड द सीन्स के सेक्शन में अगर हम देखें तो फिल्म प्रोडक्शन से जुड़े काफी इंटरेस्टिंग फन फैक्ट्स जो हैं वो हैं। जैसे कि डायरेक्टर रिडली स्कॉट हमेशा से ही एक्टर्स के आमने सामने के सबसे रॉ और ऑथेंटिक ऑर्गेनिक रिएक्शन को कैप्चर करना चाहते थे। इस चीज को अचीव करने के लिए उन्होंने सेट पर एक एक्सपेंसिव मल्टी कैमरा सेटअप लगाया। आमतौर पर कम करते हैं ये डायरेक्टर, बहुत बड़ा खर्चा होता है, जहां पर एक ही समय पे 8 से 11 कैमरे साइमल्टेनियसली शूट कर रहे थे कि किस एंगल से ज्यादा अच्छा डरावना चेहरा, डरावना रिएक्शन एक्टर्स का निकल के आएगा, तो वो वाला शॉट लेंगे। बाकी शॉट खराब हो जाते थे तो इसमें बहुत नुकसान भी होता है ना। इस बड़ी टेक्निक के सबसे बड़े फायदे भी होते हैं, उनकी प्रोडक्शन क्रू सारे सीन्स को रियल टाइम में ही सेट पर बैठ कर एडिट कर सकती थी। कास्टिंग के मामले में एक बड़ा बदलाव देखने को भी मिला, जहां पहले इस फिल्म के मेन लीड के लिए एक्टर पॉल को फाइनल किया गया था, पॉल मेस्कल, लेकिन उनके टाइट स्केड्यूल और दूसरी डेट्स के कन्फ्लिक्ट्स की वजह से उन्हें ये फिल्म छोड़नी पड़ी, और बाद में ये लीड रोल जैकब एलोडी को दे दिया गया। अब बात कर लेते हैं मूवी के जो डायरेक्टर हैं उनके विजन के बारे में। डायरेक्टर का विजन पर बात करें तो रिडली स्कॉट इस बार आम पोस्ट एपोकलिप्टिक फिल्मों की तरह कोई ब्लीक या बिल्कुल अंधेरी एंड ऑफ द वर्ल्ड कहानी नहीं दिखाना चाहते थे। उनका मेन फोकस तबाही के बीच उम्मीद, होप और इंसानी रिश्तों यानी कि ह्यूमन कनेक्शन पर था। उन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट को एक मॉडर्न स्लो बर्न वेस्टर्न फिल्म की तरह देखा था। उनका मानना था कि आइसोलेशन यानी कि अकेलापन को सिर्फ एक फिजिकल थ्रेट या दुश्मन की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये एक इमोशनल प्रिजन यानी कि दिमागी जेल जैसा होता है, जिससे उनके कैरेक्टर को एक्टिवली फाइट करके बाहर निकलना पड़ता है। अब बात करते हैं फिल्मिंग लोकेशन। फिल्मिंग लोकेशन की बात करें तो भले ही कहानी एरी और कोलोराडो के अजीब और रग्ड लैंडस्केप्स पर बेस दिखाई गई है, पर इसकी शूटिंग मोस्टली ओवरसीज हुई है। यूरोप के स्नो केप, इटालियन आल्प्स और यहाँ के अमेरिकन रॉकीज के रूप में दिखाया गया है इनको। इसके अलावा बाकी के जो सीन्स है वो रोम, यूनाइटेड किंगडम के हिस्टोरिक पाइनवुड स्टूडियोज में बड़े

0: स्केल पर शूट किया गया। लेकिन किसी भी फिल्म का जो कोर होता है वो होता है एक्टर, और एक्टर की ट्रांसफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कैरेक्टर, कि कैरेक्टर की डिमांड क्या है, ठीक है, और डायरेक्टर किस तरह से उस एक्टर को पोर्ट्रे करना चाहता है ऑन स्क्रीन। तो एक्टर्स के ट्रांसफॉर्मेशन इस फिल्म का एक बड़ा हाईलाइट है। जेकब एलॉर्डी ने इस रोल के लिए अपनी पुरानी टिपिकल रोमांटिक चॉकलेट बॉय वाली जो हार्ट थ्रोब इमेज है ना, उसको पूरी तरह से उन्होंने ड्रॉप कर दिया। और ये इम्पॉर्टेंट क्या है, ये एक थोड़ा रिस्की भी होता है किसी एक्टर के लिए। क्या होता है, एक्टर को एक तरह से जब आप देख लेते हैं ना, फिर दूसरी तरह से जब आप देखें तो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, अनलेस वो कोई बहुत बड़ा एक्टर ना हो। उसके अलावा जेकब ने एक वेदर्ड यानी कि थका हुआ ग्रीफ अजीब आदमी, बहुत परेशान आदमी, गम में डूबा हुआ आदमी, वो लुक अपनाया ताकि वो एक हॉलोड आउट एयरप्लेन मैकेनिक के कैरेक्टर को स्क्रीन पर बिल्कुल रियल दिखा सकें, जी सकें वो। उनके साथ ही जोश ब्रॉलिन भी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हुए। वो एक ग्रिजल्ड और ना झुकने वाला ताकतवर और मिलिटरिस्टिक सर्वाइवलिस्ट के रूप में दिखते हैं, जो हर सिचुएशन से लड़ने के लिए तैयार रहता है। सबसे बड़ा सरप्राइज है एलिसन, उन्होंने दिया, जिन्होंने अपने आम रोल से बिल्कुल हटकर एक टेरिफाइंग साइकोपैथिक रफ और फ्लाइट अटेंडेंट का डरावना कैरेक्टर जो है वो प्ले किया है, जो देखने में काफी अजीब है, गजब का है। मतलब अजीब होता है ना, अजीब और गजब, यार क्या काम किया है, वो आपको देखने में इस मूवी में जरूर नजर आएगा। टेक्निकल साइड पर अगर देखें तो सिनेमाटोग्राफर एरिक ने कमाल का काम किया यार। उन्होंने बड़े बड़े वाइड स्क्रीन विजुअल्स और माउंटेन रेंजेस के डेजलिंग एरियल फ्रेम्स का यूज किया है। ये बड़े खाली फ्रेम्स स्क्रीन पर इंसानी अकेलापन को भारी तरीके से, यानी कि भारी बोझ को बहुत अच्छे तरीके से दिखा लेते हैं, दिखा पाते हैं। इन विजुअल्स और खाली पहाड़ों के सन्नाटे को फिल्म का साउंड डिजाइन बहुत ही खूबसूरती से काउंटर करता है। हैरी ग्रेगसन विलियम्स ने इसका म्यूजिक स्कोर किया है दोस्तों, इस मूवी का, द डॉग स्टार्स का, जिसमें उन्होंने एक रोती हुई कंट्री गिटार की धुन को यूज किया है।
1: Survivors.
2: There is a place that still remains.
3: Go.
0: ये गिटार का म्यूजिक जब सुनसान उजाड़ इलाकों में चलने वाली हॉलो और विस्लिंग हवा के ड्रोन साउंड के साथ मिक्स होती है, तो व्यूवर्स को एक सही में अलग ही लेवल के अकेलेपन और दुख का मतलब एक्सपीरियंस सा होता है, जो फिल्म के मूड को और ज्यादा सूट करता है, फिल्म को इनहेंस कर देता है। लाजवाब काम है सिनेमाटोग्राफी का और साउंड इफेक्ट का, जो कि मैं कहता हूँ किसी भी फिल्म का दिल दिमाग व्हाटएवर, आप बॉडी के किसी भी पार्ट के बारे में बात कर लिया वो है एक्चुअली, क्योंकि बगैर दिमाग और बगैर दिल के जैसे बॉडी नहीं चल सकती, वैसी एक फिल्म नहीं चल सकती बगैर सिनेमाटोग्राफी और यू नो साउंड के, अनलेस वो कोई बहुत बड़ा एक्टर हो और फिल्म ही जबानी बातों पर ना हो, है ना। तो दोस्तों अब इसी के बाद बात कर लेते हैं स्टोरी, परफॉर्मेंस के डिस्कशन के बारे में और क्रिटिक्स के वर्डिक्ट के बारे में। दोस्तों कहानी एक खतरनाक और ब्रूटल फ्लू पेंडेमिक के सालों बाद की है, जिसने पूरी दुनिया की सिविलाइजेशन को लगभग खत्म ही कर दिया था। इस उजाड़ और खाली दुनिया में एक पायलट जिसका नाम हिग है, वो एक आइसोलेटेड एयरफील्ड पर किसी तरह सरवाइव कर रहा है। उसके साथ वहां पर सिर्फ उसका एक वफादार जो डॉग है वो है। तो अब यहां पर मूवी का नाम जो है ना वो समझ में आता है, और एक अनस्टेबल गनमैन यानी कि गुस्से वाला बंदूक रखने वाला शख्स है, जो बहुत ही गम अनस्टेबल है, पागल सा है। और हिग की आम बोरिंग जिंदगी तब एक नया मोड़ ले लेती है जब अचानक उसके एयरप्लेन के रेडियो पर एक मिस्टीरियस और टूटी फूटी इंसानी आवाज का ट्रांसमिशन सुनाई देता है। उस आवाज का पीछा करने और उन लोगों तक पहुंचने के लिए हिग अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है और एक ऐसी खतरनाक फ्लाइट पर निकल पड़ता है जहां से वापस आने का कोई रास्ता है ही नहीं। परफॉर्मेंसेस के बारे में अगर बात करें तो परफॉर्मेंसेस पर डिस्कशन जेकब पर होनी चाहिए। उनकी स्क्रीन पर एक कमाल की प्रेजेंस रही है, एक करिश्मा है उनका, एक क्वाइट वल्नरेबल वॉर्म्थ जो है वो पेश किया है उन्होंने, जो उनके कैरेक्टर को काफी सॉफ्ट रिलेटेबल बनाता है। उनकी इस ग्राउंडेड प्रेजेंस को जॉश ब्रॉलिन की फियर्सली एग्रेसिव और सीन स्टीलिंग इंटेंसिटी परफेक्टली काउंटर करती है। जॉश जब भी स्क्रीन पर आते हैं अपनी एनर्जी से पूरा ध्यान खींच लेते हैं, होता ना फ्रेम इतना स्ट्रांग बना दे, एक तो होता है कि भाई कैमरा मैंने ऑन कर दिया, आप बताइए आप क्या।

0: मूवी देख ली है कि किसी शहर में बहुत ज्यादा तबाही आई है और उसके बाद कैसे सरवाइव करता है एक बचा हुआ शख्स, है ना, इस तरह की मूवी हमने कई बार देखी है, हमने और आपने। लेकिन अगर आपको ये है कि यार नहीं मैं नहीं देख रहा ये वाली मूवी हो चुकी है, तो आप और भी देख सकते हैं म्यूटिनी। पिछले हफ्ते एक हमने मूवी के बारे में बात करी थी, वो मूवी भी बड़ी लाजवाब है, ऑल्दो बहुत ज्यादा स्टार रेटिंग उसे भी नहीं मिली थी, बट एक्शन मूवी के मामले में वो आप पसंद कर सकते हैं मुझे लगता है, क्योंकि उसके जो स्टार हैं वो भी बहुत बड़े स्टार हैं। इसी के साथ अब हम इस मूवी के वर्डिक्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि आपको ये मूवी लाजमी देखनी है या नहीं देखनी है। मेरा मानना है इस मूवी को आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई चॉइस नहीं है तो फिर द डॉग स्टार्स को आप रहन दीजिए। विजुअली स्पेक्टेकुलर और नैरेटिव अच्छा है, ठीक ठाक है, क्राउड सर्वाइव करा देगा, मतलब क्राउड जो है, जो ऑडियंस है वो इस मूवी को सर्वाइव करा देंगे, क्योंकि 5 में से 3 स्टार रेटिंग मिली है और ये क्रिटिक्स ने ही दी है। डायरेक्टर ने, रिडली ने जो काम किया वो भी अच्छा है, ग्राउंडेड अप्रोच है, बट पोस्ट पेंडेमिक वाइल्डनेस वाले कॉन्सेप्ट बहुत पुराने हो गए यार, अब हो गया, मतलब अब ऐसा है कि बस यार थक गया यार। फाइनल जजमेंट यही है, प्योर एनालिसिस का कंक्लूजन ये निकलता है कि द डॉग स्टार्स एक ब्यूटीफुल ह्यूमनिस्टिक एफर्ट जरूर है, लेकिन अपने स्लो स्क्रीन प्ले और फैमिलियर सर्वाइवल बाउंड्री के बहुत पास रहने वाली है। ये क्लासिक पोस्ट एपोकलिप्टिक मास्टरपीस बनने से चूक गई, मेरा तो ये मानना है, बाकी आप डिसाइड कर ले। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी आपसे अगले हफ्ते एक नई मूवी के बारे में बात करते हुए इसी खास शो में जिसका नाम है रिव्यू ऑफ द वीक। तब तक अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
1: Qatar's most heard radio station FM 107 दिल से देसी।

0: Wake up! हर हफ्ते संडे टू थर्सडे सुबह 6 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी

0: आसान कर दिया गया है। अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
1: वेलकम बैक सामीन, एक मरतबा फिर आप सबको खुश आमदीद प्रोग्राम तफहीम अल कुरान में। जैसा कि आपने ब्रेक से पहले सुना है कि आज हम एक नहायत मौजू पर गौर करना चाहते हैं। आइए आज हम सब खुद से एक सवाल पूछें, मैं अपनी ज़िंदगी के अहम फैसले करते वक्त किसकी बात को आखिरी मैयार समझता हूँ। यही सवाल हमारे ख़ानदान के मुस्तकबिल का तायुन करता है। अब तक हमने ये समझने की कोशिश की कि एक साले और मजबूत ख़ानदान की बुनियाद सही मजियत पर कायम होती है। अब आइए इस मौजू के एक और नहायत अहम पहलू पर गौर करते हैं। सामने कराम, आज की दुनिया में जुमला बहुत आम हो चुका है, ये उसकी ज़ाती ज़िंदगी है, उसे जो करना है करने दो, लोगों के मामलात में मुदाखलत न करो, हर इंसान आज़ाद है, वगैरह वगैरह। बज़ाहिर ये बात बहुत दिलकश महसूस होती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई माशरा सिर्फ इसी उसूल पर कायम रह सकता है? अगर कोई शख्स ऐसी राह पर चल रहा हो जो उसे तबाही की तरफ ले जा रही हो, तो क्या एक मुखलिस इंसान खामोश रह सकता है? अगर आप देखें कि एक बच्चा खुदा न खास्ता आपकी तरफ जा रहा है, तो क्या आप ये कहेंगे ये उसकी आज़ादी है, या आप फौरन उसे रोकेंगे? अगर कोई शख्स अंधेरे में गढ़े की तरफ बढ़ रहा हो, तो क्या आप खामोश रहेंगे? हरगिज़ नहीं, क्योंकि मोहब्बत का तकाजा खामोशी नहीं बल्कि खैर खाही है। इसीलिए इस्लाम का तसव्वुर मुआशरा महज तमाशाई मुआशरा नहीं है। इस्लाम हमें सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद नहीं रखता, बल्कि हमें एक दूसरे की खैर खाही और इस्लाह की जिम्मेदारी भी देता है। अल्लाह ताला फरमाता है, كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ یعنی امت مسلمہ کی عظمت صرف عبادت میں نہیں بلکہ خیر پھیلانے اور برائی روکنے میں بھی ہے۔ آج بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو کیا حق ہے کسی کو سمجھانے کا، آپ کون ہوتے ہیں نصیحت کرنے والے؟ लेकिन सामिन किराम, अगर किसी की वजीयत वही है तो वो कभी ऐसा नहीं कहेगा। अगर कुरान और सुन्नत हमें बुराई रोकने के हुक्म देते हैं, तो हम खैर खाही ज़रूर करेंगे, हिकमत के साथ करेंगे, मोहब्बत के साथ करेंगे। याद रखिए, माशरे में फसाद और बिगाड़ अचानक पैदा नहीं होता, कोई बुराई एक दिन में सकाफत नहीं बनती। जहेज़ के हवाले से अगर बात करें, उस वालिद की सूरत हाल पर ज़रा नज़र दीजिए जो खर्च की इस्तेआत नहीं रखता। वो सोचता है कि अगर मैंने ऐसा न किया तो मेरा बच्चा या मेरी बच्ची खुद को दूसरों से कम समझेगी, और यूं वो कर्ज लेता है, अपने इस्तेआत से बढ़कर खर्च करता है, सिर्फ इसलिए कि मुआशरा उसे मजबूर कर रहा है। सोचिए, ये दबाव कहाँ से आया? किसी हुकूमत ने तो कानून नहीं बनाया था, किसी अदालत ने तो हुक्म नहीं दिया था। हाँ, ये समाज के अफराद के अमल से ही शुरू हुआ है, और इस तरह वो रुझान बना, फिर रवाज, फिर एक समाजी मजबूरी बन गई। इसीलिए कुरान करीम गलती को इब्तिदा ही में रोकने की तालीम देता है। इस्लाम ये नहीं कहता कि बुराई को बढ़ने दो फिर उसका इलाज करेंगे, क्योंकि एक छोटी सी गलती अगर मुसलसल नज़रअंदाज होती रहे तो कल वो एक बड़ी इज्तमाई बीमारी बन जाती है। सामिन किराम, यहाँ एक और अहम पहलू भी है, वो ये कि जब कोई गलत रुझान शुरू होता है तो लोग अक्सर उस पर हंसते हैं, इसे संजीदा नहीं लेते, कहते हैं इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन चंद साल बाद वही चीज़ एक समाजी हकीकत बन जाती है और फिर लोग उसी के ताबे हो जाते हैं। इसीलिए एक बाशूर मुसलमान सिर्फ अपने घर की फिक्र नहीं करता, वो अपने मुआशरे की भी फिक्र करता है। वो जानता है कि अगर आज गलती को नज़रअंदाज किया

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: दोस्तों, आजकल के डिजिटल दौर में वीडियो गेम्स बच्चों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन इन गेम्स का मुनासिब इंतखाब और उनकी देखभाल बहुत जरूरी है। अपने बच्चों के करीब रहिए, उन्हें गेम्स के इंतखाब में शामिल कीजिए, उन गेम्स का चुनाव कीजिए जो उनकी एज और जहनी तरक्की के मुताबिक हों। गेम्स के जरिए सिर्फ तफरी नहीं बल्कि तालीम और स्किल्स भी हासिल की जा सकती हैं, अगर सही इंतखाब किया जाए। आपकी रहनुमाई और तवज्जो उनकी डिजिटल दुनिया को महफूज और फायदेमंद बना सकती हैं। वजारत दाखला का कहना है कि अपने बच्चों के साथ मिलकर उनकी गेमिंग दुनिया को सेफ और प्रोडक्टिव बनाइए। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
3: ए बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो? दुआ को हकीर समझते हो? हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते। अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। तो दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। तमीन, आज की दुआ है एक नबी की जबान से निकली हुई, मूसा अलैहिस्सलाम, जिन्होंने फिरौन और उसके जाबिर लश्कर के मुकाबले में अल्लाह ताला की पनाह मांगी थी। ये दुआ मूसा अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों की है जब वो जालिमों के जबर और काफिरों के तसल्लुत में थे। उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की, रब्बना ला तजअलना फितनतन लिल कौमिल ज़ालिमीन वनज्जिना बिरहमतिका मिनल कौमिल काफिरीन। ये दुआ दरअसल ईमान वालों की तर्जमानी करती है जो सबसे ज्यादा अपनी दुनियावी सलामती से पहले दीन के तहफ्फुज़ की फिक्र करते हैं। रब्बना ला तजअलना फितनतन लिल कौमिल ज़ालिमीन, ए हमारे रब, हमें जालिमों का शिकार न बना, न ऐसा कि वो हम पर गालिब।

0: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं कल्चर मोमेंट। मैं हूं आपकी आरजे महावश। इस 5 मिनट के सफर में हम बात करेंगे कतर की खूबसूरत सकाफत, रिवायत और विरसे की। यहाँ हर रस्म, हर लिबास, हर खाने और हर मेहमान नवाजी के पीछे एक प्यारी सी कहानी होती है। आइए मिलकर कतर की सकाफत को समझें, महसूस करें और इस विरसे को अगली नस्लों तक पहुँचाने का अहद करें। कतरी सकाफत में बुजुर्गों को बहुत इज्जत और अहमियत दी जाती है। बुजुर्ग खानदान की वो हस्तियां होते हैं जिनके पास जिंदगी का लंबा तजुर्बा, पुरानी यादें और कीमती मालूमात होती हैं। उनकी मौजूदगी घर में रहनुमाई, सुकून और अपनायत का एहसास पैदा करती है। बुजुर्गों का एहतराम सिर्फ अल्फाज से नहीं बल्कि रवैये से जाहिर होता है। उन्हें सलाम करना, खैरियत पूछना, उनकी बात तवज्जो से सुनना और उनका ख्याल रखना अच्छे आदाब में शामिल है। ये छोटी छोटी आदतें रिश्तों को मजबूत बनाती हैं और घर के माहौल को पुर मोहब्बत करती हैं। कतरी घरों में बच्चों की तरबियत में अदब को खास अहमियत दी जाती है। बच्चे सीखते हैं कि बड़े लोगों से किस तरह एहतराम के साथ बात करें, उनकी बात के दरमियान ना बोलें और जरूरत के वक्त उनकी मदद करें। जब एक बच्चा बुजुर्ग की कोई छोटी सी खिदमत करता है तो उसमें सिर्फ मदद का जज्बा नहीं बल्कि मोहब्बत और एहतराम भी शामिल होता है। बुजुर्ग अक्सर खानदान की तारीख और रिवायात के रखवाले होते हैं। उन्हें अपने बचपन, गांव, समुंदरी सफर, पुरानी दस्तकारी, खानों और समाजी रवैयों के बारे में बहुत सी बातें याद होती हैं। उन कहानियों के जरिए नई नस्ल को अपने मुल्क और अपने विरसे को समझने का मौका मिलता है। किसी बुजुर्ग से कहानी सुनना सिर्फ एक तफरीही मशगला नहीं, इससे बच्चों को गुजरे हुए वक्त, मेहनत, सबर और शुक्रगुजारी के बारे में सीखने को भी मिलता है। कभी एक छोटी सी याद भी पुरानी जिंदगी के किसी खूबसूरत पहलू को सामने ला सकती है। बुजुर्गों की रहनुमाई घर के फैसलों में भी मददगार साबित होती है। उनका तजुर्बा हालात को बेहतर समझने और सोच समझकर कदम उठाने में मदद देता है। नई नस्ल की अपनी सोच और अपने तजुर्बात होते हैं लेकिन बुजुर्गों की बात को इज्जत से सुनना हमेशा एक अच्छी आदत है। एहतराम का मतलब ये नहीं कि बुजुर्ग हमेशा एक जैसी सोच रखते हैं या हर बात में उनकी राय लाजमी हो, बल्कि असल बात यह है कि उनसे नरमी और अदब के साथ गुफ्तगू की जाए। मोहब्बत और एहतराम के साथ इख्तलाफ भी किया जा सकता है। बुजुर्गों का ख्याल रखना भी इस रिवायत का अहम हिस्सा है। उनकी सेहत, आराम और जरूरियात का लिहाज करना चाहिए। कभी उनके साथ वक्त गुजारना, कभी उन्हें फोन करना या कभी उनकी किसी छोटी जरूरत में मदद कर देना उनके लिए बहुत खुशी का सबब बन सकता है। आज की मसरूफ जिंदगी में घर के तमाम अफराद के लिए एक साथ वक्त निकालना जरूरी है। एक साथ खाना खाना, चाय या कहवे पर बैठना और हाल अहवाल पूछना बुजुर्गों को अपनायत का एहसास देता है। साथ ही बच्चों को भी खानदानी रवाबत की अहमियत समझ आती है। बुजुर्गों के लिए सबसे कीमती चीज अक्सर तवज्जो होती है। उनकी बात को बेदिली से नहीं बल्कि दिल लगाकर सुनना चाहिए। अगर वो किसी पुरानी रिवायत या तजुर्बे का जिक्र करें तो उनमें दिलचस्पी लेना उनकी इज्जत और खुशी दोनों बढ़ा देता है। कतरी मजलिस में भी बुजुर्गों की मौजूदगी और उनका एहतराम एक खूबसूरत मंजर पेश करता है। लोग उनका इस्तकबाल करते हैं, उनकी बात सुनते हैं और उनके साथ अदब से बैठते हैं। इसी तरह बच्चे महफिल के आदाब देकर सीखते हैं। बुजुर्गों के साथ रवैया सिर्फ खानदान की पहचान नहीं बल्कि माशरे के हुस्न अखलाक का इजहार होता है। जब लोग अपने बुजुर्गों का एहतराम करते हैं तो वो नई नस्ल को भी मोहब्बत, सब्र और जिम्मेदारी का दर्स देते हैं। قطر کی ثقافت میں ورثے کی حفاظت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بزرگوں کے تجربات کو محفوظ رکھا جائے, ان کی کہانیاں ریکارڈ کی جا سکتی ہیں, ان کے ہنر سیکھے جا سکتے ہیں اور ان کی یادوں کو خاندانی گفتگو کا حصہ بنایا جا سکتا ہے. بزرگ درخت کی مضبوط جڑوں کی طرح ہوتے ہیں, جڑیں نظر نہیں آتی لیکن درخت کو مضبوطی دیتی ہیں. اسی طرح بزرگوں کا تجربہ اور رہنمائی خاندان کو سہارا دیتی ہے اور پرانی روایات کو زندہ رکھتی ہے. آج کے کلچر مومنٹ کا پیغام یہ ہے کہ بزرگ ہماری زندگی کا قیمتی سرمایہ ہیں, ان کا احترام کریں, ان کی بات محبت سے سنیں اور ان کے لیے وقت ضرور نکالیں, کیونکہ جو خاندان اپنے بزرگوں کو عزت دیتا ہے وہ اپنی روایات, اپنی یادوں اور اپنی پہچان کو بھی محفوظ رکھتا ہے. تو لسنرز, آج کے کلچر مومنٹ کو یہی مکمل کرتے ہیں. یاد رکھیے, ثقافت صرف گزرے ہوئے وقت کا نام نہیں بلکہ ہماری روزمرہ زندگی کا خوبصورت حصہ ہے. میں ہوں آپ کی آرجے مہوش, اگلی ملاقات تک اپنا خیال رکھیے اور قطر کی خوبصورت ثقافت کو ہمیشہ عزت اور محبت کے ساتھ یاد رکھیے. اللہ حافظ.
1: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107, دل سے دیسی.

की और इन सब मारूफ खिलाड़ियों के बाद आई मीन रिटायरमेंट के बाद हॉकी वॉज लुकिंग फॉर सम क्लासिकल प्लेयर्स आर्टिस्टिक स्किलफुल प्लेयर्स जो कि धनराज पिल्ले ने लेकर आए. धनराज पिल्ले को देखने के बाद धनराज पिल्ले एवरीबडी थॉट कि हाँ धनराज पिल्ले वो खिलाड़ी हैं जो उस रेंज ऑफ प्लेयर्स जो उनसे पहले खेल चुके हैं उसी लेवल के हैं. एंड एंटरटेनर तो थे ही, उनकी ड्रिबलिंग क्विक टर्न्स एंड अटैकिंग स्टाइल ने ओपोनेंट्स को अक्सर मुश्किल में डाल दिया. इंटरनेशनल हॉकी में उनका सफर भी कामयाबी से भरा रहा. 1992 बार्सिलोना ओलंपिक्स में डेब्यू करने के बाद उन्होंने अगले 3 ओलंपिक गेम्स में भी इंडिया की नुमाइंदगी की, यानी 4 ओलंपिक गेम्स, बार्सिलोना, अटलांटा, सिडनी और एथेंस, और हर दफा दुनिया के सबसे बड़े हॉकी स्टेज पर इंडिया की जर्सी में नजर आए. लेकिन एशियन गेम्स में धनराज का नाम और भी खास तौर पर उभर कर सामने आता है. 1990 बीजिंग, 1994 हिरोशिमा, 1998 बैंकॉक और 2002 बुसन एशियन गेम्स, इन तमाम इवेंट्स में उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया. 1998 में इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाने में उनका किरदार बहुत अहम था, जबकि 2002 में भी इंडियन टीम ने गोल्ड मेडल जीता. दोस्तों, उनका इंटरनेशनल करियर इतना लंबा और शानदार था कि वो मुख्तलिफ जनरेशन के प्लेयर्स के साथ भी खेले. उन्होंने इंडियन हॉकी के कई बदलते दौरों को अपनी आंखों से देखा और टीम को लीड भी किया. धनराज की एक और खास बात उनकी फियरलेस पर्सनैलिटी थी. वो फील्ड पर किसी भी ओपोनेंट से घबराते नहीं थे, चाहे सामने दुनिया की कोई भी मजबूत टीम हो. धनराज पिल्ले का अटैकिंग अप्रोच हमेशा उन्हें एक खतरनाक खिलाड़ी बनाता था. इसी वजह से उनका नाम इंडियन हॉकी के ग्रेटेस्ट प्लेयर्स में लिया जाता है. लेकिन धनराज के लिए हॉकी सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं थी, यह उनकी जिंदगी, उनकी पहचान और उनका जज्बा. उन्होंने अपने करियर में मुश्किलात देखी, क्रिटिसिज्म का सामना किया और सिस्टम के साथ उनका जो टकराव था वो भी हमें देखने को मिला. लेकिन हॉकी के लिए उनका पैशन कभी कम नहीं हुआ. ही वॉज सो पैशनेट, ही वॉज सो फोकस्ड, ही वॉज सो मच ग्राउंडेड कि उन्हें हॉकी खेलकर इंडिया का नाम और मजीद बढ़ाना था. उन्हें सिर्फ हॉकी दिखता था, हॉकी स्टिक, हॉकी मैदान, हॉकी के एस्ट्रोटर्फ पिचेस यानी सिंथेटिक पिचेस पर. धनराज पिल्ले वॉज समथिंग जो कि डिफाइन, हम अगर आप लोगों के लिए अगर क्रिकेट के लफ्जों में अगर बात करूं तो कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली या बाबर आजम या जावेद मियांदाद या कोई भी अगर आप क्रिकेटर्स उठा लें, क्योंकि आप क्रिकेट आप लोगों का, देसी लोगों का सबसे मनपसंद खेल है, तो धनराज पिल्ले को अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो धनराज पिल्ले का जो नज़रिया था हॉकी को लेकर वो इस तरह फोकस था, इस तरह पैशनेट था जैसे कि इन तमाम क्रिकेटर्स की जिंदगी में रहा है विद क्रिकेट. आज भी जब इंडियन हॉकी के गोल्डन मोमेंट का जिक्र होता है तो धनराज का नाम जरूर सामने आता है. एक ऐसा खिलाड़ी जो स्पीड से खेलता था, जज्बे से लड़ता था और अपनी परफॉर्मेंस से फैंस के दिल जीतता था. धनराज ने सिर्फ इंडिया के लिए हॉकी नहीं खेली दोस्तों, उन्होंने एक पूरी जनरेशन को इंस्पायर किया कि अगर टैलेंट के साथ मेहनत, हिम्मत और जुनून हो तो दुनिया के किसी भी स्टेज पर अपना नाम बनाया जा सकता है. दैट वॉज द कन्विंसिंग फैक्टर, दैट वॉज द कन्विंसिंग धनराज पिल्ले जो उन्होंने दिखाया, एक रोड मैप, एक मार्गदर्शन, एक हदफ सेट किया था कि दिस आर द फैक्टर्स जिसके बलबूते पे आप हॉकी स्टार बन सकते हैं. और शायद इसीलिए धनराज को सिर्फ इंडिया का हॉकी लेजेंड कहना काफी नहीं, वो इंडियन हॉकी के उन चंद सितारों में से एक हैं जिनकी रोशनी आज भी नए खिलाड़ियों को रास्ता दिखाती है. उम्मीद है आपको आज का हमारा ये सेगमेंट पसंद आया होगा. अगली बार एक और स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे. तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज़.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
1: क्या आपने कभी सोचा है कि कल हमारा फ्यूचर, हमारा मुस्तकबिल कैसा होगा? क्या AI सिर्फ एक मशीन है या एक ऐसी ताकत जो हमारी जिंदगी बदल रही है? डरिए नहीं, समझिए। RJ A for अमिता के साथ AI Unlocked पर एक ऐसा सफर जहां हम रोबोटिक्स से लेकर मशीन लर्निंग तक हर मुश्किल बात को आसान बनाए। तो सुनिए AI Unlocked RJ A for अमिता के साथ हर संडे दोपहर 3 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
2: हर प्रोफेशनल शख्स इतना मसरूफ है जिंदगी में कि अगर उसे वक्त मिले और कोई उससे पूछे कि बैठिए जरा बताइए क्या चल रहा है,
3: चले तो कट ही जाएगा सफर।
2: तो फिर एक ऐसी कहानी सुनने को मिलेगी जो सीधा आपके दिल पे जा लगेगी। इसलिए हम आपको इनवाइट करते हैं हमारे कैफे में, जहां आप में से ही एक शख्स हमारे साथ होगा कैफे 107 पर।
4: हर फ्राइडे शाम 7:15 बजे से FM 107 पर दोहा वाले कबीर के साथ।

उन भाइयों ने कहा, ये चोरी करे तो कुछ ताज्जुब की बात ही नहीं, इससे पहले इसका भाई यूसुफ भी चोरी कर चुका है। यूसुफ उनकी ये बात सुनकर पी गया। हकीकत उन पर न खोली, बस इतना कहकर रह गया कि बड़े ही बुरे हो तुम लोग, मेरे मुंह दर मुंह मुझ पर जो इल्जाम तुम लगा रहे हो उसकी हकीकत खुदा खूब जानता है। उन्होंने कहा, ए सरदार जी इख्तदार यानी अजीज, इसका बाप बहुत बूढ़ा आदमी है, इसकी जगह आप हम में से किसी को रख लीजिए, हम आपको बड़ा ही नेक नफ्स इंसान पाते हैं। यूसुफ ने कहा, पनाह खुदा, दूसरे किसी शख्स को हम कैसे रख सकते हैं, जिसके पास हमने अपना माल पाया है उसको छोड़कर दूसरे को रखेंगे तो हम जालिम होंगे। जब वो यूसुफ से मायूस हो गए तो एक गोशे में जाकर आपस में मशवरा करने लगे। उनमें जो सबसे बड़ा था वो बोला,

ये लोग भलाई से पहले बुराई के लिए जल्दी बचा रहे हैं, हालांकि इनसे पहले जो लोग इस रविश पर चले हैं उन पर खुदा के आज़ाब की इबरतनाक मिसालें गुजर चुकी हैं। हकीकत यह है कि तेरा रब लोगों की ज्यादतियों के बावजूद इनके साथ चश्म पोशी से काम लेता है, और यह भी हकीकत है कि तेरा रब सख्त सजा देने वाला है। ये लोग जिन्होंने तुम्हारी बात मानने से इनकार कर दिया है कहते हैं कि इस शख्स पर इसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों ना उतरी, तुम तो महज खबरदार कर देने वाले हो और हर कौम के लिए एक रहनुमा है। अल्लाह एक एक हामिला के पेट से वाकिफ है, जो कुछ उसमें बनता है उसे भी वो जानता है, और जो कुछ उसमें कमी या बेशी होती है उससे भी वो बाखबर रहता है। हर चीज के लिए उसके हाँ एक मकदार मुकर्रर है, वो पोशीदा और जाहिर हर चीज का आलिम है, वो बुजुर्ग है और हर हाल में बाला तर रहने वाला है। तुम में से कोई शख्स खास जोर से बात करे या आहिस्ता, और कोई रात की तारीकी में छुपा हुआ हो या दिन की रोशनी में चल रहा हो, उसके लिए सब यकसां हैं। हर शख्स के आगे और पीछे उसके मुकर्रर किए हुए निगरान लगे हुए हैं, जो अल्लाह के हुक्म से उसकी देखभाल कर रहे हैं। हकीकत यह है कि अल्लाह किसी कौम के हाल को नहीं बदलता जब तक वो खुद अपने औसाफ को नहीं बदल देती, और जब अल्लाह किसी कौम की शामत लाने का फैसला कर ले तो फिर वो किसी के टाले नहीं टल सकती। न अल्लाह के मुकाबले में ऐसी कौम का कोई हामी और मददगार हो सकता है। वही है जो तुम्हारे सामने बिजलियां चमकाता है, जिन्हें देखकर तुम्हें अंदेशे भी लाहक होते हैं और उम्मीदें भी बनती हैं। वही है जो पानी से लदे हुए बादल उठाता है, बादलों की गरज उसकी हम्द के साथ उसकी पाकी बयान करती है, और फरिश्ते उसकी हैबत से लरजते हुए उसकी तस्बीह करते हैं। वो कड़कती हुई बिजलियों को भेजता है और बसा औकात उन्हें जिस पर चाहता है ऐन उस हालत में गिरा देता है जब लोग अल्लाह के बारे में झगड़ रहे होते हैं। फिलवाक़े उसकी चाल